0: अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो।
1: इन्ना कद उहिया इलैना अन्ना العذاب على من كذب وتولى।
0: हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है।
1: قال فمن ربكما يا موسى।
0: गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसने कहा कि मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है?
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى।
0: कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल और सूरत बख्शी फिर राह दिखाई।
1: قال فما بال القرون الاولى।
0: कहा तो पहली जमातों का क्या हाल?
1: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى।
0: कहा कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है, मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है।

0: तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदनों पर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मतलूब से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई।
1: بعضكم لبعض عدو

कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: 101 FM.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
5: यू आर लिसनिंग FM 101 रेडियो पाकिस्तान। FM 101, ट्यून इन टू द वन अबव।
6: उठाइए तो मैं आपको बताता चलूं, जैसे आपने बताया कि अभी हमारे पास यहाँ पे 32 सेलर्स और पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स की प्लूटोन्स मौजूद हैं। मैं सामीन को बताता चलूँ कि आज की तकरीब में परेड कमांडर के फ़राइज लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर हयात डोगर कर रहे हैं, कैडेट प्लूटोन की क्यादत चीफ कैडेट कैप्टन जरार रहमान सवाती कर रहे हैं और सेलर प्लूटोन की क्यादत लेफ्टिनेंट मियाँ अली बाबर कर रहे हैं। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी की कैडेट प्लूटोन में दो खवातीन कैडेट्स भी शामिल है और अभी जैसे आपने देखा है

new song? Well, of course you haven't. It's brand new. Q101.

0: is FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: आपने FM 101 किया।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: This is FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सुनते रहिए FM 101.

मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत स्मार्टों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खैर आफत से होंगे, जिंदगी के रंगों को खूब एंजॉय किया जा रहा होगा, वहां उस एंजॉयमेंट में एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजी जुबिया शफीक, आपके अपने प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन योम आजादी के मौका पर पाकिस्तान अपना 79th बर्थडे इंडिपेंडेंस डे बड़े जोश और खरोश से मना रहा है विद पापा चाचा और FM 101 ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके साथ सुबह से शाम तक रहने का फैसला किया है। और मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ बहुत सारी आवाज, बहुत सारी, समझ रहे हैं ना आप, एक बड़े ही प्यारे से आरजे, नहीं बहुत सारे प्यारे से आरजे आरजेज मेरे साथ मौजूद होंगे जिनको आप सुनेंगे और हम आपको कहेंगे जी बिल्कुल

0: हाँ जी हाँ जी,
1: अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान के तमाम सुनने वालों को, एक बार फिर से तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने तमाम सराहने वालों को इस हस्ती मुस्कुराती चहचहाती लहलहाती सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। और इस नए आज़ादी के साल के हवाले से आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जुबिया, आपने बात की, जब आज की बात की है ना, प्यारे से आज मुझे लगा मेरी बात कर रही है।
0: शुक्र करें मैंने ये नहीं कहा क्यूट।
1: हाँ जी, क्यूट और क्यूट के साथ साथ आज हम म्यूट बिल्कुल नहीं होने वाले। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, और सबसे बढ़ के हंसने को और हंसाने को।
0: बड़े ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से चेहरे, नए नए चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं, उनको भी मैंने शामिल करना है, उनसे पूछना है कैसा लग रहा है।

0: लड़कियों, हमारे साथ प्रोग्राम करके ये तो पूछना होगा ना, बाकी चीजें तो बाद में पूछेंगे।
1: इसके अलावा तमाम सुनने वालों से भी हम कहेंगे कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहा आसान, एफएम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, यहाँ पर आने के बाद पोस्ट लगी है या नहीं लगी?
0: लग गई
1: है, क्या बात है, बहुत आप फास्ट जा रही हैं आज। तो बिल्कुल जनाब, आप वहाँ पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और कुछ भी कहना चाहते हैं और आज के दिन के हवाले से अपने पैगाम से हमें आगाह करना चाहते हैं, सो हम आपको वेलकम कहेंगे। सो सबसे पहले तो तमाम हमारे सामने जितने भी चेहरे मौजूद
0: हैं, उनको मेरे ख्याल से साथ में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम। लड़कियों थोड़ा ऊंची, नाश्ता नहीं किया? नाश्ता, मिठाई शिठाई, केक शेक नहीं मिला? यहाँ सेरेमनी तो हो रही थी।
2: सेरेमनी हो रही है, बस अभी केक मिलना बाकी है।
0: अच्छा, केक मिलना बाकी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
2: जी, मेरा नाम है हमना सिद्दीकी। okay. और मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ।
0: जबरदस्ती।
3: मेरा नाम वासिफा मुकद्दस है और मैं PhD उर्दू लिटरेचर।
0: माइक सामने, माइक सामने। ओके जी, बोले।
4: अरीज फातिमा। okay. और मैं भी इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ।
0: वेरी गुड। और जनाब, हमें कहते हैं
1: मुझे आज मुस्तफा कहते हैं और मैं जिनके साथ मौजूद हूँ, नन अदर देन आज जुबिया शफीक, यही नाम है ना वैसे?
0: पहले तो यही हुआ करता था।
1: चले
0: तो जनाब, हमने क्या कहना है कि हम आपके साथ हैं, आपने हमारे साथ रहना है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है, बताना है कि आप हमें सुन रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, आज का दिन कैसे मनाने का इरादा है, कुछ बचपन की यादों को ताजा करेंगे, कुछ स्कूल कॉलेज की यादों को ताजा करेंगे, क्या ख्याल है मुस्तफा?
1: बिल्कुल करेंगे, और क्यों ना, सबसे पहले हम ये बताएं कि आज हमने क्या क्या किया है।
0: मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन मैं उठी हूँ 8 बजे।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है।
0: तो बस इसी के साथ साथ जो है ना, वो सारे मामला चलिए मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पे बढ़ेंगे हम एक खूबसूरत से मिली नकमे की तरफ।
1: जी बिल्कुल जनाब, आतिफ असलम की आवाज़ में कहते हैं हमें प्यार है पाकिस्तान से, और ओबियसली हम सबको, तमाम सुनने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को बिला तफरीक किसी रंग नस्ल और मज़हब के एक दूसरे से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तानियों से प्यार है। सो एक ऐसा ही ट्रैक आप तमाम समातों के नाम मिलते हैं इस ट्रैक, इस बार आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। मैं कहते हैं फिर 101.6 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड,
0: और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। 101 के ऑफिशियल पेज पे हमारी पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कमेंट करके शामिल होइएगा। इसके साथ साथ हमें मैसेज कर सकते हैं 4471 पे जाइएगा अपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में, 101 स्पेस नाम पे कमेंट सेंड कर दीजिएगा 4471 पे, डेफिनेटली कॉल होंगी आपकी 042 111 101। स्टिक अराउंड।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: I love FM 101.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ जुबिया शफीक। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम एक हैं। कैसी हो आप और कैसा गुजर रहा है आज का दिन?
1: मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? और आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आपके झुमके मुझे बहुत पसंद आ
0: शर्मा गई मैं लड़की।
1: और एक चीज मैं देख रही थी आज के प्रोग्राम में चार खवातीन हैं, तो आज का जो प्रोग्राम है ये फीमेल डोमिनेटेड हो गया है।
0: क्या बनेगा लड़की तुम्हारा?
1: तो आज मुस्तफा क्या कहेंगे इस बारे में आप?
2: अरे वो कहते हैं ना कि कल ही शेर है वो वाले मामला थे। सो वैसे भी पाकिस्तान में जब बात की जाती है एक वो टाइम होता था कि ख्वातीन की नुमाइंदगी जो थी वो हमें कम देखने को मिलती थी, आजकल ज़्यादा देखने को मिलती है। सो आज हमारे लिए भी, स्पेशली मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मेरे साथ इतनी सारी जो ख्वातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं। सो
0: लड़कियाँ कह के कवर कर गए वरना मैंने इधर से माइक डायरेक्ट ऑफ करना था।
2: अरे जुबिया शफीक भी आई लड़कियों के अलावा तो
3: बिल्कुल
0: हाँ जी।
3: अब आपका बनता है, आप इनका माइक ऑफ कर दे। माइक ऑफ,
0: मैं कह रही हूँ फीडर मेरे हाथ में, कुछ सोच समझ के जो है ना वो बोल रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल जनाब, ये हल्ला गुल्ला फन मजा तंजो मजा चलता रहेगा, हम बढ़ते हैं अपने।
0: अच्छा नाम मुझे थोड़ा सा वो बोलने में दिक्कत हो जाएगी शायद, अरीज। अच्छा अरीज, मुझे ये बताएं कि आज का दिन की स्टार्ट कैसे हुई?
1: आज के दिन की स्टार्ट
0: थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा माइक।
1: बड़ी दिलचस्प हुई।
0: अच्छा जी।
1: मैं तो बहुत शौक में निकली थी कि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी मिलेगी, लोगों का क्राउड मिलेगा। लेकिन उसके बरअक्स जो है वो सड़कें मुझे खाली मिली और मुझे पता चला कि रात को जो है वो लाहौर की आवाम ने बहुत हल्ला गुल्ला किया और बहुत रौनक लगाई हुई थी और अब जो है वो सब लोग सो रहे हैं,
2: लंबी चांद के सो रहे हैं।
0: अच्छा अगर लाहौरियों की बात करो तो लाहौरी जो है ना वो मुझे लगता है कि रात को ही जागते हैं।
1: लाहौरियों का दिन ही रात को होता है, वो रात 3 बजे तक तो आतिशबाजी और पटाखे वगैरह करते रहे।
0: बर्टी में इतना क्राउड था और इतना शोर था और मुझे लगता है कि ये जो दिन, ये स्पेसिफिक जो दिन होते हैं इनमें दिन को भी जागना चाहिए ना। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार आज का दिन है, जाग जाओ, कुछ नहीं सारा मंथ जो है।
1: वैसे लाहौरियों के इस टाइम सोने का एक फायदा मुझे बहुत हुआ है, मैं 20 मिनट का रास्ता 6 मिनट में कवर करके आ गई क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं थी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी सुबह ये एक्सपीरियंस हुआ ना, मैं वक्त पे निकली, मैंने कहा चलो जिस तरह 20-25 मिनट लग जाते हैं मैं आराम से पहुंच जाऊंगी, 9 मिनट के अंदर मैं एग्जैक्ट रेडियो पाकिस्तान।
1: एग्जैक्टली,
3: बहुत मजा आ रहा था। नहीं आ रही आपको सड़क,
0: किसी का फायदा हुआ है ना?
1: सबसे अच्छी बात ये कि रेडियो पाकिस्तान पे सब लोग अपने वक्त पर मौजूद थे और जो परचम कुशाई की तकरीब हुई देखने को मिली है हमें, वो बहुत दिलचस्प।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मुस्तफा।
2: बिल्कुल जनाब, 04-2-111-0101 रابطے का नंबर और यू कैन कॉल मी अप फोन।
0: अभी नहीं, अभी नहीं, मैं पिक बिल्कुल नहीं करूंगी 10 बजे के बाद। अभी आपके मैसेजेस ढेरों सारे, आप जो मुझे मैसेजेस करेंगे आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ। और फिर जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनको ये बताते चलो, जो ऐसे ही इधर से उधर से गुजरते हुए उनका चैनल जो है वो स्टक्ट हो गया इधर, उनको ये बताते चले कि आपको मायूसी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इस 1 से 2 घंटे के अंदर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो लेकर ही आप जाएंगे। अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करेंगे और फिर शामिल हो जाएंगे।
2: जी बिल्कुल शामिल हो जाएंगे और हमारे आपने जितने भी नए आने वाली आवाज़ें हैं रेडियो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की आवाज़ें, आपने इनको भी सराहना है और इनके हवाले से भी अपने फीडबैक से हमें आगाह करना।
0: अच्छा मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि बच्चे जितने भी लड़के लड़कियाँ हमारे जो आए हैं, इंटर्नीज आए हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। क्या सिखा दिया 2 महीनों ने आपको, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई आपकी?
1: जब पहला हमारा इंटर्नशिप का दिन था उस वक्त हमारे ट्रेनर ने एक बात कही थी कि आप जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी तो आपको ये पता होगा कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या बोलना है।
0: यस,
1: सबसे जरूरी बात कहाँ क्या नहीं बोलना,
0: क्या नहीं बोलना।
1: तो ये जो बोलने और ना बोलने वाला जो जो इनका बिल्कुल जो डिफरेंस है ना, ये उन्होंने हमें बड़े अच्छे से सिखाया।
0: और समझ आती है?
1: मैं कल अभी अरीज से बैठ के यही बात कर रही थी कि वैसे तो जब हम शो पे बैठते हैं तब तो बहुत सी चीजों का ख्याल रखना ही होता है, अब जनरल लाइफ में गुफ्तगू करते हुए भी मैं एक बात करने से पहले अनकॉन्शियसली 10 बार सोच रही थी कि ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
0: अच्छा और मुझे लगता है कि इस जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, बोलना सबको आता है, जो मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ बोलना सबको आता है लेकिन कहाँ क्या बोलना है वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो हैं वो इस बात को फॉलोअप करते हैं कि कहाँ पे क्या बात करनी है. हमारी जो जेन जी है स्पेशली, वो जो है ना वो इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत भी है. सोचना चाहिए, समझना चाहिए. हम कहते हैं हमें अपना सवाल रखना है, किस टाइम पे रखना है ये हमें नहीं पता.
1: बिल्कुल, और ये सबसे जरूरी चीज होती है,
0: ये सबसे जरूरी होता है. आप अपना ओपिनियन रखें, आप अपनी ओपिनियन जो है वो दूसरे को दें. आप किसी की बात को डिनाई कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ रिस्पेक्ट का एक जो एलिमेंट है ना,
3: मुझे पहला करीना है मोहब्बत के करीने में, तो एग्जैक्टली उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है.
1: जिस तरह आज आजादी का दिन है तो इसी के साथ साथ आजादी इजहार राय की भी बात हो जाए कि आजादी इजहार राय बड़ी बड़ी एक खूबसूरत हक है आपका, लेकिन वही बात कि उसको एक लिमिट के अंदर रह के दूसरों की दिल आजारी ना करते हुए आपने उसको इस्तेमाल.
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात.
3: आजकल तो उस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड का टैग लगा के तो लोग बहुत आसानी से बच निकलते हैं.
0: अच्छा, और जहाँ पे अच्छा, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक कहते हैं कि मैंने जस्ट मजाक किया,
1: मजाक किया था.
0: जितनी दिल की भड़ास है ना किसी के बारे में आपने कुछ भी कहना है.
1: अच्छा जी, वो बंदा ना जबान का जरा कड़वा है लेकिन दिल का बड़ा साफ है.
0: मुझे लगता है कि क्या
2: करना है मुझे
1: दिल. एग्जैक्टली, मैंने आपके दिल की सफाई का, बिल्कुल आपके दिल की सफाई का मैं क्या करूं जब आपके कड़वे अल्फाज ने मेरा दिल तोड़ दिया.
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो है, देखा हमारी इंटर्निस कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है और ये सारा क्रेडिट जो
2: है दिल तोड़ने नहीं है,
0: दिल जोड़ने, दिल
2: जोड़ने हैं और हमने कोशिश करनी है.
0: अरे आप इतनी खामोश खामोश वैसे क्यों हो?
1: अरीज से मेरी मेरी गुजारिश है, अरीज से आप कुछ शायरी सुने, ये बहुत बहुत अच्छी शायरी पढ़ती और सुनाती हैं, आप इनसे कुछ सुनिए.
0: जरूर सुनूंगी मैं. अच्छा अरीज, मैं आपको बताऊं, मैं भी थोड़ी सी आप जैसी ही हूं, मैं भी थोड़ी सी आप जैसी ही हूं. सबको यहां पता है लेकिन फिर भी जब मैं माइक के सामने आती हूँ ना तो मैं वो नहीं होती जो ऐसे वैसे मैं होती हूँ. तो मुझे लगता है हर जो आरजे है ना उसको ऐसा ही होना चाहिए. अपनी पर्सनल लाइफ में आप कितने भी शाय हो, आप बहुत कम गो हो, लेकिन जब ये माइक आपके सामने आ जाए ना फिर तुसी फड़े ना जाओ.
1: नहीं, मैंने इस पे बहुत काम किया है. पहले तो मैं बिल्कुल ही खामोश रहती थी, आप हमना से जान सकती हैं इस चीज को.
0: अच्छा अच्छा.
1: मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ लेकिन इस इंटर्नशिप का मुझे फायदा ये भी हुआ कि मैंने जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया है.
0: वेरी गुड.
1: तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक्सप्रेस करने के साथ साथ इसने मुझसे लड़ना शुरू भी कर दिया.
0: ओहो, अभी भी मैं देख रही हूं
1: एक्सप्रेशन.
0: अच्छा,
2: दोनों बहनें हैं, दोस्त हैं.
1: मेरे फोन के बैक कवर में इस लड़की की तस्वीर है और इसने पिछले दिनों मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ था.
0: ओह माय गॉश. यहाँ तो कुछ
1: माइक ऑफ कर दें
0: प्लीज. यहाँ तो कुछ सच्ची सच्ची बातें हो रही है लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है, आपके साथ गॉसिप जारी रहेगी, आप भी वैसे शामिल होना है फिर 101 के. ओ नहीं, लड़ना कुड़ियों, नहीं ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे. सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा, हम वापस आते हैं और फिर बढ़ते हैं आपके कुछ पैगामात. स्टिक अराउंड.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: नाथ जी वेलकम बैक। पाकिस्तान अपना 79th बर्थडे बहुत ही जोशो खरोश से मना रहा है और एफएम 101 आपके साथ। ये इतने सालों में पाकिस्तान ने बहुत गर्मियां, बहुत सर्दियां, बहुत खिजा, इस तरह के बहुत सारे मौसम देखे। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो ऐसा बहुत कुछ हमने देखा, हमारे यंगस्टर ने देखा। मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कि हम वो जनरेशन है जिन्होंने हर एक साइड देख ली है।
1: जी हाँ।
0: जंग भी हमने देख ली,
1: जंगें देख ली हैं, सैलाब
0: देख ली। हाँ, हमारे पहले बड़े कहा करते थे कि हम बचपन में इतने साल के थे जब वो 65 की जंग हुई थी, और हम अपने बच्चों को कहा करेंगे, अपने पोतों को कहा करेंगे हमने भी देखी।
2: हमने पहले जलजला देखा, फिर सैलाब देखा, फिर जंग देखी, फिर हमने पैंडेमिक देखी, फिर जंग देखी। हमने तो अपने बड़ों बड़ों से ज्यादा देख लिया,
0: सब कुछ देख लिया। और फिर इन सब से माशाल्लाह अच्छे तरीके से जीते भी।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, यहाँ इशारे नहीं चलते लड़की, बोलना पड़ता है।
2: हमने जो है वो बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमने उन मुश्किलात में हौसला नहीं हारा और डट कर मुकाबला किया।
3: मीम्स बनाने नहीं छोड़े उन मुश्किलात में।
0: मीम्स बनाने वालों का अपना एक अलग लेवल है। मुझे लगता है कि जहाँ पे जिन दिनों पे जंग हो रही थी उसमें भी जब आप सोशल मीडिया खोलते थे तो आपको लगता था कोई ना फनी माहौल चल रहा
3: है।
2: वो तो एक हमारा हिस्से मिजाज जो है वो है ही, जिसके लिए।
0: अच्छा, आपको क्या लगता है?
3: मिजाज का कोई मुकाबला नहीं है।
0: आपको क्या लगता है ये होना चाहिए?
3: मीम्स भी हैरान थे कि ये वाकई जंग की हालत में है या बिल्कुल इनके लिए नॉर्मल सी बात।
1: अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में बात की जाती है कि ये इनको पता चले ना कि गोलियां चल रही हैं, ये घर से निकल के देखेंगे वाकई चल दिया चल दिया ने तो किमें चल दिया।
0: देखा था वो जब इन्होंने वो अटैक करना था
2: वो ड्रोन वाला।
0: हाँ, ड्रोन वाला तो
2: पाकिस्तानी
0: लेवल है, लेवल
2: से ड्रोन
1: तो यकीन करें ये फतह मिसाइल जब चलाए गए हैं तो अपनी निगरानी में एनजी चलाना है तो उसी तक जाना चाहिए।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन देखिए एक बात है, जो जिन कौमों के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा दिल हैं, तो देखिए अमन की हालत में तो कोई भी जिंदा दिली दिखा सकता है, अपने जश्न कोई भी मना सकता है। जो हालत जंग है या कोई भी तकलीफ की हालत है उसमें जिंदा दिली दिखाना मेरे ख्याल से ये बहुत ही कोई जोश और जज्बे वाली और बड़ी कोई हिम्मत वाली कौम होगी तो ये उसी का काम है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम जो है हमारी ये उन्हीं अकवाम में से एक है जो कि मुश्किल हालात में भी जिंदा दिली का दामन नहीं।
0: और ये भी मुझे लगता है ये भी मुजाहिद हैं जो बनाते हैं ना, मीम्स बनाते हैं। देखिए ना, इतनी परेशानी में इतने सब जो है वो स्ट्रेस एक उस माहौल में होते हैं।
1: हमारे जो DGISPR है वो फिफ्थ जनरेशन वार का आजकल वर्ड काफी इस्तेमाल करते हैं, वो यही है कि आपने नैरेटिव किस तरह से बिल्ड करना है और किस तरह से अपना जो एक नुक्ता नजर है उसको प्रमोट करना है, उसको डोमिनेट करना है। सो ये मामलात हैं और इस हवाले से नौजवानों का काफी किरदार है। आप तमाम लोगों का, आपका जो एक सरकास्टिक वे होता है बात करने का,
2: आप तमाम तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बूढ़े हो गए।
1: मैं आपसे बड़ा हूँ, आपको पता है मेरी एज क्या है?
0: नहीं, मुझे नहीं।
1: मेरी एज जुबिया से कम है।
2: नहीं देखें, एजेस की बात तो ना ही करें तो
0: सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन
3: रिस्पेक्ट।
0: अच्छा जी, हमें कुछ पैगामात हमारे सामने मौजूद हैं, उनको भी मेरे ख्याल से साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे जो सुनने वाले होते हैं ना ये चाह रहे होते हैं कि हम उनको भी साथ में ऐड डाउन करें, उनकी राय भी देखें। हमारे साथ कमल नाज हैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कहती हैं वेलकम। राना इमरान राजपूत हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। फरहाद मेमन हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया जी। कमल नाज कहती हैं क्या हाल है आपका? जुबिया शफीक, मैं जी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल से कुछ 2-3 हफ्तों बाद मैं आई हूँ आपके साथ, और मुझे ना मेरे उस पर सोशल मीडिया पे कमल का मैसेज आया हुआ था, आप ठीक है ना? अच्छा लगता है ना जब आप,
1: वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाली है ना,
0: वही है वही है। एक्चुअली जब आप नहीं मौजूद होते मुझे लगता है कि आज के दौर में जितनी हम भागम दौड़ में चल रहे हैं या जितने मसले मसाइल हमारी सबकी जिंदगियों में चल रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा होता है, वहाँ पे किसी एक बंदे का स्पेसिफिक कोई भी हो उसका ख्याल करना, ये नोट भी करना कि ये बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, और फिर उससे पूछना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे जो सुनने वाले हैं, अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो रेडियो को सुनना या किसी भी इंसान को पर्टिकुलरली इस तरह सुनना और फिर उसके साथ अटैच रहना और फिर उसे बताना भी कि मैं सुन रहा हूं, ये बड़ी एक
3: वो मेरा तो ये बहुत पुराना तजुर्बा है, मैं 13 साल से रेडियो सुन रही हूं। वक्फे से ऐसा आता है कि कोई एक आरजे आपको अच्छा लगने लगता है, सुनते आप आवाज, फिर आप बिल्कुल अगर वो प्रोग्राम नहीं कर रहा तो आपको होता है कि क्यों भाई लेट क्यों हो रहा है, आप किससे पूछेंगे, रेडियो पे तो आप मैसेज करके पूछ भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल,
3: तो अब तो शुक्र है कि ये सोशल मीडिया वगैरह आ गया है तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वरना जब
1: और आपको पता है कि आपने जितना सुना है ना उतना आपने बोलना सीखा है।
0: अच्छा, और फिर इस तरह भी होता है कि बाज़ दफ़ा आपको उनके BGM से जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके साथ इतना लगाव हो जाता है कि कहीं भी वो आप सुनते हो ना आपके आपके इमेज बन जाता है,
2: वो धुन सुनते ही फ्लैशबैक्स आने लगते
0: हैं। हाँ, आने लगते हैं ना,
3: आवाज इतनी शनासा आपके साथ हो जाती है कि आप कहीं से बिल्कुल वो एक छोटी सी उस आवाज की एक झलक भी सुन ले तो फौरन से पहचान जाते हैं कि ये कौन शख्स है जो बात कर रहे हैं या कौन खातून है जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं।
0: तो हमारे सुनने वालों, मुझे ये बताओ कि आज के दिन में ऐसा क्या स्पेशल करना है आपने?
1: जो आप तमाम सुनने वाले हमें बता सकते हैं कि आपकी स्पेशल आज के दिन के हवाले से क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं, क्या मसरूफियात हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा खाते या खिलाते हैं, वो आपने हमें लाजमी बताना है। हो सकता है कुछ हमें नया कुछ खाने को,
2: एक चीज का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक हमें सफेद और सब्ज मीठे चावल नहीं आए कहीं से।
0: हाँ, आ जाएंगे, आ जाएंगे,
3: और ये भी जाग रहे हैं, जब जागेंगे पकाएंगे,
2: मेरे ख्याल से रात सेलिब्रेशंस करते करते थक गए और अभी उठना शुरू किया है उन सब ने।
3: कल एक लोकल मार्केट से मेरा गुजर हुआ, 2 दिन से ना हम वहाँ से गुजर रहे हैं, बिकॉज हॉस्टल में रहते तो हम चाय पीने जाते हैं रात को ना सारी दोस्तें मिलकर, तो वहाँ पे एक ना मजलिस थी जिसके लिए उन्होंने बाजार बंद किया हुआ था, हम गलियों गलियों से गुजर के आगे चले गए जिस जगह पे हमें जाना था। जब हम वापिस आए तो ऐसा रश था, मैं बिल्कुल अपनी दोस्त से कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह ईद है जिसकी शॉपिंग के लिए लोग आए, इतना रश कि आपका वहाँ से गुजरना मुहाल है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ भी एक स्पेशल ब्रेक का टाइम हो रहा है और हमें उस ब्रेक की तरफ बढ़ना है और फिर हम वापस आएंगे आगे करेंगे आपसे मजीद बातचीत। आपने हमारे साथ शामिल रहना है, कॉमेंट्स करते रहिएगा और मैसेजेस भी कीजिएगा। स्टिक अराउंड।

पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: Ranchi. Welcome back. This is FM 101 Lahore Live Studio. It's me, Zubia Shafiq, और हम आपके साथ हैं आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में. और स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बड़ी ही हमारी प्यारी सी आरजी जिन्होंने बहुत वेट करवाया. वो कौन है वो खुद बताएंगी. अस्सलामुअलैकुम.
1: मैं हूँ आपकी आरजे, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट निम्रा अरूज. और सबसे पहले आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे. जश्न आज़ादी तमाम सुनने वालों को, आप तमाम देखने वालों को, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं आप तमाम लोगों को, और जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है तमाम लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद. और लेट मैं क्यों हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह,
0: ये मुझे बहुत अच्छे से पता है. और बहुत प्यारी लग रही है.
1: काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है, वेले लोग नहीं है.
0: अच्छा वैसे ना मुझे मेला समझ आपने. कोई नहीं आएगा, ए आ जाएगी टाइम.
1: नहीं, असल में काफ़ी सारी मसरूफियात थी और मैंने शो भी खुद कह के मैंने कहा था कि लास्ट ईयर जो है ना मैं अवेलेबल नहीं थी.
0: अच्छा,
1: कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज थे, आपको याद.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मुझे याद है, मैंने सुबह सुबह आपको मैसेज किया था. हाँ, कि यार प्लीज.
1: और मैंने आपके शो में कॉल भी की थी.
0: कॉल की थी.
1: हम थे, आप थी और मुस्तफा था. राइट,
0: निम्रा हमारे साथ इंटर्निस्ट मौजूद है.
1: गायब हो गया
0: मुस्तफा. गायब है मुस्तफा, गायब हो जाता है.
1: दूसरा नजर नहीं आता ना मुझे. और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर और सुनकर. मैं रास्ते में सुनती हुई आ रही थी, बस आवाजें मुझे चूंकि नाम फर्दन फर्दन नहीं मालूम थे इसलिए जो है ना आवाजों की मुझे अभी कोई पहचान नहीं थी. बट बहुत प्यारी आवाज लग रही थी जो भी कोई बोल रहा था.
0: तो क्या कहेंगी आप
2: जी. बिल्कुल, जाते जाते एक वो लोग जो कि आज़ादी के इस दिन को जोश खरोश से मनाते हैं, बाहर निकलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए. लेकिन वो लोग जो बिल्कुल ही अपने कमरों में बंद रहते हैं और इस दिन को महसूस नहीं करते, उनके लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो पाकिस्तानी होने के नाते इस दिन को महसूस ज़रूर करें और कम अज़ कम इस मुल्क की आज़ादी के कायम दायम रहने की दुआ ज़रूर करें. इसके साथ
0: एक दफ़ा ये कहिएगा, पाकिस्तान
2: जिंदाबाद.

0: निम्रा, हम बात कर रहे थे कि बचपन में हम जो यौमे आजादी मनाते थे तब की और अब में कुछ डिफरेंट जो नजर आता है वो डिफरेंस क्या है भला?
1: यार बचपन में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी मज़ेदार किस्म की थी। अब जो है ना, हमने रिलेट कर दिया इसको सिर्फ एक इवेंट से, और बस आपने जो है वो स्पेशली 14 अगस्त के हवाले से कपड़े पहन लेने हैं, बाजे बजा लेने हैं।
0: बचपन में तो आपको याद है सारी रात झंडियाँ लगाया करते थे।
1: लगाया करते थे, और मैं चूंकि ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरा कजन जो था ना वो आटे की लई बनाते हैं ना, छुप के ताई मम्मी से जो है ना एक बाउल उसने लाना होता था, और जब वो खत्म हो जाता था ना फिर हमारी बारी होती थी।
0: सारी रात
1: इतने की बारी सबकी होती थी आटा जाया करने पर।
0: और उसके बाद सुबह के टाइम बारिश हो जाती थी,
1: और जब बारिश हो जाती थी तो फिर हमें झंडियाँ जो नीचे गिर जाती थी हम बकायदा उसको चूम कर उठाते थे और ऊपर रखते थे। जबकि अब मुझे लगता है कि बच्चों में ये वाली अवेयरनेस या ये वाली मोहब्बत जो है ना वो शायद थोड़ी कम है। जोश है नो डाउट। कल मैं भी बैठी हुई थी कोई अराउंड 10-10:30 बजे के करीब ना, बस बाहर से पा पा पा पा,
0: ये वाली आवाज़ें
1: बहुत आ रही।
0: आजकल ये वाली ज्यादा,
1: इतनी आवाजें थी ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाऊं और उन बच्चों के जाके ना घरों में घुसा के ताले लगा के आऊं कि भाई मतलब अपने बच्चों को ना थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि 14 अगस्त है क्या।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और हमारे साथ कुछ इंटरनेट में मौजूद हैं, उनको भी साथ में लेकर चलते हैं। जी हमारे साथ सबसे पहले हैं
2: शहीद सफदर सुलहरी।
0: शहीद सफदर सुलहरी,
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, एक सेलिब्रेशन के साथ साथ आई मस्ट मेंशन, ये मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है क्योंकि हमारे साथ मिस खदेजा भी इस टाइम पे स्टूडियो में मौजूद हैं, एंड अराउंड 4 years बैक मी एंड मुस्तफ़ा यूज टू डू शोज टूगेदर, तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है टू बी अगेन विद माई ब्रदर एंड विद ऑल ऑफ यू।
0: वेरी गुड। और हमारे साथ मौजूद हैं
3: लाइबा शाहजहान।
0: लाइबा शाहजहान, आपको मुगलिया मुगलिया थोड़ी फील आई?
1: मेरे मुंह में ये बात थी, मेरे लव पकड़ लिए।
2: एंड विद ऑल ऑफ यू।
0: वेरी गुड। और हमारे साथ मौजूद हैं
3: लाइबा शाहजहान।
0: लाइबा शाहजहान, आपको मुगलिया

0: गुजर रहा है, कैसा स्टार्ट हुआ आज का दिन और क्या डिफरेंस था?
1: आज का दिन तो बहुत ही शानदार मैं कहूँगी आगाज़ हुआ है, क्योंकि मैंने रेडियो पाकिस्तान आना था तो मेरी तो एक्साइटमेंट ही कुछ और थी, और रास्ते में जो मनाजिर मैं देखती आई हूँ ना, उससे तो मैं कहती हूँ दिल बाग बाग हो गया। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से, और जब बच्चों का जिक्र होगा तो फिर किसका जिक्र होगा, बाजों का। तो मैंने 5 बच्चे देखे और उनकी हाइट भी, मतलब सबसे बड़ा छोटा छोटा, और उनके बाजे भी उसी साइज के छोटे छोटे
0: हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग बाजे
1: बिल्कुल उन सब ने अपने अपने बाजे अपने अपने साइज के मुताबिक उठाए हुए थे। उसके बाद मैंने फैमिलीज देखी जो कि फुल तैयार होकर जा रही थी, उनके बच्चे और माँ बाप और सब इतने खूबसूरत लग रहे थे, और हर तरफ जो सब्ज रंग नज़र आ रहा था ना, उससे तो दिल खुश हो गया।
0: अच्छा नीना, हम बात कर रहे थे, हम अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि हम एक ना फौज चलती है बच्चों की, उस फौज में एक उसको लीड कर रहा होता है, उसके पास बड़ा सारा बाजा होता है, आपने वो देखी है फौज?
2: नहीं देखी,
3: घर में है।
2: अच्छा मजे की बात यह है कि मेरे बच्चों ने किसी किस्म की इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं।
0: अच्छा 2-3 साल पहले जब याद है हमने प्रोग्राम किया था,
2: खुशी होती है इस हवाले से कि मेरी बेटी ने खुद मना किया कि मम्मा मैंने इस दफा कोई कपड़े नहीं लेने। हर साल मैं उनको समझाती थी कि बेटा सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं रहना, ठीक है, इसका मकसद कुछ और है। लेकिन फिर मैं उनको इसलिए ले देती थी कि चलो यार बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं तो फिर वो फील करते हैं कि पता नहीं हमारे माँ बाप ने क्यों नहीं लेके दिए। तो अब इस दफा जो है ना, मेरे बच्चों ने तीसरी वाली जो है मेरी माशाल्लाह 8-9 साल में है अभी, तो उसने भी मुझे जो है ना वो कोई फरमाइश नहीं की। हालांकि कल हम गए हैं मार्केट और काफी सारी चीजें वो देख रही थी, लेकिन एक दफा उसने मुझे नहीं कहा, सिर्फ एक फ्राइज की फरमाइश की थी। इसके अलावा किसी किस्म की उस बच्ची ने फरमाइश नहीं की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ना उसने किसी बच्चे ने मुझे कहा कि जी मुझे बाजा लेकर दो या कोई और ऐसी चीज ले। हाँ वो जो बैजेस होते हैं झंडे फ्लैग वाले, वो जरूर बच्चे शौक से खरीद लेते हैं, लगा लेते हैं कपड़ों पर, लेकिन कोई स्पेशली जो है ना इस तरह की फरमाइश नहीं की।
3: अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं आतवार की, लेकिन यहाँ पर निमरा से ये सवाल बनता है कि खाने शाने बड़े अच्छे बनाती हैं, आज कोई ऐसी डिश है कोई ऐसा?
0: मसूद भाई भी बहुत अच्छे
2: बड़े नखरे वाले हो गए हैं, यकीन करो
3: हो गए हैं।
2: बड़े नखरे वाले हो गए हैं
3: आज के लिए, हो गए हैं तो होने दें।
2: जब ऑफिस जा रही हूँ, वेन्यू पे जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ ना, बर्तन भी वैसे पड़े होते हैं, खाना पक्का हुआ होता है। मैं कहती हूँ यार आप ज्यादा आराम के जो है वो, मतलब यू नो, खुल के नहीं कहती प्यार मोहब्बत से कहना पड़ता है कि कहीं उलट मेरे ऊपर ना आ जाए। पर जो उन्होंने बाजार से ला के दे रहे हैं वो भी कहेंगे तू चंगी है।
0: इसका क्रेडिट वैसे किसको जाता है? क्या लगता है
2: दोनों को जाता
0: है? नहीं, तारीफ ये ज्यादा हो जो होती रही है पिछले दिनों उसकी वजह से तो नहीं, ये थोड़ा सा
2: हो सकता है, हो सकता है
0: ना?
2: मुझे भी यही लग रहा था कि अब थोड़ी सी डोज देनी पड़ती है।
0: देखिए ऐसे नहीं,
2: you know, ये
0: अच्छा ये इतना प्यारा कपल है जो ग्रुप्स में है। अच्छा एक उधर ही, मुझे कभी कभी लगता है उधर ही ये बैठे हुए हैं और वहां बैठ के एक अपनी पोस्ट करते हैं और दूसरा उस पे ही बैठ के जाए। अच्छा
2: सामने बैठ, अभी रात वाले जो है
3: वो
2: बिल्कुल मैंने सुबह में मैसेजेस पढ़ गए और मैं हंस रही थी, मैंने कहा यार आप, क्योंकि कल इनका वर्क फ्रॉम होम था तो ये बाहर टीवी लाउंज में बैठे हुए थे, मैं लेट गई हुई थी, तो सुबह जब मैंने सारे मैसेजेस पढ़े ना, मैंने कहा लगता है ये सारी रात यही काम होता रहा।
0: सुनहरी साहब क्या कहेंगे आप?
4: फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बाजू की बात हो रही थी, वो जिस पोस्ट का आपने जिक्र किया, मुझे बहुत शौक रहा है कि मैं उसका कमांडर रहूं, बट
2: आपने कोई ऐसी शरारत कोई इस तरह की चीज की है कभी?
4: अच्छा मेरी मामा इस टाइम सुन रही होंगी, मैंने इस दफा भी पुरजोर फरमाइश की थी कि मैंने बाजा लेके आना है एंड यहाँ पे भी लाना है, बट माय मामा सेड कि अगर तुम बाजा लाओगे तो तुम घर में नहीं आओगे। तो रीजन के मैं
2: यहाँ
4: बाजा घर रहेगा या मैं आऊंगा, तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई मामा, शॉट आउट
0: जबरदस्त। यहाँ पे हम होते हैं माशाल्लाह जबरदस्त, हमारी जितने भी, अच्छा निम्न हमारे जितने भी इंटरव्यूज हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, मैं कह रही थी कि यार इतना ज्यादा जोश कहाँ से, ये 2 महीनों में क्या ट्रेनिंग कर दी इन्होंने आपकी, क्या क्या सिखा दिया।
2: रेडियो पाकिस्तान मेरा ख्याल है जगह ही ऐसी है कि बहुत सारी चीजें ना खुद से
0: आना शुरू हो जाती है,
2: अंदर से निकल
0: और अनडाउटेडली बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में।
2: ये जो माइक है ना, इसमें जादू है।
0: अच्छा माइक में जादू भी हो, मुझे लगता है कि इनको इन दो महीनों में, शुरू का सेशन था जब मैं आई थी और मैंने कहा था कि ये दो महीनों के बाद जब आपका सेशन हो जाएगा ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप यहाँ पे क्यों आए और आपने यहाँ इसके क्या सीखा। आज ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे और

0: इन्होंने बात करना स्टार्ट की तो मुझे समझ आ गई कि इनको पता चल गया इस माइक की लाज रखना आ गई है इन्हें।
1: बिल्कुल ऐसे ही।
0: और यही बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जिंदगी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी जाते हो वहां आपको माइक की और उस सिचुएशन की लाज रखना आनी चाहिए। इसके साथ साथ ये एक अदद हम प्यारे से नगमे की तरफ बढ़ रहे हैं फिर हमने वापस आना। सॉरी
1: मेरे बचपन का
0: मेरे बचपन के दिन भी है।
1: नहीं नहीं मेरे बचपन का ट्रैक है।
0: अच्छा आपके आपके हाँ वही ना वही हम जब छोटे थे।
1: नहीं देखे एज इज जस्ट अ नंबर।
0: हाँ
1: मैं तो मानती नहीं मुझे लगता है आपने मेरे वो वाले स्टेटस नहीं देखे मेरे और जुबिया के।
0: नहीं बाद में फिर हम ऐसे ही कहते होते
1: हम कहते हैं छोटा बच्चा जो है हम उसको खराब कर देंगे आपकी मम्मा हमें पूछेंगी आके आपने हमारे बच्चे को खराब किया।
2: जी बिल्कुल आप एनर्जी की बात कर रही थी तो इस बिल्डिंग ने सच में हमें बहुत बहुत जोश दिया है। मेरी मामा मुझसे पूछती हैं कि जब तुम जाती हो तो इतनी एक्टिव नहीं होती जब वापस आती हो तो
0: बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी आप हमारे साथ शामिल होइएगा एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट हो चुकी है इस पे कमेंट करके शामिल होंगे 04221100101 हमारे डायलिंग नंबर है डेफिनेटली कॉल्स भी मैं लूंगी लेकिन अभी इस नगमे की तरफ बढ़ते हैं फिर वापस आते हैं स्टिक अराउंड।

पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: वेलकम वेलकम बैक। खूबसूरत से ट्रैक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं
1: एंड फाइनली वी आर बैक। इस ट्रांसमिशन का नाम है हम एक हैं, मेरा और आपका साथ। तो पिछले 3-4 दिन से इस ट्रांसमिशन में एंड आज फाइनली वी आर वेलकमिंग अगेन माय ब्रदर मुस्तफा मिसूबिया एंड ऑल द लिसनर्स जो भी हमें सुन रहे हैं। आज हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आप सबकी राय भी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। उठाइए फ़ोन, डायल कीजिए 0422111001 जो के है आपके और हमारे दिलों के रबते का नंबर।
2: और वो उठा चुके फोन और डायल भी कर चुके और आ भी चुके हमारे साथ। देखते हैं हमारे साथ फर्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम
2: जी। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
3: खान बाबा, लाहौर डिफेंस से बोल रहा हूँ।
2: खान बाबा क्या कहिएगा
3: आपको, जश्न आजादी मुबारक हो।
2: आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें?
3: मैं मैसेज बाद में दूंगा, आप मेरी बात तो सुने ना।
2: सुन ले, सुना देंगे
1: आपकी सुनने के लिए तो बैठे हैं।
3: हाँ बस सुनो ना, खासकर तू सुनेगा।
2: जी जी।
3: आपका टेबल मुझे खाली नजर आ रहा है।
2: आपने केक नहीं भेजा ना।
3: अच्छा बात यह है, दूसरा मुस्तफा को कह दो कि अपने कानों में उंगलियां दे दे ताकि मेरी आवाज न सुने।
2: खान बाबा आज के हवाले से कोई एक बात आप हमें कहना चाहें, कोई एक पैगाम पहुंचाना चाहें?
3: मैं पैगाम ये देता हूँ कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से ये पाकिस्तान बना है।
2: बिल्कुल ऐसी है।
3: इन शहादत, जिन्होंने शहादत दी है उनके एहसान सवाब के लिए कुरान पाक की खत्म करें और उनके एहसान सवाब के लिए ये दुआ करें।
2: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप डायल कर सकते हैं 0422111001 कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ख्याल रखें कॉल डायल करें। एक कोई मैसेज जो मोटिवेट करें एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, हमारी सुनने वालों को मोटिवेट करें आप, वो कह सकते हैं। क्या कहिएगा आप, हमारे साथ मौजूद हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमाइमा उमर है और यहाँ पर इंटर्नशिप कर रही हूँ मैं।
2: ओके।
4: लेकिन यहाँ पर बाजों की बात हो रही थी तो मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगी कि 2 साल पुरानी बात है।
2: अच्छा।
4: मैं ट्यूशन लेती होती थी बच्चों की।
2: ठीक है।
4: और हमारे यहाँ यही होता था कि जब भी 12 रबीउल अव्वल आनी है या फिर कोई भी खास इवेंट आना है पाकिस्तान के हवाले से तो सारे बच्चे हमारे घर पर आ जाते थे और हम लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। तो 14 अगस्त के हवाले से ये बात थी कि बच्चों ने आ जाना और अपने बाजे साथ लेकर आने हैं।
2: अच्छा।
4: और फिर हमने उनको कहना है कि आपने कहना साथ मिलकर बजाने हैं।
2: हाँ।
4: और जब साथ मिलकर बजाते थे इतनी आवाज आती थी, बिल्कुल बहुत आवाज आती थी।
2: तो सारी बात का कंक्लूजन ये निकला कि ये जो हम कह रहे होते हैं ना, ये फौज आती है और फौज आके बाजे बजा के हमारे उनको मजा आ रहा होता है।
4: और एक्चुअली बात यह कि हमें भी उस वक्त मजा आ रहा होता था। और फिर हमारे हमसाई कह रहे होते थे आज लग रहा है कि इनके घर जश्न आजादी हो रही है और किसी घर में।
2: बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आपको कुछ चेंज नजर आता है अपने आप में? चेंज कब से फील होना शुरू हुआ कि नहीं यार ये नहीं करना?
4: अपने आप में अगर चेंज की बात करें ना तो वो हमें बीएस लेवल से फेस मतलब नजर आना शुरू होता है, क्योंकि हम मतलब वो कहते हैं ना कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हो तो फिर आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हो।
2: अब आप मैच्योर हो।
4: वी आर गोइंग टू।
2: ओके ओके ठीक हो गया।
4: तो ये सीन है, लेकिन फिर भी वो बातें, वो बचपन की यादें वो सब याद आती हैं और जो चेंजेस हैं वो तो साथ वक्त के चलते ही रहते हैं।
2: बिल्कुल ऐसी है जी। कुछ पैगाम हमारे सामने मौजूद है उनको भी साथ में शामिल करते हैं। इमरान सियाल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं और हमारे साथ सैम तबस्सुम है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कंवल कहती हैं वेलकम। फरहाद हमारे साथ जश्न आजादी कहते हैं और ओके। शमसी लिसनर से सुनती हैं हमें कंवल नाज। अकबर खान हमारे साथ बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आप दोनों की और आपकी टीम और सारे पाकिस्तानियों को जश्न आजादी मुबारक। अकबर खान हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद हफीजुर रहमान हमारे साथ हैं, उसके बाद रेहाना हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। कमलनाथ पाकिस्तान जिंदाबाद कहती हैं जुबिया बचपन में बहुत मजा आता था जश्न आजादी मनाने का, हम बाजे बजाने वाले बच्चे नहीं थे। अच्छा आटे की लई बनाकर पूरा घर की पूरे घर को सजाते थे और अपनी दादी अम्मा से बहुत डांट खाते थे। अच्छा ऐसे भी होता था ना निमरा कि डांट खाते थे, वो आटा ले आते थे उसकी लई।
5: यही आपको बताया ना कि हमारा चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो हमने जो काम करना होता था ना वो बड़ा छुप छुपा के और बड़े मतलब कह लें कि एक सस्पेंस के साथ करना होता था कि घर के बड़े, और जाके भी ना चाहे सख्त धूप है छत पे जाके करना होता था। और एक जो वो टांका होता था उसका सूतर बोलते होते थे,
2: अच्छा
5: ग्रिल पे बांधते थे, और एक जो है ना वो दूर चारपाई खड़ी करके चारपाई पे बांध के फिर उसके बाद जब खुश्क हो जाती थी झंडियां वगैरह फिर उसको हम अच्छी तरह से सजाना और सारा कुछ करना।
2: और फिर उसके बाद एक टाइम
5: एक चीज और थी, हमारे बचपन में ना स्कूल वगैरह में बकायदा प्रोग्राम्स होते थे और मुझे याद है कि हमने सुबह सुबह प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ जो है ना वो बादशाही मस्जिद स्कूल के साथ हम जाते थे। वहां पे परेड भी होती थी, वहां पे जो है वो उनकी अलामा इकबाल की कबर पे जो है फातिहा पढ़ी जाती थी, गुलदस्ते रखे जाते थे प्रॉपर एक ऑफिशियल एनवायरमेंट में, और हम बच्चियां जो हैं वहां पे जाके मिली नगमे पढ़ते थे, पूरा एक कोर्स में मतलब जाके पढ़े होते थे। और वो चीज मैं बड़ा मिस करती हूँ। मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ तुम लोगों के स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता? अब अगर होता भी है ना तो मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, या वो बस 14 अगस्त के बाद होता है। छुट्टियां हमारी भी होती थी उस टाइम पे, लेकिन यह है कि हमें जो है ना वो स्पेशली 14 अगस्त के लिए बुलाया जाता था। बकायदा हमारी पहले उसके लिए ट्रेनिंग होती थी, प्रैक्टिस होती थी, रिहर्सल्स होती थी, उसके बाद जाके जो है ना हम ये काम करते होते थे, और उसमें हम बड़ा प्राउड फील करते थे भाई हमारा नाम जरूर होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायद पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि मेरे अब्बा ने मुझे हर जगह बड़ा सपोर्ट किया।
2: मतलब
5: कोई भी प्लेटफॉर्म है स्कूल लेवल से लेकर डिबेट्स अगर है ना लिख के पापा देते थे, बोलती मैं थी। तो मतलब ये कि वो वाली चीज जो है ना वो अब मिसिंग है। मुझे नहीं लगता कि अब इतना ज्यादा स्कूल्स में होता है तो वो छुट्टियों के बाद होगा, और प्रॉपरली इस तरह के कोई इवेंट्स नहीं होते इस तरह की जगहों पे जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहां पे जाके बच्चों को।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या कहेंगे आप?
1: जैसे कि भी यहाँ पे झंडियों की बात हो रही थी एंड ये हम सब की एक बहुत कोर मेमोरी है कि 13 अगस्त तक कड़क धूप में हम झंडियाँ लहरा रहे होते थे एंड 14 अगस्त को आज सुबह जब बारिश हुई है तो मुझे अपना पुराना नॉस्टैल्जिया याद आ गया कि उस तमाम मेहनत पे पानी फिर जाता था। बट लोगों का जो जोशो जज्बा होता है जो बच्चों के जहन में एक चीज होती है कि वी हैव टू सेलिब्रेट इट, वो उसी तरह हर साल चलता जाता था एंड टिल नाउ आज तक भी उसी तरह झंडियां लगी हुई हैं एंड हर साल बारिश होती है हर साल।
2: बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। एक कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम मुस्तफा साहब, रुबिया साहब, निमरा अरूज और तमाम आपके साथी सुनने वालों को, और जो मुसलमान भाई बहन भाई पाकिस्तान से बाहर हैं सबको जश्न आजादी मुबारक।
2: आपको भी बहुत बहुत जश्न आजादी मुबारक। कौन हमारे साथ कहां से?
6: मैं मोहम्मद सलमान बट बोल रहा हूँ, सलमाबाद लाहौर से।
2: कैसे हैं आप?
6: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक।
2: तो कैसा गुजरा आज का ये स्टार्टर, कैसा हुआ आज के दिन का?
6: आज तो डबल केक आना है, एक आपकी आंटी की सालगिरह आज 14 अगस्त, तो उनका शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है 14 अगस्त, तो मैं शनाख्ती कार्ड पास ही रखा हुआ सारा दिन, मैं 14 अगस्त की डेट देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है।
1: सर आपने मुझे बताया था कुछ दिन पहले कि आंटी की सालगिरह एंड आई एम हियर, मैंने आपको कहा था कि मैं उस दिन दोबारा विश करूंगा, तो हैप्पी बर्थडे टू आंटी।
2: मैनी हैप्पी रिटर्न्स।
6: आज डबल के, मैं तो ये 3-4 दिन मैं नहीं सोता, ये जो अगस्त के दिन होते हैं ना
2: इतनी खुशी आंटी के आने की, इतनी खुशी।
6: नहीं नहीं, ये जश्न आजादी की, आंटी तो बाद में आई थी ना आजादी। बात सुने, मेरे पास ना घर में 6-7 आईडी कार्ड है लेकिन सिर्फ उनका मैं अपने पास रखता हूँ।
2: वजह
6: उस पे 14 अगस्त लिखा हुआ है ना।
2: नहीं ऐसे तो नहीं है, तो आप कवर कर गए। ये तो ऐसे नहीं हो सकता आंटी, ये आपकी वजह से।
6: एक लेसन पढ़ा था उस पे लिखा हुआ था, कैलेंडर पे लिखी हुई सुनहरी हरूफ से लिखी हुई डेट 14 अगस्त जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है।
2: बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका कॉल करने का, थैंक यू सो मच।
6: अच्छा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा है आपकी, अल्लाह आपको तरक्कियां दे। अस्सलाम वालेकुम।
2: इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं ये आंटी की वजह से ही रखा हुआ है। अच्छा निम्रा, ये आदत होती है शोहरों की अगर तारीफ करनी भी हो तो कवर करके करते हैं कि कहीं ज्यादा पहाड़ों में ना चढ़ जाए बेगमात।
5: بس اب آپ نمک کیوں چھڑک رہے ہیں. ہاں نہیں, بہت سارے مرد کرتے بھی ہیں, بہت سارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایکسپریسو ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی مرد جو ہیں وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ویسے موڈ اچھا ہے تو اوکے, مطلب سمجھ جائے گی کہ ٹھیک ہے سارا کچھ, لیکن جب کچھ خراب ہے نا پھر وہ سمجھ آ جاتی ہے اس پہ, تو
2: تقریر ان کو سمجھ آ جاتی ہے, یہ
5: تقریر ہوتی ہے اس سے پتا لگ جاتا ہے, پھر ہم نے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے, اچھا جواب کیسے دینا
2: کیسے دینا ہے. نہیں نہیں آہستہ آہستہ, ابھی ہے ہم
5: کچھ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے, جو میں ہوں جیسے میں ہوں میں سب کے سامنے ہوتی ہوں, یہ آپ لوگ میرا خیال ہے کہ گواہ ہے ٹھیک ہے.
2: بالکل ایسے ہی ہے, بالکل
5: مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں لوگوں کو نا ہمارے یہاں بڑی ساری ٹینشنز ہیں, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ یہ تعلق ایسا ہے کہ اس تعلق پہ بہت زیادہ اب جو ہے نا وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں ٹھیک ہے. میں آئے دن دیکھتی ہوں کوئی بھی کپل جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتا, یا شکوے شکایات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں ان بچیوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ یار میں نے بھی جو ہے وہ, میں چھوٹی سی مطلب 21 میں میری شادی ہو گئی تھی, اور
2: وہاں سے لے کر چھوٹو سی
5: ہے نا, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, آپ ایک دوسرے کو بے شک جانتے ہو جو مرضی ہو جائے, جب آپ ساتھ رہتے ہیں نا تو وہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے. بہت سارے کمپرومائز آپ کو کرنے پڑتے ہیں, کچھ سننا پڑتا ہے اور کچھ سنانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے حوصلہ رکھنا چاہیے. اور جو آج کل لڑکیوں کی ایک فرمائش ہوتی ہے اور ایون لڑکوں کی بھی کہ ہر چیز پرفیکٹ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہے, یا آپ کو پیسے کی بہت چاہ ہے تو یقین مانے جاب پرمننٹ بھی ہونا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں
2: ہے. میں
5: نے وہ ٹائم بھی گزارا ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو پرمننٹ جاب تھی, شادی کے بعد جاب گئی, لیکن وہ ٹائم گزر گیا الحمدللہ, وہ بڑے اچھے سے ہم نے گزارا, لڑکے گزارا, مر کے گزارا, جیسے مرضی گزارا, لیکن شکر الحمدللہ ایک دوسرے
2: لیکن ساتھ رہے,
5: بالکل سپورٹ کیا اور اچھا وقت گزر گیا. لیکن اب جو ہے نا یہ تعلق جو ہے نا وہ کہہ لو کہ بس جی اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا, بس میں تو جا رہی ہوں جی اپنی اماں کے گھر, یا بندہ کہہ دیتا ہے جاؤ جی.
2: اور مجھے لگتا ہے اس ریلیشن کی خوبصورتی ہے,
5: بالکل ایسے ہی ہے, تو اب ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے, سپیس دینی چاہیے.
7: ہم بھول تو نہیں رہے کہ جشن آزادی کا شو ہے,
2: یہ بھی آزادی ہے جی, یہ بھی
5: آزادی کا اظہار ہے, آپ کو جہاں پہ آزادی دینی چاہیے ٹھیک ہے, آزادی دینی چاہیے. اگر آپ قید کر کے کسی کو رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر آپ سے آزادی مانگیں گے.
7: بالکل بات کری تھی لڑکوں کو, وہ ہوتا ہے کہ بہت ہی پرفیکٹ چاہیے, لڑکے تو کہتے ہیں بس مل جائے.
2: اوئے ہوئے 04-221-0101, السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
2: کون ہمارے ساتھ؟
8: فریج بھوجی لاہور سے بات کر رہی ہوں.
2: فریج جی کیسی ہیں آپ؟ آج آپ نے بنائے سفید چاول ود گرین رائس.
8: میں نے نا سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے, گیس آنے کا انتظار ہے, گیس کل
2: او نیجے آنی او نیجے آنی
8: نہیں آ جائے گی شام تک, ابھی لوگ وہ کام کرنے والے آئے ہوئے لیبر, اگر صحیح ہو گئی تو آپ کو
2: کوئی نہیں, 15 تک آ جائے گی
8: 15 تک نہیں, شام تک آ گئے تو میں آپ کو پہنچا دوں گی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی آپ سب کو 14 اگست بہت ساری نا دس سواری کو سننے والے بہن بھائی شہزادے شہزادیاں سب آ جائے,
2: بہت شکریہ فری جی, تھینک یو سو مچ. کیا خیال ہے ایک عدد ٹریک کی طرف بڑھنا چاہیے, کچھ کہیں گی آپ؟
9: میں شہیر والی بات سے اگری کروں گی, جیسے انہوں نے کہا تو مجھے بچپن میں بہت دکھ ہوتا تھا 14 اگست میں نا, ایک چیز بدل ہی نہیں سکتی, ویسے تو اب بہت کچھ بدل چکا ہے, ہم بچپن میں اور طرح سے مناتے تھے, اب ٹین ایج میں اور طرح سے, تو لیکن ایک چیز جو کبھی بدل ہی نہیں سکتی کہ 14 اگست پہ بارش آنی ہوتی ہے, جو مرضی ہو جائے بارش ضرور آئے گی. تو تب مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا, اور آج جب میں دیکھ رہی تھی نا کہ موسم خراب ہو رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, میں نے کہا یہ روایت جو ہے یہ برقرار رہے گی.
2: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے جی. یہاں پہ ایک عدد ٹریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, 04-221-0000 ہمارا ڈائلنگ نمبر ہے, کامنٹس آپ کر سکتے ہیں FM 101 کے آفیشیل پیج پہ. پوسٹ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے, اسے کمنٹ کیجیے.
5: اچھا میں پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ زوبیا نے بڑی کچھ,
7: میں بھی دیکھ رہا تھا, اور میں
5: سروس اتنی پیاری سی پکچر بنا کے اس کو جو ہے وہ اچھے طرح سے وہ پیسٹ کر کے, جو بھی آپ نے
2: یار نہیں ابھی ہم ایک کور فوٹو بنا
5: اپنا پیارا بنایا, اور نہیں نہیں اب آپ ہمیں ہمارے اور ہماری اس میں پکچرز نہیں ہے,
2: ابھی ہم ایک وہ
5: بھی تیار ہو کر آئے ہیں,
2: ابھی ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو ہم لگاتے ہیں, ابھی لگاتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو لگانا تھا, دیکھیں ایسے بنانا کریں.
5: حالانکہ زوبیا کو میرا خیال ہے اس ٹائم یہاں پہ لے کر آنے والی میں ہوں, जुबिया भी बिजी थी, ठीक है, जुबिया को मैंने बड़े मस्के लगाए जुबिया आ जाए, जुबिया आ जाए, और जुबिया मेरे कहलेंगे और मैं खुद ही गायब होगी वैसे।
2: अच्छा, और आपको पता है आप हमेशा ऐसे करती हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हर त्योहार पे हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा मैं कह देता हूँ मेरी तबीयत खराब है।
5: देखिए मुझे याद नहीं है मैं क्या करूँ, नाजुक लोग हैं, जरा सी हवा चलती है तो हम हिल जाते हैं, अब हम क्या करें। अच्छा, मेरा ख्याल है
2: जी, वैसे भी हम ना,
7: अच्छी है
2: हम
7: ना, और बहुत प्यारी पिक्चर है जिसकी भी
2: बिल्कुल थैंक यू जी,
5: जजाकअल्लाह। हम एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टिक अराउंड FM 101 एंड कीप ऑन डायलिंग 0421111001।

0: 101.1
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: ऑलराइट, वेलकम बैक. मुझे कहते हैं निमरा अरूज, मेरे साथ हैं जूबिया शफीक और हैं मुस्तफा मैं नाम भूल रही हूँ, शाहिर एंड लाइबा और उमायमा. मैंने नाम सही बता दिए.
1: और आपको मिलता है
0: ये माइक मेरा हुआ. अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से और आप लोग भी हमारे साथ आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए. बचपन की चीज़ों में और अब की चीज़ों में क्या फ़र्क है? बचपन में आप क्या करते थे जो अब आपके बच्चे जो है वही अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ था. और मैंने अपनी बहुत सारी बातें कर दी. सारे मुझे कह रहे हैं जी आप जो है ना वो ट्रैक से उतर जाते हैं.
1: अच्छा, आप हमें अब लाइव भी देख सकते हैं? थोड़ी सी
0: बिल्कुल
1: आप हमें लाइव देख सकते हैं मेरे पेज से. मेरा पेज कौन सा? डॉक्टर जुबिया शफीक के नाम से पेज है. आप वहां से लाइव देख सकते हैं. जो लोग जानते हैं वो वहां जा सकते हैं और जाके हमें अब लाइव देख सकते हैं. कॉल्स आप हमें कर सकते हैं 04221100101. हमारे साथ देखते हैं कौन है लाइन पे. अस्सलाम वालेकुम जी.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: नाम बताइएगा सुनने वालों के लिए.
2: नाम मेरा वही अब्दुल हमीद फरुखाबाद. तो
0: अब्दुल हमीद फरुखाबाद, तो कैसे हैं
2: आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत सारिया दवावा.
0: बहुत शुक्रिया. और बताएं आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: मैसेज ये कि हम एक तरह से साडा पाकिस्तान पूरा अमन पसंद है.
0: बिल्कुल.
2: जे कोई सानू परेशान करे तो फिर अभी बुरा सलूक करांगे.
1: ओके ओके,
0: बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा मुझे आपके बचपन की 14 अगस्त में और अब जो आपके बच्चों, आप अपने बच्चों को देखते हैं, उसमें कोई डिफरेंस है?
2: बड़ा फर्क है. अभी ने मगल चंगिया लौनी ना ते बड़े स्कूल ना ते रल मिल के बैठना. हूं ते जड़े आई रोकदे भी है ना, आवाजे ना बजाओ ते अभी नहीं मुड़दे. की करिए हम,
1: बड़े टीठ बच्चे जी, बड़े टीठ.
0: अच्छा, अक्सर बुजुर्ग जो है ना, मैंने देखा है हमारी गली में भी एक अंकल है, वो जब उनको गुस्सा चढ़ता है ना तो बच्चों का बाजू ना ठक करके तोड़ के फेंक देते हैं. इसी तरह खेल रहे होते हैं तो बैट लेके तोड़ते.
2: मेरी बात सुनो, मैंने अब तोड़ा एक एक बच्चे का.
1: बड़े नहीं
2: तोड़ा.
0: उस बच्चे की मामा ने या बाबा ने आपसे आके लड़ाई नहीं की?
2: नहीं नहीं, कोई नहीं. उन्होंने क्या, बाबा अच्छा किया.
0: गुड हो गया. चलें जी अब्दुल हमीद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अपना
1: बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.
1: माइक
3: मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर गली में एक ऐसा अंकल तो जरूर होता है जिसको ना ये बाजे की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती.
0: असल में पता क्या होता है,
3: और हमारे गली में भी ऐसे ही होता था कि जब भी मतलब बच्चे जो होते हैं शुरू से ही उठ जाते हैं, सुबह सुबह ही उठ जाते हैं, और वो जब सुबह सुबह और वो ना पूरी गली में अंकल कह रहे होते थे, अगर कोई मेरे दरवाजे के आगे आया तो मैं उसका तोड़ दूंगा.
1: और ये भी नोट किया, सबसे ज्यादा बाजे उसके दरवाजे.
0: अब ना जैसे आम रूटीन में ना बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा बॉल हमारे घर में आती है, सबसे ज्यादा. अब हर थोड़ी बार बेल होगी, हर थोड़ी बार बेल होगी. अब हम क्योंकि लड़कियां ही होती हैं घर में और वो भी बड़ा काम होती है, एक आधी कोई फीमेल होती है घर पे, तो बार बार जब दरवाजा खोलना पड़ता है ना फिर इरिटेशन हो जाती है.
3: और हमारे साथ भी यही सिनेरियो होता है, हम ना ऊपर रहते हैं तो सीढ़ियां चढ़ के हमें नीचे आना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है, और फिर कहती हूं अब अगर आई बॉल तो मैंने तो नहीं देनी है.
0: और बच्चे कह रहे हैं दरवाजा खुला छोड़ दे,
3: खुला
0: छोड़ दे दरवाजा. भाई तुम Exactly. क्रिकेट खत्म करके तो है ये जा वो जा हो जाओ और उसके बाद मेरा दरवाजा खुला हुआ हो.
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी.
3: दरवाजा तो नहीं, बिल्कुल
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है. तो अच्छा अब अंकल्स की बात हो रही है तो पता क्या होता है, जब आप एजेड हो जाते हैं ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा इस तरह से तबियत में आवाजारी आ जाती है, तो थोड़ा सा हमें इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए. उनकी भी उस वक्त जो कंडीशन हो रही होती है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट इस एज में जो है वो पेशेंट्स भी होते हैं और फिर जब वो बाजा सर पे बजता है ना तो बड़ी इरिटेशन होती है. ठीक है, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन का इशू होता है.
1: हाँ.
0: उनके लिए ये अजाब है. इवन इतना मतलब वो एक पेन की टिक टिक होती है ना.
4: मसूद भाई सुन रहे हैं ना?
0: नहीं, सो रहे हैं.
1: सो रहे हैं.
3: बच्चों का जश्न होता है तो बच्चों को तो फिर मजा आता है बजाने में.
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है.
0: जरूर करें, एंजॉय जरूर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है ना अपनी बेसिक एथिक्स को, बेसिक आपकी जो इखलाकियात है उसको मद्देनजर रखते हुए होना.
1: हमारे साथ गुलाब मौजूद हैं. आप जी, यू लुकिंग वेरी वेरी नाइस. किस ऐसे क्या रहे हो? आज जी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ लाइव पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, मोहम्मद जियाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। गुलाब गुलाब उधर भी आ गए लाइव पे, मलिक महमूद महबूब हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान सियाल ने हमें मैसेज किया, थैंक यू सो मच। कमलनाथ कहती है, मैं अपने शहर से मायूस होके लौट आया, पुराने सोग बसे थे नए मकानों में।
0: इतना दुख, हाय अल्लाह,
1: क्या कहेंगे आप कमल, हमारा डायलिंग नंबर है, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या बात है जी, आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो मेरी तरफ से, मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बोल रहा हूँ जी।
1: शहजाद साहब को एक मैसेज जो आप देना चाहते हो
2: जी? मैसेज यही है हमारे पास कि हम एक ही रहेंगे और इंशाल्लाह ताला उस वक्त भी एक थे जब हमने आजाद जाना था, आप भी एक है और क्यामत तक एक ही रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट टाइम की 14th अगस्त और आज की 14th अगस्त में क्या फर्क फील कर रही हो?
4: अच्छा, एक चीज़ होती है जो हम कहें कि कभी बदल नहीं सकती,
1: ठीक है,
4: वो जज्बा है। तो वो शुरू से लेके आज तक सेम ही रह रहा है। लास्ट टाइम वैसे मैंने अपने सारे कजन्स को इकट्ठा करके उनमें जो बैच हैं वो तकसीम किए थे, सबको मैंने बैच लगाए थे, और इस बार अभी तक मैंने नहीं किया ये काम, लेकिन
1: अभी तक नहीं किया तो अब तो हम इस उम्मीद पे भी ना रहे।
4: नहीं नहीं, जरूर करूंगी, और मेरे कजन्स उम्मीद रखें।
1: हमारे लिए भी ले आती तो क्या जाना था,
4: बस आने लगे, बस झंडा।
1: अच्छा, ये भी होता था ना, वो झंडे खूबसूरत से लगाए होते थे और डिफरेंट टाइप की चीजें निकल रही होती थी, वो मीनारे पाकिस्तान की।
4: मुझे बिल्कुल अपना एक बैच याद है, 7-8 साल पहले की बात है, वो मीनारे पाकिस्तान बना था, उसमें लाइट्स भी थी, तो वो मुझे बहुत पसंद था।
1: बिल्कुल ऐसे ही है जी।
5: जी लास्ट टाइम की 14th अगस्त और इस दफ़ा की 14th अगस्त का जिक्र हो रहा था, तो मेरे लिए मैं अपनी बात बताऊं, लास्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था, अपने फ़ोन पे बाजू की आवाज़ें बजा रहा था, आज मैं रेडियो पाकिस्तान में हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा तमीज से बैठा हूँ।
0: यहाँ पे आप खुद बज रहे हैं। ऐसे ही है।
1: अस्सलाम वालेकुम जी।
0: फंस ना गए हो आप। ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही
6: है। रहमतुल्लाह व बरकातहू।
5: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
6: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैं कंवलनाथ बोल रही हूँ।
1: कंवल कैसी हैं आप?
6: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और आप सब कैसे हैं? और बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का, बहुत रौनकें लगाई हुई
1: हैं। प्यारे हैं हम, प्यारे प्यारे कंवल, प्यारे
6: प्यारे,
1: हाय अल्लाह जी,
6: आप प्यारे और हम भी प्यारे, और जब प्यारे प्यारे मिल जाते हैं तो फिर
1: बहुत ही प्यारे लोग हो जाते हैं। कंवल को एक मैसेज देना चाहें आप? जो
6: मेरे ये पैगाम है इस दिन के लिहाज से कि पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए कि ठीक है अपने बच्चों को आप अच्छे कपड़े लेके दे रहे हो, बाजे लेके दे रहे हो, उनकी ख्वाहिशात, तो उनको ये भी बताओ ना कि हमने इस मुल्क को कितने एफर्ट से कितनी कुर्बानियां देकर हासिल किया है, और हम इस आज़ादी को किस तरह बरकरार रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग बॉर्डर पे जाके लड़े इस मुल्क के लिए, हम घर में रहकर भी छोटे छोटे इस मुल्क के लिए बहुत से काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
6: अपने पाकिस्तानियों की मदद करके, उनको ये देख के कि कौन है जिसको हमारी जरूरत है,
1: डेफिनेटली
6: उसकी मदद करके, बस ये अपनी औलाद।
1: ये इतना सांस क्यों चढ़ा होगा आपको कंवल, भाग के कौन
0: हो गई मुझे लग रहा है।
6: नहीं मैं भागी नहीं, मैं छत पर आई हूँ बात करने के लिए, नीचे बहुत शोर है बच्चों का गली में।
1: बहुत शुक्रिया कंवल, थैंक यू सो मच।
6: थैंक यू आप लोगों का भी, और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को और शमसी ग्रुप वालों की तरफ से भी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ। अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी अपने बच्चों को सीख देने की, तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाएं या हमें मौका मिले यहाँ पे जाने का और उसके बाद ही हम कुछ करें। मुझे ये लगता है कि हम जिस भी जगह पे हैं या जो भी अल्लाह ताला ने हमें इख्तियारात दिए हैं, आप अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि बेटा आपने, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं यार उसने ये नहीं किया तो मैं ये क्यों करूँ, पानी की बॉटल भरनी है लेट्स सपोज, तो बच्चे कहते हैं जी उसने नहीं भरी तो मैं क्यों भर के रखूँ, यही लड़ाई चल रही होती है। तो मैं बच्चों को हमेशा ये बात कहती हूँ, यार उसने नहीं किया कोई बात नहीं, वो उसका फेल था, बट आपने क्या किया है आपने ये देखना है, ठीक है। तो अगर हम अपनी अपनी जगह, हर बंदा ये सोचे कि यार हमने, हमें जो इख्तियार मिला है हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करें, ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें। ये भी एक, वो कहते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है, ये भी मेरा ख्याल है कि अपने मुल्क के लिए जो है ना वो एक पॉजिटिव कदम हो सकता है, ठीक है,
1: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल
0: ऐसी। और अगर हम यही सोचते रहें कि भाई हम क्यों करें, बड़े वो नहीं करा, तो मेरा ख्याल है फिर अगर हर कोई यही सोचेगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छी बात,
5: बिल्कुल। एक अमेरिकन फिलोसोफर है, मार्कस नाम है उनका, एंड वो इसी बात को करते हैं कि आपकी जिंदगी की जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड्स करती है आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे। तो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचें, आपकी जिंदगी में खुद ही हैप्पीनेस आ जाएगी।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल।
3: मैडम अभी बॉर्डर की बात हो रही थी और वो बड़ी संजीदा अंदाज में हो रही थी, लेकिन अगर हम 14 अगस्त वाले वाघा बॉर्डर की बात करते हैं तो हम उसको भूल नहीं सकते, वो उसकी याद, उसका जज्बा और वो जिस तरह से मनाई जाती है। और मुझे याद है कि मैं छोटी सी थी और मेरे बाबा, हमारी सारी फैमिली जो है ना वो वाघा बॉर्डर गए 14 अगस्त वाले दिन, और वहाँ पर जो मिली नगमे का जोश होता है ना वो आपको एक और ही अलग लेवल पर लेकर चला जाता है। तो अब मेरी ख्वाहिश भी ये, मैं अपने बाबा से ये कह भी रही थी, मैंने कहा बाबा यहाँ तो मुझे लिबर्टी ले जाए, यहाँ मुझे ना वाघा बॉर्डर ले जाए 14 अगस्त वाले दिन।
1: जबरदस्त,
7: खुश आमदी जी आयान वसैलन मरहबा बली करी आया नु ते पखैर
1: अमारा बेग, इतना लंबा इंट्रो पाकिस्तान, इसके बाद अल्लाह हाफिज ही बनता है जितना लंबा कोई एक मैसेज हमारा।
7: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं?
1: मैं कह रही हूँ कोई एक मैसेज, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं।
7: मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि
1: मैसेज कट गया जी सारा,
0: आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपके सिग्नल ठीक, आपके मोबाइल के सिग्नल ठीक नहीं आ रहे।
7: मेरे सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल,
0: इसीलिए मैंने मोबाइल मेंशन आया भी करेक्शन।
1: हमारा बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, मैंने कहा हम कह रहे हैं कि आपकी आवाज हमें ना ठीक नहीं आ रही, कट के आ रही है।
0: सॉरी,
7: हेलो
1: जी,
0: आप अपनी जगह चेंज करके फिर बात करें, ठीक है।
1: यहाँ पे टाइम भी है 10:55। और अभी हमें लीड करेंगी आगे हमारे साथ हमारी सीनियर आरजे, एक बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी।
0: इतना सीनियर ना कहें, लोगों को मेरी उम्र पता लग जाएगी, ठीक है। और खवातीन जो हैं अपनी उम्र छुपाती हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी छोटी सी आरजे, छोटी सी।
0: अब ठीक है, आई एम हैप्पी।
1: एक नगमा और फिर हम वापस आते हैं। हमारे साथ आज इंटर्नीज का सिलसिला भी जो है वो साथ साथ में है, तो क्या कहेंगी आप जाते जाते?
8: जी तो मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, कल रात की बात है, मैं एक नॉवल पढ़ी थी, लड़कियाँ और नॉवल ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता,
1: ऐसा नहीं हो सकता।
8: तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज़ादी के रिलेटेड ही कुछ पढ़ा जाए। तो बोगी नंबर 12 नॉवल मैंने पढ़ा, मेहरुन्निसा शाहमीर ने इतनी खूबसूरत मंजरकशी की है कि एक बार आपको नजर आता है कि जैसे वो सारे मनाजिर आपके सामने हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी कुर्बानियों से हमारे आबाओ अजदाद ने ये वतन हासिल किया है, मैं नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अब अपना हिस्सा उसमें डालें, आपके जो एक्शंस हैं उनसे आपके मुल्क को फायदा ही पहुँचना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्या कहेंगे आप?
5: बिल्कुल, पेट्रियोटिज्म एक जज्बा है जो हमें बिल्कुल ये नहीं सिखाता कि हमारी जो कंट्री है वो सबसे सुपीरियर है, बट पेट्रियोटिज्म की एक खास चीज़ ये है कि वो आपको ये एहसास ज़रूर दिलाता है कि हम इसके लिए बेहतर से बेहतरीन क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इन 79 ईयर्स में बहुत से नशेब अफराज से गुजरा है ये मुल्क, एंड स्टिल वी आर स्टैंडिंग देयर जहाँ पे कायदे आज़म हमें छोड़ के गए थे, एंड इंशाल्लाह वी विल बी कम्प्लीटिंग 179। सो ऑन दिस मोमेंट आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि अगेन उसी अदारे से बोलना जहाँ पे पेशावर, ढाका और लाहौर से पाकिस्तान का ऐलान हुआ था, एंड आप सबके साथ बोलना, इट वाज एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी,
1: थैंक यू सो मच,
5: साइनिंग ऑफ
3: जी। मुझे एक ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ یہ تھا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو ہمارے آبا اجداد ہمارے لیے کر گئے ہیں تو ہمیں اس کو برقرار رکھنا ہے, وہ جو لیگیسی تھی ہماری اس کو برقرار رکھنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام بھی کرنے چاہیے, وہ جو ریسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. اور اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے وہ کام پورے کرنے چاہیے. تو میرا میسج بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے حصے کی جو کام ہیں ان کو سر انجام دینا چاہیے. اور بہت شکریہ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے, تھینک یو سو مچ پاکستان.
0: تھینک یو سو مچ پاکستان.
1: آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, رہنا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے کب تک یہ نہیں مجھے پتا, لیکن ابھی آپ جس آواز کو ساتھ میں سنیں گے نا آپ یقیناً کہیں نہیں جائیں گے. اسٹک اراؤنڈ.

0: ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जनाब मेरा और आपका, बल्कि हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक एक बजे तक। और मेरे साथ कौन कौन मौजूद है? मैं हूं जी निमरा अरूज। मेरे साथ हमारे और बहुत सारे इंटर्न्स मौजूद हैं, और वो कौन कौन से हैं अपना अपना तारुफ करवाइए प्लीज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान ज़हरा है।
0: ईमान थोड़ा सा करीब हो जाए।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान ज़हरा है।
0: ईमान कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: बहुत शुक्रिया जी, आपको भी जश्न आज़ादी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको लाइफ में पहली बार आप रेडियो पाकिस्तान पे हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: 14 अगस्त के मौके पर, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगी अपनी फीलिंग्स?
1: जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले तो कि हम जो है एक, सबसे पहले तो एक मैसेज है सबके लिए और अपने लिए भी, कि हम भी इस चीज़ पे अमल कर सके कि हमने जो ये बाजा कल्चर है ना, बच्चे करें ठीक है लेकिन
0: बाजी के पीछे बढ़ गए।
1: मैंने खुद आते हुए देखे बड़े बड़े अंकल्स जो गली में तो कहते हैं कि आपने नहीं बजाना, लेकिन जब अपने इलाके से निकल जाते वो भी बाजा बजा रहे होते हैं।
0: सही हो गया, ठीक हो गया।
1: मतलब कि कहना है सबको, लेकिन हाँ। जब खुद को स्पेस मिलनी है, खुद भी वही इंजॉय करना है।
0: बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जी एज इज जस्ट अ नंबर, तो आपने उनकी एज पे नहीं जाना, आपने उनके जज्बे पे जाना है, ठीक है। अच्छा, आपके साथ एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी आपकी क्या कहना चाहिए, कोलीग बैठी हुई है, आप अपना नाम बताइएगा।
2: मेरा नाम गाइबा आसिफ है।
0: हाँ, लाइबा की मुस्कुराहट से मुझे अंदाजा हो रहा है, समझ आ गई है, यकीन आ गया है मुझे। लाइबा कैसी हैं आप?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आप बताएं क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं यही कहना चाहूंगी कि वो जैसे कह रही थी ना कि बाजा कल्चर, एक्चुअली मुझे माइग्रेन है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जब बात आती है ना कि जब आप उसको फील कर रहे होते हैं, अगर कोई आपको अच्छी साउंड लग रही है तो ना कि बहुत जैसे पीसफुल होती है, जैसे खराब वॉइस ना हो, अगर मैं खुद बजाऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: लेकिन
2: ना अंकल जो कह रहे होते हैं कि उन्हें कहते हैं बच्चों का नहीं बजाना लेकिन खुद बजा रहे होते हैं, इसी तरह अगर मैं दूसरों को कहती हूँ कि नहीं बजाना, अगर मैं खुद बजाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
0: सही,
2: तो ये वही होता है ना,
0: यानी कहना दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत,
2: ये वही वाली चीज होती है।
0: ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी सी शख्सियत मौजूद है, अपना नाम बताइएगा, तारुफ करवाइएगा।
3: अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप सुन रहे हैं अहमद भट्ट को, और मैं आज मौजूद हूँ आरजे निमरा के साथ। और मेरा 14 अगस्त को लेके पैगाम ये है कि जहाँ पे बात हो रही है बाजों की और डिफरेंट पकवान की, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि एज अ मैन और आफ्टर मैच्योर जब हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, तो मोस्टली वो हमारी गैदरिंग और कुछ ऐसे डिस्कशंस होती हैं जो 14 अगस्त को लेके उसके हवाले से होती है, तो हम उसको ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करते हैं।
0: सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो हम बातों का सिलसिला इसी तरह जो है वो साथ साथ रखते हैं, लेकिन अपने लिसनर्स को ये भी बताते चलें कि किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ बड़े मज़े से कि यहाँ पे जो है वो पेज नहीं खुला हुआ, लेकिन वो आपने शायद उसर से ऑन एयर किए थे मैसेजेस, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो हमारा फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे अब जहन में आ रहा है कि जुबिया ने जो पोस्ट लगाई थी उसमें 11 से 1 का लिखा हुआ था,
4: उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ था,
0: नाम लिखा हुआ था। अच्छा, ठीक हो गया, बस उसी को हम कंटिन्यू रखते
4: अभी
0: हैं।
4: नहीं,
0: ठीक है,
4: अभी हम एक तस्वीर बनाते हैं।
0: ओके,
4: और फिर उसको
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, यानी कि वो पोस्ट अब एक्सपायर हो गई है।
4: नहीं, अभी तक तो वो है यार, ऐसे
0: नहीं, कहने का मकसद
4: तो नहीं ना,
0: नहीं नहीं, देखिए आप प्लीज प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आप मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं चाह रही हूँ कि मैं लोगों को कहूँ कि उसी पोस्ट पर जो है वो कमेंट करते रहे, ठीक कह रही हूँ?
4: बिल्कुल, अभी उसी पोस्ट पे कमेंट करते रहे, लेकिन अभी हाँ फिलहाल अभी हम एक नगमे की तरफ जब बढ़ेंगे उसके दरमियान में हम पोस्ट अपडेट कर देंगे।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 लाहौर का, उस पेज पर जाकर आप हमारी पोस्ट पर कमेंट करेंगे। इसके अलावा 0422111001 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल्स करेंगे, और 4471 पर आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS के लिए आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे, वहां जाकर आप लिखेंगे 101, एक अदद देंगे अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर। हम हैं आपके साथ, मैं हूं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज, आरजे जुबिया शफीक, लाइबा हैं और ईमान हैं, अहमद हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी हमारे साथ रहना है, स्टिक अराउंड टू FM 101।

0: तो वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद है आपने हमें बहुत मिस किया होगा।
1: थोड़ा ऊंची लड़के, थोड़ा ऊंची
2: लग रहा है। नाश्ता नहीं किया है अभी तो केक खिलाए, खाया कि नहीं खाया?
0: यस मैम।
2: तो एनर्जी नहीं आई,
1: केक खिलाया हमने, वो लड़का खड़ा हुआ है इसे भी केक दे।
0: तो वेलकम बैक नाजरीन, आप सुन रहे हैं FM 101 और शो का नाम है हम एक हैं। तो उम्मीद है आपने हमारा बहुत इंतजार किया होगा, तो हम आपके सामने हाजिर हैं।
2: सामने नहीं हाजिर हैं, आप हमें सुन रहे हैं।
0: आप हमें सुन रहे हैं।
2: ये आप क्लास टीचर वाली हरकतें कर रही हैं। ऐसे ही है। नहीं, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये वो वाला सीन है जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हाउस जॉब पे जो डॉक्टर्स होती है ना, उनसे बहुत सारे काम लिए जाते हैं, उनसे इवन के पेशेंट का सैंपल भी ड्रॉ करवाया जाता है, जबकि जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं ना वो ये काम कभी भी नहीं करते हैं। नॉर्मली ये काम जो है ना वो नर्सिंग स्टाफ कर रहा होता है, लेकिन जब हाउस जॉब पे कोई आता है ना तो वो सैंपल भी ड्रॉ करता है। ठीक है, ये लर्निंग का पार्ट होता है असल में। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे मुझे बताएं। आज आप, मुझे पता लगा था कोई अच्छी सी तैयारी करके आए हुए हैं, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं, तो वो शेयर करें।
0: मैं जो टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, वैसे तो बहुत सारी बात होती रही है कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या चीजें होती हैं और हमें क्या क्या हमारे फ्राइज हैं 14 अगस्त के अंदर, लेकिन हम एक चीज मिस कर जाते हैं कि वो लोग जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया और जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को इंटरनेशनली प्रेजेंट किया। अगर मैं बात करूं तो हमारी पाक आर्मी, पाक नेवी और पाक फिसैया की, तो उसमें एक नाम बहुत जो है ना दुनिया में जाना जाता है, जिसका नाम है MM आलम, जो कि हमारे एक पाक फिसैया के एक फौजी थे जिन्होंने हमारे दुश्मन के एक मिनट में 5 जहाज गिरा मारे 1965 में।
2: बिल्कुल।
0: तो ये दुनिया में हम जो है ना पाकिस्तानी एयरफोर्स इस नाम से जानी जाती है और हमें फख्र है इस बात पर, उन्होंने हमारे एज अ पाकिस्तानी हमारा सर बुलंद कर दिया।
2: बेशक बेशक। और नेक्स्ट,
0: और नेक्स्ट जिस पे हम बात करने जा रहे थे वो थी पर्सनैलिटी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इनको तो सब जानते होंगे क्योंकि पाकिस्तान आज एक एटमी ताकत है, तो सबसे बड़ा हाथ इनका है।
2: बिल्कुल।
0: इन्होंने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत सारी जो है ना चीज़ें सर अंजाम दी हैं। ये हमारे दुनिया में मशहूर इसलिए थे कि ये हमारे पाकिस्तान के सबसे पहले और सबसे ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसने सबसे ज़्यादा अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने की बात हो या हमारे स्टूडेंट्स का कह ले कि जिन्होंने जज्बा बढ़ाया हो कि स्टूडेंट्स के अंदर विल पैदा होती है ना कि हमें भी कुछ करना है, तो इनको देख के जो है ना हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं।
2: बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा ही है कि हम जो फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है ना, हम उनको मेरा ख्याल है कि बार बार जिक्र करते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन जो बॉर्डर्स पे इस टाइम लोग बैठे होते हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारी पाक आर्मी जो हमारे लिए कर रही होती है, हम इसीलिए सुकून से बैठे हुए हैं ना। अभी ये लास्ट ईयर जो सारा मामला हुआ था जंग वाला, मैं भी उस ट्रांसमिशन का पार्ट थी, तो इतना हम सुकून में थे ना, हमें यकीन था कि भाई हमारी आर्मी ने जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया। और यही सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान हमारे पास है। उस वक्त भी जो है हमारी पाक फौज ने बहुत अच्छे से जो है वो संभाला सारा कुछ, और अभी भी जो है वो संभाल रही है।
0: और मैम हम देखते हैं कि हमारे जो आवाम है उसके अंदर साल दर साल जो है ना वलवला जोश बढ़ता जा रहा है हमारे पाकिस्तान को लेके, उनकी एक विल है अंदर के हमारा पाकिस्तान और हमें इसके लिए कुछ करना
2: कुछ
0: चाहिए
2: करना,
0: बहुत अच्छे तरीके से मतलब 14 अगस्त सेलिब्रेट की जाती
1: है। मैच्योरिटी, मुझे लगता है मैच्योरिटी ऑफ माइंड
0: बिल्कुल
1: है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ हो गया। क्या कहती हो लड़कियों आप सेल्फीज के अलावा?
3: जी बिल्कुल, हम भी इसी टॉपिक पे 14 अगस्त के हवाले से बात करेंगे। जैसे हमारे इतने ज़्यादा अच्छे हीरोज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि 14 अगस्त को हम सिर्फ वीडियो सिर्फ कपड़े पहन के ना बनाएं, हमें चाहिए कि जो हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे मेरे घर में तो मेरी दादो हैं, तो वो बताती हैं कि वो कैसे इंडिया से पाकिस्तान आई, वो अमृतसर रहती थी दूसरे इंडियन पंजाब में, तो वो बताती हैं कि वो किस किस्म की उन्होंने स्ट्रगल्स की हैं पाकिस्तान में आने के लिए, और जब वो आजकल के बच्चों को देखती हैं कि वो उनकी बात नहीं सुन रहे और उस पुरानी हिस्ट्री को एक मजाक की तरह ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उनके लिए क्या कहते हैं कि दिल तोड़ने वाला मुकाम होता है कि हमने इतना कुछ किया, इतने सैक्रिफाइसेस किए, अब इनको एक बनी बलाई वो प्लेट में खाना मिल गया है और ये वो सारी चीजें भूल गए हैं।
1: बिल्कुल ऐसे। क्या कहोगी आप, क्या नाम है आपका लड़की?
4: लाइबा।
1: लाइबा जी, लाइबा, लाइबा, चेंज कुछ आया? कुछ आपको लगता है कि आज में और जब आप अभी भी, आप वैसे छोटी सी बच्ची हो लेकिन कुछ टाइम पहले में कुछ चेंज आया अपने में, आप में इसको गुजारने के हवाले से, आज के दिन को, इस मोटिवेशन का कोई?
4: मैं एक छोटी सी फनी सी चीज बताऊं। तो मैंने पहले बताया था कि हम बचपन में ना बच्चे होते हैं खेलते हैं बस या बाजा बजा देते हैं या कुछ कर देते हैं। हम करते थे हम बेचते थे घंटियां उसके ऊपर पारा फ्रेम और वो झंडियां वगैरह का गाते हैं तो हम बेचते होते थे और काफी कमाई हो जाती थी।
1: जबरदस्त। अच्छा ये होता था
4: होता है ना वो पेरेंट्स बच्चे बच्चों को पैसे नहीं देते झंडियां लगाने के लिए और वो आटे लगाते हैं और क्या करते हैं तो हम भी आटा लगाते होते थे लेकिन जो उससे कमाई होती थी उसमें हम बाद में पार्टी करते होते थे।
0: बात है हमारी तरफ सिनेरियो डिफरेंट है। ऐसा बॉय हमारे स्टोर्स पे कोई भी नहीं आता था। हमने हमें वो चीजें दान करनी
1: पड़ती।
2: हम आपकी बात सुनते हैं लेकिन उससे पहले हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है ना इसी तरह ये जो कमर्शियल है ना हमारे लिए पेट्रोल होते हैं। ठीक है तो हम बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आपकी ये जो बिजनेस वाली बात है ना इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यू नो आने वाली जनरेशन को कोई मोटिवेशन मिलनी चाहिए रास्ता मिलना चाहिए। सो स्टिक अराउंड विद अस वी विल बी राइट बैक।
5: पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार।
6: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
5: पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार।
8: I love FM 101.

0: अरे जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी नई पोस्ट जो है ना, वो अपडेट हो चुकी है। आप लोग उस पोस्ट पर अब कमेंट करेंगे, लेकिन पिछले जो थोड़े बहुत रह गए हुए हैं उनको भी हम पहले
1: बिल्कुल
0: पढ़ लेते हैं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है ना, जो हमारी नई पोस्ट अपडेट हुई है, जिसमें एक बड़ा सा फ्रेम है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, 5 लोग नजर आ रहे हैं मुझे, प्यारे प्यारे, तो उस पोस्ट पर आपने अब कमेंट करना है। ठीक है, अब हमारा और आपका साथ है 1 बजे तक।
1: अच्छा निम्रा, अगर हम बात करें, हम मुख्तलिफ चेंजेस की बात कर रहे थे, तो उसमें हम बात करें तो अभी हमें जो देखने को मिलता है ना, बड़ी साफ सुथराई वाला माहौल हमें नजर आता है। आप बाजारों की बात करें, आप गलियों की बात करें, आप सड़कों की बात करें, ओवरऑल आपका ये वाला एक्सपीरियंस जो है ना, ये भी अच्छा जा रहा है। और अब आने वाले वक्त में कुछ दिनों के बाद रबीउल अव्वल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जहां हम बिजनेस की बात कर रहे थे, वहीं से बात स्टार्ट करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। तो जहां ये 14 अगस्त के जो एक वो लगना शुरू होते थे, स्टार्ट लगते थे, उसके फौरन बाद रबीउल अव्वल का एक, फिर आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, कि चंदा मांगते होते थे। अच्छा मांगा मैंने भी नहीं है वैसे, लेकिन मैंने इसको सुपर वीएम में चीजें
2: रबीउल अव्वल में खास तौर पे मांगते थे ना, वो लगाने होती थी
3: पहाड़ी स्टॉल्स की जगह ना, गांव चंदों पे चलता था वो, इकट्ठा करके ट्रीट उसकी अच्छी बनती थी, लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट करते थे, कुछ सजाएंगे गलियां,
4: बुरा भी नहीं मानते थे उस टाइम,
1: मोटिवेशन में दे देते थे, और अच्छा खासा मैं कहती हूँ डब्बे भर जाते होते थे, डब्बे के अंदर आटा डाला होता था।
3: हमारा तो तरीका था, हमें रस्सी लगानी होती थी गली में, नहीं देना एंट्री नहीं आती।
0: सही सही, ठीक हो गया।
1: तो मैंने कहा जहाँ बिजनेस के सारी सारी चीजें साथ साथ में चल रही है ना, तो ये भी एक बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी चीज, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो होते हैं ना बिजनेस माइंड लोग, इस तरह के एक्सपीरियंसेस उनके साथ होते हैं जो बिजनेस करना जानते हैं, समझ रही है।
0: मेरा बचपन बड़ा मासूम था, मतलब वाकई बड़ा मासूम था, लेकिन जितनी शरारतें मैंने इस एज में आके की है ना, जितना इंजॉय मैंने इस एज में आके किया है ना, वो मुझे लगता है कि पहले नहीं किया। अब मुझे क्योंकि अथॉरिटी है ना, अब मैं अम्मा हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं मतलब कोई मुझे रोक टोक नहीं
1: है। यार ये भी अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको अपनी हर एज को इंजॉय करना चाहिए। लास्ट टाइम आपको पता है, जैसे हमने एक वो, तो उसमें मुझे हमारी प्रोड्यूसर साहिबा हैं खदीजा मुराद, तो वो मैं यहाँ आई तो कहती जुबिया मैं आपकी रील देख रही थी, आपके अंदर का बच्चा मैं कहती हूँ कि कहाँ है, और वो आपके अंदर का जो एक बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको सामने लेकर आना चाहिए,
0: जिंदा रखना चाहिए,
1: उसको जिंदा रखना चाहिए। अगर आप उसको जिंदा रखते हो तो आप जिंदा रहते हो।
3: लेकिन मैम कहीं ना वो बच्चा आपके अंदर अवेलेबल होता है हर टाइम पे, लेकिन ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इंस्टीट्यूशन से कुछ सीखते हैं, कुछ अपने बड़ों से सीखते हैं, तो आपके अंदर मैच्योरिटी भी आती है, लेकिन वो चाइल्डिश एलिमेंट बहुत कम हो जाता है आपके पास,
1: रह जाता है।
4: लेकिन ऐसे लगता है कि वो हमारे सिर्फ जो हम जिनके साथ ज्यादा कम्फर्टेबल लोग होते हैं ना, सिर्फ उनके सामने वो जो असली चेहरा होता है, वो बचपन वाला सामने आता है।
0: और पता है थोड़ा सा बंदा जब बड़ा हो जाता है, ये बाल आपके व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर लोग
1: यार देखें बाल वाइट जो है ना, वो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल वाइट,
2: अब तो मेरे भी
0: अगर आप देखें बाल वाइट बहुत पहले से की अम्मा है, तो फिर आपको सुनने में मिलता है अब तुम्हारी ये उम्र है कुछ करने की, ठीक है। और मैं कहती हूँ मैंने सारा कुछ जो है ना इसी टाइम पे की है,
1: और करना चाहिए
0: बच्चों के साथ की है,
3: करनी चाहिए।
0: और एक मुझे जो लास्ट हमारी एक वीडियो हमने लगाई हुई थी, तो उसमें मुझे कमेंट आया कि जी हड्डियां जो है ना ये इस उम्र में वापस नहीं आती, घोड़े गिट्टे जो है ना वो दोबारा से नहीं लगते ना। तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया, मैंने कहा जी देखिए एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, आपके अंदर एक विल पावर होती है, आपने उसको लेकर साथ चलना है, वरना तो हर कोई, मेरा ख्याल है हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो बीमार है, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को कुछ है। और खवातीन के लिए ना खास, क्योंकि मैं लेडीज लाउंज करती हूँ, तो मैं खवातीन की बात करती हूँ कि खवातीन के लिए इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के इवेंट्स, छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं हमें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें रेगुलर रूटीन में तो तैयार होने का इतना मौका नहीं मिलता, ठीक है। आप ऑफिस जाते हैं, अगर कोई वर्किंग वेमेन है, पता है कि वो एक लिमिटेड आपका ड्रेस कोड होता है, आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली जाना होता है। और जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो हम इंजॉय करते हैं खुश होके, ठीक है। मैंने अभी कटिंग कराई, तो मुझे सारे कहते हैं यार मैं बचपन से ऐसी, मेरी मैट्रिक में भी ऐसी कटिंग थी, मेरी अभी भी ऐसी कटिंग है, ठीक है, मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ, कोई कह के तो देखे जरा मुझे।
3: मैम अगर हवा तीन की बात हो रही है और 14 अगस्त का मौका, और अगर आपको पता हो कि नूरजहां के बारे में जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने अपनी आवाज अपने मुख्तलिफ गानों को और अपने मिली नगमों को दी, जिसने हमारी मुश्किल वक्त में जो है ना काफी मदद की आवाम में जोशो वाला बनाने के लिए, और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक हमारा जो है ना वो प्रेजेंट किया इस चीज को, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
1: एक्चुअली अगर हम बात करें ना उस टाइम पे, एक वक्त ऐसा होता है, अभी जैसे अभी की हम ये एरा ऐसा है जिसमें आपके पास सोशल मीडिया हर जगह पे एक्सेस है उसकी
3: जी।
1: जब आप बात करते हो उस टाइम की, तो उस टाइम कहीं कहीं पे ये चीजें अवेलेबल थी। उस टाइम पे बात करना जो होता है ना एक बड़ी मोटिवेशन, वही बहुत बड़ा महाज होता था कि आप कहीं जाके बात कर सकते हो। और फिर इस चीज को मद्देनजर रखना कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों की पसंदीदगी क्या है, और उस पसंदीदगी में रहते हुए चीजों को उन तक पहुंचाना। मुझे लगता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे मीम्स बनाने के हवाले से, कि कोई भी इंसान, एक जंग का माहौल चल रहा था या कोई भी मसला होता है, तो एक कुछ लोग होते हैं, एक सर्कल होता है जो मीम्स बनाता है वो मोटिवेट करने के लिए कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, कुछ चीजें पोस्ट करते हैं, उनका भी अपना, मैं आपको बताती हूँ, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे होते हो, अगर उस स्ट्रेस के माहौल में आपको मजीद स्ट्रेस प्रोवाइड की जाएगी तो आप पैनिक कर जाओगे।
3: बिल्कुल,
1: मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में उस चीज को भी लेना चाहिए, ये जो लोग मीम्स बनाते हैं, हाँ वो अच्छी होनी चाहिए, वो उसमें मजाक का एलिमेंट होना चाहिए, मजाक का नहीं होना चाहिए, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है।
2: जी ऐसा ही है, क्योंकि मतलब पिछली दफा जब जंग हुई थी तो लोग जो थे ज्यादा डर गए थे, लेकिन थी ना तो लोग नॉर्मल हो गए थे, उसको मजाक के तौर पे गए।
1: और दूसरा ये कि बॉर्डर में हमारी जो फौज है, हमारे फौजी हजरात, हमारी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बड़े, हमारे सारे इदारे जो थे वो अव्वल फहरिस्त में रहे, और वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, और उन्होंने हमें उस टाइम पे कहा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं आप लोग, और मुझे याद है कि यहाँ पे भी हमारी ट्रांसमिशन हो रही थी, आरजे डॉक्स थे, थे जिया थे, जुबैर साहब थे,
0: आप टाइम पे मैं भी थी,
1: हम जब सुनते थे, और जो रात का जिस टाइम पे जिस पहर में ये ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ जाग रहे हैं, आप लोगों ने अगर सोना है तो आप सो जाओ। तो ये बात है कि लीड कर रहा होता है ना, एक लीडर जो होता है उसका ये काम होता है लीड करना, और लीडर के जहां पे काम लीड करना होता है ना, वहां पे उनका काम ये भी होता है कि अपने बैकएंड पे जो लोग चल रहे हैं उनको उनको भी मोटिवेट करना और सेफ फील करवाना कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये दीवार है, इस दीवार को कोई क्रॉस नहीं करता। मैडम नूरजहां की जहां हम बात करें, तो उन्होंने मोटिवेट उस तरह से ही किया।
2: बिल्कुल,
1: हमारी
2: दो
3: टाइप की मीम्स हैं, कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा डिसरिस्पेक्ट और
1: मजाक
3: करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ मैं सोचता हूँ मीम एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है, अगर पॉजिटिव वे में बनाई जाए ना, दो टाइप्स की होती है, तो आपको क्विक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मीम आपकी 2 सेकंड की होती है और इन्फॉर्मेशन स्पैन जो है ना उसका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम चाहिए होता है आपको, तो आपने एक बार देखी है कुछ 5 सेकंड की क्लिप या एक पोस्टर देख लिया आपने 1 सेकंड में, तो बड़ा जो है ना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसका बहुत अच्छा बन जाता है।
1: और आपको पता है वही चीज कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है, आप वो एक मीम कहीं पे देख लेते हो तो उस टाइम पे जिस टाइम पे वो चीज चल रही होती है ना, तो वो मीम दिमाग में रह जाती है कहीं ना कहीं,
2: वो जैसे वो हॉटपॉट वगैरह चल रहा था, इन्फॉर्मेशन वहीं से मिली थी, मीम्स बन गई उसकी, और फिर ज्यादा लोगों तक पहुंची,
1: स्प्रेड हो गया। बिल्कुल,
0: अच्छा बातों का सिलसिला हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मेरे पास है छोटू सा नन्ना मुन्ना सा कमर्शियल ब्रेक, सो वी हैव टू प्ले दैट कमर्शियल ब्रेक, सो वी आर गोइंग।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: I love FM 101.
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: All right, जी, वेलकम बैक. मीम्स की बात हो रही थी. अच्छा, मीम से ना मुझे एक चीज़ याद आ रही थी. जब भी हम मोबाइल फ़ोन वगैरह मतलब ख़वातीन का नॉर्मली यही होता है, मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, या मैंने जब पहली दफ़ा टिकटॉक डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, आप सबको वो नज़र आ रहा है कि मैं टिकटॉक देख रही हूँ. नॉर्मली यही होता है कि जी काम पे ध्यान नहीं जाता. नॉर्मली मेरी रूटीन ये होती है कि मैं किचन में जब काम कर रही होती ना, मैं तब ड्रामा लगा लिया. अच्छा जी, चाहे मैं काम इधर वाली शेल्फ पे कर रही हूँ लेकिन वो मोबाइल उधर लगा होता है और एक जहन मतलब कानों में आवाज़ पड़ी होती है ना, तो आपका टाइम स्पेंड हो जाता है. तो इसी तरह मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं रील्स देख रही हूँ ना, और उसमें से मैं फनी रील्स देखती हूँ. मुझे ये सुनने को मिलता होता था बच्चों की तरफ से भी, मियाँ साहब की तरफ से भी, कि यार हर वक्त ही तुम ये चीज़ें देख रही होती हो. फिर मैंने उनको भी चस्का लगवा दिया. देखिए यार, देखिए हम सारा दिन के थके आ रहे होते हैं, ठीक है. हमने इतना काम, चाहे हम बाहर काम कर रहे हैं चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, ठीक है. मेंटल आप जो है ना वो बड़ा मेंटली थके हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं. तो जब आप इस तरह की कोई फनी रील्स देखते हैं ना, तो एक अजीब सा आपके अंदर जो है ना वो आप कह लें कि सेटिस्फेक्शन आ जाती है, आराम आ जाता है, आपका रिलीज हो जाता है. तो उनको फिर मजा आया और उनको अब मैं कोई भी इस तरह की अच्छी चीज होती है ना तो मैं रोक के, भाई मेरी बात सुनो. ये देखें. और कितनी दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी मायने खेज होती हैं, वो समझने में लिखा हुआ होता है और पीछे कुछ और चल रहा होता है और बहुत बुरा लगता है. एग्जैक्टली,
1: और उसे समझना है कि इसमें क्या था.
0: तो मतलब ये कि फिर मुझे सुनने को नहीं मिला कुछ भी कि ये कोई गलत चीज देख रही है, ये टाइम वेस्ट कर रही है.
1: मैं कॉलेज से घर जाऊँ या कुछ भी ना, थक मामा थक गई हूँ, मेरा मोबाइल किधर है? अब तुम नहीं थकी? अरे उन्हें कौन बताई, ये तो मेंटल पीस है, मोबाइल मिल गया, रील स्क्रॉल करो, ये तो आपको रिलैक्स कर रहा है. लेकिन उन्हें लगता है अब तुम थक गई हो तो बस, तुम्हें लेटी पड़ी हो, तुम सो गई हो, ये तुम्हारा रिलैक्स है.
0: और पता है बंदा ज्यादा थका हुआ हो तो नींद नहीं आती.
2: लेकिन जहाँ पे हमारी मर्दों की बात आती है तो हमारे लिए थके होने की बात भी जिम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है वहाँ पे.
0: ये आप खाली जेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते.
3: ये
0: जिम वाली बात, जिम वाली बात. इसमें मुझे लगता है चाहे वो मेल हो चाहे वो
2: हैबिट की बात, आजकल कॉमन हो रहा है ना वुमेन्स में,
0: कॉमन हो रहा है. ये पैशन होना चाहिए, आपके उससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है, नो डाउट. आप एक्सरसाइज करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, और उसके बाद वाकई अच्छी नींद आती है.
3: अच्छा,
0: हाँ बिल्कुल, ये मैं एक्सपीरियंस है. और अभी कुछ दिनों से मुझे वो वाला मोटिवेशन दोबारा नहीं आ रहा. मैं दो दिन गई हूँ, उसके बाद मैंने फिर
1: अच्छा.
2: उसमें मेन चीज मैम अगर आप देखें ना, मोटिवेशन से ज्यादा चीज होती है डिसिप्लिन.
0: कंसिस्टेंसी है ना,
2: वो आपको लेके चलती है.
0: बिल्कुल,
2: 10 साल भी कर लेंगे लेकिन मोटिवेशन सिर्फ ना 2 दिन या 1 हफ्ते की होती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको नहीं एंगेज कर सकते.
0: लेकिन फिर आपको आदत पड़ जाती है ना एक रूटीन फॉलो करने की. यार आपने सारा काम कर लिया, अब मेरे काम खत्म हो गए, मैं फिर गई हूँ जिम, जिम जाके एक्सरसाइज की है, देन आप घर आके नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के बस फिर उसके बाद रील्स देखनी है और सो जाना है. तो ये रूटीन होती है और ये होनी चाहिए. हमारे यहाँ खवातीन इस चीज मतलब फीमेल्स में थोड़ा कम है, थोड़ी सी वर्किंग लेडीज हैं, कुछ इस तरह की खवातीन हैं उनके अंदर ये चीज़ है, उनके वहाँ पे ये ट्रेंड है. बट हमारे यहाँ एक्सरसाइज को ये समझा जाता है कि यार ये तो सिर्फ जो है वो मर्द हजरात नहीं करेंगे.
3: वो कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत है,
0: तुम्हें क्या जरूरत है. हाँ, या खवातीन खुद भी ये सोचती हैं कि यार सारे दिन घर का काम करते रहते हैं. हालांकि डॉक्टर्स भी जो हम घर का काम कर रहे होते हैं ना उसको एक्सरसाइज नहीं मानते, उसको वॉक नहीं मानते. ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं आपने वॉक करनी है, आपने स्पेशल वॉक करनी है. ठीक है,
1: रिलैक्स माइंड के साथ. हाँ जी बिल्कुल,
0: तो वो एक अलग चीज होती है. घर का काम सारा दिन आप जितना मर्जी कर लें वो आपको थकाएगा जरूर, लेकिन आपको जो है ना वो एनर्जी नहीं देगा या आपकी फिटनेस जो है ना उसको बरकरार नहीं रखेगा. तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, और टाइम निकालना भी चाहिए है. अक्सर खवातीन जो है वो अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, सारा दिन जो है वो कामों में लगी हुई है. उसके बाद वो हमारी जो
2: तंदुरुस्ती हजार
0: कौमी बंटी खाई और उसके बाद सो गए.
3: बादाम की तरह वो भी.
0: उसके बाद जो है ना वो सो जाना है, उसके अलावा और कोई हमारी लाइफ में वो नहीं होता.
2: ऑफ टॉपिक चले 14 अगस्त.
0: हाँ, लेकिन देखिए जहाँ पे 4 लोग बैठे होते हैं ना वो कहते हैं ना बात से बात निकलती है. तो अच्छा, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे.
2: मैं बात करना चाह रहा था अभी, जैसे हम वैसे भी रेडियो पे हैं और आगे हमने नूर जहाँ की बात की, जोशो वलवले की बात हो रही है, तो उसमें बात करना चाह रहा था फैज अहमद फैज पे, कि उन्होंने अपनी शायरी और नज़मों के जरिए ना हमारे पाकिस्तान को बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है.
0: बिल्कुल,
2: और उनकी शायरी और उसमें से भी ना हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए काफी यानी कि आवाम के लिए जोश वलवला निकल रहा होता है. उनकी एक लाइन मैंने पढ़ी थी अभी आने से पहले, एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको. वो लाइन ये थी कि बोल के लब आजाद है तेरे, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। और 14 अगस्त से रिलेटेड मैं ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक आजाद रियासत है और हम मुसलमान अलहदा हो चुके अपना हक लेके, तो अब हमें पाकिस्तान के अंदर ना खुल के बोलने की जरूरत है। हम वो बोल सकते हैं जो हम फील करते हैं, हमें किसी किस्म की जो है ना पाबंदी नहीं है, और हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको बढ़ाने के लिए हम आगे ना एकदम आत ले सकते हैं।
3: बिल्कुल ऐसी है। और मैं इसमें ये बात भी इंक्लूड करना चाहूंगी कि पाकिस्तानी होने का एज अ नेशन, या हमें हम अगर बात करते हैं कि फ्रीडम की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी होने का या इस आजादी के त्यौहार का उनसे पूछें जो अपने वतन से दूर हैं, अपनी मिट्टी से दूर हैं। जब आप अपने वतन में, इवन दो आप अपने घर में मौजूद होते हो ना, वहां आप किसी रिलेटिव की तरफ जाते हो, वो रिलेटिव जो है वो चाहे साथ वाले घर में मौजूद हो, आपको फ्रीडम नहीं होती, आप सो नहीं पाते हो, आप नॉर्मली तरीके से अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते, या वो दिन या वो रात गुजार नहीं पाते हो। तो अपने मुल्क की हम अगर बात करते हैं, तो अपने मुल्क में ये चीजें हम आजादी से कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने मुल्क में मौजूद नहीं है, वो किसी और मुल्क में मौजूद है, कहीं और मौजूद है, उनके लिए ये चीजें डेफिनेटली आज का दिन वो जिस तरह से हम सेलिब्रेट वो मिस कर रहे होंगे। मैडम नूरजहां की जहाँ आपने बात की,
0: बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम नूरजहां की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक हम अपने उन जवानों के नाम करते हैं जो इस वक्त सरहदों पर हमारी हिफाजत की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं बग़ैर किसी गर्ज के, ठीक है। उनको गर्ज सिर्फ ये है कि हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है। दिन हो, रात हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, जो मर्ज़ी हो जाए, उनको ये भी होश नहीं है कि पीछे उनकी फैमिलीज जो हैं उनका वेट कर रही हैं,
2: सिर्फ इसलिए कि हम सेफ फील करें।
0: बिल्कुल, सिर्फ हमारी खातिर। मेरा ख्याल है कि उनके लिए थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। इंजॉय करते हैं इसको, इसके बाद वापस आते हैं।

0: चांद। बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया,
2: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
1: ओके नेक्स्ट, अब हम बढ़े हैं अपने एंड की तरफ, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
3: जी बिल्कुल, मैं बस लास्ट पे यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है अब हमारे मुल्क की वो 24 करोड़ प्लस है, जिसमें से हमारे 62-63% हमारी यूथ है। हर मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया उसकी यूथ, उसकी नौजवान नस्ल है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हम जितने भी नौजवान हैं, हमें अपनी आखिरी कोशिश यही करना चाहिए कि हम अपना जितना अच्छा, जितना बेस्ट हो सके हम अपने मुल्क को दें, ताकि जो पोटेंशियल हम आजकल के नौजवान नस्ल के जो सोच है कि हमें यहाँ इंजीनियरिंग करने से अच्छा है कि बाहर के मुल्क में हमें ड्राइवरी मिल जाए, तो हम इस माइंडसेट को छोड़ें और जो अपना पोटेंशियल हमने उधर जाके दिखाना है वो अपने मुल्क को दें और अपने मुल्क की शान बढ़ाएं, इसका नाम बढ़ाएं। क्योंकि जितने भी आज हमने इतने खूबसूरत हीरोज का नाम लिया वो हमारे मुल्क के हैं, उन्होंने हमारे मुल्क का नाम बनाया, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, वो नूर जहां हो, वो इशफाक अहमद ने चाहे अपनी लिखाई से, आप जो भी, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप रेडियो में, आप टीवी में, आप कहीं भी हैं, अपनी आवाज उठाएं और अपना हिस्सा डालें कि हम इस मुल्क को कुछ दे सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट,
4: मेरा यही पैगाम है कि होता है ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मर्दों को ये रियलाइज हो कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
4: मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे में औरतों की बढ़ाई को लेकर एक टैबू जैसे समझा जाता है, जैसे कि बैकवर्ड जो इलाके होते हैं जैसे रूरल अर्बन एरियाज में, तो मैं कहती हूँ उनमें पढ़ाई की जो है वो अवेयरनेस दी जाए कि औरतों को पढ़ाया जाए, और ना सिर्फ पढ़ाया जाए बल्कि उनको आगे उनका करियर परसू करने भी दिया जाए। क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो 60% या 62% जितनी भी खवातीन हैं जो आगे डॉक्टर से बनती हैं, इवन के वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं बन पाती हैं, उनको फैमिली प्रेशर होता है या वो खुद चाहती हैं कि मैं अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा रुझान हो या ज़्यादा तवज्जो दूँ उनकी तरफ, तो मैं चाहती हूँ कि उनको इतनी अवेयरनेस दी जाए और उनको इतना सपोर्ट किया जाए कि उनको उनकी वर्क लाइफ में, उनकी जो जहाँ पे वो काम कर रही हैं, उनको इतना सेफ फील करवाया जाए कि वो अपने दिल से, अपने जोश वगैरह से वो उसको परस्यू करें और आगे मुल्क का नाम, अपनी मुल्क की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करें।
2: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात
1: जी, बहुत जबरदस्त सा मैसेज। और अब हम बढ़ते हैं अमित की तरफ।
5: मैं अपनी बात इस बात से ख़त्म करूंगा कि 14 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने दिया क्या है, तो मेरा सवाल ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया?
2: बहुत अच्छी बात।
5: अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपना बेहतर कल। पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं है, पाकिस्तान हमारी पहचान है। मैं हूँ अहमद भट्ट, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद
2: पाकिस्तान, जिंदाबाद। और यहाँ पे मेरे ख्याल से एक हम मिली नकमे की तरफ बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, मिली नकमे की तरफ बढ़ते हैं। 11:56 हो गए हैं, 12 हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब। न्यूज़ ब्रेक के बाद हम लोगों के कमेंट्स जो हमारे साथ सुन रहे हैं,
2: बिल्कुल उनको भी शामिल करेंगे।
1: शामिल करेंगे, तो स्टिक अराउंड विद अस।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मनाजिर हुसैन से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौम आज 80वां यौम आजादी कौमी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। सदर मुमलिकत ने मुसल्ला अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1100 से जायद अहलकारों के लिए मिलिट्री अवार्ड्स की मंजूरी दी है। पाकिस्तान और हांगकांग ने कस्टम्स के शोबे में मावनत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और स्पार्को ने पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का सरकारी नाम जिनाह वन रखने का ऐलान किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। कौम आज 80वां यौम आज़ादी कौमी जोशो जज्बे और इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रही है कि तहरीक पाकिस्तान के जज्बे के साथ काम करते हुए मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। दिन का आगाज़ वफाकी दारुलहुकूमत में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे स्टूडियो में रौनकें जो है ना माशाल्लाह मुझे नज़र आ रही हैं. और इतनी देर से जो है ना हम बड़े बड़े लोग थे और मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल से हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो ये बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं ना बड़े प्यारे प्यारे, इनकी ड्रेसिंग के बाद मुझे लग रहा है कि हम तो फीके पड़ गए हैं, है ना. माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी सी तैयारी की हुई है. मुझे पता लगा है कि बड़ा प्यारा प्यारा मिली ना हमारा है आपको, ऐसे ही है
1: पोइम. क्या
0: पहले नाम है? पहले नाम बताएं आप मुझे, अपना नाम क्या है आपका?
2: अबीहा.
0: अबीहा, वाह जी वाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका. और आपको मिली नगमा आता है?
2: Yes.
0: क्या आता है मिली नगमा, सुनाएं फिर आप हमें.
1: सुनाएं
2: दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां.
0: वेरी गुड, बहुत प्यारा. ये मिली ये आपको किसने सिखाया है मुझे ये बताएं, याद कैसे किया था आपने? मम्मा ने याद कराया था, किसने याद कराया था जल्दी से बताओ.
2: मैं खुद याद
0: किया. आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो. आप स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: वन.
0: वाओ, स्कूल में भी, स्कूल में सुनाया था अपनी टीचर को? सुनाया था, फिर उन्होंने क्लैपिंग की थी आपके लिए. वेरी नाइस, आप खुद भी बड़ी प्यारी लग रही हो. ये जो आपने इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, इतने प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं, पिन्ने भी लगाई हैं, वाओ. मैं जेलस हो रही हूँ, मैंने नहीं लगाई पिन्ने. माशाल्लाह जी बहुत प्यारे लग रहे हो आप. अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे और आपको जो है वो अपने माँ बाप के लिए सुकून का बाइस बनाए. आमीन. ठीक है,
2: थैंक यू,
0: वेलकम. और भी कोई बच्चा है? अच्छा ठीक हो गया जी, बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जी. अच्छा, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और इनको आपकी आंखों की ठंडक बनाए. आमीन,
3: इलाही आमीन.
4: अच्छा निम्रा, यहाँ से
0: बंद कर दूँ? कौन सा वाला?
3: मेरा ही ना कर दे.
0: अब मैं बंद करके चेक करती हूँ, बंद करके चेक करती हूँ कि ये कौन सा किसका है.
3: हाँ अच्छा, मैं जहाँ पे हम पोइम्स की बात कर रहे थे, हाँ. मैंने कहा यार बचपन में जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्कूल में आज के दिन प्रोग्राम, हाँ. हुआ करते थे ना, तो वो थर्सडे. ये मेरा बंद कर दिया आपने माइक.
0: ये रजा को जो है ना मुझे लग रहा है बुखार थी
3: ना. चलो फिर,
0: प्लीज डोंट माइंड. आप बोले, आप बोले बोले बोले बोले. हाँ कर दिया मैंने. अच्छा जी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे स्टाफ जो है ना वो जब तक हमारे साथ नहीं होता, मेरा ख्याल है हम अकेले शो नहीं कर सकते. इन लोगों की कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से जो है हम भी यहाँ पे आराम से स्मूथ बैठे होते हैं. तसल्ली होती है कि यार बैकअप पे कोई ना कोई बंदा मौजूद है.
4: अच्छा, हमारे साथ बिल्कुल कुछ पैगामात हम तक जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं. एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे हमें पोस्ट अपडेट करती है और उस पे कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं. कुछ पैगामात हैं जिनको शामिल करते हैं. मलिक वसीम अवान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं. और कहते हैं मोहतरम जनाब रियाज भट्टी साहब लाहौर वाले, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया. और मोहम्मद सुमेर हमारे साथ हैं, विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बिल्कुल ठीक है. हमारे साथ रिजवान हमीद साहब हैं, कहते हैं एक्सीलेंट होस्ट हैं आप जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.
0: इन्होंने तारीफ से जूबिया लिखा है, जूबिया शफीक एक्सीलेंट होस्ट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अच्छा मैं आपसे जेलस नहीं हो सकती,
3: मुझे पता है आप नहीं हो. अच्छा कुछ लोगों से वाइब ऐसी नहीं,
0: मैं होना चाहती भी हूँ ना लेकिन मैं हो नहीं पाऊंगी. मेरे अंदर ये चीज है ही नहीं.
3: अच्छा नहीं, कुछ लोगों से ऐसी वाइब आती है.
0: बिल्कुल ऐसे ही है.
3: कहते हैं ना कि कुछ चीजें बता के कही जाती हैं,
0: हाँ.
3: और कुछ चीजें बिना बताए सामने आ जाती हैं.
0: ऐसे
3: वो जेलसी होती है,
0: तो समझ रही
3: है ना, समझ गई ना,
0: समझदार हो गई, ठीक हो गया सूबिया. अच्छा मिली नकमे की बात हो रही थी, साथ ही जो है हमारी न्यू इंटर्नी ने हमें ज्वाइन किया और सिर्फ आप अकेली ही हैं मेरा ख्याल है अपना, प्लीज तारुफ करवाइएगा।
5: अस्सलाम,
0: थोड़ा सा करीब हो जाए माइक को, थोड़ा सा ऊंचा कर लें, थोड़ा सा ऊंचा कर,
3: मुझे लगता है मुझे अपनी जगह बदल लेनी चाहिए।
0: वजह
3: यार ये सामने से जो है ना वो
0: आप फिर सामने
5: जिंदगी में कभी जगह नहीं बदलते
0: हम कुर्सी छोड़ देते
3: हम कुर्सी छोड़ देते
5: छोड़ना भी बहुत मुश्किल है,
0: हमें कोई हिर्स नहीं ठीक है, हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं। चले जी, अब आप अपना तारुफ करवाएं पहले।
5: मेरा नाम है मुना चीमा है और मैं यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर रही हूँ। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है पिछले 2 माह से और अब बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे है, और अब चूंकि 14 अगस्त करीब थी तो हम उसकी तैयारियां भी कर रहे थे और आज 14 अगस्त है तो इस हवाले से हमें मौका मिल रहा है कि हम रेडियो पाकिस्तान से हमारी आवाज़ जो है वो बाकी लोगों तक पहुँच रही है, तो इसके लिए मैनेजमेंट का शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया।
0: नहीं जी, आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आई, हमें भी आज के दिन टाइम दिया, क्योंकि इतने दिनों से मैं जो है ना वो फेसबुक पे कभी कभी कुछ क्लिप्स देख ली और मुझे पता लगता था कि अच्छा जी न्यू इंटर्न्स जो हैं वो और ये न्यू यंग जनरेशन जो है ना वो इस तरफ आ रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम सभी उस टाइम से निकले हैं, उस टाइम से निकल के यहाँ तक आए हैं, वो बचपन की 14 अगस्त और अब की 14 अगस्त, और आपसे भी मेरा ना अब यही सवाल है कि जो आपके बचपन की 14 अगस्त थी उसमें और आज की 14 अगस्त में क्या डिफरेंस है?
5: जो हमारे बचपन की 14 अगस्त थी वो बहुत मजे की थी।
0: हाँ, और
5: मैं
0: क्या
5: अभी
0: मजे का
5: भी
0: था उसमें?
5: मैं अभी भी उस टाइम को बहुत मिस करती हूँ। उसमें वो हमारी ना एक जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता था एक एक्साइटमेंट का लेवल बच्चों में वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, और उस टाइम पर ये होता था झंडियाँ लेनी है, झंडा लेना है, सबसे बड़ा झंडा जो है ना वो आस पास के घरों से सबसे ऊंचा हमारा हो। और हमारी एक रिवायत थी कि हमारी पूरी फैमिली, हम ननिहाल मतलब हम मामू की तरफ जाते थे, सारी खाला मामू के बच्चे जो है वो सारे इकट्ठे होते थे कजन, और हम 13 अगस्त का पूरा दिन जो है ना वो झंडियां लगाने में मसरूफ होते थे। हम चूंकि तब बहुत ज्यादा छोटे थे, हमसे बड़े कजन्स लगा रहे होते थे, हम उन्हें ना पकड़ा रहे
0: वो तसल्ली इसी तरह कराते मुझे पकड़ा रहा,
5: वो कहते थे तुम लोग छोटे तुम लोग नहीं लगा सकते,
0: असल में उनको ये चल रहा होता यार ये बीच में ना आए काम खराब हो जाएगा,
5: तो हम उन्हें पकड़ाते थे और कहते थे हमारा भी रोल है भाई। और फिर पूरा दिन, अच्छा मुझे हैरानी इस चीज पे होती है कि तब गर्मी होती थी, तब भी होती थी, लेकिन हम धूप में भी लगे होते थे, छत पे जाके लगाते थे
3: अक्सर दोपहर के टाइम,
5: पता नहीं कैसे हमें शायद मोटिवेशन या वो एक्साइटमेंट होती थी, बस गर्मी लगती।
3: अच्छा, यहाँ जहाँ बचपन की इन यादों की बात हो रही है वहाँ आपको याद है कि एक जहाज हेलीकॉप्टर आया करता था और वो ऊपर से झंडियां फेंकते थे, कलरफुल झंडियां जो है वो, और मैं, अच्छा आपको नहीं याद
5: था,
3: ऐसा होता था और तकरीबन सुबह 8-9 बजे के दरमियान में जो है वो आता था और हम छत पे सब कजन जो है वो इकट्ठे होते थे और वो हम कहते थे कि वो कलरफुल सी झंडियां होती थी और वो वहां से ऊपर से फेंकी, अब पता नहीं वो होता है या नहीं होता,
0: मुश्किल आती थी ना इसलिए मुझे नहीं पता
3: नहीं असि वही इकट्ठिया करके रख दिया अच्छा तो वो ये बड़ा बात लगा गई यहाँ
0: देखिए इसके बाद तो मुझे मौका नहीं मिला ना फिर साल बाद कोई मौका आना है
3: अच्छा, और ये ऐसे स्पेसिफिक डेज होते हैं कि इंतजार रहता है। आपको याद है ईद का प्रोग्राम भी था तो हम आपस में डिस्कस करते थे यार इस प्रोग्राम में इस टाइम पे,
0: लेकिन इसके बाद तो मुझे मौका नहीं मिला ना फिर साल बाद कोई मौका आना है
3: अच्छा, और ये ऐसे स्पेसिफिक डेज होते हैं कि इंतजार रहता है। आपको

0: 2011 कंटिन्यूसली जब मैंने किया था, तो कोई भी इवेंट होता था ना, मैं लाजमी आती थी, ठीक है, मैं घर छोड़ के आती थी. और उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, फिर ऑन एंड ऑफ, मतलब मैंने ब्रेक्स वगैरह लिए. तो अब जब कोई इवेंट आए और मैं ना हूं, मैं बहुत फील करती हूँ. जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो फिर आपको डिविजन करनी पड़ती है चीजों की, टाइम देना है, नहीं देना. तो लास्ट ईयर तो मैं किसी और वजह से नहीं आ सकी थी, बट इस टाइम जो है ना, जैसे ही अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं पता था शोज होने हैं, नहीं होने हैं, क्या.
1: मैंने कहा मैं
0: पहले बुकिंग करा ली. मैंने कहा मैडम मैंने जरूर आना है, चाहे कोई आए ना आए, मेरा नाम जो है ना आपने शो में जरूर रखना है, क्योंकि मैं बड़ा मिस कर रही थी उन चीजों को.
2: अच्छा, हमने भी आपको मिस किया, क्योंकि हमने बाकी लोगों के साथ मौका मिला और हम बड़ा इंतजार कर रहे थे कि हमें आप लोगों के साथ भी बोलने का मौका मिले.
1: अच्छा, इसमें ये है, जब इस टाइम की बात होती है ना, तो इस टाइम पे फिर वो ये होता है कि आपकी पूरे साल की एनर्जी जो है ना, मुझे लगता है स्टोर हो जाती है. और आप आज का, जैसे आज हमने प्रोग्राम किया इकट्ठे, फिर पता नहीं फिर कोई इवेंट होगा तो हम इकट्ठे होंगे, अदरवाइज अपने अपने स्लॉट में सब लोग चल रहे होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है, तो फिर हम एक दूसरे को बता देते हैं कि हम सुन रहे हैं. तो ये जो डेज होते हैं ना, जैसे रात को कल आपका प्रोग्राम हुआ, तो जब डिसाइडेड हुआ तो आपने कहा, तो मैं कह रही थी यार अब हमने साथ में, फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, जब हम ये लगा कि हम शायद कंबाइंड प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो मैंने फिर निमरा को कहा, मैंने कहा यार चलें, जितनी देर आप प्रोग्राम करेंगी ना, मैं आपके सामने बैठ के इतनी देर बैठी.
0: हम ही डिसाइड करके आए थे कि अगर हमने कंबाइंड शो नहीं करना ना, तो हम एक दूसरे के लिए बैठ जाएंगे. असूलत को बैठना पड़ना था, क्योंकि उनका शो पहले था,
2: गैदरिंग हो जाती है ना, मिलने का मौका,
0: सपोर्ट हो जाती है. और उसके अलावा जो है, मेरा ख्याल है कि उतना जल्दी मौका नहीं मिलता, वो वर्किंग डेज में आती है, मैं वीकडे पे आती हूँ, और वीकडे पे आने की वजह से नुकसान ही होता है कि मैं यहाँ किसी से नहीं मिल पाती. वीकडे पे आती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ.
1: बिल्कुल,
0: तो मैं कभी कभी फील भी करती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं चेंज करा लूँ, लेकिन फिर मेरा एक वो सैटरडे है और मुझे पता है कि वीकडेज में मेरे पास टाइम नहीं होगा.
1: बिल्कुल,
0: वीकेंड्स पे फिर मैं अवेलेबल होती
1: हूं. तो आज के दिन को हम तो खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप भी हमें बता सकते हैं, हमारे सुनने वाले बता सकते हैं कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमें कॉमेंट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं 04211000101 पे. जी बिल्कुल, हमारे साथ है.
0: और ये देखे ना, ये मेरे साथ कमर्शियल बैठा, ठीक है, ये फरिश्ता मुझे इशारे कर रहा है कि आप ये चलाना है, ठीक है.
1: बिल्कुल ऐसी है,
0: तो हम इस फरिश्ते की बात ठीक हो गया. हाँ बिल्कुल,
1: समझ आ गई, हम समझ रहे
0: हैं, ठीक है. तो हम चलते हैं पहले
1: की तरफ,
0: कमर्शियल ब्रेक की जाने पड़ते हैं. आप लोग हमारे साथ रहिएगा, स्टिक अराउंड टू एफएम 101. मैं हूँ, मेरा नाम है निमरा अरूज, मेरे साथ हैं जूबिया शफीक, और हमारे साथ मौजूद हैं
2: मैं मोना.
0: और मैं आपस की बात बताती हूँ, मैं नाम भूल गई थी.
2: मुझे बिल्कुल अंदाजा हो गया था जब आपने.
0: चलें जी, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने, स्टिक अराउंड.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत. सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें. इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें.
4: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया.
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.

वेलकम बैक। एक अदद बड़े प्यारे से ट्रैक के जाने पड़ते हैं, ठीक है। आपने कानों में हेडफोन्स लगा लिए, माइक तो मैंने ऑन किया नहीं है। ये इस सीट पर बैठने का कमाल है, सबर करें जरा। आप बोले क्या कहना चाह रही थी।

0: मैंने कहा आज जो है ना मैं सारी अगले पिछले निकाल के जाओ ठीक है
1: करके जाए
0: उसके बाद जो है ना
1: मौका मिले ना बिल्कुल बिल्कुल सही है आप कर सकती हैं आपको परमिशन है
0: मैं आपको जस्ट टर्न कर रही हूँ यू नो मैं फिर पटरी से उतर जाऊंगी. अच्छा जी हम बड़े हारून की जानिब ठीक है और मेरा फेवरेट ट्रैक है ये मैं जब सुनती हूँ मतलब घर में भी मैं मिली नक में सुन रही हूँ ना तो मैं ये एक साहिर अली बग्गा का ट्रैक है उनके तो सारी क्योंकि मुझे लगता है एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और इसमें जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है ना शुरू का सफर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंजॉय करते हैं.
1: ओके
0: इंस्टाग्राम

0: राइट, वेलकम बैक वंस अगेन. आपको खुश आमदीद कहते हैं. मेरी प्यारी सी भतीजी जो है ना मेरे साथ मौजूद हैं. आई होप कि वो मुझे सुन रही होंगी. बड़े प्यारे से अंदाज में उन्होंने अस्सलाम वालेकुम बोला है. वालेकुम अस्सलाम. और जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद. और हमारे साथ
1: एक बड़ी प्यारी से अच्छा हम बात कर रहे हैं 14th अगस्त के हवाले से ना. हर एज ग्रुप की एक अलग से चाम होते हैं, अलग से यादें होती हैं. आपको क्या लगता है कि अभी तक में कौन सा एज ग्रुप आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया, या उस टाइम पे आपने ज्यादा इस तरह के डेज को सेलिब्रेट किया?
0: बचपन
1: हाँ, वो नहीं भूलता.
0: बड़े होने के बाद, या अब अपनी बात करूँ ना, तो वो टाइम जब मेरे बच्चे छोटे थे और मार्केट में जब ये चीज़ें आती हैं ना, तो फिर मेरा दिल करता था यार मेरे बच्चे जो है ना वो 14 अगस्त के स्पेशल कपड़े पहने और वो तैयार हों और सारा कुछ. लेकिन बस ये एक मुझे लगा कि एक अच्छी चीज़ लगी. और लेकिन जो हमने खुद इंजॉय किया है वो बचपन था, क्योंकि बचपन में जो है ना वो जो झंडियाँ लगाने का एक जुनून होता था ना. और उसके बाद जब झंडियाँ थोड़ा सा साइड पर हो गई तो आगे हम झंडे की तरफ,
1: जो अब के
0: ये होता था पूरे मोहल्ले में जो है ना सबसे बड़ा झंडा किसके घर लगा
1: सबसे
0: ऊंचा और बड़ा. तो मेरे कजन ने ना स्पेशली डिजाइन करवाया था, काफी बड़ा झंडा था, सिल्क के कपड़े का था. मुझे चूंकि स्टिचिंग आती थी,
1: अच्छा,
0: तो वो कहीं से जैसे अगर उधड़ गया है कुछ है, क्योंकि वो साला साल चल रहा होता है ना, फिर वो भी मैंने ही करना है. फिर उसके बाद उसको वो जो डांग होती है, बांस का जो वो लंबा सा डंडा, ठीक है, उसके ऊपर लगाने के बाद आपको शायद आपने स्टिच करना पड़ता है, हवा के साथ उड़ी
1: ना जाए.
0: बिल्कुल, तो वो भी मैंने करना होता था. तो उस टाइम तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा ठीक है, ये मेरी एक जिम्मेदारी है ना. छोटी थी, जाहिर सी बात है, वो यही जिम्मेदारी से खुश हो जाते थे. और उसके बाद जब बारिश होती थी ना, तो वो झंडे के वजन से डांग टूट गई थी, मतलब वो जो मांस था.
1: ठीक है
0: वो नीचे से भारी होता है उसका, हाँ. मतलब ये होता है ना, नीचे से भारी होता है, ऊपर की साइड से थोड़ा पतला होता है,
1: हाँ.
0: तो वो जो है ना झंडे का इतना वजन हो जाता था गीला होने
1: के बाद,
0: डांग टूट जाती थी. फिर जब हमें पता लगता था, मतलब बाहर से नजर आ रहे हो झंडा तो जो है वो इस तरह नीचे लटका हुआ है, फिर उसको जाके झुकना नहीं चाहिए, ठीक है. ये एक मोटिवेशन होती थी कि आपका झंडा जो है जरा सा भी टेढ़ा सीधा नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल.
0: और फिर भाग के जाना है जी, और वो उठाया नहीं जा रहा है. वो वाली एक्साइटमेंट या वो वाली जो चीजें थी ना, वो अब नजर नहीं आती.
1: अब के बच्चों में भी नजर नहीं आती.
2: मुझे लगता है कि बचपन में ना हम मेहनत करते थे इस चीज पे, और हम अपने शौक से करते.
0: अब हर चीज तो रेडीमेड मिल जाती है,
2: रेडीमेड मिलती है. बच्चे वो झंडियां धूप में खड़े होकर
0: नहीं लगाएंगे.
2: उन्हें एसी में बैठने की आदत है, बस एक झंडा लगा लो बहुत है, खरीद लो, ठीक है, वो रेडीमेड चीज है.
1: एक्चुअली चेंज कर दिया गया ना वक्त के साथ साथ, अपनी आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई. तो वो चेंजिंग के साथ चीजें जो है ना वो बदलती गई, और वो एक्सपीरियंस नहीं किया. मुझे कहीं ना कहीं लगता है हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमने शायद खुद अपने बच्चों को वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं करने दी. जैसे अभी त्योहार आया था बसंत का, तो बसंत में आपने देखा था कि हमारे बच्चों ने मोबाइल फोन को 2-3 दिन देखा भी नहीं था, और वो उसी तरह से उन चीजों को एंजॉय कर रहे थे.
2: पहली हम लोगों
1: पहली थी, हाँ, थी. और आपको वाइब आ रही थी जब बसंत का इवेंट स्टार्ट हुआ, हाँ. तो रात को जब वो इवेंट स्टार्ट किया गया, उस टाइम पे वहां से स्टार्ट किया गया जहां से वो खत्म हुआ था. वही सॉन्ग्स और वही सारी चीजें, वाइब उस तरह से स्टार्ट करके, और दोबारा से नेक्स्ट डे रात तक जो है वो उसी तरह से चीजें चली. तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह नहीं करते, या इस तरह से नहीं वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, या वो हमें आगे से रिस्पांस नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है.
2: ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारा कंपोजिट हेरिटेज है उसमें जो पॉजिटिव चीजें हमने खुद अगली नस्ल में वो ट्रांसफर करनी है. अगर हम नहीं करेंगे तो वो वहीं पे दब जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी.
1: जैसे हम खवातीन की अक्सर बात करते हैं निमरा, तो हम बात करते हैं कि खवातीन अपने घर को किस तरह से डिकोर करें, या बच्चों की परवरिश में कौन कौन सी चीजें करें. तो मैं अक्सर बात ये करती हूँ कि बच्चे कहते हैं कि जी खाना खाते हुए बच्चों को मोबाइल फोन देना या पॉइंट्स दिखाना जरूरी है, वरना वो खाना नहीं खाता. होता है ऐसे,
0: मैंने
1: खुद देखी है ये चीजें. हमारे पास एक पेशेंट आई थी, वो बच्चे की एज थी 6 साल तकरीबन. वो मेंटली तौर पे इतना स्टक्ड हो चुका हुआ था कि वो उस आवाज पे ही चलता था, माँ बाप की वो आवाज नहीं सुनता था. उसको वो पॉइंट सुनाई जाती थी या वो उस पर रिस्पॉन्स करता था, उसकी बात का रिस्पॉन्स, और वही बंदा अगर बात करता था तो वो रिस्पॉन्स करता था, फैमिली को वो कुछ समझता ही नहीं था. तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि पहली दफा किसने ये चीज बताई कि आप खाना खाओ आपको ये पॉइम सुनाई जाएगी. तो जब हम खुद वो चीजें उनके अंदर पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो हम कैसे ये ब्लेम कर सकते हैं कि बच्चे इस तरह से करते हैं या बच्चे इस तरह से. आपकी फैमिली में वो चीजें, आपको घर में, आपकी बेस में वो चीजें अगर स्ट्रांगली आप में एड डाउन की जाएंगी तो कहीं ना कहीं चेंजिंग आएंगी. हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं, हमने वो चीजें एक्सपीरियंस की बिकॉज हमारे माँ बाप ने हमें वो चीजें बताई. हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठते थे तो वो अपनी कहानियां सुनाते थे. आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने बच्चों को वो कहानियां सुना सकें या वो टाइम दे सके. हमने तो उनको गैजेट पे लगा दिया, हमने तो कहा कि आप मोबाइल, हर बच्चे को जो है वो अपना अपना अलग टैबलेट दे दिया और वो स्टेप पे बैठ के जो है ना वो चीजें कर रहे हैं,
2: खुद ही दिया. और फिर हम ये भी कहते हैं आजकल के बच्चे बड़े खराब हैं, आजकल के बच्चे ये सब कर रहे होते हैं, वो टेक्नोलॉजी से बहुत हद से ज्यादा कनेक्टेड है. मतलब हम ब्लेम भी उन्हें कर रहे हैं
1: लेकिन अभी भी
0: कहीं हम ही है ना. अच्छा, मैं फिर वही आप लोग कहोगे कि अपनी ही बात करती.
1: नहीं नहीं, करनी चाहिए, अच्छी चीज है तो उसको बताना चाहिए.
0: मोबाइल फोन लेते हैं, ठीक है, टैब शैब कोई चक्कर नहीं है, पर्सनल मतलब कोई चीज नहीं होनी चाहिए. मेरा ले लेंगे, बाबा का बहुत कम लेते हैं, मेरा लेते हैं तो मैंने टाइम नोट किया होता है आधा घंटा, 35 मिनट 40 मिनट, हद है, ठीक है, ये इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. बच्चे ने
2: जनरेशन अल्फा के साथ,
0: हाँ, मेरे बेटे ने कंप्यूटर बड़ा लड़ झगड़ के, मैं मतलब उसका बड़ा उसके अगेंस्ट थी कि अभी इसको 5th क्लास में है वो, उसको कंप्यूटर अभी सेपरेटली नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सारे काम तो उस पे हो रहे हैं मोबाइल पे ना, अगर कोई स्कूल का कोई काम है कुछ है. उसके बाद क्या किया जी कि वो फिर सारा दिन वो उस पर बैठा रहने लग गया. फिर जो है ना वो मेरे मियाँ साहब को भी समझ में आई कि नहीं यार ये मतलब सही बात है, गलत हो रही है चीज़. हमने वो भी अब सुनना रहा हमने उसमें भी फिर थोड़ा सा इस तरह से कारीगरी करके ना उसको गायब किया कि उसको लगे कि कंप्यूटर खराब हो गया. हालांकि वो खराब नहीं हुआ, ठीक हो गया. उसकी रीजन यही थी ना कि बच्चा जब मुस्तकिल लगा रहेगा बाद में किसने ब्लेम करना है, बाद में माँ पे आएगा कि जी माँ ने जो है वो कुछ मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं की है. मैंने बचपन से लेकर आज तक जो है बच्चों के मुंह में निवाले नहीं डाले कभी. मैंने बच्चे मैं देखती हूँ अभी ना, मुझे बड़ा परेशानी होती है किसी दूसरे माँ को देख करके, वो बच्चे के मुंह में पकड़ पकड़ के निवाले ऐसे करके ठूस के डाल रही होती हैं कि यार बच्चा खाना नहीं खा रहा. मुझे ही होता है कि बच्चे को जब भूख लगेगी ना बच्चा खाएगा. आप इसको जब हम छोटी छोटी चीजें कोई स्नैक्स कोई इस तरह की चीजें देते रहते हैं तो बच्चे ने कहाँ से खाना खाना है, ठीक है. बच्चे को और कुछ समझ नहीं आ रही, फीडर उठा के दे दिया जी, बच्चा फीडर पी रहा है. तो जब उसने दूध भी लेना है तो वो रोटी सालन कहाँ से खाएगा. या जब बच्चा छोटा होता है 4-5 मंथ्स का स्टार्ट होता है तो बच्चे को हम स्पेशल कुछ ना कुछ पका के देते हैं. उस टाइम पे ना मैंने कभी भी बच्चे को जो रेडीमेड फूड्स आती थी ना मैंने नहीं दी. वो उस टाइम के लिए रखती थी मैं जब मैंने कहीं ट्रैवलिंग करनी है, कहीं मैंने जाना है तब. वरना जो पक रहा है ना, अभी भी मेरा 3 मंथ्स का कि 4 मंथ्स का भतीजा है, उसको मैंने कुछ दिन पहले जो है ना मूंग मसूर की दाल चिटाई और उसमें बड़े मज़े से चुस्के ले लेके खाई. और मतलब ये कि उस टाइम से जो है ना मैंने अपने बच्चों को इस तरह से लगाया हुआ है, कभी मैं पीछे ले लेके नहीं भागी. एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है, दूसरा मुझे लगता था कि नहीं यार बच्चा फिर जो है ना आदी हो जाएगा, वो फिर कहेगा अच्छा मैं कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ या मैं मोबाइल लेकर बैठा हूँ, लो जी अब मेरे मुंह में निवाले डालो. और इतने बड़े बड़े बच्चों को मैंने ये देखा है करते हुए,
2: हाँ, ऐसे होता है,
0: बड़े बच्चे होते हैं मोबाइल उन्होंने पकड़ा हुआ है और उनकी आंखें, आपको पता है मोबाइल के यूज से ड्राई आईज का इश्यू हो जाता है. मोबाइल हो गया, कोई भी स्क्रीन टाइम किसी भी तरह का है, उससे आपको ड्राई आईज का इश्यू बनता है.
2: ब्लू लाइट जो निकलती है ना वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करती है.
0: मुझे भी यही इशू है और बहुत शदीद इशू है. मैं हर वक्त अपने पास ड्रॉप्स रखती हूँ और इसका इलाज ही यही है कि आपने सारी जिंदगी ड्रॉप्स डाल दिए.
2: अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि एक तो ये कि आई इन्फेक्शन और वो आंखों का मसाइल, इसके अलावा जो नई रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जब आप ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी जो ब्रेन हेल्थ है
0: बिल्कुल
2: वो भी इफेक्ट होती है. और अब ये कहा जा रहा है कि आपकी जो हार्ट है उस पे उसके जो मसाइल हैं वो भी इससे लिंक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च.
0: तो मतलब ये कि जिस तरह आप अपने बच्चों को
2: हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं.
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. और यंग एज में कितने ज्यादा आ रहे हैं
2: पहले.
0: तो मतलब कहने का ये है कि जो माहौल आप अपने बच्चों को देते हैं ना वो उसके आदी हो जाते हैं. बाद में फिर हम लड़ रहे होते हैं यार मैंने तो ऐसे नहीं किया था मैंने तो वैसे नहीं किया था. वो कहीं ना कहीं हम ही कर रहे होते हैं और बच्चा आदी हो जाता है. बच्चे को गर्मी सर्दी का भी आदी होना, मतलब कुछ आपको घर के अपने रूल्स बनाने चाहिए और उनके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करना
1: एग्जैक्टली. और
0: खाने का टाइम है तो खाना ही मिलेगा. ये नहीं है कि भाई ये सब मैं नहीं मैं मुझे सारे कहते हैं बड़ी जालिम माँ
1: नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल।
0: अब बच्चे मजबूर होके वो खाना खाते हैं, फिर अगर मनपसंद चीज नहीं है ना तो बच्चे कहेंगे मम्मा नूडल्स नहीं मैं जल्दी देती। नूडल्स उनको मिलते हैं अयाशी प्रोग्राम होता है ना कि कोई अच्छा काम किया है तो कहते हैं जी आज मम्मा कोई पार्टी हो जाए, उसमें जाके जी ग्रोसरी करने गई हूँ ना, एक एक पैकेट तीन बच्चों का अलग अलग आएगा।
2: अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
0: मुझे मतलब लोग
2: आजकल की माओ को ऐसा
0: नहीं संभालना, आके मैंने संभालना है तो मैं उस पे मतलब वो सोच के मैं बच्चों के साथ चलती हूँ। बच्चों को मैं बताती भी हूँ कि बेटा ये नूडल्स जो है ना ये, फिर मैं कोई इस तरह की न्यूज आती है ना मैं खास तौर पर दिखाती हूँ, जो बच्चा खा रहा होता है ना मैं उसको दिखाती हूँ ये देख लो जरा अब ये होता है इससे, ठीक है। और रोटी खाने और उसकी उससे बेनिफिट मुझे ये है कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाते हैं, हाँ उनको रोकना पड़ता है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सब कुछ खाते हैं।
0: तो मतलब अपनी तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज की है इसलिए मैं शेयर करती हूँ ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि यार ये हमें करना चाहिए। कुछ रूल्स आपकी जिंदगी के ऐसे होने चाहिए जिसपे नो कॉम्प्रोमाइज, उस पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए।
2: इस पर जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं खासतौर पर माएं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है।
1: ऐसे नहीं हमने आपको करना चाहिए, ऐसे नहीं हमने आपको लेडीज लॉन्च किया, आपकी हमें बात पता था। अच्छा जी, हमारे सुनने वाले हमें सुन रहे हैं और कॉल्स भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स आप भी शामिल,
0: एक भी कॉल
1: और हम हमारी कॉल्स नहीं ले रहे,
0: तीन खवातीन इकट्ठी हो गई हैं तो हम बोल
1: बातें कर रहे हैं, हम अपनी कॉल्स को जो है वो लेना स्टार्ट करते हैं और कुछ कमेंट्स भी हैं उनको भी साथ में शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक कॉल लेते हैं फिर कमेंट्स।
0: हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, जी आले बाजी ठीक हो?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, नाम बताइएगा।
1: कौन हमारे साथ कहाँ से?
3: मेरा नाम शेरा मदगा निमकोरा चुंबी अमर सिद्धू लाहौर।
1: कोई एक मैसेज देना चाहें, आप क्या कर रहे हैं आज? झंडा लगाया है आपने अपने घर में?
3: हाँ झंडा लगाया, बच्चिया ने चंडिया चंडिया लगाई ने करा बच्चे।
1: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का,
0: थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके जी,
1: थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ हमारी एक और इंटरनी मौजूद है, इतने लेट लड़के रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा,
4: आज काफी सेलिब्रेशन भी चल रही थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: और रात को भी सर असद के साथ शो पे था।
1: अच्छा अच्छा,
4: तो थोड़ा सा आपको पता है फिर इसलिए जो है
2: जी हम समझ गए।
4: मैंने कहा काफी ज्यादा
1: मसला ये है कि ये जितने भी इंटर्नीज हैं इनके प्रोग्राम्स हमें एक और नौयत के होस्ट के साथ,
0: बिल्कुल
1: एक्चुअली आज को थोड़ा सा चेंज आपको भी हो रहा
0: है, डिफरेंट है, सब भी यही बात करते होते हैं हम बड़े बेअदब से लोग।
4: जी अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को, मेरा नाम अब्दुल रहमान नासिर है और
0: संजीदा होने को बिल्कुल नहीं
1: फील हो रहा है जैसे हम रात के 10 हुआ जाता है आपके साथ है, आपको हम बहुत सारी गजलें नज़्में और आपके कुछ अशआर भी शामिल करेंगे जी
4: बिल्कुल। और यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ।
1: अच्छा जी।
4: और अभी आपके सामने बैठा हूँ
1: जी, जी मेरा नजर आ रहे हैं इंट्रोडक्शन है। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, मैंने आपकी आवाज सुनी है, बहुत अच्छा गाते हैं,
0: मैंने भी सुना
1: है। बिल्कुल आज
0: चलाएंगे की करेंगे कुछ
1: कमेंट्स,
0: कुछ से पहले हमने इधर जाना है, ये जो फरिश्ता मेरे सर पे
1: ओके
0: डंडा आने
1: कमर्शियल ब्रेक है उसके बाद
0: निमरा कहां जा रही
2: है, ये नाम अच्छा है फरिश्ता,
0: लोग सोच रहे होंगे कौन सा फरिश्ता हमारे साथ बैठा हुआ है,
1: बस पता चल जाएगा घूमेंगे पैगामात है उनको शामिल करेंगे 0422111001 हमारे डायलिंग नंबर है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आहो ठीक है,
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: Alright, welcome back. Once again, आपको खुशामदीद कहते हैं. मैं हूँ निमरा रूज, मेरे साथ हैं सूबिया शफीक और हैं मैमूना और हैं अब्दुर्रहमान.
1: नाम याद हो गए.
2: और आपके बहुत सारे पैगाम
0: जी. प्लीज
2: प्लीज
0: प्लीज
2: हमतन गोश हूँ क्योंकि वो भी हमतन गोश है.
0: आप पढ़ने लगी ठीक हो गया. अच्छा जी, आपके मैसेजेस की जाने पड़ते हैं जो कि हमें मिल रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर. राइट
2: राइट.
0: पानी ना लाने का नुकसान है ये. अच्छा जी, गुल यासीन नाज है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी आपका. मलिक मोहम्मद आदिल हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. जश्न आज़ादी मुबारकबाद बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद. रेहाना खान हैं जी, रेहाना खान.
2: अच्छा, ये मैसेजेस हम शामिल कर चुके.
0: ये हमने कब शामिल किया?
2: ये हमने अभी थोड़ी देर पहले शामिल किए. चलिए आप दोबारा से शामिल करना चाहते हैं. नहीं पता है, नहीं न्यू पोस्ट के भी कुछ पैगाम शामिल कर लिए हैं हमने.
3: हमारी गुफ्तगु कुछ ऐसी हो गई थी कि उसमें गुम हो गई थी.
2: गुम हो गए. हमारे साथ सज्जाद अली लाडला साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वेलकम टू द शो. और सत बिस्मिल्लाह जी आयानो, अस्सलाम वालेकुम टू बैक, वेलकम टू बैक. उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और आपको सुन के. अच्छा, सज्जाद अली लाडला की जहाँ बात होती है ना, ये लड़का जो है ना उर्दू पंजाबी और वो एक अलग ही मिक्सचर तैयार कर देता है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी समझना पड़ता है.
3: डाइवर्सिटी
2: है ना, है ना. हाँ बिल्कुल, ऐसा कहते हैं तमाम सुनती समातों को सलाम जी, वालेकुम असलाम कहते हैं आरजे जुबे शफीक आपको और साथ आरजे निमरा उरूज, न्यू आरजे मैमूना को और अच्छा साथ जो लोग हैं वो कहता है सबको सलाम. तो आपका सलाम पहुंच गया. हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहमान की निम्रा आवाज बहुत अच्छी है. मेरा ख्याल है कि पहला नगमा उनसे हम अभी सुनेंगे, दूसरा नगमा उनसे जाते हुए सुनेंगे. ठीक है, तो क्या सुनाना चाहेंगे आप?
4: मेडिसिन साहब की एक मिली नगमा है, अपनी जान नजर करूँ अपनी वफा पेश करूँ, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूँ.

내 눈이 쇼 오브라 파티 이 순간 도대체 क्या मैसेज

0: करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं।
1: बहुत शुक्रिया,
2: जबरदस्त जबरदस्त जी। और अच्छा, जब मैंने अब्दुल रहमान को पहली दफा स्टेज पर देखा था ना, तो इन्होंने इसी तरह कोई गजल आपने गाई थी, तो मुझे एकदम लगा, मैंने कहा यार देखने में पर्सनालिटी है पॉप, है ना, एकदम से जब फॉर टाइम, लेकिन चॉइस जो है वो काफी डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है।
1: मैं समझता हूँ कि किसी ने तो करना है रिप्लेस, किसी ने तो इनको करना है गाना है। आजकल सारी अगर जेंजी वाले पॉप में चले जाएंगे तो इनको कौन याद रखेगा, इनका नाम कौन जिंदा रखेगा।
3: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात,
2: बिल्कुल
3: ऐसी है। 04211100101 डायलिंग नंबर हमारे साथ, देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: कौन हमारे साथ, कहाँ से? दोबारा नाम लीजिएगा।
2: अदरीस बात कर रहे हैं।
3: अदरीस, ओके ओके, क्या कहिएगा?
4: तो बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। और
3: कोई एक मैसेज देना चाहे अदरीस साहब?
4: सब सुनने वालों को जश्न आजादी मुबारक।
2: खैर हमारे
4: और आपकी पूरी टीम का मैनेजमेंट को सलूट
3: कर दिया हमने। सलूट सर।
4: और साथ में बाजा मुबारक।
3: बाजा,
2: थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि मुझे एक बाजा लेकर आना चाहिए था। खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है और खुद लेकर गई है बाजा।
3: अच्छा, बात करते हैं हम एक्सपीरियंस की भी, हम साथ में बात कर रहे हैं। ये जो आपका एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था, कैसा रहा और इसमें क्या आपको लगा कि किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप गए हों और इस प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस था?
1: जो सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ इस ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप को बाकियों से अलग करती है, वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया है इस ही स्टेज ने, इस ही प्लेटफॉर्म ने और इस ही FM 101 ने। फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक द टीम ऑफ FM 101, ऑल ऑफ देम हु आर इन लाहौर स्टेशन, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत अनएक्सेप्शनल है। लोग समझा देते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में हमने मतलब पहले भी की है इंटर्नशिप वगैरह, लेकिन आपको लाइव बिठाना और उस तरह से एक्सपोजर देना, दैट इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट।
3: एग्जैक्टली,
5: मुझे लगता है ये बड़ा हौसले का काम होता है कि आप इंटर्न्स पर इतना ट्रस्ट करके उनको जो है वो माइक पर बिठा रहे हैं और हाँ। वो ऑन एयर है उनकी,
3: और वैसे भी बोलने का मौका, एक अपनी कुर्सी और माइक। मुझे लगता है ये देना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको इतना आला जर्फ होना चाहिए, क्या कहेंगी?
2: और
3: फिर हम वापस आते हैं, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। FM 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट हो चुकी है और हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पे कमेंट्स करें और कमेंट्स करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा।

0: कोई आज आप कर रही है ना, ये आप अच्छा नहीं कर रही,
1: आपको मजा आ रहा है पैसे वसूल।
0: 04211001 हमारा डायलिंग नंबर है। और जी 14th अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन, और स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूँ जुबिया शफीक, मेरे साथ हमारे इंटरनेट वॉचिंग थे। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ कहाँ से?
2: जुबिया पी, मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी है आप?
0: मैं बिस्मा बिल्कुल ठीक। कहाँ थी लड़की तुम
2: इतने अच्छे से? आप कहाँ थी? आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही थी।
0: मैं घूम गई थी, मैं घूम गई थी, घूम गई थी, घूम गई थी।
2: हाँ,
0: बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर आया मुझे, है ना, दो साल बाद, दो साल बाद,
2: दो साल बाद।
0: कैसा गुजर है आज का दिन?
2: लेडीज लाउंज में भी मतलब मर्द हजरात आ जाते कम से कम, हमें
1: मेरा ख्याल है कि लेडीज भी मर्द हजरात के बगैर नामुकम्मल है, ठीक है, दोनों का जो है वो साथ साथ जो है ना वो बहुत गाड़ी के पहिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही
0: है। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि कोई खवातीन में से कोई खातून कॉल नहीं करेंगी।
2: क्यों आज मतलब कल, आज कल रात से ही ना डॉग्स के शो से बस ये मर हजरात आई जा रहे, उधर भी कॉल नहीं मिली।
0: बिस्मा, नौ बजे से मेरी भी आवाज कहीं मर्दों जैसी मर्दाना आवाज नहीं आ रही थी आपको?
2: मैंने आपको बड़ा मिस किया, और ये जो आपके साथ आ रही है ना निमरा, ये इतनी अच्छी बातें करी, मैं इनकी फैन हूँ भाई।
0: हर हफ्ते को सैटरडे को 11 to 1 PM। बिस्मा कैसा गुजरा आज का दिन, कोई एक मैसेज?
2: बहुत अच्छा पापा के साथ गुजर रहा है,
0: अभी भी आवाज आ रही है मुझे।
2: मैं अभी पिछले रूम में आके दरवाजे बंद करके खिड़कियां बंद करके
0: पापा की आवाज आ रही
2: है। उसके बावजूद पापा, मैं आपकी बात बताऊं, ये पापा मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा जितना ये जो बाइक से गुजरते हैं ना ये लोग, और इतनी ऊंची आवाज में ये मेरे कान आगे खराब हुए पड़े हैं, और ये जब आवाज आती है तो मेरा दिल करता है बस जूता पकड़ लो, मेरा मेरे पास ना ऐसे होना चाहिए।
0: बिस्मा थैंक यू सो मच, टाइम कम है और कॉल्स बहुत ज्यादा है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल। जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी
2: मुझे वो नगमा, अभी ये किसने प्ले किया, ये मेरा फेवरेट नगमा था,
0: निमरा रूम ने प्ले किया, प्ले किया।
1: चलो जी, थैंक यू सो मच बिस्मा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देखा, मान लिया करते हैं,
0: मैं मानी हूँ।
1: चलो जी, मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे साथ बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी मौका मिलेगा।
0: कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है हमारे साथ प्रोग्राम करके लड़की?
3: बहुत मजे का, क्योंकि आप लोगों के साथ पहली दफा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंटर्नशिप का जो हमारा पीरियड था उस दौरान हमने आप लोगों के साथ हमें मौका नहीं मिल सका, तो इसलिए मुझे बहुत
1: बेअदबी फीलिंग तो नहीं आ रही।
3: नहीं, ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है।
0: इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए।
3: अभी कुछ और लोग भी आएंगे तो मैं
1: बिल्कुल। अब्दुलरहमान, आपने चूंकि लेट ज्वाइन किया है, अब हम आपको भी मौका देते हैं, आप अपना इजहार करें 14 अगस्त के हवाले से, आपका बचपन और आपका अभी, अब ये ना कह देना कि
3: अब बचपन नहीं है।
1: हाँ,
4: मैं भी बचपन में हूँ, पहली बात है। दूसरा ये है कि बहुत कैंडिड कन्वर्सेशन चल रही है आज, और बहुत लाइवली सा इवेंट है, फील हो रहा है कि 14 अगस्त का ही शो है, वरना जो है वो थोड़ा और किस्म का होता है, लेकिन ये और आपकी कन्वर्सेशन 80% पाकिस्तान के बारे में। जब हम इस बारे में काफी पोस्ट भी आती हैं सोशल मीडिया पे, हम भी लोगों को कहते हैं कि यार ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, हमें चाहिए हम यूनिटी रखें, हमें चाहिए हम सफाई रखें, हमें चाहिए कि हम दूसरों का ख्याल रखें, हमें चाहिए हम सबका ख्याल करें, लेकिन हम अपने आप को क्यों नहीं देखते? मैं इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली समझता हूँ कि हम लोग अपने आप को एक दफा देखें कि हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। आई वुड से ऑल आवर लिसनर्स दैट जस्ट प्लीज टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट 3 to 4 थिंग्स विच यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इन द कमिंग ईयर,
3: एग्जैक्टली
4: विच यू वॉन्ट टू चेंज इन योर सेल्फ, बिकॉज जब तक हर इंडिविजुअल चेंज नहीं होगा तब तक पाकिस्तान कैसे चेंज होगा।
0: जबरदस्त जबरदस्त,
4: मेरा ये कहना है।
0: बहुत अच्छी बात
1: है, जैसे पहले भी मैंने कहा कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, ہر بندہ اپنی جگہ پر یہ چیز سوچے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اختیار دیا ہے, جس بھی ادارے کے ساتھ میں ہوں یا جو بھی میں اپنا کام کر رہی ہوں, اگر میں اس کو امانت کے طور پہ سوچوں نا تو میرا خیال ہے کہ میرے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور میرا میں شاید کہیں پہ تھوڑا سا اپنی کنٹری کے لیے جو ہے نا اس کو کہہ لیں کہ اس کی ترقی میں یا اس کی بہتری میں تھوڑا سا پارٹ ادا کر سکوں. لیکن اگر میں یہ سوچوں گی کہ یار نہیں اس اگر میں کسی جاب میں ہوں, میں نے یہاں سے بس کام کرنا ہے اور پیسے کما کے گھر لے جانے ہیں, ٹھیک ہے سیلری آئے گی خرچ کر دیں گے, تو پھر وہ ایک بس بے مقصد سی زندگی ہو جاتی ہے نا.
5: بہت اچھا.
1: لیکن اگر میں یہ سوچوں گی یار نہیں مجھے اگر اس جگہ پہ بٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے سب سے پہلے, اللہ نہ چاہتا تو میں یا نہ ہوتی, تو میں اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اپنے اس اختیار کو استعمال کروں اور اس کو بہتر, جب میں یہ سوچوں گی کہ یار یہ اختیار میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو وہ آٹومیٹیکلی میرے اندر ڈر خوف ہوگا اس کو استعمال کرتے ہوئے,
3: کہ میں جائز طریقے سے ڈسکوری والا ایلیمنٹ آتا ہے. بالکل.
1: ایک کالر ہمارے ساتھ
3: تلاش کرے,
1: میرا خیال ہے ٹائم کیونکہ ہمارے پاس شارٹ ہے اور ہم نے اس کو جو ہے نا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے.
5: اوکے اوکے اوکے اوکے
1: پلیز آپ کیری آن.
3: سو میں یہ کہی تھی کہ ہم ذات کو تلاش کریں اور اپنے اندر تھوڑا سا جھانکیں, کیونکہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی پرپز ہے, تو ہم جب اپنی ذات کو تلاش کر لیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ میرا کیا کام ہے, میرا کیا رول ہے اس دنیا میں.
1: بالکل ایسے ہی ہے. مطلب
4: میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمیں شکر زیادہ کرنا چاہیے اور کمپلین کم کرنا چاہیے, بیکاز دی ون ہو کمپلینز مور ڈز ناٹ گیٹ وٹ ہی وانٹس.
1: بالکل ایسے
4: یہ چیز تو ہم نے دیکھی ہے, ہسٹری میں بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں کہ جس نے صرف کمپلین پہ زور رکھا ہے بائی دا اینڈ آف دی ڈے ہی کڈ ناٹ اچیو اینی تھنگ.
5: عبدالرحمٰن اب فیل ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں.
4: بالکل
1: لاسٹ میرے پاس کمرشل پڑا ہوا ہے اس کو ہم آن ایئر کرتے ہیں فٹافٹ, ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں.
6: کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں, بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.

0: वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो और आज हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ इंटर्नीज मौजूद थे, 9 बजे से तकरीबन हमारा ये सिलसिला तकरीबात का स्टार्ट हो चुका और हम आपके साथ रहे और डेफिनेटली आज के पूरे दिन में मुख्तलिफ आरजेज आएंगे, मुख्तलिफ आवाज़ें आएंगी और आपके साथ आपका आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे। मैं जाते जाते, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपने बहुत सारे पैगाम भेजे, बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन जाते जाते मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले कंप्लेन की बात कर रहे थे हम कि हम कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन अपनी हर इंजॉयमेंट में किसी एक ऐसी एक्टिविटी को लाजमी तौर पर शामिल करें जो आने वाले वक्त में याद रखी जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम कोई पौधा लगा दें, वो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी का बायस बनेगा। आने वाले वक्त में हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रह जाएगी। इसी तरह आज के दिन में आप ये अहद कर लें कि पाकिस्तान पे अगर आपके पास इतनी वसाइल आपके पास मौजूद हैं, तो आप किसी एक बच्चे को एजुकेशन दे दें, कोई एक अच्छी बात सिखा जाए। एग्जैक्टली, ये वो चीजें होंगी। आज के दिन सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमने ग्रीन कपड़े पहनने हैं, खवातीन ने चूड़ियां पहननी हैं, आपने झंडे लगाने हैं, आपने बाइकों पे साइलेंसर जो है वो निकाल के बाइकें चलानी है, आपने बाजे बजाने हैं। आप अपने अमल से जो है वो किसी एक पर्सन को जो है ना वो अपनी मोटिवेशन दे जाते हैं और आने वाले वक्त में वो मोटिवेशन चलती रहती है, तो वो भी मेरे ख्याल से काफी होगी। तो ऐसा करना चाहिए ताकि आप रहे ना रहे, आपका नाम रह जाए
1: और काम भी रहे,
0: काम भी रह जाए, क्योंकि वो काम और वो नाम जब तक चलता रहेगा आप जिंदा रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: अरे जी, ये था हमारा शो। इंशाल्लाह मेरी कल आप लोगों से मुलाकात होगी लेडीज लाउंज में 11 से 1 में। और लास्ट में मैं ऑलरेडी मेरा ख्याल है बहुत सारी नसीहतें कर चुकी हूँ और एंड पे बस यही कहूँगी कि भाई ये मत सोचें कि हम कुछ बड़ा ही करेंगे तो हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। जो हमारे बस में है, इवन मैं अगर रोड पे जा रही हूँ और मैं अपना खाया हुआ कोई रैपर, कोई ऐसी चीज़ जो मैं अपनी रोड पे नहीं फेंकती, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन में शामिल होती है। मैं अपनी रोड गंदी होने से बचा रही हूँ, मैं अपने घर को गंदा होने से बचा रही हूँ, ठीक है। ये भी अगर मेरे बस में है तो मेरा ख्याल है, और ये अगर मैं अमल करती हूँ, असल चीज़ है अमल। कहना जो है ना वो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है अमल। तो प्लीज़ कोशिश करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, जो कि बाद में कहीं जाके जो है वो बड़े स्टेप्स ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अब्दुल रहमान भी इजाज़त लेंगे, ठीक है।
3: मैं बस आपकी बात को कंक्लूड करूंगा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।
2: बिल्कुल ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: All right, जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज किस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, यकीन के साथ कि आज का दिन आपका यकीनन अच्छा गुजर रहा होगा। बाजों की आवाज गूंज रही होगी और जश्न आजादी जरूर सुनने को मिल रहा होगा आपको। और अगर आपने किसी को सुबह उठ के नहीं कहा कि जश्न आजादी मुबारक, तो हमें कॉल करके आज आपने कहना। आप फोन करेंगे हमें 04221000101। दिस इज आर डॉक्स। तुसी भी कहंदे होणे हो ये जान क्यों नहीं छड़दा, राती भी इत्थे सी हुण भी इत्थे ही है। बस ये कंबल वाला हिसाब है, मैं उसको छोड़ता हूँ, वो नहीं मुझे छोड़ता। मेरा भी दिल करता है मैं सोया रहूं, उठूं तो फिर इधर आना पड़ता। एनीवेज, वक्त हो चुका है 1:38, 14 अगस्त 2026। 79 years, yes, successfully we have completed, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। कहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ, आप में से मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने ज़रूर किताबों में पढ़ा होगा कि जब यह वतन बना और कागज़ जो थे इनको नथी करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, कांटों का पेन नहीं थी, स्टेपलर नहीं थे, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लिखने के लिए पेन नहीं थे, कलम नहीं थी, बहुत सारी दिक्कत का सामना था। लेकिन आज आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलती है। यू हैव अ सेल फोन, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास और बहुत सारे ज़राए हैं, तो इसी का नाम तरक्की है। आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन ये सफ़र चलता है, और इसी को सोशल चेंज कहते हैं। इसी को इब्ने खलदून ने अपनी थ्योरी में रिफ्लेक्ट किया कि टेक्स टाइम, एटलीस्ट 4 generations, 4 नस्लें। सलाम अलैकुम। तो बड़े बड़े आरजेज हैं, रौनक लगी हुई है, हमारे पास कुछ नए चेहरे भी हैं, इंटर्न्स भी हैं, और यहाँ पे मेरे पास स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं हमारे। अभी मेरा ख्याल है यहाँ पे चले आज 14 अगस्त, मैं खुद ही अनाउंस कर देता हूँ। हमारे पास कुछ नए आरजेज भी आ रहे हैं, उनकी आवाज़ें आपने सुनी होंगी। और मेरे सामने जूबिया भी हैं और निमरा भी हैं। आप खैरियत से हैं? आपने जश्न आज़ादी के उसमें बाल कटा लिए हैं? आज़ाद हो गई हैं? मसूद साहब को बुलाता हूँ मैं। दैट्स ग्रेट। और मेरे हैं, मैं बुला के क्या ही करूँगा वैसे। उन्होंने पहले मेरे से गिला शुरू कर देना, आप आए नहीं होते। चले, और मेरे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद है जी, माइक पे बोले। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी।
2: शकीला प्रवीण,
0: सलाम करते हैं। सलाम अलैकुम
2: जी। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम।
0: वालेकुम सलाम
2: सर, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का शुक्र
2: सर, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक।
0: आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। बताएं मेरा नाम क्या है
2: सर? आपका नाम?
0: नहीं नहीं, अपना नाम। अपना नाम
2: सर, मेरा नाम शकीला प्रवीण है।
0: ओके, आपका नाम शकीला प्रवीण है, अपना पूरा तारुफ करवाएं, कहाँ से हैं?
2: सर मैं बेसिकली मुल्तान से आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। आज मैं 14 अगस्त के हवाले से आई हुई हूँ, स्पेशल प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है, तो मैं सबसे पहले मुल्तान में मेरी पूरी फैमिली सुन रही है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो,
0: खास तौर पर आपसे।
2: हाँ,
0: ओह माय गॉड, अच्छा फिर
2: जी सर, ये भी आप सुकून में होंगे, सारे लोग, मैं नहीं हूँ घर में, ठीक है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमारे साथ कौन मौजूद है जी?
3: अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: मेरा नाम किरण शहजादी है, और मेरी तरफ से तमाम।
0: आपका नाम किसने रखा था वैसे?
3: सर मेरा नाम बेसिकली रखा था मेरी मामा ने,
0: किरण या शहजादी?
3: किरण शहजादी,
0: कठाई
3: जी,
0: किरण भी और शहजादी भी एक साथ ही रख दिया उन्होंने।
3: जी सर।
0: किस वजह से?
3: मेरी जो आपी है, उन्होंने डिसाइड किया था कि किरण नाम रखना है, और मम्मा कह रही थी कि शहजादी रखना है, लेकिन दोनों को फिर कंबाइन कर दिया किरण शहजादी।
0: किरण शहजादी, कैसा लगता है अपने आप को किरण शहजादी? अच्छा। कहलवाना अच्छा लगता है
3: जी सर।
0: चले, गुड हो गया। और हमारे साथ कौन है?
4: अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अक्सा मुस्तफा है।
0: साड़ी उस्तानी आई। हाँ जी,
4: कैसे हैं आप सर, और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक।
0: मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ यहाँ पे
5: अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मैमुना चीमा है और सीनियर आरजे डॉक्स को और तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने मेरा ख्याल है पहले सुबह भी शो किया, कैसा रहा वो सुबह का?
5: अच्छा रहा एक्सपीरियंस, आरजे निम्रा के साथ और आरजे जूबिया के साथ पहली बार माइक पर बोलने का मौका मिला, तो
0: मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े बेअदब लोग।
5: तो हमारी कॉन्वर्सेशन बड़ी लाइवली हुई और मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने। और पहले हम चूँकि तीन खवातीन थी और तो वो खवातीन वाली डिस्कशन आपको पता है ना, माइक मिल जाए और खवातीन हो तो वो फिर बात
0: मज़ा इधर उधर निकल जाती है। मैं सुन रहा था आप लोगों को और जिस तरह से आप सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे और जिस तरह से आप बीइंग वेरी न्यू पार्टिसिपेट करती थी, ये आपकी नई आरजे वेलकम नहीं किया?
5: थैंक यू सो मच।
0: हाँ ये भी है, ये भी है, वो भी है। हाँ हाँ, ये इनमें से मोस्टली हैं आपके, बाकी अभी प्रोसेस में हैं लेकिन ये आ गए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा खुद ही मैं बताऊँ, हमारे पास अभी आप जल्दी सुनेंगे आवाज़ें मैमुना, जिस तरह आपने सुना जूबिया के साथ और निम्रा के साथ, आरजे मैमुना के नाम से फिर आएगी आवाज़। और आरजे हमना एंड रिजवाई, डोंट यू कम फॉरवर्ड, अपनी चेयर ले आओ आगे जी।
6: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस?
6: बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत। और आज अभी नूरजहां ऑडिटोरियम में बात हो रही थी तो वहां पर भी मैंने यही कहा कि आज का दिन बहुत सी वजूहात की बिना पर मेरे लिए बहुत इमोशनल है और इमोशनली हैवी दिन है आज मेरे लिए, तो क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और आज का दिन वैसे ही मेरी बहुत सी अच्छी और बुरी मेमोरीज भी अटैच्ड हैं इस दिन के साथ।
0: अच्छा,
6: तो
0: आज आपकी बर्थडे तो नहीं है?
6: नहीं नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है। मेरे बर्थडे के साथ सिर्फ बुरी मेमोरीज अटैच्ड होती हैं।
0: बर्थडे के साथ हैं बुरी मेमोरीज
6: काफी।
0: ओके, आपकी है मैमुना बर्थडे के साथ?
5: नहीं, लेकिन हमारे इंटर्न्स में से एक इंटर्न है बिलाल हुसैन, उसका आज बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू बिलाल, अगर आप हमें सुन रहे हैं।
0: बर्थडे टू बिलाल, सच अ टैलेंटेड गाय। हाँ हाँ,

0: भी वो बहुत टैलेंटेड बंदा है जी, और बहुत अच्छा बंदा है। आपकी बर्थडे कैसी रहती है
1: सर? मेरी बर्थडे
0: हाँ
1: मैं खुद मनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं होता।
0: क्यों?
1: वो कहते हैं आप बहुत तंग करती हैं इसलिए।
0: बात तो सच्ची करते हैं वैसे, लेकिन पहली दफा ये बात किसने आपको बताई थी?
1: ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताई
0: कि बहुत तंग करती है। कितने साल पहले?
1: ये 10 साल पहले बताई।
0: 10 साल पहले? ये अगर आप 10 साल पहले हमें मिलती हम भी बता देते।
2: सर आप बताइए, आपका यौम आजादी शुरू कब हुआ और कैसा जा रहा है?
0: मेरा जश्न आजादी गुड लास्ट नाइट भी बड़ा एंजॉय किया मैंने। यहाँ पे बैठा रहा हूँ प्रोग्राम करने के बाद तकरीबन मैं कोई 2 बजे तक, नहीं इतनी लिबर्टी नहीं लगती। हाँ 2 बजे तक मैं बैठा रहा हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से निकला हूँ, घूमता फिरता फिर मैं चला गया और फिर ना रात को थोड़ी सी पबजी खेली मैंने।
3: ये मुनफरिद सी बात निकल के सामने आई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सर।
0: हाँ फिर उसके बाद सो गया। अच्छा जी किरण आप बताएं, आपकी बर्थडे मनाती हैं आप?
4: जी सर मेरी बर्थडे जब
0: माइक पे नहीं मनाती हैं आप? माइक के पास इसको पुश करें पीछे, माइक को इसके स्टैंड के अंदर थोड़ा सा दबा दें। हाँ तशरीफ रखें प्लीज जी। बताएं किरण, हेलो बताएं आवाज
4: आ रही है? जब मेरी बर्थडे का दिन आता है तो सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली मुझे विश करती है, और किसी को वैसे याद तो नहीं होता कि मेरी बर्थडे, लेकिन आप ही को जरूर याद होता है, वो मुझे लाजमी विश करती हैं।
0: अच्छा।
4: और इसके बाद फिर
0: आपकी कब होती है बर्थडे?
4: 24 अगस्त।
0: 24 अगस्त को?
4: अच्छा
0: 10 दिन पहले ना मना लिए।
2: एडवांस हैप्पी बर्थडे।
0: केक मंगाए चले
2: सर आप मंगवाएंगे?
0: अच्छा आप लोगों ने सारा एंजॉय किया पूरा?
2: नहीं सर मैं भी थोड़ा लेट थी आपकी तरह।
0: माशाल्लाह गुड। आप फिर मंगा रही हो केक?
4: जी सर मंगवा लेते हैं।
0: चलो मंगवा, पैसे ले ले यार। माफी नहीं देनी। हाँ जी भाई साहब, व्हाट अबाउट योर बर्थडे?
5: सबसे पहले
0: अच्छी मेमोरीज है आपकी बर्थडे से?
5: सबसे पहले तो तमाम सुनने वाले को मेरा सलाम। और सर जब तो जहाँ तक बर्थडे की बात हो रही है तो मोस्टली मेरा बर्थडे सोते हुए गुजरता है।
0: बस सिंगल, वेरी सिंगल,
5: बिल्कुल सर,
0: वेरी सिंगल। उसके बाद क्या करते हो
5: सर? उसके बाद उठ के विशेस देखते हैं और बस करते हैं।
0: बस नो गिफ्ट?
5: गिफ्ट्स तो रात को मिलते हैं ना, फिर स्टार्ट मिल जाते हैं सारे गिफ्ट्स और विशेस वगैरह, फिर सेलिब्रेशन होती है जो ऑब्वियसली सबकी होती है। बस
0: होती है।
5: यस ओके
0: जी। आप बताएं आपकी बर्थडे?
6: मैं भी सो के गुजारती हूँ और गिफ्ट्स वगैरह।
0: मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ना शदीद किस्म की उस्तानी है। है ना? इसका ड्रामा भी, इसका ड्रामा वो जो था उसके भी आगाज में जिस तरह वो क्या डायलॉग था शुरू में, क्या बोला था इसने?
7: आप सबके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे थे, सबसे अच्छा
0: स्टूडेंट्स। हाँ क्या दोबारा बोल के सुनाना जरा, सुनाना सुनाओ तो सही, अच्छी लाइव प्ले भी कर देने हमें।
6: स्टूडेंट्स
0: मनाहिल बताना क्या था डायलॉग इसका?
6: ये नहीं थी, महनूर थी हमारे साथ।
0: बताओ क्या था?
6: स्टूडेंट्स था, यही था।
8: प्रेजेंटेशन की बात थी उसमें।
0: सोहेल अब्बास ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फाइनली कोई उठ ही गया यार, अच्छा चलो अच्छी बात है। हाँ जी
9: सर, एक आपने इग्नोर कर दिया है इंटेंशनली।
0: कौन सा? दो ही तो है मेरी जान। ये गलती से भाई लिखना भूल गया। हाँ जी
6: 20 जनवरी का?
0: 20 जनवरी को होती है, कैसे मनाती हो?
6: बता तो रही हूँ बस।
7: क्यों?
0: बताओ
6: सो गए
0: सो गए आगे दो रीच को वालेकुम अस्सलाम मरीज कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का
10: जी सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी वो ये कि आपने अपनी एनर्जीज को कैसे दूसरों की एनर्जीज के साथ मैच करना है तो इस हवाले से मेरा बहुत अच्छा दिन रहा और मैं मैडम जूबिया की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया
0: वाकई
10: बिल्कुल
0: मैं नहीं मानता
10: और हमारे साथ आरजे मुस्तफ़ा भी थे अभी वो कहाँ
0: मुस्तफ़ा भाग गया मुझे देख के वो भाग गया उसने कहा अब नहीं मैंने बैठना शो में वरना क्लास ज़्यादा होगी जूबिया को दें इधर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल हैं आप खैरियत से
11: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ
0: डॉक्टर जूबिया शफीक कैसी हैं आप
11: मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये थोड़ा सा माइक ये थोड़ा सा दूर करके मेरा मुंह बहुत भरा आता है
0: नहीं ये मैंने पहले दूर किया हुआ जी बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस
11: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
0: न्यू आरजेस के साथ आपका
11: बहुत अच्छा
0: आपको अभी पता चला है कि नए आने वाले आरजेस हैं
11: हां जी मुझे अभी पता चला है लेकिन मुझे कुछ लोगों की आवाज सुन के लग रहा था एक्सपेक्टेडली कि ये आरजेस होंगे
0: और रात को आपने मैसेज भी किया था यार नासिर के हवाले से बहुत अच्छी आवाज
11: बिल्कुल ऐसी है और मैं इनसे पूछ रही थी मैंने कहा ये दो महीनों में क्या कर दिया इन्होंने आपके साथ इतने एनर्जेटिक हैं आप लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं और वोकल तो अच्छा है ही लेकिन इनको पता है कि माइक पे कौन सी बात बोलनी है कौन सी नहीं बोलनी ये बहुत
0: नहीं ये खुद बड़े सयाने थे सोहेल अब्बास यार बार बार तुम कहे जा रहे हो तुम चाहते हो मेरा शो बैन हो जाए कहता कायदे आजम के नाराज ना हो जाए आज दो दफा बाजा बजा लिया अस्सलाम वालेकुम
12: जी अस्सलाम वालेकुम सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक
0: आपके बंदे ने सुबह सुबह आने दिया था आपको
12: सर वो सो रहे थे क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट थी
0: अच्छा
12: तो वो सो रहे थे
0: बड़ा अच्छा हुआ है मुलाकात ही नहीं हुई
12: ऐसे ही बस आपको पता है मसरूफियात
0: अब सोच रहे हैं नए आरजेस भी हैं पुराने सारे इकट्ठे जो है ना एक बड़ा अच्छा हुआ एक मीटिंग नहीं हुई आपकी रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हुई कोई
12: क्लास नहीं हुई
0: क्लास नहीं हुई एंजॉय करेंगे
12: बिल्कुल जरूर जरूर जरूर कीजिएगा
0: जरूर आप बताएं हाउ इज योर टुडे शो कैसा रहा
12: बहुत अच्छा था और मैं वो उस्तानी वाली बात जो थी ना तो वो मैं यहाँ पे कह रही थी आपसे ही उस्तानी बनी हुई है क्लास टीचर बनी हुई है तो जूबिया को एक चीज़ मैं भी अकेले में बताऊंगी इनके मैं उस्तानी बनूंगी ना ठीक है वो मैं बाकी बच्चों का बदला मासूम बच्चों का बदला जो है ना मैं लूंगी इनसे
0: बर्थडे के बारे में आप भी बताएं
12: बर्थडेज पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था स्कूल कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स वगैरह विश कर देते थे बट अब जो है ना वो मेरी बर्थडे आई ही बहुत दफ़ा कभी रोज़ों में कभी बड़ी ईद है कभी छोटी ईद है इस तरह से जून में गुजरी है मेरी
0: तो रमज़ान में जब आती है आप अफ्तारी से पहले केक खा लेती हूँ नहीं?
12: नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता सर अब मैं बच्ची थोड़ी रही हूँ
0: अगली दफा रमजान में आएगी ना दोपहर का लंच जिस जगह कहेंगे मेरी
12: सही हो गया ठीक हो गया
0: लेकिन आपने रोजा रखना
12: पैक करवा के घर ले आऊंगी ठीक है
0: नहीं आप रोजा रखेंगे
12: पैक करवा
0: उधर ही खिलाऊंगा
12: नहीं अब ऐसा तो नहीं हो सकता सर मैं रोजा तो नहीं खराब करूंगी इतना कच्ची नहीं हूँ हाँ अब मुझे मजा आता है अपने बंदे से जो है ना गिफ्ट निकलवाने
0: शरीफ आदमी
12: उनको याद नहीं होता बिल्कुल याद नहीं होता और दो दिन पहले जो है ना मैं हिंट्स देना शुरू कर देती हूँ कि मैंने गिफ्ट लेना है बच के कहीं नहीं जा सकते ठीक है तो मैं जबरदस्ती निकलवा लेती हूँ तो वो जो जबरदस्ती का निकलवाना है ना उसका एक अपना ही मजा
0: ओके ओके जूबिया आपने बताया कि आपकी बर्थडे कैसी रहती है
11: मेरी बर्थडे जून में आती है
0: अच्छा
12: तो नहीं मैच होती कहीं मेरी भी जून है मेरी 17 जून है
11: मेरी 29 जून है
0: अस्तग़फ़िरुल्लाह ठंडे ठंडे महीनों में पैदा होने वाले हम लोग हमसे पूछे कब दिसंबर ठंडे ठंडे मौसम में
12: ऑलवेज हैप्पी टू सेलिब्रेट डेट कौन सी आपकी दिसंबर
0: 22nd ऑलवेज हैप्पी टू सेलिब्रेट यार ठंडा ठंडा क्या गरम गरम महीनों वाले आपकी क्या है आपकी क्या है मेरा हाँ ठीक है ये आपके क्या है जून दोनों की कटे
12: सेरियन जो है वो मेरा ख्याल है वफादार होते हैं बहुत ज्यादा बहुत वफादार होते
0: हैं अपने मुंह जितनी मर्जी तारीफ करो आपकी मिलाद कब होती है आप भी ठीक हो हम इनकी लीग में नहीं है हमारी लीग डिफरेंट है आप में से कौन ठंडे मौसम में पैदा हुआ
12: 7th of October दरमियाना मौसम
13: लिब्रा
14: सर मैं
0: नहीं नहीं आप बोलो वो उसे आज मैं माइक पे ले गया
14: सर मैं तो 22 अगस्त
0: ठीक है दरमियाने
13: में मेरी बेटी की होती है
14: अच्छा अच्छा
0: क्या बात है इसलिए वो मेरा शो सुनती है ना
13: बड़ी वाली
0: रजा तुम बताओ यार आज जरा माइक के ऊपर आके बोलो कैसा लगता है माइक पे बोलना इधर आओ रजा हमें बहुत सपोर्ट करता है हमारे सारे शोज में
13: और आज आरजे निमरा ने कहा कि ये फरिश्ता है
12: फरिश्ता अमाल नोट कर रहा होता है ना वो ये नोट कर रहा है कि मैं कमर्शियल चला रही हूँ कि नहीं चला रही हूँ
0: माइक पकड़ भैया आज स्टैंड्स में भी फाड़ लो पा जाए
15: वालेकुम सलाम सर
0: कैसा लग रहा है रजा माइक पे
15: जी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और ख़ास तौर पे आपने जो बच्चों को इंटर्निस को जो आपने ट्रेनिंग दी है 2 महीनों में इनको ग्रूम किया है आज मैं सुबह से इनके 9 o'clock से इनके जॉनसन शोज़ को सुन रहा हूँ और बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये 2 महीने पहले आए थे ऐसे लग रहा है जैसे ये कई सालों से जॉनसन माइक पे बोल रहे हैं और आरजे थे पुराने आरजे थे मंझे हुए आरजे थे
0: ओके तुम भी बड़ा अच्छा बोल लेते हो नारे बड़े लांदा रहे हैं ना जल से पता दे रहा हाँ जी आप कैसे बर्थडे मनाते हैं
14: बर्थडे सर बस अपने आप को ट्रीट देते हैं फैमिली के साथ और बस टाइम खत्म हो जाता है दिन तक तो शाम हो जाती है बस
0: आपके अब्बा की कॉल आई थी वो वैसे तो नहीं लगता मुझे कैसे शादी शादी जाती होगी तो बहुत इंगेजिंग किस्म के वेरी हैप्पी क्या अच्छा जी इस वक्त हमारे साथ और भी 3 लोग मौजूद है आप में से कोई एक आगे तशरीफ ले आए आ जाओ कोई एक आ जाए फटाफट आ जाओ जल्दी आ जाओ ओके यू कैन कॉल अस 04221100101 0401100101 इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं वक्त हो चुका है 1:57 और 14 अगस्त है वंस अगेन जी सारों को कहते हैं हम इकट्ठे मिलके जश्न आजादी
13: मुबारक
0: आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो और अभी यहाँ पे कौन सा हम चलाएं जी ट्रैक
13: मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार यही है यस यही है छोटे से बच्चे की आवाज़ है
0: नहीं अपने सीनियर से पूछें चलो
13: ओह माय गॉड सर मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ
0: बताएं कौन सा
16: आपने जब आपको अपने शो रहता है
0: अच्छा चले आए प्लीज
13: काफी देर से फरमाइश हो रही थी सारे
0: लोगों हाँ हाँ प्लीज
13: जी जी जी जी जी मेरे पहले हम कुछ ला लेते हैं और सामने
16: जी जी
0: हाँ गिटार आज गिटार बजाएंगे कट के लिए आना जरूर आज लाइव चलेगा सीन ऑन है अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
17: कैसे हैं
0: आप अल्हम्दुलिल्लाह कौन है हमारे साथ
17: मैं बिस्मा उल होश से बात कर रही हूँ मैंने सोचा मैं
0: बिस्मा आपने आज फिर फोन कर दिया
17: आपको कैसे पता मैंने फिर फोन किया आप तो लेट आई है
0: मैं सुन रहा था
17: अच्छा वो भी आपने बताया होगा जरूर कि बिस्मा ने कॉल कर लिया बस सब
0: सुनाओ कैसी जा रही है आजादी आप पहले ये बताओ मेरे साथ कौन कौन बैठा है इनमें से किसी एक का नाम बताओ आरजेस को छोड़ के पुराने आरजेस को छोड़ के
17: पुराने नए आरजेस को
0: नए में से किसी एक का नाम बताओ किसी का जो मेरे साथ
17: हमना सदीकी मेमूना चीमा अहमद बट एक मिनट हमजा नासिर
13: बिल्कुल ठीक बताया और याद रखे हैं हैरानी वाली बात
17: है चटपटा बोलती है ना बड़ी
0: कौन कौन कौन चटपटा बोलती है
17: मिनाहिल
0: के मिनाहिल चटपटा बोलती
17: है
0: मिनाहिल चाट मसाले डाले हुए आवाज में कौन से मसाले कौन से वाले मसाले की फील आती है बिरयानी मसाला टिक्का मसाला कोरमा मसाला क्या बात है कोरमा मसाला की फील आती है तुम ऐसा करो ना आइंदा के बाद हमें जरा बताना इस मसाले को यूटिलाइज कैसे करना है
17: मतलब ना ये जो मेमूना चीमा है और हमना सदीकी है जब इनको मैंने सुना ना तो मुझे लगा यार ये आरजे पक्की है, बस कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रही है और कैसे फ्लो में बात करती है और कितनी मतलब क्लियर आवाज है इनकी।
9: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
2: मुझे आपकी इस बात से प्यार हो गया बिस्मा,
9: मोहब्बत हो गई।
17: अभी किसने मेरे से बात की है?
9: आप यकीन करें आपसे ही बात कर रहे हैं।
17: नहीं कौन बोल रहे हैं, मुझे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ।
2: आप देखिए आपको हमारे नाम याद है तो आपको आवाजें भी याद होनी चाहिए। अब आप खुद सोच के बताएं कि मैं कौन हूँ।
17: आप मेमूना लग रही हैं।
2: अरे यार उल्टा कर दिया ना,
17: उल्टा
2: कर
17: दिया। हमना होगी।
2: हाँ जी बिल्कुल, मैं हमना हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपको हमारे नाम याद थे। मुझे डिटेल्स याद रखने वाले लोग वैसे ही बड़े पसंद है।
17: मैं डिटेल्स याद रखती हूँ, मैं बताने आई थी मैं 25 को पैदा हुई थी, मैं भी ठंडी मौसम में पैदा हुई।
2: अरे वाह
9: सही है। अच्छा आप मेरा नाम आप बताइए मेरी आवाज को पहचान के।
17: आपका
9: जी
17: आप फिर से बात करें
9: आप मेरा नाम बताइए कि आप। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको जैसे हमना ने कहा ना कि आपको नाम याद रहे हैं, क्योंकि नाम याद रखना इतने सारे लोगों का बड़ी मतलब बात है ना ये।
17: मैं तो इमेजिन कर रही हूँ आपका फेस कैसा भी होगा।
9: अच्छा मेरी आवाज देखिए आपको कैसा लग रहा है, मेरा फेस कैसा होगा?
17: फेस तो बहुत प्यारा होगा, आप मतलब थोड़ी सी स्मार्ट होगी, हेल्दी भी है, सोच
2: मुझे लग रहा है कि आप इंटर्नीज में से कोई हैं जो आप नाम बदल के आ रहे
18: हैं। मेरा नाम लेना है तुमने?
2: नहीं मुझे लग रहा है कि आप हमें ऑलरेडी जानती हैं।
17: मेरी बात सुनो, डॉग से पूछिए जूबी आपकी।
6: इनको इजाजत नहीं मिली, इन्होंने भी आना था इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए।
0: तो
2: आप किसी दिन वैसे ही रेडियो चक्कर लगाइएगा, आपसे मिलके मिलने का बड़ा शौक हो रहा है।
17: मुझे आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे आप बताएं जब आपकी सेलिब्रेशन पार्टी होगी ना, जश्न होगा, वो कब होगा, कौन से दिन होगा, तो मैं कोशिश करूंगी।
9: सुबह 8 बजे हो गया।
0: मेरी ना पीएचडी जब मैंने शुरू की ना, वहाँ एक टीचर थी बिस्मा, छोटी छोटी बात है ना, उन्होंने मुझे कहना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं आदतन शुरू से कभी टाइम पे गया ही नहीं, मैं लेट जाता था और उन्होंने फिर ये कहना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक दिन मैं नाश्ता किए बगैर चला गया तो जाके बैठा हूँ, फिर वो कहती हैं तुम कभी टाइम पे ना आना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं कहा मैडम आज फैसला कर लें आप चाहती क्या, मेरे नाल रहना जे तो दस दियो फिर।
17: आप जो है ना
0: फिर उन्होंने क्लास से बैग निकाल दिया।
9: आप किस क्लास में थे तब?
17: पैसे ही मैं बताई थी लेट हूं। पीएचडी
2: जाके भी आप अपनी विमसी नहीं छोड़ा
17: आज जो।
0: हां जी हेलो,
17: मैं तो पदाइशी लेट हूँ, मैं पैदा ही लेट हुई थी। मैं
0: हमारे पास शकीला है, शकीला से कोई बात करेंगे, मुल्तान से है।
17: मुल्तान से है? अच्छा
0: इन्होंने आपकी कमी पूरी की है पता है।
17: क्या
0: इन्होंने आपकी कमी पूरी की?
1: हेलो बिस्मा, मैं रोजाना आप शो सुनती हूँ, आपकी कॉल आई होती है। रोज आती है, बल्कि 3-4 दफा आप करती हैं कॉल।
17: आपको अच्छा लगता है मेरी कॉल से बात?
1: बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ कि आपको इजाजत नहीं मिली, आप अपने माँ बाप को मना ही नहीं सकी, बड़ी बात है आपकी।
17: मैं बस गाना पर नहीं ना फिर जा रहा है, मैं क्या करूँ, उनको लगता है बच्चियों में बच्ची नहीं हूँ।
1: यही तो उन्हें बताना था ना, मैं बच्ची नहीं हूँ।
0: मैंने कहा था अब्बा को भेज दो।
17: अब्बा छोड़ दे, वो उन्होंने तो मुझे आज ही नहीं दिया।
1: वैसे आप जितनी कॉलें करते हैं ना, मुझे लगता था आप मना लेंगे, वैसे बड़ी बड़ा बड़ी मायूस हुई है।
17: सुल्तान की तरह सुल्तान की तरह हर चीज नहीं
18: सुल्तान जो वो मैं
17: यार आज का सुल्तान
0: वेरी गुड।
17: पाकिस्तान पे ना एक बात बड़ी फिट बैठती है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से,
1: बस तब बाज गाना करने कुछ ना मोहब्बत से।
17: बड़ी मेहनत करने वाली कौन है,
1: बस खाली मोहब्बत की तमन्ना, अमल ना करना कभी किसी के साथ, भागना ना।
0: और क्या चाह रही है तुम, जो मालिक वाला है हजम कर दिया जाए,
17: किसी के साथ भागने
0: बाकी दे दो तुम।
17: अपने पापा
0: आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन ये हाँ बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ द स्क्रिप्ट चली गई बात ये। उन्होंने फिटनेस के वाले से बात की, रनिंग किया करें, दौड़ा करें ताकि फिट रहे,
18: बिल्कुल भागना चाहिए,
0: यू शुड स्टे फिट। ओके, इसे और सेंस में नहीं ले
17: जी। वो वाला कदमा मुझे बहुत पसंद है, जानून से और इश्क से।
0: चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच बिस्मा, आपने बहुत सारा ख्याल रखा।
17: ओके, थैंक यू अल्लाह।
18: इसे बहुत लंबी कॉल हो गई थी भाई, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके।
0: शी इज अ वेरी गुड कॉल,
18: आनी चाहिए मजीद भी ऐसी कॉल, तभी मजा आएगा।
0: मेरा ख्याल है आप लोगों के शो में भी करती रहती है बिस्मा, आप लोगों के भी करती है निम्रा। जनाब मोहतरम आप कैसे हैं? हमारे साथ एक और आरजे मौजूद हैं, और हम बड़ा साइंटिफिक किस्म के प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, और बड़ा रिसर्च बेस्ड होता है, और इंस्टा पे इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं। मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं क्यों है। कितने हैं? ओह माय गॉड, पीआर नहीं ना आती। इधर आओ ना माइक के ऊपर आओ, आप भी माइक के ऊपर हैं।
19: आया बात
0: नहीं, नहीं आप इधर आ जाओ ना, जरा इधर बट साहब ये माइक में
19: पूरा है।
0: आप लोगों के पास कौन सा माइक है? आप ये वाला माइक लें ना, ये वाला माइक अपने पास करें ना, और ये वाला इधर दो। बड़ा कैजुअल से चल रहा है, और कैजुअल से ही रहना चाहिए। सुनने वाले सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कैजुअल है, और मेरा शो वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सुनें तो कैजुअल ही होता है। रहमान है, ज़िया है, उनके साथ भी जब चलती है कैजुअल सी डिस्कशन चलती है, बिकॉज़ आई वांट यू टू फील कि कोई वो उस तरह का स्क्रिप्टेड या वो नहीं है, एक्चुअली होता भी नहीं है। अक्सर मैं शो करते कह भी रहा होता हूँ कि हाँ यार मुझे कॉफ़ी पिला दो, आवाज़ आ रही है, ये कर दो वो कर दो, ताकि जो है ना कनेक्शन अच्छा बना रहे।
20: यस,
0: सो कनेक्शन बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है,
20: बहुत ज़रूरी सर, बहुत ज़रूरी।
0: अस्सलाम वालेकुम सर, हम कैसे हैं आप?
20: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक सर, आप बताएं क्या खैरियत से?
0: आपने और मैंने मेरा ख्याल है एक दो शो किए हैं,
20: दो तीन गालबन हमने इकट्ठे किए हैं, एक आपकी बर्थडे पे भी हमने एक प्रोग्राम इकट्ठे किया था।
0: बर्थडे, मेरी बर्थडे पे तो इस दफ़ा टेर ही लग गया, बहुत मज़ा आया,
20: लग रहा था कि किसी सेलिब्रिटी की जो है फिर मनो मन पे लग रहा थी।
0: मैंने दो चार खुद से लख लिए, मैं कहा जरा फील आनी चाहिए ना, वीडियो प्रॉपर होनी चाहिए, पूरे ऐसे ड्राइंग रूम के अंदर नजर आ रहे हैं गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स, और खाली मैंने फिर क्या किया, अंदर से गिफ्ट निकाल के लेदर रखे, उनके डब्बे लेदर रखे, फिर फील आनी चाहिए लेदर लेदर से, फिर इतने ज्यादा हो गए, फिर मैंने उनकी वीडियो बना।
20: आपने खुद को भी कोई गिफ्ट दिया? खुद को क्या गिफ्ट दिया आपने?
0: बस वो नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू। ओके, हम आप बताएं
20: जी सर,
0: हाउ इज योर आजादी?
20: सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, और रेडियो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा तमाम किया, और आज बकायदा जो तकरीब थी वो बहुत ही अच्छी रही, और अभी दिन जो है बड़ा अच्छा जा रहा है, और बहुत खुशी हो रही है नए चेहरों को, नए लोगों को देख रहे हैं, और आपका ये इनिशिएटिव जो है इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और मुझे इन सबसे इंटरेक्ट करके, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वो लग रहा है कि जो आप चाह रहे थे वो चीज़ जो है हो गई है। मतलब
0: मैं चाह रहा था आप भी आते ट्रेनिंग में,
20: सर मैं
0: आप बस एक दो दफा आए, आप नहीं आए।
20: मैं सर बीच में गायब गए एक दो हफ्ते आया,
0: नहीं, नहीं आप आते तो आपको रगड़ा लगाते।
20: सर थोड़े रोजगार के मामला आपको पता ही है जो है वो टाइम जोन से टाइम जोन में,
0: और हम हमारा बड़ा टैलेंटेड आरजे है और ग्रो कर रहा है, माय बेस्ट विशेस ग्रो फॉर यू। पैदा कब हुए थे
20: सर?
0: 1997
20: मैं
0: 97 आप लोग खाएं खाएं प्लीज, खिलाएं खिलाएं सारों को खिलाएं, इसे समोसे बहुत पसंद है। हाँ शी लव्स, कल पता चल गया देख रहा था कौन कैसे खा रहा है समोसों को, कौन किस निगाह से देख रहा है। हाँ हाँ मैं नोटिस कर लिया था मैंने। अच्छा जी हमारे साथ सीरप भी आई हैं।
21: आज अरहम की बात से मुझे एक शेर याद आया जो इन्होंने कहा कि वो
19: कमाना भी होता है, रोजी रोटी के भी वो होते हैं। तो आप लाहौर से हैं या?
20: मैं लाहौर से।
19: लाहौर से, अच्छा फिर यहाँ पे फिट नहीं होगा, मगर जो क्योंकि लाहौर में बहुत सारी आबादी ऐसी है जो दूसरे शहरों से आए हैं और पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। तो शायर कहता है कि हम मज़ाफात से आए हुए लोगों का मियाँ, हम मज़ाफात से आए हुए लोगों का मियाँ, मसला रिस्क का होता है मोहब्बत का नहीं।
20: बड़ी गहरी बात कर दी आपने।
0: हाँ, अगर कोई जानने वाला सुन रहा है इनका तो समझ जाए वो क्या कहना चाह रही हैं। हाँ जी, अच्छी नौकरी है, नहीं है तो हासिल करें, बिजनेस एस्टेब्लिश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कर लें, मसला मोहब्बत वाला नहीं है सर।
20: सर मसला कुछ और है सर। अमूमन जो पहली मोहब्बत भी होती है वो इंसान को उन्हीं दिनों में होती है जब इंसान कुछ नहीं होता, जब वो कुछ करना चाह रहा होता है मोहब्बत हो जाती है, और उसके बाद फिर वो मोहब्बत नाकाम हो जाती है और इंसान फिर अपने रिस्क के लिए
0: तेरे अंजाम
20: पे रोना है।
0: जी मीरब, अस्सलाम वालेकुम।
21: वालेकुम अस्सलाम।
0: मीरब अपना नाम बताए।
21: ये कैसा सवाल है सर।
0: वेरी गुड, बताएं।
21: मेरा नाम मीरब है।
0: एंड पूरा अपना बताएं, आजादी आपके कैसी रही है एंड हाउ वाज एंड एवरीथिंग।
21: 14 अगस्त का आगाज तो
0: हम जरा साथ साथ समोसे खा रहे हैं, आप लोग अगर सुन रहे हैं आपके इर्द गिर्द कुछ समोसे की दुकान है जरूर मंगाइए और हमारी तरफ से खा लें। और जश्न आजादी आपने सेलिब्रेट करनी है और पैसे
21: तो
0: हम जरा साथ साथ समोसे खा रहे हैं, आप लोग अगर सुन रहे हैं आपके इर्द गिर्द कुछ समोसे की दुकान है जरूर मंगाइए और हमारी तरफ से

0: आपके साथ और तमाम इंटर्नीज के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है.
1: How does it feel? Like, इतने लोगों में बैठना और शुरू में आना, जिन लोगों को आप पहले उस तरह से नहीं जानते और जिनके साथ उस तरह से पहले गपशप नहीं थी, उन लोगों के साथ अब बैठना, इतना फ्रीली बात कर लेना,
0: अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे बैठकर ऑनर फील हो रही है आपके साथ शो करना, और बहुत अच्छा लग रहा है.
1: आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन कैसे होती है?
0: सो के मोस्टली.
1: ओके, वेरी गुड. बहुत ही रुखा रुखा बोला आपने. ऐसा कर रहे हैं पढ़ाए. चलो ऐसी, चलो बोलो मिलाहिल को दे. वैसे नाम में क्यों लिया? अस्सलामुअलैकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: कौन है हमारे साथ?
2: मरीहा बतूल.
1: कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: नहीं, मैं यहाँ ही शो में.
1: अच्छा, यहाँ शो में है. मैं सुनते कॉल है. आप बताइए जश्न आजादी के बारे में.
2: सर अच्छी गुजर रही है और अभी तक सो के लेट.
1: मुझे तो अभी भी आवाज से लग रहा सो रही है.
2: नहीं नहीं सर, एक्चुअली नींद ही ना पूरी हुई, बच्चों ने उठा दिया.
1: आपके बच्चे?
2: नहीं नहीं नहीं सर.
1: अच्छा,
2: ऐसा नहीं है. बच्चे जो है ना वो बाजा बजाते हैं.
1: अच्छा, बाजा बजाने वाले बच्चे
2: तो डिस्टर्ब
1: कर गली मोहल्ले में.
2: हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है.
1: ओके, तो वो गुजरते हुए कान के पास बाजा बजा के जा रहे थे?
2: नहीं, वो दूर भी बजे तो ऐसा लगता है कान के पास बजाया है.
1: बहुत तेज है आपके कान. आप तो दूर की बातें सुन लेती हैं.
2: सर मुझे लगता है कि जो पास में भी बात कर रहा तो मुझे सुनाई नहीं देती. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है. बार बार
1: बातों में तजाद नहीं है?
2: तजाद मतलब
1: कॉन्ट्राडिक्ट कर रही
2: है. सर डिपेंड करता है.
1: आप कुछ तजाद का मतलब नहीं आता.
2: सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ.
1: अच्छा, तो जश्न आजादी में फिर आप नॉर्मली हाउ डू यू सेलिब्रेट इट?
2: सर कजन्स के साथ बैठ जाते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, बस यही हो जाता है, फन हो जाता है थोड़ा.
1: फन किस तरह करते हैं?
2: सर कजन्स जब बैठ जाए तो फन हो जाता है, गॉसिप्स हो जाती हैं. 14 अगस्त तो बहाना बन जाता है ना.
1: गॉसिप कर लिए.
2: नहीं सर, चुगली और गॉसिप में फर्क है. देखिए
1: दोनों में आज फर्क बताएं. वैसे
2: चुगली ये है कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है. गॉसिप ये है कि आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई मुझे ये पता है तुम्हें बता दो.
1: गॉसिप की डेफिनेशन ये मैंने पहली दफा सुनी है, जरा मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए.
3: वन ब्रेन टू अनदर ब्रेन.
1: मुझे जरा गॉसिप की डेफिनेशन पे क्लैरिटी चाहिए होगी. कौन क्लियर करेगा बताओ?
0: डेटा ट्रांसफर डे.
1: अच्छा, गॉसिप डेटा ट्रांसफर करना,
0: किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन.
1: ई स्पेल करना फिर क्या हुआ?
2: वो तो ये हुआ ना कि कोई राज बता दिया.
0: हाँ.
2: कुछ मतलब मजे का बता
0: और अगला बंदा आपका जानने वाला होना चाहिए. हाँ. वो टी स्पेल होती है. वो आप किसी अननोन के साथ नहीं रह सकते.
1: गॉसिप में और चुगली में कोई फर्क नहीं है मेरे नजर.
2: सर चुगली, चुगली देखिए नाम ही आप देखें, चुगली क्या चुगली मतलब इसमें ना
0: नेगेटिव
2: फन हो रहा है.
3: सर डिस्कशन करना किसी के बारे में.
2: सर गॉसिप पॉजिटिव है.
1: आपकी नींद खुली हुई मुझे पता चल रहा है. कोई बात नहीं, छू के
0: सर वायरल कंटेंट देना चाह रही हैं.
2: नहीं सर मैं
1: वायरल कंटेंट नहीं.
2: जो बात है सीधी
1: कि अगर अरीश को देना, अरीश लिटरेचर से थोड़ा सा हमें आगाह करती है.
0: जी सर.
1: जी अरीश बताएं, इनके जो अल्फाज थे इनके मानी और मफहूम क्या है?
0: अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर रही
1: हैं. हाय हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत और शुस्ता उर्दू का इस्तेमाल है आपकी.
0: ये दोनों जो है वो एक ही चीज के दो नाम हो सकते हैं.
1: हो सकते हैं
0: मतलब आप किसी के बारे में बातचीत कर रहे हो और आप मतलब ऐसे कि किसी की दिल आजारी ना हो.
1: व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉसिप एंड बैकबाइटिंग?
0: नहीं, गॉसिप और बैकबाइटिंग में क्लियर डिफरेंस है कि बैकबाइटिंग जो है आप किसी के पीछे उसकी वाकई बुराई कर रहे हो जो उसके सामने आप नहीं कर सकते.

0: और गॉसिप तो ऐसा है कि आप जो है वो उसके सामने भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उस तरह से बुराई नहीं होगी।
1: गॉसिप सामने होते हैं,
0: आई गेस
2: जो भी बात कान में की जाए ना वो गॉसिप है।
0: नहीं, गॉसिप तो मेरे ज़हन में किसका डिफरेंस है, जो गॉसिप है उसका पर्पस है टू क्रिएट प्लेजर। आप वो चाहे किसी की बुराई करके कर रहे हैं, चाहे अच्छाई करके कर रहे हैं, वो गॉसिप है। लेकिन जो बैक बाइटिंग है, आप मैं और अरीज मिलके किसी की बैक बाइटिंग करते हैं तो हम
1: वो ओनली नेगेटिव है,
0: वो ओनली नेगेटिव में होती है।
1: लेकिन वो करने वालों के लिए जिसके बारे में किया जा रहा होता है वो उसका क्या इम्पैक्ट लेगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और टी स्पेल करना वो तो खैर आपने बता ही दिया मुझे। और उसके अलावा चुगली जो होता है, चुगलियों का तो बड़ा मजा आता है, और खास तौर पर घर में जो बहनें होती हैं वो सबसे ज्यादा चुगलियाँ करती हैं, और मुझे सबसे ज्यादा मार मेरी बहनों ने पड़वाई है। और चीज है चुगली, और सलाम वालेकुम कौन है हमारे साथ? हेलो, कौन बोल रही है?
3: फायदा बात कर रही हूँ।
1: फायजा कहाँ से बोल रही हैं?
4: साजिदा।
1: साजिदा,
3: हाँ जी सर, कैसे आप?
1: जी मैं ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मजा आ रहा है शो का, जबरदस्त।
1: साढ़े पैसे पहुंचा देना।
3: वो तो आप पहले पैसे, वो क्या कहते हैं भाई, वो सारे यहाँ के पैसे लेके काम करते हैं।
1: आपका नंबर है ना, साजिदा का नंबर है किसी के पास? अब यार इन्हें ना जैस कैश का भेज देना, पैसे भेज देना। 500 हो गया, आगे बोलें।
3: सर आपके अकाउंट में पैसे भेज दूं?
1: मैं अकाउंट में पैसे नहीं लेता, आधार हो गया। आगे बताएं। जी जी बताएं साजिदा
3: जी,
1: चले कुछ गा के सुनाए जल्दी से।
3: अच्छा जुबिया शफीक है?
1: हाँ है, बिल्कुल है। जुबिया आज बड़ा वो ग्रीन ड्रेस पहन के, झुमके पहन के आई हैं।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: साजिदा आइंदा जब जाओ ना इनके पास क्लिनिक पे, तो 1000 रुपया जुबिया इनसे ज्यादा लेना तुमने, 1000 रुपया ज्यादा लेना, ठीक है?
0: डन हो गया,
3: चलो ठीक है। जुबिया शफीक कैसी हैं आप?
0: प्यारी हूँ। मेरे शो में कॉल तो नहीं की, मैसेज भी नहीं किया, कॉल तो आरजे डॉक्स के शो में कर दी।
3: नहीं नहीं आप उठा नहीं रही थी, कॉल जा रही थी, उठाई नहीं थी आपने।
0: ओ ओ
3: मैं ट्राई करती रही। मेरा अरूज है, जितने भी आरजे सबको मिलता है उसे बहुत ज्यादा सलाम लिखो।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम।
3: और मैं निंद्रा से या जुबैर शरीफ से ना एक मिली नगमा सुनना चाहूंगा।
0: बस दुराना यहाँ सारों को।
1: साजिदा तुमने सुनाना था, तुमने सुनाना था, सुनाओ।
3: मैंने सुनाना है।
1: हाँ सुनाओ सुनाओ।
3: चल मैं जुबैर शरीफ से सुनूंगी।
1: वो तुसी अलहदा सुन लेना, साढ़े ते टॉर्चर ना करो।
0: साजिदा मेरे प्रोग्राम में आना, मेरी टाइमिंग में फिर सुनाऊंगी। हाँ मंगल को आना, मंगल को सबके सामने नहीं दौड़ जाएंगे सब। वो भी ऑफ एयर कॉल पे सुनाऊंगी।
3: चलो मैं सुनाती हूँ। जीवे जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।
1: चलो इकट्ठे मिलके गाते हैं, तुमसे नहीं गाया जाना। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान।

0: थैंक यू वेरी मच साजिदा, हम सारों ने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पे समोसा पार्टी चल रही है और हम
1: यहाँ पे समोसा खा लें,
0: ट्रैक लगाते हैं, आप जो है ना समोसा खा लें। सो वक्त हो चुका है 2:22 और आज है जी 14 अगस्त 2026 अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग FM 101 लाहौर के स्टूडियो से। डोंट गो एनीवेयर, विल कैच यू बैक आफ्टर दिस।

0: ऑन एयर बोलो, मुझे नहीं पता कैसे वेलकम करते हैं, मुझे बताएं कैसे करना है। हाँ माइक पे बोलो ना। नहीं मुझे नहीं पता कैसे करते हैं।
1: क्या
0: क्या, क्या बोल रहा है?
1: नहीं नहीं मुझे बताएं।
0: हाँ लाइव है हम।
1: ठीक है, वेलकम बैक लिसनर्स, आप देख रहे थे,
2: सुन रहे थे
1: आप सुन रहे थे FM 101 और मैं हूँ मरीहा बतूल और हमारे साथ आरजे डॉक्स है, बल्कि आरजे डॉक्स के साथ हम हैं।
0: अब आपने सारों का नाम लेना है,
1: ठीक है,
0: सारों से बात करनी है, पूछना हाल अहवाल। आपके साथ
1: हमारे साथ हैं मिनाहिल सलीम। मिनाहिल कैसी हैं आप?
3: मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं।
1: मैं भी बिल्कुल ठीक।
0: आप बैठ कर गॉसिप कर रही थी, चुगली कर रही थी, क्या कर रही?
3: कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे
4: थे। यही कह दो, समोसा खा रही थी।
0: समोसा
3: वो भी मैं नहीं खा रही, मेरी ही खा रही है।
0: मिनाहिल आपने बताया नहीं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस और हाउ अबाउट द सेलिब्रेशन?
3: सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ बातें करके, और 14 अगस्त तो फिर जाहिर सी बात है मिली नगमे सुन के एक अलग ही जोश आ जाता है, एक जज्बा। बिल्कुल अभी करते हैं ना आपसे बातें।
0: ज़्यादा जोश आ रहा है?
3: थोड़ा बहुत आ रहा है।
0: थोड़ा ले आके दियो ना। तो एक कभी कान तोड़वा ले ये ताड़े। बोले
3: जी हाँ। क्या बोलूँ?
0: बोले
2: कोई बात शुरू कर दो।
0: अपनी बर्थडे का किस्सा सुनाओ।
3: बर्थडे सो के मनाते हैं।
0: मतलब आपको कैसा लगा? एक मेरा सवाल है जो मैं अक्सर रहमान से पूछता हूँ, वो मैं आपसे पूछ लूँ?
3: जी जी पूछे।
0: आपको कैसा लगा था दुनिया में आके?
3: सर ये तो मुझे भी नहीं पता।
0: रहमान इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दे। हाँ, हाँ। देखा अरीज को पता, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था दुनिया में। मैं किधर कितने आ गई हैं। अरीज आप बताओ आपको कैसा लगा था?
2: सर्दियाँ बिल्कुल 180 डिग्री की ओर ले गई है बात।
1: ये दुनिया मुबारक रहे जाहिदों को।
0: ओए होए होए होए होए, जाहिद नाम वाले या माल वाले?
3: दोनों हो सकते हैं।
0: ठीक है, ओके जी, अभी कॉल लेते हैं और आपने बात करनी थी सारों से।
1: सर कर रहे हैं सबसे बात कर रहे हैं।
0: मेरे साथ बैठी
1: हैं, मेरे साथ आपके साथ हमारे साथ बैठी हैं मीरब फैसल।
2: आपके साथ हमारे साथ
1: सबके साथ बैठी हैं, सब इकट्ठे बैठे हैं जी। मेरे बाप बताएं,
0: इनसे पूछे कि रात को या दिन में कहीं इस तरह का कोई अच्छा सा इवेंट, कोई फनी एक्टिविटी, कौन सी क्या?
1: हाँ कुछ ऐसा बताएं जो इंटरेस्टिंग हो आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ है या कोई इंसिडेंट या कोई एक्टिविटी जो आपको बहुत फन लगती है।
0: She's your class fellow, right?
1: Yes, sir.
0: And she's also your class yes, sir. fellow. आप तीनों एक दूसरे की fellow हैं।
1: जी जी।
0: Okay.
1: वो अलग बात है, यहाँ के interaction ज़्यादा हुआ। Yes, sir.
0: Class fellows हैं और interaction यहाँ पे हुई है।
1: हाँ, हम दोनों का शुरू से ही था, उसके साथ ज़्यादा हो गया।
0: तो जाके फिर खत्म कर दें।
1: नहीं नहीं सर।
0: ठीक है। Mic किधर करें? जी। पूछे ना।
1: पूछे बताए ना कोई इंसिडेंट, कोई इंटरेस्टिंग बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं।
5: सबसे इंटरेस्टिंग ये थी, रात को मैंने मीनारे पाकिस्तान जाकर फायरवर्क्स देखी और वो मंजर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान से तारे बरस रहे हों और मैंने बहुत इंजॉय किया।
3: रश देखे घबराई तो नहीं?
5: नहीं मैं रश में थी नहीं एक्चुअली, वहाँ पे मैं घर की छत से मैंने देखी। तो
1: आपके घर की छत से मीनारे पाकिस्तान नजर आता है? वाओ
5: क्लियर, मीनारे पाकिस्तान भी नजर आता है और बादशाही मॉस्क भी नजर आती है।
1: अच्छा तो आप तो कभी मर्जी देख सकती हैं।
0: नहीं एफिल टावर भी नजर आता
5: है। इतनी बड़ी बात है,
0: एफिल टावर भी आता है?
5: नहीं।
0: अच्छा।
1: तो ये मुझे बताओ मीरब के कोई ऐसी एक्टिविटी जो तुम कभी भी कर सकती हो, इंटरेस्टिंग हो, फन हो।
0: गॉसिप?
1: हाँ गॉसिप नहीं,
5: टी स्पिल कर सकती हूँ अपनी दोस्त के साथ।
1: चलो कोई टी स्पिल करो।
0: आइए आइए, टोला ला कितने है? ब्रो
2: चमकता हुआ सर,
0: क्या बात है, हैवी मंगाते है ना यार, शुक्र लगाते हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ढोला तो लाभ यार के तुम थोड़ी देर के लिए आज चेक करो बाजे की बजाय ना हम ये करके देख,
2: आज तो हर जगह होंगे मिल जाएंगे, पूरी जिंदगी याद रखेगा,
0: उससे पता नहीं चला हुआ क्या। अच्छा ओ माय गॉड, अच्छा जी अभी सारों ने, अब ये जो फायरवर्क देखा मीरब ने, इसके हवाले से सारों ने एक एक क्वेश्चन पूछना मीरब से, अब आप पूछेंगे
6: सवाल पूछना प्लीज,
0: कुछ भी। हाँ फायरवर्क, या उन्होंने कहा आसमान से सितारे बरस रहे थे,
3: क्या आपने सितारे देखे थे बरसते हुए?
6: हाँ अपनी आंखों से देखे।
1: हैरत की बात यह है कि आपको लाहौर के आसमान से टूटते हुए सितारे
6: है ना, सिर्फ 14 अगस्त को ही आते हैं साल में एक दफा आते हैं।
5: आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त जब आप तारे देख रही थी?
6: असल में वो पूरी 8 मिनट की थी फायरवर्क्स, पहले 2-3 मिनट तो मैंने बस वीडियो बनाई, बाद में फिर मैंने ऐसे बस स्टेयर किया आसमान को कि बस सब किसी तरह मैं ये जो नजारा है ये अपने दिल में बस मैं बसा लूं किसी तरह।
1: फिर बसा लिया
6: अभी तक है
3: क्या ये वाकई इंटरेस्टिंग था?
6: बहुत ज्यादा।
0: ये किस किस्म के सवाल है
6: किसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता?
0: सवाल तो सही पूछो।
7: आपने सितारों से बात नहीं की थी फिर?
0: ये सवाल है ना, ये है सवाल,
6: इसका जवाब आप दे दें प्लीज।
0: मैंने देखे ही नहीं हाँ जी बताएं, आपने सितारों से बातें की?
6: नहीं।
0: क्यों नहीं?
6: बोले ही नहीं।
7: फिर सितारे देखे नहीं आपने?
6: इंटरेस्टिंग, इसका जवाब आप खुद ही दे दे
7: मैंने तो भी देखे नहीं है, जब देखूंगी फिर दे दूंगी।
2: क्या सर, एक शेर याद आया मुझे, इसको गुलाम अली साहब ने गाने में भी एक किया,
0: सितारे देखने के लिए ना बैरूनी ताकत उठा के ले जाएगी ऊपर फिर उसके बाद वापस नहीं आओगे ये भी याद रखना
2: चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला,
0: आए हाए
2: मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला।
0: वाह वाह क्या वाह वाह वाह वाह वाह वाह। आप भी पूछें इनसे।
8: आपने फायरवर्क्स देखे मीनारे पाकिस्तान घर की छत पर खड़े होकर नहीं आप अकेली थी या सारे फैमिली मेंबर्स थे? कौन कौन था साथ साथ? अम्मा अब्बा थे, बहन भाई थे, कजन्स थे?
6: जी मैं पूरी फैमिली के साथ देखने गई थी, अम्मा बाप
8: गई थी घर के छत पे
2: बहुत मुश्किल काम है
8: सही है
0: कुछ सीढ़ियां थी या पौड़ी ला के चढ़ी
8: अच्छा पहले से सोचा हुआ था, पहले से पता था कि ज़ाहिरा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अनाउंस भी हुआ था कि लिबर्टी चौक भी रात को वहाँ पे भी बड़ा रश था और मीनारे पाकिस्तान भी और हर जगह लाहौर पूरा जगमगा रहा था, क्योंकि मैं रात को खुद तकरीबन 1:45 तक लाहौर की सड़कों पर ही थी तो मैं एक्चुअली लिबर्टी,
6: मेरा सवाल है आपने कहाँ देखी?
8: मैंने ना लिबर्टी जाना था एक्चुअली, लेकिन वो जेल रोड पे इतना ज़्यादा रश था कि वो ट्रैफिक में बिल्कुल स्टक, हम जब फंसने लगे ना फिर हमने कहा नहीं वापस चलते हैं, फिर हम अनारकली गए, हमने खाना खा लिया, हमने कहा आज़ादी मुबारक।
0: क्या अच्छा जी, अभी यहाँ पे कोई अरीज कुछ कह रही है, कौन सी गेम है, गेम बताए
1: सर? वो अल्फाबेट्स वाली गेम होती है जिसमें आप ए से,
0: मैं अल्फाबेट से फिर मैं पूछूंगा फिर सारे उससे को गाना पाकिस्तानी सुनाएंगे।
1: ये भी हो सकता है,
8: इतना मुश्किल ना करें, लिमिटेड ना करें।
7: ओ बता क्यों आपको गा लेते हैं दूसरों का ख्याल करें
0: क्या कह रही
8: हैं आप तो गा लेते दूसरे के
0: चलो
8: कोई भी बात कोई भी चीज
0: ठीक है ओके ए बी सी डी जिससे भी जो है ना, और हाँ पाकिस्तानी गाने हूँ मैं पहले बता रहा हूँ, खबरदार शो समेत सब कुछ बैन हो जाएगा, सब बैन हो जाएगा। और आप कोई भी बात, कोई गाना, कोई अच्छी बात, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है स्टार्ट करें।
2: एक शेर सर आप दें, एक शेर आप दें उसके आखिरी लफ्ज़ से फिर।
8: हाँ ये भी हो सकता है,
2: बैतबाजी तो हम नहीं करेंगे लेकिन ये है कि आप एक शेर
0: जो तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।
2: होता अलिफ
0: अलिफ मरीहा
9: अलिफ।
0: अगली बारी आपने खुद से ट्रांसफर कर दी है जिसे दिल करे, ठीक है। एक दो तीन
7: अच्छी बात करूंगी मैं एक अच्छी बात एक अच्छी बात
0: आगे
7: सर एक अलिफ से एक अच्छी बात ये है कि हमें जो प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में नहीं है उनको ज़बरदस्ती सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें, दुआ करें और जो आप कर सकें जो आप अच्छी बात अच्छी बात सर अच्छी बात।
0: चलो आगे किसकी बारी,
7: आगे है शकीला पर। चलो
8: आखिर में क्या आया आखिरी जुमला,
2: हाँ
7: अपने पे छोड़ दें,
2: दें नून नून से
0: बड़ी ये होती है वैसे
2: दें दें
0: अच्छा दें का
8: नून
0: नून नुक्ते के बगैर वाली नून जो है उससे बात शुरू करनी है
7: उससे बात शुरू करनी है
0: हाँ
7: नुक्ते के बगैर वाली नून
0: हाँ अकेले आप दोनों इकट्ठे कर लें
2: नून से कर लें
7: नून से कर लें
2: हाँ नून से कर लें
7: नाम पूछो हमसे दिल का किस्सा
0: होए होए होए
7: ना पूछो हमसे दिल का किस्सा वरना यूं ही दिन में तुम
0: तारे देखो
2: आप कुछ बना रहे बैठे बैठे बना रहे
0: वरना दिन में तुम तारे देखो
8: उन पे आमद हो रही है सर मुझे लग रहा है उसने ऑन स्पॉट बोला है उसने आमद अभी आमद हां
0: चलिए ना पूछो
7: ना पूछो हमसे दिल का किस्सा साहब अच्छा वरना तुम यूं ही दिन में तारे देखते रहोगे
0: देखते रहोगे चले जी ये सारे हैं वो पीछे भी बैठे हुए हैं किसी को भी बारी दे सकती हो ये शहीर भी खड़ा हुआ है इधर वो अबू बकर भी है उमर भी आया अबू बकर आ जाओ अबू बकर आ जाओ आ जाओ कमान कमान बड़ी ऐसे कोई बात
10: अस्सलाम वालेकुम सर
0: पांच तक गिनना अगर ना किया ना ना किया ना तो यार सजा लब जानी कोई
10: बड़ी एक है क्या स्टार्ट करूं
0: दो कोई किस्सा कोई कहानी कोई अच्छी बात
8: कोई शेर कोई लगमा कुछ
0: एक दो तीन
10: याला की
0: चार
2: याला मतलब
10: एग्जैक्टली यही हुआ लेकिन नहीं बचा पांच हो गए हैं आप पनिशमेंट बता दो
0: आप पनिशमेंट आप
2: आपने हार मान ली इसका मतलब है
10: अब बड़ी ये से क्या स्टार्ट करूं
2: कुछ भी ये से कर लो ये से
0: बस हार मान लिया आप कुछ पनिशमेंट सोच
2: चलें फिर इसकी पनिशमेंट
0: चल
10: आई विल ट्राई
0: हां चलो पांच
2: लेकिन सर ये हमारे ऐसी पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सामीन सुन सके ना कि देख सके क्योंकि जो रेडियो देख तो कोई सकता नहीं
0: गाना आता है तुम्हें
10: गाना कौन सा गाना गाते हुए पुशअप्स करूं जो
0: ये तो बढ़िया से भी मुश्किल काम कर दिया
10: अब मैं पुशअप्स करूं या पहले गाना गाऊं
2: और गैस सोचू कौन सा गाना है
8: सराई की गाना गाएं शकीला आपको पहला
2: हां जी
10: हां बैकग्राउंड
7: मैं क्या कहूं मुझे तो खुद नहीं आते सराई की गाने
2: इस तरह से क्या मुराद है आपका
8: नहीं वो जो है
10: मिली नगमा कर लेते हैं मिली नगमा कर लेते हैं पाकिस्तान
2: चले चले चलिए शुरू करें
0: मेरे को अपना सीक्रेट बताओ जो नहीं बताया
10: मेरा सीक्रेट
8: ओ
0: जो हमने नहीं बताया
10: अब मेरे
0: चुप के वाले
10: गेम्स में ट्विस्ट आते जा रहे हैं ना
2: अच्छा
10: अच्छा अब मैं डेयर से ट्रुथ की तरफ आ जाऊं
9: यार आपको किसी ने डेट ऑफ की बात की किसी ने?
0: हाँ
7: सर जी, ये परसों कह रहा था मेरा शो बहुत अच्छा हुआ इसलिए मैंने इसका नाम लिया।
0: अच्छा शो पुशअप्स लगानी पड़ेगी, छोड़ दो
10: ठीक है, पुशअप्स लगा
0: रीच को दे दो
9: बेचारे को।
0: सलाम अलैकुम, वेलकम जुबैर साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं। चल भाई, वन टू थ्री, अबू बकर हारा, अबू बकर पुशअप लगा, टू
8: थ्री फोर
0: फाइव, वेरी गुड,
8: क्या बात है,
0: बड़ी गंदी पुशअप्स लगानी। अगली बारी
10: किसकी? मेरी सेहत को देख।
0: अगली बारी किसकी? अगली बारी ओए, अगली बारी तो देख रही
9: है, बताएं
10: जी जी
0: किसको देनी है, और वर्ड भी बताओ।
10: पुश अप्स पे था तो उसके लास्ट से देख
9: लें। सीन
10: सीन से तो आप, सीन से
0: अप है भाई, अप है, पे है,
10: अप है, पे
0: अप, पे किस पे,
10: पे
0: किसको देना है,
7: पे या बे?
9: पे, पे।
10: ये जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये इसको इसको बुलाएं।
0: आइए जनाब
9: हसीब रहमान साहब जी, आरजे अंजीला और पंजाबी के बहुत अच्छे आरजे हैं, प्लीज सर थोड़ा बताइएगा
0: क्या सुनना चाहिए,
9: पंजाबी में एक शेर हो जाए,
0: पे से कोई बात, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई शेर या कोई गाना।
11: मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन नून से कुछ सुना सकते।
0: सदा मिल जानी है, सदा मिल जानी है, पांच पांच काउंट कर रहे हैं हम, एक
11: एक मिनट, एक
0: दो
11: नहीं, अभी टाइम स्टार्ट करते हैं, मैं अभी सलाम दुआ कर रहा हूँ, हाल चाल पूछ रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता आप आते साथ अपना काम करें और चले जाएं, बंदा अच्छा।
0: नहीं वो बाद में पूछ लेना, चलो शुरू पे से, एक दो,
11: पापा कहते थे बड़ा नाम बेटा
0: हमारा, खबरदार, वन टू

0: अल्लाह बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
1: जुबैर साहब आए हैं सर, कैसे हैं सर? आ जाएं,
2: जुबैर भाई को भी दे सकते हैं।
1: ओ भाई नहीं कहना, सर कहना।
3: अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जी। मेरी तरफ से सबसे पहले जश्न आज़ादी की ठहरों मुबारक। और मैं हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा मसरूफ रहा, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, आप अंदाज़ा करें। रात आपसे जब बात हुई उसके बाद से मुसलसल कवरेजेस और आज सुबह की जो तकरीब थी उसके लिए फिर बहुत अर्ली आना हुआ।
1: दो लोग नहीं सोते जिन्हें बहुत काम हो,
3: एक दिन कोई काम ना
1: हो। शदीद किस्म का इश्क हो गया
3: मुझे अपने इस इदारे से, इश्क है आपको पता है। और ये इश्क बहुत पाकिस्तान से मेरा इश्क है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से इश्क है। जी जी,
4: वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे।
3: वाह,
4: इसका अगला हिस्सा थोड़ा दुखी है, सो मैं नहीं सुनाऊंगी,
3: इतना ही काफी है। तो आप रात, आपसे मेरी जब गुफ्तगू हुई पर फिर रब्ता हमारा नहीं हो सका उसके बाद। लेकिन आज की जो तकरीब थी हमारी बड़ी ज़बरदस्त हुई और उसमें हमने आपको मिस किया, लेकिन कुछ बच्चों ने उसमें नुमाइंदगी की हमारी और बड़ी ज़बरदस्त हमना थी।
1: तो ये अब नुमाइंदगी कर रहे हैं ना बतौर आरजे मेरी करते हैं।
3: बिल्कुल
1: बस ठीक है,
3: इन्होंने की वहाँ पर।
1: फिर मेरे
3: और इंटर्नशिप प्रोग्राम जो था उसके जो फ्रूट्स थे उस तकरीब में नज़र आए। और जो हमारे
1: काला चौंसा था
4: नहीं सर, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था।
3: नहीं, सबने आप सबने बहुत अच्छा बोला, रीज ने, आपने, उमर ने,
2: उमर भट्ट बहुत अच्छा।
3: हाँ जी, तीनों ने।
1: क्या बात है, उमर छा गए हो।
3: हमने बिल्कुल बिल्कुल तीनों ने बहुत अच्छा बोला
1: सर। क्या किस पे ख़त्म हुआ था, क्या वर्ड था आखिरी? सर अलिफ कुछ सुना के जाएं सर, ऐसे ना करें।
3: असल में ना
1: अब सुना के जाएं। नहीं असल उसल
3: दिन,
1: नहीं
3: दिन इस तरह
1: नहीं,
3: का
1: नहीं, असल नहीं, मैं फेक पे गुजारा कर
3: ही
1: नहीं
3: ना
1: सुना। नहीं नहीं नहीं नहीं,
3: जितना जो है नहीं, मुझे आते नहीं ना नगमे, आते
4: हैं वो जो ये गाते हैं
3: मेरी जगह पे, मेरा वो प्यारा सुनाएगा ना।
1: फिर ये जुबैर साहब, ये कोई बात नहीं,
3: नहीं वो सुनाएगा सर,
1: नहीं है कोई गल नहीं है, मैं रुस जाना देता हूं।
3: ऐ राह हक शहीद ओ वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कह,
2: क्या बात
4: है, सलाम कहती है।
1: रोटी पे आ जानी सी सर, ताल
4: सर अगली बारी भी किसी को देखना,
1: ताल को शब्द नहीं पा
2: सर, आप बारी भी किसी को,
1: किसकी?
4: आपको माइक दिया, मेरी बारी।
1: हां चलो,
2: नून नून जी जी,
1: ओ यस,
4: नून से शेर सुना देती हूं मैं।
1: अब तो मैं पुशअप तो कह नहीं सकती।
4: नहीं
1: सुनाओ सुनाओ, काउंट आप लोग किया करो ना, 1 2 3 4
4: नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, गिलास लेते हुए उंगलियां ना छू लेना, हमारे लहजे के धोखे में हमारी बात की गहराइयां ना छू लेना।
1: कहाँ से लेके आई है ये शायरी?
2: लेकिन ये शायर, ये है किसका, शेर किसका?
1: मैं सिर्फ बाज हूँ,
2: इकबाल का है। नहीं वो तो नहीं हो सकता।
1: अच्छा अब आगे किस पे गई है, पीछे भी बंदे बैठे हैं, ये सारे बैठे हैं, बताओ किसकी बारी?
5: अलिफ
1: अलिफ, हाँ जी वन।
5: असल में मुझे कुछ भी नहीं तैयारी और मैं ऐसे ही आके बैठ गया हूँ, और अलिफ से बात शुरू हो गई है।
1: किसी को कोई टॉपिक नहीं, इवन मेरे से रात को पूछा भी गया कोई टॉपिक, मैंने कहा कोई टॉपिक,
5: मैंने शुरू कर दिया ना।
1: अच्छा, अलिफ
5: से शुरू हो गई यार, कहानी बनानी है, बुनते रहना
1: यार, ये वैसे नहीं होना चाहिए।
4: अच्छा, राज्य की पहचान है कि उसको हर लफ्ज से बात शुरू करनी आती है,
2: तक नहीं होता कहीं पर।
5: मेरे अपने बैठे हैं यहाँ पर, आप नहीं मुझे हरा सकते।
4: ये बात नहीं है, जहाँ पे बात फिर सर की आ जाए कि फिर हम
2: सारे वहाँ पर,
5: ये तो
1: चलो चलो बात,
2: ये तो बड़ी दगल
5: बात बात ऐसी। असल में मैं कह रहा था कि मुझे कोई तैयारी वगैरह नहीं है, मैं ऐसे ही आ
2: नहीं, आप प्यार हो के आए, ऐसा ही हो सकता है आपकी तैयारी ना हो
5: यार। नहीं, शो के लिए कोई तैयारी नहीं है
2: आपका।
5: फिर से बोलिए,
2: बस बोलना,
1: पूरी करो ना बिराग।
5: अच्छा,
1: आगे करो इसको ट्रांसफर।
5: बात यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बस
1: बात दाल किसे देनी है बारी?
5: नहीं, जिंदाबाद
1: किसको देनी है बात? अरहम को। ओके, اور ہم آئے ہیں عائشہ سلطان میسج کر رہی ہیں ہمیں بھی انوائٹ کر لیتے
0: سر ایک چیز آ گئی
1: وہ نہیں یار پرے رکھو میرے سے میں باجے بالکل نہیں بجاتا عائشہ سلطان ہے کہتی ہے ہمیں بھی انوائٹ کر لیتے سر عمیرہ فیاض ہے کہتی ہے میں نے بھی گانا گانا ہے ہاں جی
6: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
1: پھر یہ پہ آ گیا آپ کسے دے رہے ہیں آپ یہ کپ اٹھا لیں
6: رمشا
1: رمشا کتنے ہے شکیلا میمونا بڑی یہ بس ختم ہو گیا پنشمنٹ بتائے کیا ہونی چاہیے اپنے بارے میں بتاؤ
7: آپ مجھ سے کوئی بھی سیکرٹ سوال پوچھے میں اس کا آنےسٹ جواب دوں گی آئی سو
6: سر
7: نہیں آپ پوچھ سکتے یو کین اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں بالکل سچ بولوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی
1: میں پوچھوں بعد میں تو میرے سے پوچھ لو
7: جان بوجھ کے نہیں
1: مشکل کا لفظ نکال کے باقی سوال بتاؤ
7: میں اس کا جواب بھی دے سکتی
1: ہوں نہیں آپ مت آپ مشکل پہ ہی رہے
7: اچھا سوال مشکل انٹینشنلی نہیں ڈالا
0: میرا خیال ہے آپ سوال پھر سے دہرا لیجیے اور آپ بدلنا چاہتی ہیں بدل بھی سکتی ہیں کیونکہ مائک میں آپ نے نہیں بولا تھا سوال
8: ویسے میری آواز اتنی ہے کہ مائک تک پہنچ تو گئی ہوگی
7: جی تو سامعین میرا ان سے سوال یہ تھا کہ چلے دانستہ نہ دانستہ کبھی آپ کی وجہ سے کوئی مشکل میں پھنسا ہو
6: مشکل میں
7: پھر وہ چیز ہو جائے گی کہ آن ایئر بتانی چاہیے یا نہیں مشکل میں انٹینشنلی نہیں لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ مشکل میں ان کو پھنسانا ضروری تھا وہ میں نے ایک دو دفعہ
1: بہت اچھا ہے ان کو پھنسانا
7: ضروری ان لوگوں نے وہ ڈیزرو مشکل
1: کس سے نہیں وہ بعد میں پوچھنا نا باری آئے گی آپ پہ آپ دعا کرو بات کدھر کس کو دینی ہے آپ نے باری
7: شہیر
1: آ گئے ورڈ کیا ہے ورڈ بتاؤ
7: ڈیزرو کرتے تھے
0: یہ ہے نا لاسٹ پہ
1: یار یہ سے باہر نکلو
0: میں
1: یہ وہ بتایا
0: لاسٹ پیٹ سے تھا نا
1: وہ کہہ رہی ہے کرو گے تے سے کرو ون
0: ٹو یہ نہایت اچھی بات کر رہی
1: ہے ون
0: فور ٹو تنہا یہاں پہ آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ موجود رہتے ہوئے میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں تے سے شروع ہوتا ہے ابھی بائی دا وے تم دے بوال تھا مگر کمال تھا
1: کیا بات ہے سارے دل جلے بیٹھے ہیں یہاں پہ کتوں آ گئے ہو اپنی عمرہ دیکھو لک ایٹ یور ایج کتنے دل جلے ہو تم
0: اب فائنلی میرے پاس موقع آئی گیا تو احمد کو میں دوبارہ بلانا چاہتا ہوں احمد پلیز
1: کیا वर्ड भी बताओ ना।
9: वर्ड है तो मेरा वक्त दवाल था मगर कमाल था। अलीफ
1: अलेफ अलेफ अलेफ। चलो जी वन टू।
9: आजादी के खुशबू से महकता रहे वतन, हम सब के दिल में बसता रहे वतन।
1: मैं लफ्ज खुद दूं ये वो तरीका। हाँ चलो तुमने कर ली बारी, बारी दो आगे वर्ड में खुद दूं। चलो नहीं नहीं ऐवे नहीं हो गए किधर, ये हो गई हो, मनाहिल नहीं हुई, मीरप नहीं हुई, हमदानी हुई, किसको लिए? अक्सा, अक्सा बीस है बे,
10: मतलब देख के पढ़ सकते हैं,
1: देख के पढ़ो मुन्नु नहीं मोबाइल से देख के पढ़ो। खत्म सजा बताओ जी, सजा बताओ
11: जी, सजा क्या होनी चाहिए सर?
7: आपने कभी अपनी वालिदा से झूठ बोला?
1: कुछ तो रोज बोलती हूँ मैं,
7: कोई
1: बहुत रोज बोलती हूँ,
7: झूठ बोलती तरह ही।
10: नहीं नहीं अम्मी अबू से झूठ नहीं बोलती, वैसे बहन भाइयों में कभी कभी हो जाता।
7: नहीं अम्मी अबू से बोलती रहता है ना, तो वो कहीं जाने ना दे तो बस पास जा रही हूँ।
10: ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं जो कहती हूँ वो करते हैं और उनसे झूठ मैंने कभी नहीं बोला।
1: अगली बारी किसकी?
10: किधर से हो गया?
1: नहीं नहीं ये मिनाहिल है। एम मीम। वक्त हो चुका है 2:58 जी, आपको बताते जाएं आजादी सेलिब्रेशन यहाँ पे चली है FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूँ आरजे डॉक्स और इस वक्त जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है। हमारे न्यू आरजेज हैं, इंटर्न्स हैं यहाँ पे, हम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मेरा ख्याल है 10-15 लोग बैठे हैं और गपशप चल रही है। आप लोगों के साथ भी कॉल्स भी लेंगे। अभी यहाँ पे गेम चल रही है तो वी आर गिविंग मिनाहिल की बारी।
7: गला खराब है सुनने वाले अपने कान।
1: हाँ बंद कर लीजिए। चलो
7: मेरे वतन की अकीदत।
1: सुनाओ
7: सर, ये मैं अकेले नहीं गा सकती।
1: हाँ हाँ
7: चले
1: अब शुरू करो। अरीज

0: बस मैं नहीं सी आंदा बाहर इट वाज गुड अगली बार
1: आपको मिली नगमा नहीं आता
0: नहीं आता है ले आप आता है ये वाला नहीं आता अगली बारी किसकी
1: सर आपकी
0: मैनू सजा दे दे टे से बात करे यार मैं कहां से करूं नहीं वो देखो टे मेरे से बात नहीं करती मैं उससे बात नहीं करता मैं उससे कैसे बात करूं सजा दो
2: सर आप कह सकते थे टमाटर मुझे बहुत पसंद है सर
0: मैं चाह रहा हूँ मुझे सजा दो मैं चाह रहा हूँ मुझे सजा दो
3: शकीला ने सजा के तौर पर सवाल करना है
0: ठहर ठहर के बोल
4: सर आपने उनसे आखिरी दफा कब खूबसूरत झूठ बोला था
0: आखिरी दफा
4: कब खूबसूरत झूठ
0: कल रात को अभी थोड़ी देर पहले
4: नहीं उनसे
0: किन से उनसे किन से
4: नहीं
0: वो तो बहुत सारे उन हो जाते हैं मुझे क्या पता मैं तो अपनी वालदा को भी ताजीमन उनसे बात की मैंने अपनी वालदा से अपनी अम्मा से बोला है
4: सर ये तो आप फिर
0: अम्मा से बोला है मैंने
3: सर आपने अपनी अम्मा से झूठ बोला
0: हाँ
3: सर क्यों
1: सर झूठ बोल रहे हैं
4: चलिए आप फिर एक झूठ बोल रहे हैं
0: हैं
3: हाँ अल्लाह का क्वेश्चंस
2: आखिरी बार में एक बार
0: यार ये किस किस्म के सवाल करना शुरू
5: आपने खुद से दाज
0: मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट बट आई विल से अ लाइन ओनली मैं आपको एक सिर्फ लाइन कहता हूँ आखिरी बार बात करते हैं तो कल रात
3: सर रिपीट कीजिएगा
0: कल रात
1: जिससे भी झूठ बोला था वो खुद ही गेस कर लेगा कल रात किससे बोला था
4: सर सामीन से तो
1: लगा कि कल रात किससे झूठ बोला था
0: अब मेरी अम्मा सुन नहीं रही इट इज बिटवीन हर
3: कह रही होंगी घर आ जाए आप कह रहे होंगे शो चल रहा है शो के बाद भी
0: नहीं नहीं वो अम्मा को भी लगता है वो उसे तरह छोटा है वो फिर चढ़ाई कभी ज्यादा कर देते हैं सुन दी अभी सुन दी होंगी तो मैसेज आ जाएगा तू कहा रहा मैं दस दिया अक्सर उनके शो में भी मुझे मैसेज आ जाते हैं तुमने कितनी गलत बात की है तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो और ये गाना क्यों लगाया है इस तरह का गाना ना लगाया करो फिर मैं कहता हूँ यार आप सो जाएं आप शो ना सुना करो प्लीज हाँ हाँ अच्छा खासा
3: अच्छा है होना चाहिए
0: अम्मी आपको सारे यहाँ पे सुनने वाले इंटर्न्स जो हैं सलाम कह रहे हैं इफ यू आर लिसनिंग एंड आई होप आपका मूड अच्छा हो गया होगा अब ये सारे सलाम सुनकर खूबसूरत खूबसूरत आवाजें आ रही है ना इनके सलाम सुनने के बाद अच्छा हो जाना चाहिए अच्छा जी अभी मीरब वाय
3: ये
0: नहीं नहीं वाय
3: ये
0: हाँ चलो
3: ये
0: हाँ वन टू
3: ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं हमारी पहचान है इसके हर जर्रे में बसा पाकिस्तान है
0: बहुत आला जी
3: थैंक यू
0: अस्सलाम वालेकुम जी आई हैव अ कॉलर जी कॉल लेते हैं थोड़ा सा गैप हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हाँ जी आगे किसकी बात वो पीछे बैठी और अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है यहाँ पे आए हैं बिलाल आए हैं किसा आई हैं किसा अपनी चेयर लेके आगे आ जाओ
3: जी
0: वारी मिलनी नहीं है वारी लेनी पड़नी है
3: जी दीजिए हर्फ कोई
0: सीन
2: वन
0: टू
3: सवाल
0: गो सवाल
3: सवाल ये है कि आप सब लोग आज इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हैं?
0: अल्लाह बड़ा अच्छा कवर किया। आगे किसकी बारी?
6: जी जी ना
0: सर। हाँ अभी जयमान को दो, वो कह रही मुझे फंसा ले। आप हेल्प मुझे बात। हाँ चलो आपकी बारी, बताओ कौन सा पढ़
7: इनको या उनको?
0: वो उसे किरण को।
7: आप ये बताइए कि कभी आपने किचन में कुछ पकाते हुए कुछ जला दिया और उसे छुपा दिया हो कोई ब्लेंडर करके?
0: आपने तो वर्ड देना है, अभी सजा थोड़ी देनी है।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, वर्ड देना। आपके लास्ट वर्ड
0: जो है जीम,
7: जीम जीम जीम जीम
0: कोई बताओ। हर्फ नहीं बताया कोई? जीम,
1: जीवे जीवे।

0: जीवे पाकिस्तान।
1: वाह जी वाह, जबरदस्त। अब रहमान की बारी।
2: जी जी,
1: अभी हम एक ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, राह खुदा है जी, 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। और यहाँ पे आज हम इकट्ठे हो के यहाँ पे जो गपशप कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सेलिब्रेशन करना, हंसना, खेलना, और आप अगर सुन रहे हैं, आपको भी अपने साथ इस खुशी में शामिल रखना। एंड दिस इज़ द वे टू सेलिब्रेट। इसी तरह सारे सेलिब्रेट करते हैं, और हमारी ट्रांसमिशन से ताकि आप तक ये मैसेज पहुंचता रहे, वी लव आवर कंट्री एंड वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दिस डे। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, कैच यू बैक आफ्टर दिस ब्रेक। लगाओ नहीं लाना। अच्छा, साड़ी ट्रांसमिशन रोकती है।
3: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया। शुक्रिया।
4: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: आज हम बयान करेंगे पारा है दूसरा और सूरह बकरा है, आयत मुबारका है 146 and 147। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्न फरीकम मिनहुम लयक्तुमून अल्हक्का मिन वहुम यालमून। अल्हक्कु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। शुरू अल्लाह के नाम से मेहरबान रहम करने वाला। तर्जमा पेश खिदमत है। अल्लज़ीना, और जिन्हें आतैना हुमुल किताबा, आतैना से मुराद हमने दी, अता की क्या, किताबा किताबें दी, यानी तौरात किताब और इंजील मुकद्दस, उनकी तरफ इशारा हो रहा है। यारिफूना हु, आपको पहचानते हैं, हु मैंने आप, कमा यारिफूना जैसे वो पहचानते हैं, कमा अबनाअहुम यानी अपने बेटों को, यानी यारिफूना अबनाअहुम, ए अब्दुल्ला ये मार्फत तुम कैसे रखते हो। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे यहूदियों के बहुत बड़े आलम दीन थे, और जब वो इस्लाम लेकर आए और उन्होंने अपने साथियों को औरों को भी बैत कराया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने सबके सामने फरमाया, ए उमर मैंने आपको पहचान लिया जब मैंने आपको देखा जैसा कि मैं अपने बेटों को पहचानता हूँ। ये अब्दुल्ला बिन सलाम के अल्फाज हैं। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से ज़्यादा पहचानता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ये कैसे, उन्होंने इशारा फरमाया वो अल्लाह ताला की तरफ से सच्चे रसूल हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी किताब में उनकी सिफात बयान फरमाई है, यानी तौरात में सारी असली किताब थी उनके पास, उनके बड़ों की दी हुई उसमें, और उन्होंने सबको दिखाई वो किताब, बहुत दुनिया मुसलमान हुई उस वक़्त। फरमाइया उस किताब में इनकी सारी निशानियाँ, और मैं नहीं जानता बाकी इसके अलावा किसी बात को भी, क्योंकि हम उनको इस तरह से पहचानते, यही फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और तस्दीक फरमा दी इस बात की। फरमाया अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना, अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताबा, और वो जिन्हें हमने किताब दी, यानी कौन सी किताब, यहूदियों की तौरात और इंजील मुकद्दस ईसाइयों की, यारिफूनहु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे आप ऐसे पहचानते हैं, कमा यारिफूना जैसे वो पहचानते हैं, अबना अबना कहते हैं बेटों, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। वाह इन्ना, वाह मैंने और इन्ना मैंने, बेशक फरीकम, और इनमें से ग्रोह ऐसा है, मिनहुम इनमें से, लगे तुमून और हक्का वो छुपाता है, हक्का हक को छुपाता है, वहुम यालमून और हालांकि वो खुद जानता है सब कुछ, वो ग्रोह जानबूझकर हक को छुपाते हैं, सफ़े फाड़ दिए उन्होंने अपनी इंजील मुकद्दस में से, तौरात में से, जिस जिसमें निशानियाँ थी वो उन्होंने सफ़े गायब कर दिए, उसकी जगह दूसरे सफ़े लगा दिए। अलहक मिन रब्बिका, ऐ सुनने वाले ये हक है मिन रब्बिका तेरे रब की तरफ से, फला फा मैंने पस, ला मैंने नहीं, पस नहीं, फरमाया फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, पस शक वालों में से ना हो जाना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल रैब फ़ीहि हुदल्लिल मुत्तकीन, ये सबसे पहले बयान है अल्लाह ताला के, इसमें शक नहीं करना, शक को छोड़ दो और सच को अपना लो। وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام نے کیا خاتم النبیین صدق اللہ علیہ.
4: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक जी। वक्त हो चुका है 3:14 और पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम एक हर्फ देते हैं, उस पर कोई बात करनी है, तो गाना सुनाना है। और रहमान की थी यार, तू पहले क्यों बोला यार, अभी तो बोलता। अभी रहमान की बारी है और हर्फ है जी चे। एक दो तीन चार
1: खत्म। मैंने बोला चाहत में आपकी
2: ये चीटिंग हो रही है।
1: मैंने बोला ये था पहले भी।
0: कौन है यार, क्या कर रही है यार, तुम क्या कर रही हो? ये बूटी कराई गई है, दोबारा होगा।
1: चले आप पिछड़ कर रही हैं।
0: वन टू थ्री फोर पांच। चलो चलो, पनिशमेंट है जी। नहीं नहीं, ये बीट हम लगाएंगे, इसके ऊपर आप इधर डांस करेंगे। चलो,
3: किसी ऐसे शख्स के लिए आपने डांस करना है जिनको आप चाहते हैं। कोई भी हो सकता है।
0: दमाल तो नहीं डलवा रहे
3: मतलब
0: पनिशमेंट ब्रो, कम ऑन, गेट अप, उधर आ जाओ, फ्लोर पे जगह बनाओ।
3: उनको ठीक है,
0: ओके। आप इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं जी, यहाँ पे RJ स्पेस DOX डॉक्स लिखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आप देख सकते हैं AR रहमान, सॉरी सॉरी, अभी हम डांस देखेंगे AR नासिर का, और पनिशमेंट है इनकी। We're gonna enjoy this punishment. तुम भी आ जाना, साथ आ जाना सारे। चलो जी।

0: Alright, welcome back. That was fun. जिन लोगों ने नहीं देखा उन्होंने नहीं देखा और हमने तो बड़ा एंजॉय किया. सुनने वालों ने पूछा जाएगा
1: कैसा.
0: ओके और यार रहमान यार नासिर जो है और इन्होंने डांस किया और बाकी सारे भी इसमें शामिल हैं. अगली बारी किसकी है.
2: अगली
0: वो बैठा हुआ वो छुप
2: सर के ये हमजा भी आए हुए हैं.
0: हमजा को आप हर्फ दो.
2: आप सर दे कोई हर्फ. आप मेरे दे दूं फिर मैं ही सर.
0: हाँ डे से आ जाओ तुम भी. लाओ माइक दो इसे. ये माइक
2: डे देने चे देने
0: तोतले हो जाओ.
3: वैसे अड़े से शुरू तो नहीं होता. अड़े पे तो लाहौड़ी आ जाता है बस. लाहौड़
0: अड़े से
3: नहीं
0: आता है. बड़ा टिपिकल सा बर्थडे का आता है.
3: अड़े
0: से
3: अड़ोड़ा तो और चीज है ना. वो तो अड़े से स्टार्ट होगा. उर्दू की किताब में भी अड़े से बाहर लिखा होता है. इसमें भी अड़े से बाहर लिखा होता है.
0: आप टिपिकल लॉरी बन जाओगे तो बोला जाएगा.
3: रेवड़ी भी होती है.
0: हाँ,
3: चकवाल वाली.
0: हाँ, वही बोल लिया है ना.
3: रेवड़ी बड़ी मजेदार होती है. हाँ, किसी दिन मंगवा के खिलाए ना हमें.
0: हाँ बिल्कुल ठीक है.
3: आपके तो फैंस भी हैं चकवाल ने.
0: सुनाओ हमजा क्या हाल है.
3: अल्हम्दुलिल्लाह सर शुक्र
0: है. जैसे खामोशी से बैठे हुए थे कैसे लग रहा.
3: जरा वार्म अप हो रहा था. अब इंशाल्लाह ताला आगे फील्ड
0: पूरी पूरी जरा नाच लिया है तो वार्म अप हो.
3: वो आपने फ्रेश कर दिया है. पकड़ के मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कोई ऐसा.
0: कैसा लग रहा है
3: सर. बहुत मजा आ रहा है.
0: एंजॉय कर रहे हो.
3: बहुत एंजॉय कर रहे हैं. बल्कि खामोशी में भी एंजॉय कर रहा था.
0: अच्छा
3: बड़ा मजेदार प्रोग्राम चल रहा है लिटरली.
0: चलो दैट्स गुड दैट्स गुड. अब सारों से हमने उनकी बर्थडे के बारे में पूछा. आपकी कब होती है.
3: मेरी अलामा इकबाल साहब से एक दिन पहले आती है 8 नवंबर को.
0: बड़े पुराने हो तो.
3: नहीं 8 नवंबर 2006.
0: अच्छा
3: तो वो साल का फर्क आ जाता है.
0: कैसे मनाते हो.
3: सर वैसे अगर सही बताऊं तो मैं ऑर्फन बच्चों के साथ मनाता होता हूं.
0: ओके.
3: उनके साथ जाके क्योंकि मैं एक जगह पे एम्बेसडर के तौर पे भी हूं ऑर्फनेज में तो मैं उनके साथ जाके मनाता
0: हूं. ओह दैट्स ग्रेट यार. मेरी
3: और इस दफा का भी मेरा प्लान है कि उन्हीं के साथ जो है वो सेलिब्रेट करने है.
0: वाओ दैट्स गुड दैट्स गुड.
3: फैमिली में तो हो ही जाती है लेकिन उनके साथ जब मनाने का जो मजा आता है वो अलग ही अपनी पहचान रखता है.
0: क्या करते हो. केक वगैरह लेके
3: केक कट करते हैं फिर कुछ उनके लिए ही गिफ्ट लेके जाते हैं. कुछ उनके लिए खाने का कोई इंतजाम कोई इस तरह फास्ट फूड हो गया या फिर कोई खिलौने वगैरह टॉयज वगैरह हो गए बच्चों के लिए वो ले गया और फिर अपना केक जो है वो उनके साथ कटिंग कर ली. तो इसी तरह जो है मेरी बर्थडे जो है वो ऑर्फनेज होम में जो है वो अक्सर औकात जो है वो मनाई जाती है.
0: That's good. Really impressive. अब किसा लाओ को हर्फ दो इसे.
3: से
4: कुछ भी बोलना. क्या बोलना.
0: से वन टू
4: से क्या होता है.
0: थ्री
4: क्या
0: फोर
5: छोटे बुक्स में पढ़ते थे.
0: फाइव बस साबित हुआ. नहीं तो से समर से साबित सजा दो भाई से पनिशमेंट. आइए सजा दो ना. बताओ भाई
4: इतनी क्यूट है सजा देने का दिल ही नहीं कर रहा.
0: मैं इसलिए मैं कह ही नहीं रहा सजा दो.
3: कुछ सुन लेते हैं.
0: हाँ कुछ गा के सुनाओ. चलो कुछ तो सुनाना पड़ेगा. दो सुरा गाना है. चलो
4: पहले मैं आपका साथ देंगे.
0: चलो
4: मिली नगमा कोई भी.
0: चलो
4: दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान.
0: क्या बात है जी. जबरदस्त हो गया जबरदस्त. अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं कॉल्स अगर आ रही हैं हम कॉल्स लेते हैं जी. देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पे.
4: अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है हमारे साथ.
0: जी
6: शेरी बात कर रहा हूँ रंगमल लाहौर से. आज डॉक्टर साहब क्या हाल है सर. ठीक हो
0: जी. मेहरबानी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. शहरी
6: बड़ी بڑی بات ہے
0: جی، ماشاء اللہ بہت اچھا. شہری وہ جو میرے پروگرام میں میسج کرتے ہو؟
6: نہیں میسج کرنا نہیں آتا مجھے.
0: اچھا پھر وہ کوئی ہو رہی ہے، وہ جس نے مجھے کارڈ بھی بھیجا تھا لو یو لکھ کے.
6: نہیں نہیں میں رنگمل والا شہری ہوں.
0: اچھا اچھا اچھا، تم تو لڑکے ہو. شہری کیسے مناتے ہو آپ 14 اگست؟
6: 14 اگست بس پہلے مناتے ہیں، آپ تو بالکل سناٹا ہے.
0: سناٹا ہے
6: جو جذبات ہے،
0: بات کرتے ہیں
6: ہمت نہیں.
4: 14 اگست کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
6: بس یہ جو ہم مناتے ہیں یہ طریقہ کا صحیح نہیں ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے، خاص کر بزرگ آدمی

0: सोने वाली बात नहीं है बेटा, सोने वाली बात नहीं है, हम नहीं सोते हैं, हम जो है रात को 9 बजे
1: क्या बात है, सोना भी नहीं चाहिए। हमारा मुल्क आज आजाद हुआ था,
2: क्या करेंगे अभी तो बड़ा पूरा दिन पड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ।
0: अभी बेटा इसके बाद जो होगा ना, एक कप ऑफ टी, दांतों से साथ कोकोनट के बिस्किट,
1: मेरे फेवरेट बिस्किट, मुंह से बात
0: आपका फेवरेट है, फिर तो आपके मुंह में पानी आ गया।
1: यहाँ पर भी आ गया मुंह में पानी। अभी मंगवाते हैं सर से चाय।
0: सर भेजो, मैं तो नहीं रेस्ट हूँ ना, हम लोग डिफेंस में है ना।
3: ओके,
0: 10 मिनट का रास्ता है,
3: 10 मिनट डिफेंस पहुंचने में लगेंगे यहाँ से। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे डिफेंस के?
0: बिल्कुल राइटर पे।
3: क्या बात है, उड़ के जा रहे हैं।
2: जा
0: रहे हैं, उड़ के तो नहीं जा रहे
1: हैं। आज ट्रैफिक कोई नहीं है, रोड सारे खुले हुए थे। मैं क्या बात है, मजा आ गया।
3: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी, बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह
3: हाफिज़। हमें फातिन ने ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल?
1: वालेकुम अस्सलाम सर,
3: कैसी हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र, आप बताएं।
3: सुना आपके जहन में कोई करेक्टर फंस चुका है?
1: हाँ फंसा हुआ है।
3: सुना आपने अल्हम्ब्रा में कहीं परफॉर्म किया था?
1: जी जी बिल्कुल।
3: क्या
1: काफी दफा किया है?
3: क्या कौन सा करेक्टर था?
1: मैं बताती हूँ, 2025 में मैंने धरती माँ का एक प्ले किया था,
3: इसीलिए आपके अंदर से ममता निकली।
1: जी जी बिल्कुल। उसमें मेरा एक जेंजी करेक्टर था।
3: अच्छा।
1: तो उसमें हमारे अब्बू जी वफात पा जाते हैं और हम स्मॉग से किस तरह लड़ना है वो हमारा प्ले था।
3: तो किस तरह से लड़ा जाता है स्मॉग से, जो नजर नहीं आ रही?
1: स्मॉग से जैसे अभी
3: बिल्कुल स्ट्रेस एंजाइटी की तरह से है, ना नजर आने वाली परेशानी की तरह से है।
1: उसमें हमने लोगों को
3: अक्सर बंदियों की तरफ से दिया जाने वाला इमोशनल प्रेशर की तरह उसे किस तरह
1: ये बिल्कुल अभी मैं बाइक चलाती आ रही थी, एक बंदा मेरे पास से आया, इतनी ऊंची आवाज में आया, बाइक साइड पे हो रही है, मैं बंदा था, एग्जैक्टली बंदा था, तो मैं मेरी बाइक साइड पे हो गया, कहूं क्या हो रहा है, तो मैं चलाती गई दूर दूर बाजों से। बता रही हूँ आपको कि स्मॉग में अवेयरनेस देना बड़ी ज़रूरी है। कितना ज़्यादा हमारे अब्बू जी उस प्ले में, उनकी वफ़ात हो गई, तो हमारा आइडिया था कि हम बताएं पाकिस्तान की कौम को कि किस तरह आपने अपनी हिफाजत करनी है।
3: मैसेज दें, मैसेज दें।
1: बिल्कुल, तो मेरा जो मैसेज था उसमें वो एक जेंजी का था कि मैं अपने फ़ोन से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही थी कि किस तरह आपने बचना है, मास्क लगाएं, अपने एरियाज को क्लीन रखें, कचरे से दूर रहें और कचरा फैलाएं ना। अभी कल ही मैं एक जगह पे थी और वहाँ पे हमें ये सिखाया गया कि उनका एक बेटा था, एक बंदा था, उस बंदे के बेटे ने एक कैन उठा के गाड़ी से बाहर फेंका, उस बंदे ने गाड़ी रोकी, बेटे को चुपेड़ मारी, एक क्या भाई एवं कैन उठाया, और जब तक ट्रैश कैन नहीं आया तब तक उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप कचरे से दूर रहें, और कचरा अगर नज़र आए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि ये हमारा मुल्क है एंड हमें इसकी हिफाजत करनी है, फिर जिस तरह मर्जी से करें आप। सो
3: कचरा रानी से कोई तारुफ है आपका?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
3: देखा भी नहीं उसे?
1: नहीं।
3: कमांडर
1: हाँ। मैं इतना कुछ नहीं देखती, थोड़ा कम कम चीजें देखते हैं।
3: बहरहाल जी, ये बड़ा अच्छा मैसेज है, और इस पे आई बिलीव के हम लोग अगर सारे काम करें, ये जो गाड़ी में अक्सर ट्रैवल करते हैं और कहीं पे जाते हैं, जो खाया वहीं पे फेंक देते हैं, ये अगर ना करें, वो ट्रैश जो है उसे अपनी गाड़ी में ही पड़ा रहने दें, और जहाँ पे भी जाके हम स्टे करते हैं वहाँ पे किसी जो डिस्पोज करने की जगह है वहाँ पे उसे फेंकें, किसी डस्टबिन वगैरह में या रिसाइकल बिन में। और इसके अलावा एक और अगर हम ये तहैया करें आज के दिन के, इशारा नहीं तोड़ेंगे, इशारा ना तोड़ें, ये एक बड़ी अच्छी हैबिट बन जाए। मुझे याद आता है वो एक दफ़ा मैं एक ड्रामे का क्लिप देख रहा था, हंसी तो बहुत आई लेकिन सोचने भी लगा, उसने कहा जो बत्ती जड़ी है ना लाल होती है, मैं रुकदा नहीं है, मैं टुर जाना, जो तो शब्द हो मैं कभी इशारा नहीं तोड़े। तो इसको अगर हम फॉलो करें तो ये बड़ा अच्छा होगा,
1: बल्कि जुर्माने होते हैं फिर तो 2-5 हज़ार।
3: ठीक है, इतनी देरी माइक माइक पे कब्जा ही करके बैठे, किसी और को दें। अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम
3: वालेकुम। अस्सलाम,
4: कैसी
5: हैं
4: आप?
5: कैसी सेलिब्रेट?

0: आपको तो पाकिस्तान आइडल में जाना चाहिए, बहुत ही प्यारी आवाज थी
1: आपकी। बहुत प्यारी आवाज, आपने बहुत अच्छा गाया, हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हमने बहुत एंजॉय किया।
2: बहुत शुक्रिया। और आपको अगर इजाजत हो थोड़ी सी अपनी पोएट्री सुनाओ।
1: चलिए सुना दे। नहीं नहीं, आप सुनाएं, जरूर सुनाएं, आज तो आजादी का दिन है तो आप आजाद हैं सुनाने के लिए।
2: हाँ, थैंक यू। तो अर्ज किया है कि तेरा मुझसे मिलना, तेरा मुझसे मिलना, मिलकर बिछड़ जाना ही काफी है।
1: अरे
3: क्या बात।
2: तेरी यादों का आना, आके न जाना ही काफी है।
1: क्या बात है। ये आपने किसको मंसूब किया है?
2: बस
1: चल बताते। चले ठीक है, आप भी जुग जुग जीती रहें और हमारा पाकिस्तान भी जुग जुग जीता रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं कि कौन है।
3: हाँ
4: जी, कॉल लें या फिर किधर गया ये अरनास ट्यून कह रहा। चलो जबरदस्त हो गया, अभी हम कॉल लें या कुछ और है आपके माइंड में? कुछ और है जहन में, कुछ और खेल है। फिजा राजपूत है, आरजे जुबिया शफीक। आरजे जुबिया शफीक कह रही है मैंने कायदे आजम के 14 नुकात 12 मरतबा पढ़ लिए लेकिन इनमें बाजा बजाने का तो कहीं नहीं लिखा। ये भी अच्छा है। हेलो,
5: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी सर, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
5: अब्दुल गफूर अनारकली लाहौर। अब्दुल गफूर,
0: क्या बात है, आप तो अंदरून। कैसे हैं आप, खैरियत से?
5: मैं असल नहीं, असल कराची से मेरा ताल्लुक है।
0: अच्छा, आप कराची से हैं और लाहौर, लेकिन आप असल लाहौर में रह रहे हैं, ये कह सकते हैं?
5: जी जी, आप जो है ना, ये हमारा कौमी परचम जो है ना,
0: जी जी,
5: ये अलम, इसका इत्राम करना जो है ना सबकी जिम्मेदारी है और ये अलम हमारा सबका, पूरे पाकिस्तान का है।
0: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
5: प्यारा प्यारा अमल, ये अलम हमारा सबसे ऊंचा अलम हमारा, तो माशाल्लाह इसको जो समझना चाहिए। अभी मैं नमाज पढ़ के, तो जुमे नमाज पढ़ी फिर दुकान से अलम निकाला, बहुत बड़ा था ना माशाल्लाह।
0: जी जी।
5: तो रास्ते में आया तो कह रहा मेरे को दे दो, वो मेरा मेरे को दे दो। भाई तुम इसकी कदर जानते हो, ये हमारा अलम है, ये प्यारा अलम है हमारा।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसकी कदर करनी भी चाहिए और इसमें बड़ा अच्छा पैगाम भी है आपकी बात में कि हमें इसका एहतराम करना चाहिए। और एहतराम का ये मतलब भी है कि हमारे झंडे झंडियाँ जो भी हम लगा रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, उनको गिरने ना दें। और एक से दो दिन बाद इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि हम खुद से उसको उतार लें ताकि वो हमारे पाँव के नीचे ना आए। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से?
5: बिल्कुल
6: बिल्कुल सही है। लाहौर में आप रहते हैं और जिंदा दिल लोगों का जो है वो शहर है, तो जश्न आजादी की तैयारी कहां तक, क्या क्या कर रहे हैं? और आज सुबह से आधा दिन गुजर चुका है, तो कोई बाजा शाजा बजाया, कोई पौधा लगाया, क्या क्या किया, हमें कुछ बताएं ना।
0: नहीं, सबसे पहले ये बताएं कि आपने नाश्ते में क्या किया?
6: पहले उठ के बाजा बजाएंगे फिर नाश्ता करेंगे। पाकिस्तान
0: अनारकली में तो नाश्ता बड़ा मजेदार मिलता है,
5: उसके ऊपर अब्दुल गफूर मवर के नाम से वक्त की आवाज, तो वो जो है ना उस पे जो है ना बता देंगे हम, और बताते रहते हैं पूरा कौमी मामलात के ऊपर माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। और आज ने आप लोगों ने जो मेरी उम्र के बाबाओं को टॉनिक दी है, हम आपके शुक्र गुजार हैं। बड़ी टॉनिक दी, बड़ा आसाया। मैं बोला मैं इनसे क्या बात करूं, ये माशाल्लाह बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं साहब, और हमारे डॉक्टर साहब तो वैसे ही हैं प्यारे, रहमान भाई भी हमारे प्यारे हैं, ये जिशान नासिर भी, आप जितने भी हैं सब, जिया से जिया अंजुम, वो भी सारे जितने भी आप बैठे हुए हैं सब प्यारे हैं। अब
6: सर असद ब्रार साहब का नाम रह गया है,
0: डॉक्टर साहब बोला
6: है, मैंने नहीं सुना होगा, दोबारा ले दो मैं बोलता हूं।
5: यार बता दो भाई, बता दो ना, करो मुझे दुख होगा यार अगर मैं किसी की दिलाजरी करूंगा, तो बता दो नाम यार।
1: जी सर बताइएगा, अनारकली में किधर से बोल रहे हैं आप?
5: पुरानी अनारकली में से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ खाना पीना है? मैं तो वैसे अपने कमरे
1: सर,
5: में
1: हम तो बिल्कुल।
4: हाँ जी हाँ जी, खाना है खाना है खाना है,
1: तो क्या भेजा? पुरानी अनारकली के रहने वाले
4: हैं। नहीं खाना है हमने, बाकी चीजें छोड़े, क्या भेज रहे हैं खाने के लिए ये बताएं?
5: नहीं गधे बोले, अल्लाह माफ करे आपने जो अल्लाह आपको
4: कह रही है। आप खाने के लिए बताएं, बाकी सारी बातें छोड़े, खाने के लिए क्या भेज रहे हैं?
5: जो आप आ जाए
4: नहीं आ जाए नहीं आप भेजे आप भिजवा दे
5: मैं उधर नहीं आ सकता हूँ
4: आप उबर उबर कर दें बाइकिया कर दें कुछ भी कर
5: दें जिन में आपके साथ भी बैठे हुए हैं
4: जिन मेरे साथ बैठे
5: आपके साथ भी बैठे हुए हैं अंदर आपको पता ही नहीं है भाई वो मेरे से लड़ेंगे
4: नहीं है चुड़ैले भी
0: सर नहीं आप इस वक्त पुरानी अनारकली में जहाँ पे बैठे हैं इस वक्त पुरानी अनारकली में जहाँ पे आप हैं यहाँ पे सबसे करीब सबसे मजेदार खाने की क्या चीज मिल रही है
5: बहुत सारी चीजें हैं ना जो आप बोलोगे ना मिल जाएगा आजकल तो सब बना रहे हैं ना इतनी भी होटलें हैं मेरा नाम
0: सर कहीं से जलेबी नहीं मिल रही आसपास से क्या बात है
5: जो आपको बेटा खाना हो आप आ जाए आजकल हमारी जो है ना एक चैनल के ऊपर हमारी बेटी जो है ना वो नहीं आ रही है पता नहीं नाम बोले तो ले लूँ उसकी
0: नहीं नहीं सर वो जलेबी का बताइएगा अनारकली में एक जगह से मिलती है जलेबी बड़ी बारीक बारीक सी और करारी जलेबी होती है वो आपको नाम याद है उस जलेबी वाली जगह का
5: वो जलेबी कोने पे बेच रहा है वो बाबा वो हलवा पूरी भी बनाता है जलेबी भी होती है
0: हाँ, तो सही पहुँचे आप तो आप भेज कब रहे हैं इधर
5: है?
0: भेज कब रहे हैं जलेबी यहाँ
5: अरे भाई मैं नहीं भेज सकता हूँ आप मेरे को बोलेंगे आप इधर कैसे मेरे
0: चले, हम आ जाए फिर हम आ जाते हैं
5: आ जाओ आ जाओ
0: चलें ठीक है हम इस प्रोग्राम के बाद आपके पास आ रहे हैं फिर सीधा
5: बेटा बात सुना ये मेरा नंबर ही नहीं है तो आप कर लें नीचे खड़े हैं हम इधर आ जाते हैं
4: हाँ बस ठीक है कपूर साहब थैंक यू
0: आज आपने दिल तोड़ दिया हमारा
4: थैंक यू वेरी मच
5: आपका आपका अंकल है
0: जी सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत शुक्रिया
5: आप लोगों से भी आप लोगों ने टॉनिक दिए तो मेरी तो रूह भी खुश हो गई होगी
4: मैं समझ रहा हूँ आपकी जबान थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया क्या बात है कपूर साहब आप खिलाने वाली बात पे नहीं आए
3: अच्छा आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पर कोई चीजें हैं अस्सलाम वालेकुम
7: जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप सब
3: हम बिल्कुल ठीक हैं आप बताएं आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं
7: जी मैं जसमीत बात कर रहा हूँ
3: लाहौर से बात कर रहे हैं कौन
7: जी कैसर अब्बास बात कर रहे हैं
3: कैसर अब्बास आप बताएं आपकी 14 अगस्त कैसी गुजर रही है
7: 14 अगस्त आस पास बाजे बाइक वगैरह ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है इस वक्त तो घर में है शाम को निकलेंगे देखे कहाँ जाते हैं
3: अच्छा आप हमें ये बताएं कि
7: बहुत आपका प्रोग्राम सुन रहे बहुत मजा आ रहा है आप सब टीम ने माशाल्लाह बहुत रौनक लगा रखी है 14 अगस्त का जो लुत्फ है वो दुबाला हो गया है
3: जी बिल्कुल ऐसे ही है आप बताएं 14 अगस्त के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके आज सारे दिन आप क्या करेंगे और लोगों को क्या प्रोग्राम देना चाहते हैं और किस चीज से रोकना चाहते हैं
7: मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये दो काम ये तो बंद करें ये तो बाजे जो मोहल्लों में बता रहे हैं ये बंद करें दूसरा ये जो बाहर निकले लड़के जो है ना ये जुल्म वगैरह करते हैं ना ये कम इससे हुआ
4: क्या व्हीलर तुम में से
7: बहुत जबरदस्त ये हादसा होते हैं इससे तो अवॉइड कर लें तो मेरे ख्याल
3: बिल्कुल ऐसा ही है नॉइस पोल्यूशन होती है और बाइक्स पे वो जो कुछ लगा के नीचे और आवाज बिल्कुल गलत बात है आप ये बताएं कि अगर ये सब नहीं करना तो किस तरह हम 14 अगस्त को एक अच्छे तरीके से किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं किस तरह मना सकते हैं
7: जब इससे पहले भी 14 अगस्त मनाई जाती थी वो इस तरह से नहीं करते सब आपस में मिलकर बैठ के सारे फ्रेंड्स बैठ के खाना वगैरह खाते थे और एंजॉय करते थे ये चीजें नहीं होती थी
4: ये सबसे अच्छी बात है आप क्या भिजवा रहे हैं
6: खाने की बात
7: अभी तो मैं खुद खाने की तलाश में मुझे कब मिलता है
4: आप भी इधर ही आ जाएं
7: नहीं नहीं आप तो पहले बहुत ज्यादा बैठे हुए आप जलेबी को इंतजार कर रहे हैं वो तो आए नहीं अभी वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आप गर्मी में जलेबी क्यों रहे हैं
6: हुजूर रात को लिबर्टी शिबर्टी का चक्कर लगा के आए हैं आतिशबाजी देख के आए हैं कि रात को इंतजार ही करते रहे कि कल के दिन जाएंगे
7: ये जलेबी जो आइटम है ना ये सर्दी में अच्छी लगती है गर्मियों में तो ये बहुत इसको खाने का
6: सही सही सही सही
4: आवाज नहीं आ रही सॉरी सर आपकी कॉल में ड्रॉप कर रहा हूँ खुद इंटेंशनली क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही है अस्सलाम वालेकुम
8: वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है और कहाँ से बात कर रहे हैं
9: नीम टेलर इसरे बाजार से
4: سلیم ٹیلر.
8: اچھا
9: سر السلام علیکم آرجے ڈاکٹر صاحب.
4: وعلیکم السلام جی. میں آپ نے سمجھنا میں نہیں ہوں, باقی ساروں سے بات کریں
8: جی. تو سلیم صاحب آپ کی 14 اگست کیسی گزری ہے؟
9: جی الحمد للہ اچھی گزری ہے. جمعہ پڑا پہلے تو شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا.
8: جی جی شکر.
9: بچوں کو لے کے گئے ہیں باہر.
1: آپ کی 14 اگست کی سیل کیسی چل رہی ہے؟
9: دوبارہ بتائیے. واضح نہیں ہے.
4: وہ پوچھ رہی ہے وہ جو آپ نے آف لگایا تھا 200 روپے والا.
9: جی جی
4: وہ کیسی چل رہی ہے؟
6: چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟
9: سر چل رہی ہے. کوئی ہمارے پاس خاتون آئی ہیں, 6 خاتون کو ہم نے تیار کی ہے.
4: اچھا
9: ریڈیو کی وجہ سے تو ہم بہت شکر گزار ہیں. ہم نے بھی کسی کی بات مانی ہے.
4: آپ نے بھی کسی کی بات مانی ہے؟
9: جی
4: ابھی ایک صاحب آئے تھے وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی بہت باتیں مانتا ہوں.
9: سر ایسی بھی ماننے اور ایسی تو ڈوئی تو نہیں کھانی چاہیے.
1: تو آپ آزادی فیل کر رہے ہیں آج چھٹی کے دن؟
9: بیگم بھی سن رہی ہے اور بچوں کو باجے وغیرہ لے کے دیے تھے, انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے.
8: باجے نہیں لے کے دینے چاہیے.
9: بس اب بچے تنگ کرتے ہیں تو لے کے تو نہیں دینے چاہیے, لیکن
8: لے کے پھر اپنے پاس بٹھا کے ان کو کہیں کہ اب بجائیں.
9: ایسے بھی کیا ابھی ابھی کیا ابھی کپڑے انہوں نے نئے پہنے ہیں, بہت مزہ آیا. اور میری بیٹی آج اسکول میں تقریب کر کے آئی ہے 14 اگست کے والے. اچھا لگا مجھے ماشاء اللہ. بچوں کے چھوٹے سی ایونٹ تھا اسکول میں. تو
8: آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟
4: نہیں آپ لوگوں نے ایک ٹیکنیکل کوئسچن نہیں پوچھا. اپنی بیگم کے کپڑے سی کے دیتے ہیں؟
6: ڈیفینیٹلی بات ہے.
9: ہاں جی سی کے دیے ہیں اور شکر
4: ہے پسند آئے انہیں. آپ کے سیے پسند آتے ہیں؟
9: جی پسند آتے
4: ہیں. نہیں جویں ٹلا کیا ہے جویں ٹلا کیا ہے تو لگ رہا منہ تو پہنے ہون گے.
1: وہ کہیں پاس تو نہیں بیٹھی اس لیے کہہ رہے ہیں پسند.
6: انہوں نے بتایا ہے وہ پاس نہیں ہے ابھی. انہوں نے بتایا ہے
9: تو ڈر رہا ہوں.
4: ہاں نہیں تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. جی
6: پیچھے سے آواز آ رہی.
4: ایک دفعہ ایک صاحب کی کال آئی نا میرے پروگرام میں, شاید وہ سن بھی رہے ہوں, غالباً ان کا نام بھی عثمان ہی تھا. وہ کہتے ہیں میں نا اپنی بیگم سے چھپ کے آپ کو کال کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. ہاں میں کہ ٹھیک ہے. پھر بعد میں بات کرتے او نہیں مجھے پتہ چلا میری بیگم میری کال سن رہی ہیں. تو وہ جو میں نے پہلے بات کی وہ ٹھیک ہے اب میں ختم کر رہا ہوں. میں کہا آپ کی بیگم سن رہی ہیں؟ ہاں جی سن رہی ہے. میں نے کہا میڈم ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ بیویاں بہت تنگ کرتی ہیں اور کہہ رہے تھے میری بیگم سو رہی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اینڈ ہی واز لٹرلی آن کال. او یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ او بیچارہ اتنا ڈرا ہوا تھا. او بڑا مزہ آیا, میں نے بڑا انجوائے کیا اس کی کال کو. کدھر گیا ہے رحمان؟
6: اس کے بعد اس نے انجوائے نہیں کیا ہوگا. اسے اس نے تو انجوائے نہیں کیا ہوگا.
4: باقی پتہ چل رہا تھا بہت پینک کر گیا.
6: شام کو وہ پھنسا ہے.
4: شام کو نہیں رات ہی آلریڈی
6: ناشتہ نہیں ملا.
4: میں نے تو لگ رہا مور بنیا ہوئے گا ککڑ بنا تھا. کوئی بات کریں کچھ بھی بولیں. میرا خیال ہے ابھی کس کی
6: آ ہی نہیں سکتی تھی اگر ہوتے تو آتی ضرور.
4: کدھر گیا؟ السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. یہاں پہ کوئی ہم لگاتے ہیں کچھ پلے کرتے ہیں اس کے بعد آ کے پروگرام کو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کون بتائے گا کیا لگائیں جی؟
6: کچھ اچھا سا لگا دیں. اے قائد اعظم شکریہ پاکستان لگا دیں. اسی پلے میں
4: لاج نہیں رہنا. کیا لگائیں بتاؤ جلدی سے.
6: دل سے میں نے. ہاں وہ لگا دو.
4: دل سے لگائیں سارے کنسنٹ دیں. دل سے چلو جی واپس آتے ہیں اس ٹریک کے بعد, پھر آپ لوگوں سے ہم اجازت لیں گے. वक्त हो चुका है 4:06 और आज है 14 अगस्त 2026 एंड वी आर सेलिब्रेटिंग जश्न आज़ादी एंड यू कैन कॉल अस 0421111 और इस वक्त हम FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैं हूँ आज डॉक्स और मेरे साथ यहाँ पे न्यू आरजेज एंड इंटर्न्स हम तो बुला बुला के थक गए यार आप ही नहीं आ रहे थे जैमिंग कर रहे थे आप लोग मिली नगमा या कोई और ओके चले मेरा ख्याल है अब हम लाइव ही सुनते हैं और लाइव ही एंजॉय करेंगे आप बेहतर था वैसे सामने आते
10: चलिए सर सामने
4: आए थे आप सामने आ जाए ताकि हम वीडियो स्ट्रीम में आपको रिकॉर्ड कर लें साथ चलो आ जाओ
10: माइक वो वाला पहन लीजिए

0: चलें जी, अब हम गाना सुनेंगे एआर नासर से, और उनके साथ हैं गिटार पे अली मंसूर, एंड वी गोना एंजॉय इट लाइव यहाँ पे चलेगा इंशाल्लाह, वी गोना लव इट।
1: से बना पीछे से हो जाएगा ना
2: जी जी,
1: ठीक है।
2: सर, वी वुड लाइक टू सिंग द सॉन्ग दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, बाय ओरिजिनली बाय हारून।

0: Thank you.
1: जबरदस्त जबरदस्त, बस इतना? कुछ और भी सुनाओ यार, एक और सुनाओ।
0: जी फिर आपकी फरमाइश पे हम करेंगे। हाँ
1: सुनाओ सुनाओ,
0: बता दीजिए।
1: कुछ भी एनीथिंग जिसमें आप दोनों मैच कर लो। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से, आज़ादी ट्रांसमिशन चल रही है और लाइव अभी यहाँ पे सुनेंगे हम। अभी हमने यार नासिर से सुना, अब सुनेंगे हम अली से। क्या सुना रहे हो?
0: आज़ादी
1: आज़ादी बाय जुनून। ओके

0: 哇、
1: मैं कह रहा हूँ बड़े अरसे के बाद सुन के ना मेरे भी अंदर के तार आज थोड़े से चले, मुझे भी मजा आया। अच्छा, बहुत अच्छी सिलेक्शन और बहुत अच्छा आपने गाया। हाँ, बहुत अच्छी सजेशन, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आई लव दैट। और इसमें वेरिएशन थोड़ी सी और है, थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ चासा आ जाती ना।
2: किसी इन्होंने हमें बताया सजेशन थी और हमने शुरू किया, उस लिहाज से बहुत अच्छा भी।
1: नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है यही वाला हम चलाते हैं।
2: जी जी,
1: इसका तो वो हम प्रैक्टिस जब करते थे ना साईं, वो तो बड़ा मुश्किल था गाना अली अजमत को, बहुत मुश्किल था
2: वो तो शुरू ही।
1: अनुग्रह साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा मेरा मौला अल्लाह अल्लाह। फिर आगे और ऊपर जाके मेरा गला हुन दिया नहीं, नहीं तो पहुंच जाना सी। चलें जी, जुनून का आज़ादी सुनते हैं और उसके बाद वापस आके हम सारे अपना एक एक पैगाम सारे देंगे, फिर आपसे इजाज़त लेंगे जी। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, दिस इज़ एफएम 101।

0: All right, जी, वेलकम बैक. वक्त हो चुका है 4:20. 4 बजे मैंने शो मुकम्मल करना था और अभी 20 मिनट आगे हो चुके हैं. जिस तरह मैं लेट आता हूँ उसी तरह अक्सर मैं लेट जाता भी हूँ, अक्सर देर कर देता हूँ, है ना. हाँ, क्या ये बंदा कहे. बहरहाल जी, 14 अगस्त हम मना रहे हैं और मेरा ख्याल है मुकम्मल करें. यहाँ पे आप लोगों ने जाना भी होगा. जाना नहीं तो शिकार यार, इधर ड्यूटी ऑफिसर है वो बेसमेंट नहीं है, उत्थे बड़े जिन्न मैं चाह रहा हूं तुम जाओ वो भाग जाएंगे. रहेगी. अच्छा, आप लोग अब बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे बारी बारी जश्न आजादी के हवाले से. चले मीरब से स्टार्ट करते हैं. गरम माइक जी.
1: तो जश्न,
0: हाँ, तो आ रही है आवाज, आ रही है.
1: जश्न आज़ादी के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगी कि ख़ुद से तब्दीली शुरू करें और फिर पाकिस्तान से भी एक्सपेक्ट करें कि वो भी फिर आपको तब्दीली देगा. अगर आप ख़ुद की हालत को बदलेंगे तो फिर ही आप पाकिस्तान की हालत को बदल सकेंगे.
0: ज़बरदस्त रीच
2: जी. आज़ादी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सेलिब्रेशंस अपनी जगह हैं, भरपूर तरीके से मनाएं और भरपूर तरीके से इंजॉय करें क्योंकि आप एक ज़िंदा दिल कौम हैं. और लेकिन अपने इर्द गिर्द का, अपने माहौल का, अपने लोगों का और सब का ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बड़ा करें, कुछ बहुत बेहतर करें जो कि आने वाली नस्लों को और पाकिस्तान को फ़ायदा दे. बहुत शुक्रिया.
3: आज के दिन के हवाले से बहुत सी बातें हुई, बाजे और मजाक और हंसी सब कुछ चलता रहा और बड़ी अच्छी बात है जैसे रीज ने कहा कि हम जिंदा दिल कौम है. लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगी जो कि एज अ जनरेशन हम सबको ज़रूरत है कि हम उस पर काम करें. वैसे तो मैंने सोचा था कि बड़ी लंबी इस बात पर गुफ्तगू करूँगी लेकिन आई जस्ट ट्राई टू वाइंड इट अप. सबसे पहले तो यह कि आपके मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं अल्लाह ताला ने बहुत आपको रिच कंट्री दी है. पहाड़, जंगल, दरिया, सहरा, कोयला, नमक, हर चीज़ हमारे पास है. तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका रीज़नेबली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करें, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं. और दूसरा ये कि जो एक आपकी लेगेसी है आप कुछ बना के जाएं अपने आने वालों के लिए. और वही वो रिहान भाई ने उस दिन बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया था कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. तो शिकवे और गिले करने की बजाय आप अपने हिस्से का दिया जलाएं और आने वालों के लिए कुछ छोड़ के जाएं.
0: वो पीछे बैठे हैं,
4: माइक ही नहीं आ रहा. मेरा यही पैगाम है कि खुश रहा करें, खुश रहने दिया करें और इंजॉय करता ही रहा करें.
0: भैया आप बात सही करोगे तो खुश रहने देंगे ना.
4: इंजॉय किया करें बस. अच्छा. और हद में रह के किया करें.
0: जी अफजा,
5: मेरा ये पैगाम है कि आपस में इतहाद रखें, इतफाक रखें. पंजाब तब होगा जब पाकिस्तान होगा, बलोच तब होगा जब पाकिस्तान होगा, कश्मीर तब होगा जब पाकिस्तान होगा. तो इस तरह के फितनों से, इस तरह की जो इंतहा पसंदी से बच के पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें. आपस में इतहाद रखें, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए.
0: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी. किसान,
6: मैं कहना चाहूँगी कि हमारे घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं और कुछ बीमार लोग भी होते हैं, मरीज़ होते हैं. तो बाजों की वजह से हम नहीं जानते कि उन्हें कितनी अजियत हो रही है. तो
0: बाजों की वजह से
6: इस इनकी
0: अच्छा,
6: आवाज़
0: कुछ लोग अपनी वो बड़ी सिस्टर को भी बाजो कहते हैं. उसकी वजह से तो नहीं होता.
6: तो कोशिश करें किसी को तकलीफ ना पहुंचे.
0: ओके, थैंक यू.
6: खुशियां बांटते
0: हैं. आपने वैसे कभी बाजा नहीं बजाया? ओके जी. शकीला,
7: मेरा सब पाकिस्तानियों के नाम यही पैगाम है कि हम बजाय दूसरों के फलाना ये कर लेगा, ये हो जाएगा, हम आज खुद पर काम करें. आने वाले साल हम खुद से वादा करें कि मैंने ये काम करना है, इस पर मैंने अमल करना है. और ये कि पाकिस्तान हम सब का है, ये ना कहें कि मैं बलोची हूँ, मैं सिंधी हूँ. तो सब मिल कर रहे हैं, खुशियाँ बांटें और हंसते रहें.
0: बिल्कुल ठीक है. किरण,
8: अस्सलाम वालेकुम. मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो हमें एक तोहफे के तौर पर मिला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए. मैं छोटा सा यहाँ पर नगमा सुनाऊँगी.

0: वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से हम लेकर आए हैं आजादी की ट्रांसमिशन और जज्बा वैसा ही है। मिली नगमा भी आपने सुन लिया और मैंने कोशिश की कि वो मिली नगमा प्ले किया जाए जो कि स्टूडियो के माहौल के मुताबिक उस टाइम, क्योंकि मेरे साथ इतने कोई यंगस्टर्स मौजूद है और अभी एक और यंगस्टर ने मुझे जो है ज्वाइन किया है और मैं चाहूंगी कि अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाए।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इट्स मी मोहम्मद हमाद और आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।
0: बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आपने कोई बैच नहीं लगाया, कोई थीम फॉलो नहीं किया, क्यों?
1: मैं दिल से जश्न आज़ादी जश्न मनाता हूँ इस चीज़ का, ना कि उस तरह से।
2: हम आप कहना चाह रहे हैं कि वो सुबह से जश्न आज़ादी मना रहे थे, अब वो शाम होते होते ना वो थोड़ा थक गए।
0: अच्छा, लेकिन मैंने देखा है, मैं बाहर रोड पे अभी देख कर रही हूँ, बच्चे नहीं थके भाई, बच्चे मैं कहती हूँ सुबह से ना।
2: बेसिकली बच्चे वाहिद हैं जिनकी एनर्जी सबसे हाई है।
3: बच्चे तो अभी उठाया भी बच्चों ने, छह-सात बच्चों का ग्रुप आया है।
0: अच्छा,
3: और वो बाजे स्टार्ट हो गए हैं सुबह।
4: बच्चे फिर बच्चे होते हैं, वो नहीं रुकते, उन्हें ना कोई रोक सकता है।
0: बिल्कुल जी, बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने माँ बाप को भी मजबूर कर दिया इस टाइम के वो रोड्स पे निकले, उनको लेकर जाए। और मैं अभी देख रही थी यहाँ टाउन हॉल के बाहर ही कि बच्चे ग्रुप फोटोज ले रहे थे बकायदा, और पूरे जो है ना ग्रीन एंड वाइट पूरा एक थीम चल रहा है और इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, तो उनको देख के ना फिर आपको फील होता है कि हाँ, ये हमने भी अपने बचपन में ये किया लेकिन इस हद तक नहीं किया। अब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं।
3: आपकी क्या रूटीन रही है सुबह से अभी तक?
0: ना पूछे। नहीं, ये सच नहीं मैंने बताया। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना।
2: नहीं, किसी ने बाजा बजा के आपको डिस्टर्ब नहीं किया?
0: नहीं, मैंने बाजा बजा के अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब किया।
2: ये अच्छा था, नाइस।
0: तो मैंने उनको कहा, क्योंकि अभी आजकल एक मीम भी चल रहा है वैसे बेसाइड्स जोक, मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा आपकी तो आजादी नहीं है ना।
3: ये अभी हमारे साथ कॉलर थे, वो सारे इतने फर्मा बरदार अपनी बीवियों के, वो तो कह रहे थे हम हमारी बीवियां आज आजाद हैं और हम काम कर रहे हैं, कोई बर्तन धो रहा है,
0: बिल्कुल,
3: कोई सफाइयां कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, ये सीन था।
0: क्योंकि असल में हुआ ये है ना कि हमारे पास छुट्टियां भी तो तीन आ गई ना, हमारे पास एक आजादी के दिन की छुट्टी आ गई, फिर आगे वीकेंड आ गया, तो अब काफी लोग जो है वो प्लान्स कर चुके हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी नॉर्थ वाली साइड पे चले गए, सो ये एक फायदा हो गया।
2: दो चीजें सेलिब्रेट होंगी ना, आजादी प्लस वीकेंड,
0: प्लस वीकेंड जी। और क्योंकि उसके बाद स्कूल्स भी खुल जाने हैं, तो बच्चों के लिए की लास्ट मोमेंट है,
2: तो बच्चे बजा लें बाजे,
0: बाजे बजा लें। आप लोग सारे यंग हैं, मतलब मुझसे तो छोटे ही होंगे तकरीबन, तो आप लोगों ने अपने बचपन में इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया था? मतलब जैसे 20 ने बात की कि पानी वाले गुब्बारों की, तो मुझे हंसी आई ये सुन के, मेरे लिए नया था, हमने नहीं किया बचपन में।
5: जब आप बाजब जाते हैं तो वो लोग जो है तंग आ जाते हैं आपसे, फिर वो जो या तो घरों से छापे जाते हैं या आपके दोस्त ही चुपके बैठे होते हैं, आपका वेट कर रहे होते हैं, आपको पहले बाहर बुलाते हैं, बुला के फिर
2: बेसिकली वो छतों के साथ छतें मिली होती है ना, तो शापर जहाँ से आता पता नहीं चलता आया कहाँ से, मार के बैठ जाते हैं, फिर मार के बैठ,
0: लेकिन मैसेज कन्वे हो जाता है।
2: हाँ, एग्जैक्टली।
1: हम तो अपनी बाईसाइकिल्स को तैयार करते थे और उन्हीं पे फिर हम क्रूज करने निकलते थे, और इसके अलावा बस वही जो शर्ट्स पहन ली,
0: ठीक है,
1: और जैसे आजकल के बच्चे कर रहे हैं ना कि बाजा बजाना, वो
2: बहुत शरीफाना जश्न आजादी मनाई आपने।
0: अच्छा, मैंने इससे भी ज्यादा शरीफाना मनाई है, क्योंकि हम बचपन में झंडियां लगाते थे और लगाते भी आटे की जो होती थी ना, वो पतला सा आटा
2: तैयार करके, पानी ऐड करके,
0: बिल्कुल जी, हम उससे लगाते थे। फिर उसके बाद एक दौर आया कि जब वो धागे वाली झंडियां आई और थोड़ी आसानी हो गई, उसके बाद ग्लू से लगानी शुरू की, लेकिन हर 14 अगस्त पे बारिश होती थी।
2: एग्जैक्टली, बारिश ने सारा आटा सूखा दोबारा गीला कर दिया और फिर वो झंडियां इकट्ठी करो।
5: बच्चे थोड़े एडवांस हो गए हैं, मतलब हम तो गुब्बारे मारते थे पानी वाले, आजकल तो पानी में बकायदा कलर मिक्स करके उसमें गुब्बारे में भर के फिर मारते हैं,
0: ताकि कपड़े भी खराब हो,
2: निशानी छोड़ के जाते हैं ना,
0: निशानी छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आप लोगों ने वैसे बचपन में आटे वाली लगाई है झंडियां?
2: जी जी,
0: एक अकेले के लिए झंडी लगानी होती थी और बड़ी एफर्ट होती है, और बाद में आटा साफ करना भी एक काम होता है।
5: जी, झंडियां बनानी, प्रॉपर लगानी, 14 अगस्त आनी, बारिश हो जानी।
3: हमारे साथ भी ये था।
5: आज भी सुबह बारिश आई है।
3: आज मेरा ये सीन था कि मैं वैसे ही ओनली चाइल्ड हूँ, मेरा कोई बहन और भाई वाला कोई सीन नहीं है ही नहीं,
0: ठीक है,
3: तो मैं ये काम करता था रात को, मतलब पूरी प्रिपरेशन करनी, झंडियां रेडी करनी, आटा लगा देना और स्टार्ट हो जाना, सुबह उठ के देखना बारिश हो गई और वो सारा कुछ भीग जाता।
4: अच्छा, सिर्फ झंडियां लगाते होते थे, कोई हार नहीं बना, वो अंगूर बनाते होते थे एक।

0: लड़ी लगानी
1: मैं समझ गया, वो जो राउंड में कह रहे हैं ना,
0: हाँ वैसे वैसे
1: लगाते थे
0: अंगूर की शेप में,
1: बिल्कुल
0: वैसे भी बनते हैं
2: उसे अपने लोकल जमाने लड़ियां लगाना,
1: लड़ियां लगाना,
2: लड़ियां लगाना। नहीं वो इस प्रोसेस में जितनी डांट पड़ती है ना आटा जाया करने पे, अराउंड एक किलो आटा जाया होता है, कभी वो पतला बनता है मैटर, कभी वो थोड़ा कम बनता है, फिर पानी डालो फिर आटा डालो।
0: हमें तो कभी नहीं पड़ी, हमें तो कहते थे करो यार एंजॉय करो।
3: फ्लाइंग चप्पल भी
1: किस बात की, फ्लाइंग चप्पल किस बात की,
3: आटा वेस्ट करने पे ना।
1: अच्छा
0: बड़े सख्त है यार यहाँ पे तो बड़े।
2: नहीं वो एक आटे का रिस्क से फैक्टर जुड़ जाता है।
4: उस वक्त की तो अम्मी बहुत सख्त होती होंगी ना।
1: हाँ अम्मी अच्छा छोटे।
4: मैं बता क्या, मैं अर्ली 20s में अगर मैंने पाकिस्तान में सेलिब्रेट करना शुरू किया था, वरना मैं स्टार्टिंग के टाइम पे ओवरसीज था।
1: अच्छा आप ओवरसीज थे, लेकिन देखें आपका पेट्रियोटिज्म तो उतना ही है ना, जज्बा हुब्बुल वतनी तो उतना ही है ना।
2: अब मुझे समझ आ गया हम आदमी इतनी शरीफाना क्यों मनाई है अब तक।
1: साइकिल निकाल के चल,
2: वही वही सिर्फ शर्ट पहन के साइकिल चला के जश्न आजादी,
1: जश्न आजादी।
4: सर हमने बाजे भी बजाए हैं।
1: अच्छा
2: ये आप जिक्र किया है।
4: ये
1: हमने स्टूडियोज में जी ऑडियंस है हमारे लिसनर्स, हमने पूरा माहौल रखा हुआ है, हमारे पास बाजा भी मौजूद है और हम आपको आइडियाज भी दे रहे हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। खैर मुझे अपनी बचपन की याद है, हम भी बड़े शरीफ होते थे और उस टाइम पे कपड़ों का ऐसा इतना रिवाज नहीं होता था कि आपने ग्रीन और वाइट जबरदस्ती पहनना है या आपने कोई इस तरह का जो है ना पूरे अटायर ऐसा रखना, एक्सेसरीज तब इतनी नहीं होती थी। अब तो बहुत ज्यादा है ना, अब तो बाजार भरे पड़े हैं सर से लेके पांव तक, आपको हर चीज मिलेगी। उस टाइम में ज्यादा ट्रेंड जो है ना झंडियां लगाने, किसके घर के बाहर सबसे ज्यादा लगी है ना, वो एक होती थी, एक कंपटीशन होता था। और अब मैंने देखा अब नहीं है
0: वो ट्रेंड, लेकिन के साथ साथ बदलते रहते हैं। अब कपड़ों का ट्रेंड है, दूसरी चीजों का ट्रेंड है, गाड़ी पर निकलने का ट्रेंड
1: है,
2: लेकिन ये जो कपड़ों वाला सीन है ना, इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, एक सर्कुलेशन में चीजें आती हैं, खरीद ज्यादा बढ़ती है।
1: ठीक है,
3: झंडियां खरीद के लगाई है कि खेल के लगाई
2: है? हां हां
0: एग्जैक्टली, ये बात यहां पर कहने वाली है।
1: कोई एक्सप्लेन करे।
2: बेसिकली इसमें ना गेम खेली जाती थी अलग तरीकों से।
1: ठीक है,
2: आपके पास भी झंडियां, मेरे पास भी झंडियां, हम टॉस भी कर सकते हैं। अच्छा। गेस करने पे, या तो अगर आप हारेंगे,
0: इसका एक दूसरा भी नाम है।
2: नहीं वो रहने दो, उसको रहने दो,
0: समझ रहे हैं ना, वही नाम है, वही कहते हैं।
2: और अगर आप टॉस हारती है,
1: अच्छा जी क्या इसको क्या कैसे कैसे करते थे गेम ये?
2: बेसिकली आपके पास जड़िया, मेरे पास जड़िया, और डिफरेंट वेज हैं खेलने के। हम अब एक मिसाल है, मैं टॉस करता हूँ और आप गेस करें कि क्या आया टॉस में।
1: ठीक है,
2: और गेस करने से पहले ही आपने मुझे बता देना कि मैं पांच जड़िया इस पे लगा दी हैं अपनी।
1: अच्छा।
2: और अगर आपने गलत गेस किया तो आपकी पांच जड़िया।
0: भाई क्या प्रमोट कर रहे हो आप यहाँ पर?
1: अच्छा जी ठीक है ठीक है। लेकिन मैंने देखा इस साल में झंडियां लगाने का ट्रेंड काफी हद तक कम रहा है, क्योंकि अब वो बड़े फ्लैग्स, गाड़ियों पे निकलना, बच्चों ने हाथ में छोटे छोटे फ्लैग्स पकड़े हुए हैं, वो ट्रेंड जो है वो ज्यादा रहा है। और छतों पे मुझे नहीं पता आप में से किसने लगाया वैसे झंडा?
2: लगाया
0: छतों पे तो लगते रहते हैं।
1: नहीं लगते रहते नहीं, मैं गिनना चाह रहा हूँ।
5: झंडा तो हर साल ही लगता है,
1: हर साल लगता है। ठीक है जी, दो हो गए। और
4: मेरे घर में तो लगा हुआ है पता नहीं कितने सालों से, एक ही
1: झंडा नहीं आपने।
5: अच्छा मेरे ख्याल उतारना भी नहीं चाहिए झंडा ना।
1: नहीं मुझे नहीं, उतारना चाहिए झंडा,
4: पता चलेगा ना,
5: रोशनी दे देनी चाहिए,
4: पता चलेगा ना मोहब्बत पसंद लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सारा साल एक ही झंडा लगा हुआ।
1: ठीक है, लेकिन झंडे का एहतराम भी करना चाहिए। और खासतौर पर हमारे बचपन में तो हमें सिखाया जाता था ना, जैसे कोई झंडी गिर गई है हवा के साथ, बारिश के साथ, तो हमें बाद में ये भी सिखाया जाता था कि आपने इसको उठाना है, उठा के या तो किसी ऊंची जगह पे रखना है या अपने साथ ले जाना, कहीं सेफ करना है इसको।
2: रिस्पेक्ट का एक फैक्टर उसमें।
1: बिल्कुल,
2: हमारा मेरा एक क्वेश्चन था, वो झंडा इतने सालों से सलामत लगा हुआ है, कितने साल हो गए लगे हुए?
4: सर मुझे ये पता है झंडा लगा अगर नहीं हुआ तो चेंज कर लेंगे।
1: आपने ना अगले इंडिपेंडेंस पे चेंज कर लिया। ठीक है,
2: बिल्कुल।
3: माँ तो अच्छा बच्चा है, वैसे पिछले साल बसंत हुई है तो लोगों ने डंडे को निकाल।
1: जी जी,
3: माँ तो अच्छा बच्चा है, इनका कितने सालों से एक ही झंडा लगा हुआ है।
1: अच्छा।
3: लेकिन जो पिछले साल बसंत हुई है, लोगों ने झंडा उतार के अंदर रखा है और डंडे से
1: गुड़ियां। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक काम करते हैं हम, जरा ना एक न्यूज ब्रेक की, न्यूज ब्रेक कह रही, कमर्शियल ब्रेक के जाले बढ़ते हैं, और कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है ना लौट कर आते हैं, मजीद बात करते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट जी, कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं हम।
6: I love FM 101. सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: जहांगीर। और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सबकी पहचान बना।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: आजादी ट्रांसमिशन और हम आजादी ट्रांसमिशन जो है वो लाहौर स्टूडियो से सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ और ये ट्रांसमिशन जारी सारी है, सुबह से जारी सारी है और ये बॉयज का हौसला है, मैं कहती हूँ इनकी हिम्मत है और क्योंकि ये अभी यंग भी है, वैसे मैं भी यंग हूँ, हमने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वैसे मैंने हिसाब लगाया, लेकिन जी इनका हौसला, ये सुबह से बैठे हुए, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह 8 बजे के आए हुए हैं और उन्होंने सुबह 8 बजे से पूरा एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और अच्छे भी लग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ ने अभी भी ज्वाइन किया है, सो लेट्स सी कि इनकी एनर्जी कैसी है और इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करें, उस आज़ादी के बारे में बात करें और उन कुर्बानियों के बारे में बात करें।
1: मैं इससे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास हसीब हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर है माशाल्लाह और मिली नगमे भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, गाने भी बहुत अच्छे
2: तो सुनना चाहिए ना,
1: इनसे सुनते हैं,
0: आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं,
3: ये लिफ्ट अप कर रहे हैं उसको और उसके एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे हैं।
0: मैं हसीब की तरफ देख रही हूँ, हसीब कह रहे
4: नहीं मैं कुछ और सोच रहा था, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे व्हाइट बाल देख के भी मुझे नौजवान
0: अच्छा मुझे लगा आपने कलर किया, नहीं ये ऐसे ही है, कलर नहीं किया,
4: नेचुरल है,
0: नेचुरल
4: जल्दी व्हाइट हो गए हैं,
0: ये व्हाइट नहीं है कोई और शेड दे,
4: ये असल में मैं अपने टाइम में उन बुजुर्गों के साथ बैठा करता था जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, तो ये उनका
0: अच्छा जी जोक्स अपार्ट, लेकिन ये यंगस्टर्स हैं जिनके सामने मैं वाकई ये बात करना चाहती हूँ कि हमें उस टाइम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम तो थर्ड जनरेशन है, आप लोग वैसे थर्ड जनरेशन ही हो ना, थर्ड ही हो हाँ थर्ड ही है जी, हमें तो कहते हैं ना विरसे में मिली है हमें तो आज़ादी, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है और अब वो कहानी सुनाने वाले और वो जो सारा एक मूवमेंट थी, जो माइग्रेशन थी, जो इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई, उसके जो जिसे कहते हैं ना विटनेस थे, वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुनी है और अगली जो जनरेशन है उनके लिए आज़ादी का जज्बा कैसा होगा अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो फोर्थ जनरेशन है अभी बहुत छोटी है और हम तो फिर जेन जी में आते हैं, वो
2: अब छोटे होते हैं, छोटे होने के बावजूद भी बातें करते हैं,
0: बातें करते हैं, लेकिन जी जो चीज़ें हमें पता है या हमसे बड़ों को पता है और जो चीज़ें वो देख कर आए और उन्होंने वो जो सारा टाइम देखा, उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है, आज हम सेलिब्रेट करते हैं, हम बाजू की बात करते हैं,
3: बिल्कुल ऐसे
0: अटायर्स की बात करते हैं, एक्सेसरीज की बात करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना उस एसेंस को नहीं भूलना चाहिए, उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए और इस टाइम क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी यूथ बैठी है जिन्होंने अभी अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो मैं चाहूंगी कि ये जो है ना इस आज़ादी की नेमत को उतना ही समझें, क्या कहते हैं आप लोग?
3: बिल्कुल बिल्कुल सही आपने, मतलब इस बात क्योंकि वो एक ये एक ऐसी चीज़ है जो नस्ल दर नस्ल हम अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे,
0: बिल्कुल,
3: तो वो जानते जाएंगे और उन्हें वो सेक्रीफाइस उनको याद रहेगा कि ये मुल्क जो इस टाइम हमारे पास है ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिला, इसके पीछे बैकग्राउंड पे जो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, मेहनत और जितना उन्होंने अपना लहू और हर पसीना हर चीज़ दी है इस मुल्क को बनाने के पीछे, तो वो सब उनको याद रहेगा तो वो इसकी कीमत याद रखेंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू
0: बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे पास उस टाइम में भी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो तब भी हमारे पास चैलेंजेस थे, चैलेंजेस आज भी हैं, आज हमारे पास मुल्क है, हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, अब इस चैलेंजेस को जो करंट चैलेंजेस है उसके लिए ये नौजवान नस्ल क्या कर सकती है, हमारे पास क्लाइमेटिक चेंजेस है जिसके हमने अक्सर बात करते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए अब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम बात करते हैं कि प्लांटेशन करें, हम बात करते हैं कि हम इस तरह से एज अ सिटीजन क्या रोल प्ले कर सकते हैं।
5: एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, यह है कि जिस तरह आपने बताया चैलेंजेस हैं, तो अब कई बार ऐसे होता है हमारी यंग यूथ में भी,
0: जी
5: आप देख लें कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं भी देख रहा होता हूँ, जो कहते हैं कि यार क्या है, हम तो नहीं सेलिब्रेट करते 14 अगस्त को कि क्या इतने सारे चैलेंजेस, तो मैं उन्हें वैसे तो जाहिर है कोई जवाब नहीं देता
0: जी,
5: क्योंकि फिर वो बहस में पड़ने वाली बात होती है, बट मैं ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट उन ममालिकों को देखें जो आज़ाद नहीं है,
0: बिल्कुल,
5: कि उनके दिलों पे क्या गुजरती है, उन पे किस तरह वो लाइक किन किन चीज़ों को लेकर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम है,
0: बिल्कुल,
5: हम इजीली अपने मुल्क में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं,
0: बिल्कुल,
5: और हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं।
0: अच्छा आप तो ओवरसीज रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस मुल्क में रहे हैं,
5: कुवैत
0: में रहे हैं, चलिए वो भी एक मुस्लिम मुमालिक है तो वहाँ पे उस तरह की, लेकिन अगर आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जैसे आप रहते हैं ओवरसीज, तो उनको भी आज़ादी की जो अपने मुल्क में सांस लेने की, अब आप देखिए आप अपनी आज़ादी खुद मना रहे हैं, ठीक है, आपको पता है आपका पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन जितने ओवरसीज हैं अगर हमें सुन रहे हैं, तो वो इस चीज को मिस आउट करते हैं, वो उनको उस दिन काम भी करना पड़ता है, वो ईद वाले दिन भी काम करते हैं, हर ऐसा जो सेलिब्रेशन का हमारा दिन है बीइंग अ मुस्लिम बीइंग अ नेशन उस पे उनको ऑफिस
3: उन्होंने वो दूरी को फील किया है, बेसिकली एक्सपीरियंस किया है. और कहते हैं कि भले ही उन्होंने की बात ठीक है कि वो कुवैत में रहते थे या किसी वो भी एक इस्लामी मुल्क था, लेकिन कभी आपने देखा हो हम अपने किसी रिश्तेदार के या रिलेटिव के घर जाते हैं, होते तो वो भी अपने ही है ना, लेकिन एक फील होती है कि यार ये हमारा घर नहीं है. एग्जैक्टली ऐसी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, भले ही बेसिकली हर मुसलमान भाई है, लेकिन वो एक फील जो एक पाकिस्तानी होने की फील है वो अपने मुल्क में आके ही वो आती है.
0: बिल्कुल ऐसी है जैसे हम बचपन में ननियाल ददियाल जाते होते थे, तो कुछ 15 दिन के बाद घर आना, तो अपना घर एक अलग सुकून,
3: एक वार्म, एक वेलकम करता है घर अपना.
0: बिल्कुल
6: एक नेमत चाहिए हमारे लिए कि हम एक आजाद मुल्क में बैठे हुए हैं, और आजाद मुल्क में आजादी से रहना उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ हमारी फोर्सेस का है कि वो अगर बॉर्डर पे बैठी है तो हम यहाँ पे आजाद घूमने का आजाद मुल्क के अंदर, अगर वो वहाँ पे ना हो, सेक्रीफाइस ना करे हमारे लिए, तो हम यहाँ पे आजाद मुल्क में आजाद नहीं रह सकते.
0: बिल्कुल बिल्कुल. इसके साथ साथ उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो आज के दिन भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं. हम हर हॉलीडे हर फेस्टिविटी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो जो है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं.
6: मैम वीकेंड पे जो है नॉर्थन इंडिया का प्लान करते हैं, कहीं बाहर का प्लान करते हैं, तो इसका सारा क्रेडिट उन फोर्सेस को जाता है कि वो बॉर्डर पे बैठ के ड्यूटीज कर रहे हैं.
0: बिल्कुल जी.
1: इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि 14 अगस्त बेसिकली सिर्फ एक खुशी मनाने का दिन तो है ही है, इसके साथ साथ वो उन कुर्बानियों को याद करने का भी दिन है जिनकी वजह से, जिनके बदौलत हम आजाद मुल्क में बैठे हैं और आजाद पाकिस्तानी है.
0: बिल्कुल.
1: तो हमें इन चीजों को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए और उन कुर्बानियों को हमेशा सोचना चाहिए. ये तो बहाना ही होता है कि हमें एक दिन मिल गया, हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पूरा साल ही हमारे लिए एक आज़ादी है, और हमें बस उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए और उनके बारे में.
7: जी बिलाल भाई, ऐसे ही होना चाहिए, याद रखना चाहिए. अब कुर्बानियां होगी, आजादी होगी, अब हमारा इसमें रोल है, हमने क्या अदा करना है. हम अपने आप को संवारें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को संवारें, उनकी मदद करते रहें, और अपनी खुद अपनी मदद आपके तहत अपने आप को संवारते रहें.
3: बिल्कुल. आप
7: क्योंकि हम संवरेंगे तो माशा संवरेगा,
3: क्योंकि किसी भी मुल्क की पहचान वहां के रहने वालों से होती है. तो अगर इंडिविजुअली हम अपने आप पे अकेले अकेले काम करना शुरू करेंगे, अपने आप को बेहतर करना शुरू करेंगे, तो कलेक्टिवली हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाएगी.
0: बिल्कुल जी. आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमाद?
5: जी मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने अब जिस तरह के बात हुई कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, इसमें सबसे मेन रोल तो यही आता है कि हमने दरख्त लगाने हैं, हमने पौधे लगाने हैं ताकि हम अपने एटमॉस्फेयर को बेहतर कर सकें, और इस मुल्क की सफाई हमने रखनी है.
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल जी.
5: कोई दूसरा आके इसे साफ नहीं करेगा. अब जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बाहर का आके हमारे घर को साफ करे और हम अपने कम्फर्ट जोन में रहें. ये पहचान हमारे घर की पहचान हमसे ही है.
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, और ये घर हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है कि हम पाकिस्तानी हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी पहचान है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है, आपके पास एक मुल्क है, आपके पास पीस है, और आप सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, और ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है. बीइंग थर्ड जनरेशन हम शायद इस चीज़ को ऐसे फील नहीं कर सकते, लेकिन जो वहाँ से माइग्रेशन करके आए थे जब ये आज़ाद मुल्क का फैसला हुआ था, और जब मुसलमानों के लिए एक अलग आइडेंटिटी की बात होती थी, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, हम बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं ना पीटीवी पे, बचपन में हमने बहुत देखी, बड़े होते साथ देखी, रेडियो पाकिस्तान से हमने बहुत सारी स्टोरीज
7: देखी. ऐसे ही ऐसे ही. और ये बातों में एक बात रह गई.
0: जी जी.
7: हसीब ने हमें नगमा सुनाना था.
0: जी जी. अच्छा जी, हसीब आप पहले नगमा सुनाएंगे या मैं पहले प्ले कर दूं?
4: छोटा सा पैगाम भी देना चाहता था यही है कि आज के नौजवान को पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है.
0: बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट,
4: इस पे भी गौर कीजिए.
0: जी बिल्कुल,
7: पॉजिटिव रह के कह
0: रहा
1: हूं. और एक चीज और है, इसके अलावा हमें जो डिसिप्लिन है हमारा, उसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए. हमें सिग्नल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि आज इतना रश होता है बाहर, लोग सिग्नल को नहीं देखते.
0: अच्छा एक चीज और भी, आज रश तो है लेकिन उस तरह से रोड आपको पता थोड़ी खाली भी है, तो मैं कहती हूँ मोटरसाइकिलें धुड़ा रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना थोड़ा ख्याल रखें.
1: अभी हमने ये चीज देखी.
0: जी मैंने
6: मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज के दिन खाली रोड है, ठीक है, उसमें लोग सिलेंसर उतार के जो आजकल वन व्हीलिंग करते हैं उससे एहतियात करें काइंडली, कि इस जो है एक अच्छे दिन के मौके पे जो है वो उसमें अपने घरों में जो है ना वो शोक का माहौल बना दें कि आपके जो घर वाले हैं बाद में پریشان
0: لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بوائز بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے خود شاید یہ ایکٹ کیے ہوں گے.
5: کنسسٹنسی بھی رہنی چاہیے,
0: کنسسٹنسی بھی رہنی چاہیے, بالکل جی بالکل.
5: اور یس یہ چیز میں بھی نوٹ کرتا ہوں کہ ہم جب بھی نکلتے اسپیشلی ایسے اوکیشنز پہ تو ریش ڈرائیونگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہمارے سننے والے اگر کوئی گاڑی میں بھی ریڈیو لگا کے سن رہے ہیں تو کائنڈلی سیٹ بیلٹ باندھیں اور سیفٹی میجرز کے ساتھ ڈرائیو کریں, لمٹ میں رہ کے ڈرائیو کریں کیونکہ آپ کا پیچھے کوئی نہ کوئی انتظار کر رہا
4: ہے. ڈرائیو کرتے ٹائم باجا نہ بجائیں.
5: ہاں ایگزیکٹلی,
1: آپ کو سنائیں
0: باتیں نہ گھمائیں, چلے ہم آپ کی باری
3: نغمہ چھوڑ کے ساری باتیں کر لی,
0: ساری باتیں کر لی, چلے جی.
4: تھکا ہوں جیسا بھی ہے سن لینا,
0: کوئی بات نہیں جی.
7: تھکاوٹ سے کیا ہوتا ہے, اور سریلی ہو جاتی ہے آواز تو.
4: بٹ صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں آپ,
6: جب ذکر وطن کا ہو تو تھکاوٹ آٹومیٹک دور ہو جاتی ہے.
0: نہیں نہیں آپ لوگوں کی انرجی آج بہت اچھی ہے, آئی ہوپ کہ اچھے سنائیں گے.

0: not too bad.
1: Mere vatan.
0: All right, जी पाकिस्तान जिंदाबाद जी. और मुझे लगता है स्कूल में भी आमिली नगमे गाते रहते थे. था ऐसा
2: नहीं, मैम की असेंबली के टाइम ना वो होता था, लपे आती है.
0: अच्छा, वैसे असेंबली का दौर भी आप लोगों ने, वैसे अपने स्कूल में असेंबली आप लोगों ने तो देखी होगी. अब तो बहुत ट्रेंड चेंज हो गए. हमारे
3: असेंबलियों में होता था कि कोई आयरन डिफिशिएंसी कि कोई होते थे ना बंदा जिसे आयरन डेफिशिएंसी होती थी, तो वो गिर जाया करता था. तो फिर वो
2: एग्जैक्टली.
4: अच्छा, यहाँ पे हमारे दरमियान जो ना एक छुपा रुस्तम बैठा हुआ है जिसका नाम है हमाद. मुझे अभी पता लगा है कि ये बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है.
0: चले जी, हमाद बताया
3: नहीं, अब इसको पकड़ो.
2: कभी नहीं बताया.
3: सुनाओ यार
2: हमें.
5: चले कुछ सुना देते हैं.
2: बिल्कुल.
6: बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, इसका ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा कुर.

0: Neyse. Pakistan jaise mere
1: dil se. Very nice.
2: Thank you so much.
1: और किसी के पास टैलेंट है?
3: क्या बात है, कितने टैलेंट है,
4: टैलेंट खत्म हो गए
1: माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा आप लोग को पता हमारे जो
0: रेडियो पे कैसे डांस दिखाऊं मैं?
1: नहीं नहीं, रहने दे मुझे, नहीं
2: के पब्लिश कर देंगे।
1: नहीं नहीं, आप
0: हम ना थोड़ी देर पहले जब सर आरजे डॉक्स का शो था ना, उस पे वो लाइव थे, तो वहाँ पे डांस चला था, ये
1: अच्छा,
0: उसकी बात कर रहा है बेसिकली।
1: ठीक है, पिछला कॉन्टेक्स्ट
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही,
2: मैंने तो फिर वो मिस कर दिया।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: दोबारा करा लेंगे, हम जरा शो खत्म कर ले उसके बाद।
4: ये आरजे डॉक्स का हो चुका, तो हम कॉपी नहीं करेंगे वरना वो कॉपीराइट भेज देंगे।
0: हम डांस
2: से कुछ यूनिक स्टेप्स ऐड कर देंगे।
1: ठीक है जी, ठीक है,
2: फिर तो वो कॉपीराइट नहीं।
1: और जो वॉइस एक न्यूज़ ब्रेक के जाने, कमर्शियल ब्रेक के जाने में, तो न्यूज़ ब्रेक के जाने बढ़ती जा रही है, कमर्शियल ब्रेक के जाने भी बढ़ना, हमने कमर्शियल के बाद लौट कर आते हैं, मजीद बातें करेंगे, क्योंकि यूथ हमेशा मौजूद है और रेडियो पाकिस्तान एफ 101 के स्टेशन से जी ट्रांसमिशन जारी, सारी स्टे ट्यून्ड।
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का

हुसैन जहांगीर, और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान

0: from the house of 6B Food Industries.
1: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya
2: सोना से है कामयाबी स्कीम।

0: जी वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को और मेरे साथ जी स्टूडियोज में मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जी और मज़ा आ रहा है इस ट्रांसमिशन का और अच्छी ट्रांसमिशन है और ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करना अभी भी कर रहे हैं
1: इंशाल्लाह
0: अभी कर रहे हैं
2: जी जी मैम कर रहे हैं
0: कैसे
1: बल्लभ के सामने पाकिस्तान लिख के
2: मैम ये बड़ी नॉन सीरियस बात की है इसने
0: बाकी नॉन सीरियस बात की है
2: लेकिन मैं मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ
0: अच्छा
2: और अभी मैं HEC की तरफ से सिलेक्ट भी हुआ हूँ पंजाब लेवल पे उनका टूर्नामेंट हो रहा है
0: ठीक है
2: तो प्रॉपर लाहौर डिवीजन की टीम जा रही है
0: ठीक है जी एक तो नाम रोशन कर रहा है बाकी पांच का क्या ख्याल है
1: बिल्कुल नहीं नहीं मैं इस ये बेसिकली मेरे सीनियर है कॉलेज में दयाल सिंह कॉलेज से और कॉलेज लेवल पे भी ये खेलने गए थे और जल्दी बाहर हो गए थे
0: ये तो ये ऐसे होते हैं ऐसे दोस्त होते हैं
3: मैम इसके अलावा अगर मैं एडअप करूं तो मैं स्टडी के साथ लाहौर पुलिस में जॉब कर रहा हूं
0: वाह माशाल्लाह
4: क्या बात है
0: डॉल्फिन में आप
3: नहीं मैम मैं पंजाब पुलिस में नहीं हूं पंजाब पुलिस में हूं अभी मैं इसी वजह से लेट हूं मैं ड्यूटी पे था ड्यूटी ऑफ की है यूनिफॉर्म चेंज की है और यहां पे आया हूं
0: तो मैं थोड़ी देर पहले जिनका जिक्र कर रही थी कि जो आजादी नहीं मना रहे और आज भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे
3: हैं मैं उनमें से हूं
0: लेकिन अब आप आजादी मना रहे हैं
3: अब मैं ड्यूटी
0: अब आपका ऑफ हो गया जी ठीक है जी आप क्या कर रहे हैं मिली नगमों के अलावा
5: फिल वक्त मैं फ्री हूं सोच रहा हूं
0: क्या करूं
5: लेकिन कुछ अच्छा करूंगा
0: ठीक है जी पॉजिटिव है
6: मिली नगमे के अलावा पार्ट टाइम चीला भी है
0: क्या है
6: झीला
3: झीला वो कौन है
6: वो इसका कैरेक्टर है अच्छा। हमने यहाँ पे ड्रामा किया था उसमें ही झीला था
1: इनडायरेक्टली वो मोटिवेटेड है
0: अच्छा ठीक है जी पॉजिटिव है आप क्या करेंगे जी
5: कैरेक्टर यहाँ पे डिफेंस
0: आयरन डेफिशिएंसी के अलावा क्या वैसे आयरन डेफिशिएंसी भी एक मसला है लेकिन चलें उसपे उसके
3: उसपे आवाज भी उठ गई चलें अवेयरनेस
0: हो गई असेंबली काफी मुश्किल रहती होगी आपके लिए मैं अंदाजा लगा
3: नहीं डेफिशिएंसी नहीं है
0: मुझे
3: असेंबली से बचने के लिए ऐसे करता था
1: अब ये रात
0: ये मुझे लगता है स्कूल में लेट आता होगा तो स्टार्ट हो जाती होगी ऐसे ही कुछ हुआ
3: मैं आज तक स्कूल जल्दी नहीं गया
0: देखा पकड़ा गया
3: और 9-10 में तो बिल्कुल ही नहीं गया
1: ना अभी तो भैया ठीक है ना अभी तो डेफिशिएंसी नहीं हो रही
3: नहीं नहीं
0: अभी आप कॉलेज में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में
3: नहीं कॉलेज खत्म हो गया PU में दाखला लिया है
0: दाखला ले लिया चलो
3: मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया और फीस भी जमा करा
0: दी वाह जी वाह और देखिए
4: मुबारक हो
0: आपको
3: अब दुआ करें सप्ली ना आ जाए सेकंड ईयर में
0: नहीं नहीं
3: दाखला कैंसिल
0: फिर अगले साल फिर से तैयारी नहीं नहीं आप नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह मुझे
3: यू बहुत बढ़िया ध्यान से जाना थक नहीं जाना
6: वो लोग वहाँ कोई नहीं भाई
0: बस में न्यू कैंपस
3: हाँ नहीं हाँ हाँ कायदे आजम वाला
0: किस किस फील्ड में आपने अप्लाई किया
3: मैंने SCS स्कूल ऑफ मैंने किया कम्युनिकेशन स्टडीज BS कम्युनिकेशन स्टडीज
1: सब कुछ
3: मैं कम्युनिकेशन का मतलब
1: ना एक मुझे चीज खतरनाक लग रही फीस जमा करवा दी है उसने
0: और रिजल्ट
3: चले मैं भी वहीं पे हूँ SCS में उसका ख्याल रखूंगा आइडेंटिफिकेशन मैं कंप्लीट करूंगा आपकी वहाँ पे मैं सीनियर हूँ आपका वहाँ पे
1: आई थिंक आपको छोड़ देना चाहिए
3: ये डेफिशिएंसी की बात मैंने ऐसे
1: टॉपिक चेंज
3: मेरे पे ले गए हैं कि मुझे आयरन डेफिशिएंसी यार अल्लाह के बंदो खुदा का खौफ करो
1: सहबानों को
3: मैं करूंगा ना मैं ये मुंह पे बात डाल रहा
0: हूं नहीं नहीं नहीं आप जो पॉजिटिव रहे आप खाया पिया करें हमाद आप क्या हमाद आप क्या करेंगे जी
7: मैं तो अभी जस्ट कल ही मैं एक कॉन्सर्ट करके आ रहा हूं
0: अच्छा जी
7: स्पेशली फॉर 14th अगस्त मगर वो थोड़ा पहले हो गया
0: थोड़ा पहले हो गया कोई बात नहीं
7: आज मैंने उसी की वीडियो स्टेटस पे लगा दी
0: ठीक है आपने आवाम को दिखाया कि मैंने आज की है लेकिन कर आप कल आए ठीक है जी
7: नहीं मैं अपने कई दोस्तों की बातें भी सुन रहा हूँ जो कह रहे हैं कि भाई हम तो 18 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं वो सुन भी रहा होगा उसे बता होगा
1: प्री सेलिब्रेशन किया हम आपने
0: प्री सेलिब्रेशन किया बिल्कुल जी अब तो सोशल मीडिया का दौर है अब तो आपको हर चीज बतानी और दिखानी भी पड़ती है अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी तो वो भी आपने दिखानी है कि आप
3: सेलिब्रेट कुछ भी करने पहले स्ट्रिक जाएगी
0: हाँ ये बात तो है अच्छा लेकिन बहुत डेंजरस है आपको पता है
1: जी जी ऐसी
0: किस्म
3: मैम एक आदत सी पड़ गई है मतलब जेंजिस को ना कुछ भी करने से पहले स्नैप बनानी है
2: मैम ये डेंजरस क्यों है आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगी
0: डेंजरस इसलिए क्योंकि आप अपनी पता नहीं कौन कौन सी माइनर डिटेल्स लोगों को दे रहे होते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं समटाइम्स आप क्या खा रहे हैं आपके इर्द गिर्द क्या है
2: लेकिन मैम मैं भी यूज करता हूँ स्नैपचैट लेकिन मेरे पास सिलेक्टिव लॉग हैं जिनके साथ मेरी स्ट्रीक्स वगैरह चलती हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको शेयर करने में या दिखाने में कुछ तो
0: शायद
5: आपका सर्कल बड़ा अच्छा है हमारे सर्कल में जो स्ट्रीक बनाने लगता है उसको कुछ नहीं मिलता
1: मेरे हिसाब से बेसिकली वो कहना बेसिकली
0: कि खाना आया तो टेबल पे आपने कहना नहीं नहीं पहले पहले पिक्चर बनानी नहीं, पहले पिक्चर बनानी
5: एक दो बच्चे थे उन्होंने दो दफा ऐसे किया बाद में वो हाथ धो के चले गए
0: ये भी ठीक है सबक सिखा दिया
1: असल में मेरे ख्याल बिलाल कहना चाह रहा है कि प्लेटफॉर्म को यूज करने का वे अपना अपना
0: वे होता है बिल्कुल
1: वो प्राइवेसी के हिसाब से यूज करते हैं ब्रीच नहीं होती इसलिए उन्होंने सिलेक्टिव लोग रखे
7: कई लोग तो बिल्कुल इस चीज में प्राइवेसी नहीं रखते कि उन्होंने कुछ भी खाना है पीना है कहीं आना जाना है तो वो लाजमी वो कोई ना कोई स्ट्रीक लगाएंगे अच्छा बीच में कई लोग ऐसे भी निकल आते हैं उनके स्ट्रीक देखने वाले जो कहते हैं भाई अकेले अकेले
0: अच्छा ये भी बहुत मसला है अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप मीन टाइम में पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं ना तो हमें नजर लग जाती है
1: नहीं मैम सिर्फ नजर नहीं लगती समटाइम्स अगर आपका दोस्त आपके घर से 5-10 मिनट दूर है आप पहुंच भी जाते हो मैं पहुंचा हूं मेरा दोस्त एक जगह घर के पास ही ना
0: कितने एक्टिव यूजर
1: एग्जैक्टली उसने ना कुछ डाला और 3-4 मिनट पहले की स्ट्रीक थी और मैंने ओपन की वो मैं 5 मिनट के अंदर मैं उसके पास पहुंचा और उसने खाना शुरू किया था क्योंकि पहले तो फोटो बना रहा
0: पहले फोटो देखा इसलिए हमेशा ना आप लोगों ने लिसनर्स आप लोगों ने लेटर ऑन पोस्ट मैंने
4: फिर मिला जो खा रहे थे
2: मेरे बहुत दोस्त हैं जो उधार मांग रहे होते हैं फिर उनकी स्ट्रीक्स आती हैं वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे बैठे होते हैं लेकिन उससे पहले उधार मांगते हैं भाई ये जरा थोड़े से पैसे भेज दो
5: उधार मांग के वहां पहुंचते हैं ना
4: शौफ शौफ चलता रहता
0: है
4: उनका
0: बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल ऐसी है
4: फिर उधार वापस करते हैं या फिर
2: बट सर अभी भी इंतजार कर रहा हूँ मैं मिल जाए मुझे
4: इंतजार ही रहे
1: उधार मिलेगा और फिर ये कुछ खाते हुए स्ट्रीक डालेगा
4: और हम पहुंच जाएंगे
0: अच्छा मुझे बताएं कि अगला मिली नगमा कौन सा प्ले करें अपनी अपनी चॉइसेस बताएं आपके बचपन में मिली नगमा कौन से थे
1: वैसे मैंने वो बचपन में बहुत सुना है
4: वो लगा दे दिल की हिम्मत वतन सीधा रास्ता वतन
1: हाँ वो भी अच्छा
4: है
0: अभी अभी अभी पहली सजेशन आई थी यूं दी हमें आजादी चले जी हम वही लगाते हैं वैसे आप लोगों के वॉइस अभी कोई प्लान्स हैं अभी यहाँ से निकलने के बाद
1: मुश्किल ही है
0: कोई खाने पीने का प्लान नहीं वैसे मैंने देखे खाने पीने के भी बहुत सारे प्लान्स हैं
1: स्ट्रीक्स देख के डिसाइड करेंगे
0: नहीं नहीं मुझे लग रहा है ये स्ट्रीक्स देख के डिसाइड करेंगे किसके पास जाके खाने
1: वो जो ज्यादा अच्छे अच्छे डालेगा ना स्नैप उसके पास जाएंगे ना कि क्योंकि वो ऑलरेडी खा रहा है वो चीजें तो उसे कहेंगे भैया आपकी चॉइस बहुत अच्छी है आपके साथ ही जाना चाहेंगे
0: ठीक है जी आपके साथ ही जाना चाहेंगे
5: मुझे इनमें कुछ प्रोफेशनल
2: हमने वो चाय मंगवाई हुई अभी तक नहीं आई
5: वो तो बना रहा है ना
1: वो लेने गया था मुझे लग रहा है वो पाए बनाया कल आएगा
4: ये मोमबत्ती ये अबू बकर भाई ना प्रोफेशनल स्टॉकर लग रहा है
1: नहीं
4: ये ना शक की निगाह से मैं देख रहा हूँ इसे प्रोफेशनल स्टॉकर है ये
0: शो का हिस्सा बन सकते हैं ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं और उसके साथ साथ फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/f11 लाहौर के पेज पे आपने जाना है जी पोस्ट अपडेट एंड लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं चाय आ गई है यहाँ पे तो आप मेरी मंगवाई कि नहीं मंगवाई आवाम बहुत ज्यादा है लेकिन जी मिली नगमा
1: स्टार्ट आपसे करेंगे ना सर्विंग आपको पहले देंगे
0: थैंक यू जी थैंक यू ये कौन सा मैंने लगा दी चेंज करते जी फरीहा परवेज की आवाज में लगाते हैं जरा सुनते हैं जी उनकी आवाज में

0: पहले ही आप उस दिन एडवेंचर की बातें कर रही थी।
1: अच्छा अच्छा।
0: मुझे इतना जोश आ रहा था और आप ऐसी बातें बता रही थी, मैं रात सारी वो कपड़े देखती हूँ, एक्साइटमेंट होती, इमेजिनेशन करती हूँ, अभी ऐसे करती रहती हूँ।
1: अच्छा।
0: ट्रिप पे जाना होता सारी रात मुझे नींद ही नहीं आती,
1: मुझे भी नहीं आती। लेकिन ये बॉयज जो है ना, ये जो सडन प्लान करते हैं ना, इनका तो कोई मसला ही नहीं है, कपड़े भी ना ही रखे, पैकिंग भी नहीं की, बस निकल गए।
2: एक ट्राउजर इनफ है, एक ट्राउजर एक शर्ट इनफ है,
3: इतना सडन भी नहीं, तेरा लग ही चल रहा है।
0: बॉयज ही एंजॉय करते हैं, हमने कहीं जाने तो हमें पता हमें ये होता है कि कपड़े पहनने हैं।
1: लड़कियों की जो तैयारी होती है ना, लड़कियों
0: की ड्रेस पहन के शादियां भी देख ली, मर्गी भी देख ली, यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वाइट ड्रेस और हमें इतना स्यापा होता है तो
1: बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मा, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। ठीक है जी, हम जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। ओके जी, ओके जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बिस्मा ये कह रही है कि लड़कों के पास ना एक चिट्टी शलवार कमीज होती है और एक काली होती है, और ये पहन के ना हर इवेंट में चले जाते हैं, हर दिन, हर फेस्टिविटी, हर चीज सेलिब्रेट कर लेते हैं।
2: मेरी शलवार कमीज का कलर थोड़ा चेंज है।
1: नहीं, वो वैसे कॉमन जो एक है ना, कि मतलब किसने पहचाननी है यार, लड़कियों को कलर याद रहते हैं कपड़ों के। अभी भी आपने देखा 14 अगस्त पे लड़कियों की ज्यादा तैयारी है, बच्चियों की ज्यादा तैयारी है। बात सच है,
3: हमारे फायदे चार है ना।
1: नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, अपनी कलेक्शन बताना चाह रहे हैं?
4: नहीं नहीं,
1: अच्छा
3: आ, नहीं आप, आप
4: मेरी मेरी ये भाई कहां से वाइट लग रहा है आपको? ये
1: आपको पता है इतनी कलर फैमिली है, इतनी वो कलर वो है कि आप ये नहीं कह सकते कि ऑफ वाइट है, क्रीम वाइट है, ये है वो है, वाइट को वाइट।
5: और तुम
1: हमारे साथ जो है ना अभी स्टूडियो में एक इंसान जो है वो चले गए, उनको आयरन डेफिशिएंसी। हमें जो है ना दो और नए नौजवानों ने जो है ना ज्वाइन किया, तो मैं चाहूंगी कि अपना इंट्रोडक्शन दे। तीन ने किया, ओहो एक और भी है। अच्छा, ये भी पूरा जो है ना इंडिपेंडेंस डे वाली टी शर्ट पहन के रखे, आप इसे शुरू करते हैं जरा।
6: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: आपकी भी सेहत जो है ना इजाजत नहीं, सुबह 8 बजे तो नहीं आया?
6: नहीं नहीं, मैं तो अभी 6 बजे आया।
1: अच्छा फिर ठीक है। नाश्ता किया था खाने?
6: नाश्ता मैंने नाश्ता वैसे नहीं किया था, और खाना भी मैंने नहीं खाया, आके चाय पिए 2 दफा।
1: चाय पे
3: अभी मैं चाय वही बेचारा लेके आया।
1: चाय आपके बारे में पता क्या कह रहे थे कि चाय नहीं पाए लेने की?
6: वो अब बनाई बड़ी देर से रहा था वहाँ पे, एक तो रश बड़ा था, उसके बाद उसने मुझे देखा कि यार अच्छा अपना इस तरह रेडियो से आया, चले आप बैठे आप चाय पी। मैंने बताया ना कि मैं रेडियो पाकिस्तान से आया, तो कहता चले आप बैठे, आप बैठे आप चाय पिए। मैं एक चाय मैंने वहाँ पे पी, फिर एक चाय मैं यहाँ पे।
3: उन्हें लगता है जैसे
6: नहीं, उसने पैसे नहीं लिए मेरे से,
3: ये बात हमें अब पता चली।
6: उन्हें
3: लगता है जिस तरह रेडियो में ना आराम से गुफ्तगु होती है, इस तरह चाय भी आराम से बननी चाहिए।
6: हाँ बिल्कुल,
3: उसने कहा सुकून से, वो पहले खुद पी के आया और फिर उसने कहा मैं वो,
6: मैंने वैसे पैसों की ऑफर की थी
1: उसको।
6: उसने मुझे कहा शक्कर वाली चाय बना के दे, मैं फिर
3: तो हमारे लिए फीकी चाय।
6: नहीं नहीं, आपके लिए भी शक्कर वाली?
3: नहीं भाई, हमारे लिए फीकी चाय थी। हम
6: या फिर आपने पी नहीं?
3: मैंने पी है यार,
1: आपकी
3: हेल्थ की परवाह करते हैं।
1: वो डालना भूल गए होंगे।
3: नहीं नहीं, हेल्थ की परवाह उसे।
1: चले अच्छी बात है। अच्छा जी, दो लोग और हैं, आपने सॉरी अपना नाम नहीं बताया।
6: अली अहमद।
1: अली अहमद है हमारे साथ जी, और ये पूरा जो है ना थीम फॉलो करके आए हैं। दो और लोग हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करा दीजिए
7: जी। मेरा नाम मोहम्मद बलाल है और मैं शोबे के अखबार से एक नर्स हूँ, और आज मैं आपके दरमियान।
1: वेरी नाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई डिफरेंट फील्ड से जो है ना कोई आते हैं।
5: और तुम मिलो।
1: और जी एक और भी है ऐसा नौजवान, आप भी कुछ।
8: सलाम अलैकुम, मोहम्मद रेहान मिर्जा, रेडियो पाकिस्तान से।
1: आप भी इंटर्नशिप प्रोग्राम का?
8: जी बिल्कुल, मैं भी।
1: अच्छा, मुझे बड़े लग रहे थे आप इनसे।
7: नहीं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है।
1: नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आवाज आप सबकी बहुत अच्छी है।
9: अभी लगा हमारी गलतियां पकड़ी रहेंगी।
7: बिल्कुल बिल्कुल, वो वॉइस ओवर भी करते हैं माशाल्लाह।
1: नहीं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मोटिवेशन तो बहुत है। अभी हम देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। लेट्स सी जी 04211111 पर कौन है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
10: जी वालेकुम सलाम बेटा, आपको तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप?
10: आजादी मुबारक। मैं मोहम्मद सलमान बाग कुन्नाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ। ये वतन की, प्यारे वतन की बातें होती है ना, इसलिए बार बार

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम भजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी या चौगुनी तरक्की पर फरमाए। आमीन। तो मानो

0: 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, आप लोग हमें इन प्लेटफॉर्म्स के तवसुत से बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने एक ट्रैक की जानिब, क्यों गुलाम अली
1: मिली नगमा होना चाहिए,
0: मिली नगमा होना चाहिए,
1: चेंज होना चाहिए, जरा जितना आगे सरूर आ रहे हैं ना वो सरूर डबल हो जाए।
0: बिल्कुल जी, ये मिली नगमा जो है हम अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से बात को आगे लेकर चलेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है कैसे 14 अगस्त को मना रहे हैं, क्योंकि अभी भी 12 बजने में वक्त है और आपका हमारा साथ तकरीबन 10 बजे तक।

खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक बार फिर से आपके अपने शो स्पेशल शो जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम ओनली ऑन रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 लाहौर। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर और मायनाज़ आरजे सर गुलाम अली जावेद साहब।

0: है तो हम हैं। और आज इस प्रोग्राम में थोड़ी सी ये बात छेड़ने का या बात करने का मकसद भी है, हमने आज़ादी भी मनानी है, हमने जोश व खरोश के साथ ये तमाम तर चीज़ें जो एंजॉय भी करनी है, बट उसके साथ साथ इन टॉपिक्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सर मुझे ये बताएं कि अभी आप खाने में क्या खा कर रहे हैं, मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि लवाजमात आपने किए हैं।
1: देखो मैं आज दो दावतें खा दी।
0: अच्छा, दो दावतें
1: क्यों? मैं आज़ादी दे वाले।
0: अच्छा,
1: तो मैं खाने के मशहूर हाँ, क्योंकि मेरे लिसनर नु पता है कि मैं बड़ा खाना तो बड़ा स्टोर कर लेना।
0: अच्छा,
1: तो मैं चंगा रज के खाधा है।
0: लेकिन
1: हूँ मैं पता चलिया कुछ तुम भी पकवा के लाए आए हो, कुछ पैक हो भी पिया है, तो लाइन अप लगा पे गल ठीक है।
0: नहीं, अभी कुछ लवाजमात थे जो हमने तमाम किया। मुझे पता है इतनी फिटनेस का क्या राज है, पर इतने माशाल्लाह फिट हैं आप, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं?
1: मुफ्त लाभ जावे तो चंगा राज के खा लेना, अपने घरों खाना होता थोड़ा खाना, इस वजह तो फिट रहना।
0: सही हो गया सर। नहीं, बाकी में आप फिट भी हैं साथ साथ। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में जो आई है वो ये है कि हम जो हैं वो देख रहे हैं कि हम तकरीबात कर रहे हैं और हर जगह पे जो है जोश व खरोश के साथ लोग मना भी रहे हैं, मगर एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये कि इस बार लोग जो है एहतियात भी काफ़ी चीज़ों में कर रहे हैं, दूसरों का ख्याल भी कर रहे हैं, और स्पेसिफिक एरियाज़ में रह के जो आज़ादी के जितनी भी फेस्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो की जा रही हैं, और लोग जो हैं वो, आपको लगा कि इस बार तंग नहीं हुए?
1: नहीं, लोग तंग नहीं हुए, लेकिन लोग निकले ज्यादा ने इस दफा। मसलन मैं हूँ माल रोड ते आया, ते अगर किसी ने वेखना है कि लाहौरिया की ने या पाकिस्तानी की ने या यौमे आजादी की होंदा, ते वो माल रोड ते निकल के जरा वेख लवे, उन लग जाएगा पता। इंज लगदा कि पूरे दा पूरा लाहौर माल रोड ते आ गया, और हर चेहरा जेड़ा ना वो बड़ा पुरसकून मसरूर नजर आंदा है, और चेहरे दे विच एक जेड़ी समाइल और सैटिस्फैक्शन आ रही है। इस वक्त पता है लगता है कि साडी हुकूमत, साडे इदारे, साडी कौम एक पेज ते एक सोचते ने, पेज आखना भी होर गल है, सोच एक के नजरिया है के, और चस आ गई भाई सानू अपने मुल्क दे विच रहण नाल, अपने मुल्क नाल मोहब्बत करण दा सवाद आ गया।
0: बिल्कुल ऐसी है, और जो अभी मुआहदे भी हुए हैं और जो तमाम तर मामलात हैं, हुकूमत पाकिस्तान को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट और हमारी तमाम तर मुसलाफाज के।
1: भाई जान कुछ अरसे तो पहले तो तुसी वेखो तो उस तो लग के ते हुण तक पाकिस्तान दा जेड़ा ग्राफ इंटरनेशनल लेवल
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो बेहतर तो बेहतर होंदा जा रहा है, बेहतर तो बेहतर। साडे जेड़े आर्मी जनरल ने, साडे प्राइम मिनिस्टर ने, साडी हुकूमत ने जेड़ियां पॉलिसियां ने वो बड़ियां पॉजिटिव ने।
0: बिल्कुल,
1: और पॉजिटिव सिर्फ अपने मुल्क दी हद तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल, और वीएन जेड़ा है उसकी वजह तो असी पूरी दुनिया ते मकबूल हो रहे हैं। ना सिर्फ साडी इज्जत वध रही है बल्कि पूरी कौम की इज्जत वध रही है, और साडे इदारियां दी एक जिहड़ी पहचान आ वो मजीद बेहतर हुई है।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इसी के साथ मुझे लगता है कि हमें एक अपने ट्रैक की तरफ बढ़ना चाहिए, मिली नगमे की तरफ बढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर वापस आएंगे और आप लोगों के कमेंट्स को और आप लोगों की कॉल्स को शो का हिस्सा बनाएंगे।
1: बिल्कुल बनावांगे, और साडा नंबर है 04221100101। इस ते गल करो ते अज असी दोवें बिरा बैठे हां ते चस उसी तुहाडे नाल गल करन दी। दिहाड़ा जो खुशी दा दिहाड़ा, ईद दा दिहाड़ा, कंजूसी केड़ी गल दी फिर?
0: बिल्कुल जी, ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद फिर वापस आते हैं। कहीं मत जाएं, सुनते रहें रेडियो पाकिस्तान FM 101।

from the house of 6B Food Industries.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas tapal dane dar.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: मेरा इनाम पाकिस्तान। और ये आज़ादी और आज का दिन जो है हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्यों गुलाम अली जावेद साहब?
1: अल्लाह दा वो वड्डा एहसान है कि जेड़ा असी सारी जिंदगी ओदा शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। आज़ाद मुल्क दे विच रहना, आज़ाद फिजावां दे विच

0: फ्रॉम द हाउस।
1: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: खुश आमदीद कहेंगे तमाम तर खूबसूरत समातों को। एक बार फिर आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर स्टेशन से आपका फेवरेट शो यानी कि आज के दिन का फेवरेट शो, जिसको कहते हैं जश्न आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन विद गुलाम अली जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और वो कह रहे थे कि ब्रेक पे जाने से पहले कि मेरे पास और भी कुछ पैगाम हैं, कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। जी सर,
1: मैं रिक्वेस्ट आने मतलब असं नहीं आ सकते, रिक्वेस्ट जी है लिसनर है एक काम असी और करिए, साढ़े घर मासी अमदी काम करने वाली, बाजी अमदी काम करने वाली, ओदे बच्चे होंदे ने,
0: बिल्कुल
1: किसी एक बच्चे दी असीं जिम्मेदारी लै लवीए, उनको भी बया बच्चा तू पढ़ा, इहदी फीस जिहड़ी है ओह मैं देंगा, एक क्लास ही नहीं ओदा जिम्मा लै लो, जिवें अपने बच्चों का या रिश्तेदारां दा लईदा, देखना याद रखना कि वह बंदा ही एक बच्चा ही तुहाडी बख्शिश का सबब बन सकदा। तो इंज कर लो ना कि जिथे असीं खर्चे करदे हां, बहुत सारे असी एवं फजूल खर्चिया कर रहे हैं, असी वो पैसे अगर महीने के बचा लवीए तो बचा के किसी एक बच्चे की फीस दे जाइए और वो कोई 5-7 साल 10 साल तक वह जिम्मा चाह लवीए तो मैनू नहीं लगता भी साड़ी अनेकी जाया जाएगी। हो सकता अल्लाह पाक किसी के बदले साढ़े सारे गुनाह बख्श दे, हो सकता अल्लाह पाक ये बदले साडे कारोबार रिज़्क च इजाफा कर दे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना कि मेरे नाल एक कारोबार है और मुनाफे वाला कारोबार है। फिर मिसाल दी गई कि जिवें एक तुसी अनाज का दाणा जिहड़ा है ना वह तुसी बो देंदे हो, उहदे विच इक कोंपल निकलदी, कोंपल दे विच इक सिट्टा है, सिट्टे दे विच 100 दाणा बीजिया, एक सी दाणा 100 निकला, अगर वह 100 बीजोगे तो फिर कितना निकलेगा 1000। तो यही अल्लाह ताला मुनाफा इंज देंदा बंदे नू कि जिवें असी जमीन दे विच बीज बोने हैं तो वो मद्दे मुकाबले असी पूरी फसल लै लें। सो असी जदों किसी दे नाल चंगा करांगे और रजाए खुदा वास्ते तो फिर अल्लाह भी साढ़े नाल अपनी मखलूक के बदले के अपने बंदे के बदले के होर चंगा करेगा।
0: बेशक बेशक, हमारे साथ कॉलर भी हैं, एक कॉल ले लेते हैं जी। गुलाम अली जावेद साहब बहुत अच्छी बात की जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम सर, कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
1: और बोलो भी, आ किधे भाग गए हो?
0: हेलो,
1: कॉल गई है, कट्टी मेरे ख्याल
0: मेरे ख्याल से कॉल कट गई है जी।
1: कोई गल नहीं, दोबारा आ जाएंगे 0420111001। आरजे अरहम भट्ट और मैं बंदा नचीज थोड़े नाल गुलाम अली जावेद, और टाइम रह गया ने थोड़ा गल करनी ने तो भज पवो, तुम खावन तो मसरूफ हो और किसी वेले काम ही खादा करो, साढ़े नाल गल कर लो। मैं खप खप के थक गया, तुम्हारी तो अं चमा चाल प्लेट वाली तवज्जो इंज तो ना करो ना भाई।
0: तो फिर उतनी देर हम एक ट्रैक सुन लेते हैं और ट्रैक सुनते हैं फिर वापस आते हैं और यहाँ से फिर आप बातों को आगे लेकर चलेंगे।
1: मैं लगता है भट्ट साहब भी अपने को कुछ रखी बटन खान पीन जस्तू ना मिली ना मेरा सारा
0: आज जी। मैं मेरे आगे भी एक समोसा पड़ा हुआ तो मैं चाह रहा हूँ उसको खा लूँ और फिर उसके बाद वापस आते हैं और यहाँ से बात को आगे लेकर चलते हैं। कहीं मत जाए, सुनते रहे रेडियो पाकिस्तान स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: पाकिस्तान
1: जिंदाबाद
0: जिंदाबाद।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका ये मैसेज सबसे अच्छा मैसेज है
0: जी। सलामत रहे सर, आबाद रहे।
2: अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज जी, राम बहुत शुक्रिया जी। देखें कॉल्स रुक नहीं रही थी।
2: आने दें जी।
1: अस्सलाम वालेकुम,
2: आजादी का दिन है आज।
1: जी जी जी जी।
3: वालेकुम सलाम
1: जी। कौन साहब, कहाँ से?
3: सलीम टेलर, इसरे बाजार से, घर से बोल रहे हैं।
1: क्या
2: चलो शुक्र है, आई तो घर बैठने में इजाजत मिल गई है। आई तो घर दे बर्दाश्त कर ले घर।
1: हाँ जी सलीम,
3: मेरा बेटा हसन आपको जश्न आजादी मुबारक कह रहा है।
1: बहुत शुक्रिया
3: सलीम।
2: हसन सलीम नु साडे तरफों भी आजादी मुबारक कहो।
3: मुबारक कहन मुबारक।
1: जिंदाबाद पाइंदाबाद। और
2: प्रोग्राम दा वेला मुकरण वाले पासे भी आ गया ते कल्ला भी हैं। चलो जी, नदी किस्मत तो मिल जानगी, दो कल्ला सा और लेनी।
1: ओके जी। अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
4: सर। गुलाम अली जबीर साहब, मोहम्मद उस्मान मुगल।
2: बिस्मिल्लाह मुगल साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो?
4: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी ठीक हो? खरियत है
2: सब? फिट फाट।
4: तुहानू डबल डबल मुबारक हो सन।
2: खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।
4: सब तो पहले जश्न आजादी मुबारक।
1: जी जी।
4: फिर जश्न मिला
2: मिलाद उन नबी मुबारक। बिल्कुल जी, भी अगले दिन मनावना है इंशाल्लाह, बढ़ चढ़ के मनावांगे
1: इंशाल्लाह।
2: बहुत शुक्रिया, टाइम थोड़ा है, आखिरी कॉल असी लेनी है जी।
1: जी जी बहुत शुक्रिया जी।
2: लो जी एक कॉल असी और ले लवांगे, जी किस्मत तो होगी मिल जाएगी
1: जी। सर लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम।
1: कौन साहब कहाँ से?
5: मैं अब्दुल रहमान, दरिया रावी से।
2: आई ते रखो जी, रावी वाले हो, की हाल है?
5: हां जी ठीक हां, शुक्र है अल्लाह दा। आप सुनाओ? ठीक,
2: अल्लाह दा करम। टाइम थोड़ा ते आई दे दिन दे वाले ना कोई पैगाम देना चाहोगे?
5: हां जी पैगाम देना चाहेंगे। हमारा पाकिस्तान मुल्क ना बहुत अच्छा है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की करे।
2: हमने इसकी हिफाजत भी करनी है।
1: जी जी
5: हां जी, हमने इसकी हिफाजत भी करनी है, और हम इसने ना हमारा
1: मुबारक बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत लंबा मैसेज है, 14 अगस्त यौम आजादी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। यौम आजादी, मुल्क हर किस्म की आफत, बिल्कुल अल्लाह ताला आप सबको रखे। इसके साथ साथ हमारे
2: नाम बोल दो ना।
1: जी जी, मैं अली अहमद जट के ही ज्यादातर मैसेजेस हैं। फिर उसके साथ साथ जो हमारे मैसेजेस हैं 4471 पे, बादल गंजनफर कियानी, आज़ादी मुबारक हो, पंजाब गवर्नमेंट, सीएम मरियम नवाज़ फाउंडेशन, जदीद हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आबिद अली हमें कह रहे हैं जी। इसके साथ साथ कराची से हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, वसीम है, और इसके साथ साथ मदीहा है, और भी कई एक लंबी फहरिस्त है लोगों की। इसके साथ साथ हमारे साथ जो फेसबुक पर जुड़े रहे लोग, उनका भी अगर मैं नाम शामिल करता चलूँ तो उसमें हमारे साथ साथ जो हैं ये भी खुल नहीं रहा, ये मेरे सामने ही है। तो आप सर कोई बात कहना चाहें कि फाइनल कंक्लूड करेंगे?
2: देखो जी, मैं तो पैगाम देता है, हर बंदा दरख्त लावे।
1: बिल्कुल,
2: मैं आख्या जी अपने बचत दे विच्चों किसी गरीब नू पढ़ाना शुरू कर दियो।
1: जी जी।
2: कोई ऐसी बच्ची है जिदी शादी है तो उनु, अगर उदी हसरत है कि उनु अच्छा जेज मिले और उदे वालदैन नहीं पे कर पांदे, कुछ उदे लई ओह कर लवो। तो तुसी जेड़ा काम कर रहे हो उनु सिर्फ सोच च बदलो, इस वास्ते कि एक काम असी अपनी जात लई नहीं कर रहे बल्कि अपने मुल्क लई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मुल्क मजबूत होगा।
1: बिल्कुल ऐसी है, मुल्क मजबूत होगा, और मुल्क जब मजबूत होगा जब हम दूसरों का ख्याल रखेंगे। आयत फातिमा भी हमारे साथ मौजूद थी, और एक लंबी फहरिस्त है, अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकी मामला है। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। सर का प्रोग्राम जो है इतवार को, सर आपको मिलेंगे, और इंशाल्लाह मैं भी आपको जल्द जो है वो ज्वाइन इन करूँगा। तब तक के लिए सिर्फ एक छोटा सा पैगाम पे मैं ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा और जिंदा रहेगा।
2: पाकिस्तान
1: पाइंदाबाद।
2: पाइंदाबाद।
1: बहुत शुक्रिया जी।

0: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour,
3: Pakistan. Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh ne 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की पहली सालगिरह के मौके पर कौम के नाम पैगाम में फरमाया, कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं, अब ये आपका काम है कि ना सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें, सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सबकी पहचान बना।
2: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: क्या बात है जी, माइक इधर से उधर हो रहा है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए यही मज़ा है कि आप के माइक्रोफोन भी चेंज हो रहे होते हैं, आपकी बातों में वो चीज़ें भी नहीं रहती। अच्छा जी, सदाकत मोबाइल से मुझे कॉल करें, आई डोंट नो क्या वजह है सर, एक दफ़ा फिर आज मैदान में
1: जी,
0: गुलाम अली सर तुम्हें जान नहीं था, मतलब पिज्ज़ा खाए बगैर आज
2: पिज्ज़ा मेरे दिल की गल की थी ये
0: पिज्ज़ा एक बार फिर बोलना पिज्ज़ा पिज्ज़ा खाए खिलाए बगैर तुम्हें नहीं मैं जान देवगा
2: बड़ा पिज्ज़ा के छोटा पिज्ज़ा
0: भाई जेड़ा तुम कहोगे वो ला पिज्ज़ा
2: मैं भाई हिस्सा ज्यादा लवांगा इस सोने दा वो
0: जनाब दो पीस और बता देंगे
2: पक्की गल
0: मैं कहना कि 40 मीटर का पिज्जा मंगवाना है तुम्हारे
2: ओके भाई मैंने बात तो त्रै घंटे हूँ बिठा लो माइक तैयार
0: लोग पता की कर रहे हैं जनाब वड्डे वड्डे केक काट रहे हैं अज असि पिज्जा कटांगे
2: मतलब जवाब ही
0: मतलब बंदा कोई होंदा कोई शुगल दे मूड च होंदा ये तो सीरियस ही हो गए ना ठीक है सर मैं ना खुशियां सेलिब्रेट ते करी दे लेकिन सीरियस नहीं होए ना तुसी ते ऐ तोड़ी
2: तोड़ी शर्ट जड़ी है ना ये बड़ी मैं मजेदार लगी है मैं फोटो छेक ले मैं हमेशा रखना हूँ अपने को हाँ एक तो तुसी ओए मेरे प्यारे भराओ मुड़ आई दिहाड़ा बड़ा आजादी का है पाकिस्तान की आजादी का दिहाड़ा है साडा खुशियां का दिहाड़ा है तो साडी ईद है ना आई दे दिन में ते मुड़ जेडे सोने तुसी बने हो अल्लाह जानदा है सुकून है तुहानू मिल के एडी सोहनी शख्सियत
0: भी सोहना बोल रही है
2: अपन को दिला भी पीजे ने को मीठा भी आ जासी मैं चक्कर अच्छा
0: तुसी इंज करो मेरी 5 मिनट और तारीफ करो ताकि पीजे ने मीठा भी आ जाए
2: मैनू लगदा नकदी भी लब जानी

0: वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: One.
1: खुशहाल रखे और हम सब आपस में खुश

0: और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: प्यारा पाकिस्तान मिला, हम सबकी पहचान बना।
2: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: वेल जनाब, वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को। आज 14 अगस्त 2026, आज हम ऑफ एयर अभी जब बैठे हैं तो अरम भट्ट हमारे साथ हैं, बाबा जी हमारे साथ हैं, सलमान खान हमारे साथ हैं इस वक्त, और जैदी साहब तो पता नहीं हमारे साथ ही होते हैं, जाने का नाम भी नहीं लेते। अच्छा सर, हम अभी यही बात कर रहे थे कि लोग, पीपल वॉन्ट इन्जॉय देयर लाइफ, लोग इन्जॉय करना चाहते हैं, लोग सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और लोगों को अगर मौका मिले तो वो भरपूर तरीके से इन्जॉय करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो जो सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स आपने देखे पंजाब के अंदर हुए, जिसमें हमने बसंत को देखा, लोगों ने भरपूर इन्जॉय किया और पूरा कोऑपरेट किया।
1: यस,
0: फिर उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई। अच्छा, उससे पहले अगर आप पीछे चले जाए ना, लास्ट ईयर कोई 42 के करीब फेस्टिवल्स हुए हैं लाहौर में।
1: ओ ग्रेट,
0: और वो इतने कमाल के फेस्टिवल्स थे कि माइंड ब्लोइंग।
1: बिल्कुल,
0: और अब बसंत हुई, फिर उसके बाद आप आज जो
1: ईद पे कितना जोश और खरोश था,
0: बड़ा जोश और खरोश,
1: ईद पे कितने जो हैं एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट ने मतलब इनिशिएटिव्स इतने अच्छे लिए हैं कि लोगों का भी अब दिल कर रहा है कि वो खुशी मनाए। फिर उसके बाद मार्का हक को जिस तरह हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है, जो सबसे बड़ी फतह हमारी थी, और उसके बाद अब 14 अगस्त का दिन जो है जिस तरह हम मनाए हैं, हमने मनाया है रेडियो पाकिस्तान FM 101 पे, फिर उसके बाद जिस तरह हम लोगों के फीडबैक हमें मिल रहे हैं, लोगों के जो मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं खुश हैं, और लोग इस बार मतलब ऐसे लग रहा है कि उनको अब टेंशन है ही नहीं। लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इसी तरह मुत्तहिद रहे, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे। तो आई एम वेरी अमेज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट।
0: मैं बाबा जी के लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ, पहले मैंने ऑर्डर कर दिया।
1: ये बाबा जी कुछ लुक लुक के खा रहे हैं, देखें जरा,
0: क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं,
1: बोल ले रहे, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे। तो आई एम वेरी अमेज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट।
0: मैं बाबा जी के लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ, पहले मैंने

0: लेकिन चले कोई बात नहीं, बट ये दिस इज़ गुड, यू आर राइट आरम साहब, के लोग फेस्टिविटी चाहते हैं, लोग एक्टिविटी चाहते हैं, एंड हेड्स ऑफ के अब लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खान साहब, गुलाम अली जुवेर साहब, अरहम बाग साहब और आपके तमाम साथियों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: सलाम। आजादी मुबारक।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मुबारक।
1: मैं मोहम्मद सलमान बाग समनाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें, बहुत मजा आ रहा है।
0: बहुत शुक्रिया जनाब।
1: और हमने आज खुशी में दो केक काटे, अभी पहले एक केक काटा है आजादी का और दूसरा आपकी आंटी की सालगिरह है,
0: अरे
1: तो दूसरा उसका काटा है।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: अभी हाँ जी,
0: अभी हम आप अभी हम एक एक बाबा जी की आजादी का भी काटेंगे, क्योंकि बाबा जी आज जो है ना इतनी देर तक बाहर रहते नहीं है।
1: दफ्तर मेरे पास होता तो ये केक आपको भी पहुंचा, मैं जरा दूर हूँ।
2: आपने कह दिया, बहुत शुक्रिया जी, हम तक पहुंच गया है। और बाबा जी जो हैं वो
1: आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त बातें होती हैं।
0: सर बहुत शुक्रिया जी, सलामत।
1: गुलाम अली जवेर साहब का भी सुनते हैं, अरहम बट साहब का भी, आपके प्रोग्राम हम सुनते हैं, आरजे डॉक के भी, सबके।
2: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
1: आजादी मुबारक हो।
2: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, स्टे ब्लेस्ड।
0: और जनाब जश्न आज़ादी मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। 04-2111-0101 हमारे रابطے का नंबर है जिसपे आप लोग की कॉल्स।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम।
1: अस्सलाम वालेकुम जनाब।
0: वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से?
1: कयूम बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से।
0: जी कयूम साहब, क्या कहेंगे?
1: बहुत आप सबको बल्कि पूरा पाकिस्तान वालों को जश्न आज़ादी मुबारक।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।
1: और ये हमारी छोटी ईद है, समझो छोटी।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: दो ईद है वो, ईद फितर और ये 14 अगस्त, और आने वाले ईद मिलाद नबी भी शुरू हो जाएगा, बारहवीं अव्वल भी, समझो कि हमारे 4 ईद है और सब पाकिस्तानियों को ईद ये मुबारक और जश्न आज़ादी मुबारक।
2: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत मेहरबानी।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। लोगों की एक्साइटमेंट देखे ना,
2: लोगों का जोश और जो वलवला है ना वो बहुत ज्यादा है, और बाबा जी का जो जोश और वलवला है मुझे लग रहा है
0: ठंडा पड़ गया,
2: ठंडा पड़ गया खाना खा के अभी।
0: कॉलर है हमारे साथ, जी जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
3: फरहान जी कैसे हैं, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। मुझे बड़े प्यार से कहते हैं साजदा जी।
0: अरे
2: कौन है
0: वो? हाँ। करीम, मुझे बड़े प्यार से लोग कहते हैं साजदा जी।
2: अच्छा साजदा। अच्छा, जी, जी, जी।
0: बाबा जी, जिसने बाबा जी उसे साजदा जी,
2: मतलब बाबे तो उम्र ज्यादा, साजदा बेचारी दी उम्र ज्यादा, क्यों पे कर दे हो?
3: मुझे लग रहा है ये बाबा जी के वाला जाने पे चल
0: रही है। नहीं बाबा जी कहते हैं कि बाबे की उम्र तो ज्यादा है लेकिन साजदा की उम्र क्यों आप ज्यादा कर रही हैं? प्यार से कहते हैं जी, कहते हैं ना जी, जी ने साडे जी नु जी होंदा है।
2: अच्छा जी उन भी करने जाते बेचारे थे।
3: जी जी जी, वो बड़े जी है, मैं छोटी जी
0: हूँ। साजिदा आपने आज ग्रीन कलर के कपड़े पहने कि नहीं पहने, केक काटा कि नहीं काटा?
3: जी बिल्कुल, मैंने व्हाइट कलर का सूट पहना और हरा दुपट्टा लिया।
0: अरे वाह,
3: क्योंकि ग्रीन व्हाइट पहने थे और व्हाइट कुर्ता सर, मैंने व्हाइट और मैचिंग की थी।
2: मैचिंग की? मैचिंग
3: हाँ जी बिल्कुल।
2: ओके ओके ओके, तो कैसा दिन रहा और क्या क्या सेलिब्रेशन की, क्या क्या एक्टिविटीज की, सुनने वालों तक पहुंचाएं और क्या पैगाम देना चाहेंगी जश्न आज़ादी के हवाले से आप?
3: सबसे पहले तो मैं सबको जश्न आज़ादी कहना चाहूंगी, आपको और हम भट्ट और बाबा जी को भी।
0: बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
3: बहुत अच्छा गुजरा, हमारे मेहमान आए थे, मेहमानों के साथ एंजॉय किया और खाना पीना हल्ला गुल्ला खूब होता रहा।
2: और मेहमाना ने 14 अगस्त ही दी सी,
0: ईदी मिली आपको खुशी के मौके पर?
2: 14 अगस्त ही दी है मेहमाना ने ईदी।
0: ईदी मिली आपको?
2: ईदी कोई तोहफा कोई गिफ्ट?
3: नहीं।
0: चलें जबरदस्त, बहुत शुक्रिया साजिदा, खुश रहें सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच। साजिदा हमारे साथ ही, और इस वक्त बाबा जी मुझे ये बताएं, आप हमारी जो आंटी हैं यानी हम उनको तो दादी अम्मा कहेंगे ना, दादी अम्मा से इतना डरते क्यों हैं?
2: तो डरते हो ना, मामला है ये बीच मेरा केड़ा दा।
0: एक कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: कौन सा हमारे साथ?
4: वो सुअद बिस्मिल्लाह करा तो

0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और एंट्री मारी है जनाब रहमान अनवर साहब ने स्टूडियो के अंदर, और ऐसे एंट्री मारी जिस तरह हीरो घोड़े पे नहीं आता अपनी हीरोइन को के लिए।
1: बड़ी छेती आया इनका।
0: चलो
1: देखो 10 बजे आना जी।
0: सलाम अलैकुम।
1: इतनी
0: पाबंदी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जश्न आज़ादी की खूबसूरत तकरीबात, आज मैं अभी बात कर रहा था कि जो फेस्टिवल्स हैं, द नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स फ्रॉम जो ऑर्गेनाइज किए गए गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोग हमारे जो चाह रहे हैं कि उनको कोई एक्टिविटीज़ मिलें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि उनको कोई एक्टिविटीज़ मिले, उनको कोई उनके पास कोई इन्जॉयमेंट के लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो हम ये सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स देख रहे हैं, इसमें पीपल आर इन्जॉइंग देयर सेल्फ, जिसमें हमारी बसंत भी हुई, ईद भी हुई, फिर उसके बाद ये 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं इस हवाले से भी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि लोगों को इन्जॉय करने के लिए मोमेंट्स मिल रहे हैं।
2: यस
1: ऐसे
0: ही है, ठीक कह रहे हैं आप। और अभी इसमें सवाल ये है कि ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छा साइन है ना कि हम लोग बेइज्जती कर देती है।
2: ये मुंडा कौन है जरा तुम फोन तो थोड़े ना गल कर
0: ये बाबा जी
2: बड़े क्यूरियोसिटी में
0: तुसी ना एक करी फेर हसो मुंडा, एक बाबा जी कह रहे ने मुंडा कौन है हूँ असी भी हसांगे। ये कौन तुसी सराय की जगह छोर कौन है,
2: ये छोर कौन है।
1: अरे ये बहुत अच्छी बात है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओके फाइन जी,
2: और यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है फंक्शन होना चाहिए।
0: ये तो कम लगता है कोई
1: मूड में था, मैं क्या थी आज।
0: ए बाबा जी मेनु ये दसो ना तोड़ा की मूड है,
2: ये मुंडे ने रहना या बाबे ने मुकाबला पा लिया।
0: बाबा जी दसो मेनु दसो, अगर डोला लेते उन बुला लिए
2: हां
0: तो नचोगे?
2: नहीं डोला रे बुला लो, इस मुंडे ने भी बुला लो
0: नचो, मुंडा आ ही ना जाए कि
2: नहीं आएगा ना
0: वेगले मुंडे ने सीरियस हो जाए
2: ना। आवे ना
1: ओ मैं तो वैसे ही नाचता रहना बहाना,
0: आओ तो बहाना लभदे ने तुसी अपनी दसो ए बूटियां हटियां नाच लेनगी
1: बहाना लभदे ते नाच पई है।
0: मैं क्या मुंडा ते नाच लेगा, तोडी बूटियां हटियां ज्यादा देंदी ने नचन दी।
2: चलो कुछ कर लांगे ना।
0: अच्छा कर
2: को नहीं, फिट फिट ने माशाल्लाह, अच्छे खासे फिट ने।
1: नहीं तो फिर लाओ ना जी बैकग्राउंड का चक्कर बंडा रे थोड़ा जे लाओ।
0: वेखो बाबे दे अंदर रिदम बड़ा है, मैं तुम्हें गल दस दिया, जेड़ा बाबा साढ़े सामने है ना,
1: नहीं आप लगा रहे ना।
0: अच्छा जी व्हाट्सएप पे लो जी लगन लगे जी, बाबा जी कम छक्कन लगे असी शक्कर बंडा दा। लो जी आदिल साहब लांड है जी, आदिल साहब बाबा जी
2: तैयार हो जाओ,
0: इतने वीडियो बनेगी
2: जी।
0: पाकिस्तान की जश्न आज़ादी है, इन्हें भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना है।
2: ठीक हो गया,
0: हूँ तो तुम असी पिज़्ज़ा भी खवाना है
2: जी जी,
0: तो नाल तुहाडे कोल जनाब है ए, ए, ए, कमाल यार, पता लगे बाबे अज जनाना फुल इंजॉय कर रहे हैं।
2: वाकई गल तो ठीक।
0: अच्छा मैं हूँ जो आ रहे सर ना जनाब, लोगों ने फुल आवाज से
2: बहुत वाजे वजे ने
0: दिन वाजों के अलावा भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हम जो ट्रैक चलाने जा रहे हैं, और ये ट्रैक आरजे डॉक्स की फरमाइश के ऊपर है, और इस वक्त स्टूडियो के अंदर क्या होने जा रहा है, स्टूडियो में इस वक्त जनाब बाबा जी आरम भट्ट साहब और
2: उठ जाओ जी उठ जाओ।
0: रहमान साहब को भी माइक देना, रहमान साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया।
2: माइक है,
0: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आपको जश्न आजादी मुबारक।
3: मैंने पिज्जे का जिक्र सुन लिया कि अब मेरा दिल चाहा कि यार पहुंच जाए, चाहे शायद कोई हल निकाल सके बाबा जी की। नहीं नहीं, बहुत कमाल,
2: बाबा जी नो इना
3: हमारे शामिल हुए कॉल पे, और हम भी हैं
0: सर। गाना लग गया,
3: गाना लग गया।

0: जीरे से भरपूर नमकीन और खस्ता हर चाय का प्लस जीरा प्लस।
1: Welcome back to the show. एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाहौर स्टूडियो में। एकदम से हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, मौका बदल गया, चीज़ें बदल गई, क्या से क्या हो गया हमें पता भी नहीं चला। इट वॉज अ सरप्राइज एंड वेरी प्लेजेंट सरप्राइज बाय द वे एंड वेरी डिफरेंट सरप्राइज हम सब के लिए। बाबा जी खामोशी खामोशी इख्तियार करो, बाबी थोड़ी मेहरबानी, उन बच्चे आ गए ना, बच्चियों को बोलन दो, थोड़ी मेहरबानी।
2: नहीं है मुंडे तो मैं वाकई हैरान हूं, मुंडा है
1: मुंडे ने ऐसा सरप्राइज दिता, तो सोचो वहमो गुमान च भी नहीं सी,
2: वाकया ही नहीं।
1: मैनू कहने ने यार गाना ले लाओ ना, और गाना ले लाओ, मैं गाना लो, बड़ा जोर ला रहे ने, और गाना लगा दे मुंडे नो एंट्री मारी
2: है। मैं लगता मुंडा बाहर खड़ा गाने दे इंतजार।
3: आपके अंदर मेरी रूह आई है। ये नहीं,
1: ये न्यूज वाला चल रहा
3: है। अच्छा, ये चलता है, चेक करें।
4: अभी आ रही है,
1: आ रही है? नहीं मुझे नहीं आ रही
4: आपको आनी चाहिए मेरी
1: आपकी अभी नहीं आ रही
4: नहीं आ रही तो फिर
1: थोड़ा सा ऊंचा करें।
3: नहीं नहीं बिल्कुल,
1: थोड़ा ऊंचा करें आप।
4: ठीक
1: है, आप
4: मुझे वैसी बोलने दे रहे हैं।
1: मैं कह रहा हूँ आपकी
4: शर्म नहीं आ रही थी
1: आपकी माइक के बगैर।
4: बड़े यार जी, आप मेरी आवाज बंद करना चाह रहे थे आप।
1: सर आप माइक के बगैर ही बोलते तो आपकी आवाज जो है ना कश्मीर तक चली जाती है। माशाल्लाह ने आपको इतना गला दिया है, इतना आपके अंदर
4: गला
1: इतना इतना गला दिया है कि आओ
3: गला ही दिया। मैं क्या यार मुंडा बाबे नु बोलन नहीं दे रहा, आप बड़ा संजीदा शो चलाई जा रहे की गल
1: है। नहीं बाबा बड़ा बोले है शुरू च, बोले ही बाबे ने वो
3: सवाल
1: बाबे ने वो दुख अपने फलोड़े ने आज के, बस कुछ ना पूछो।
3: अच्छा आप पूछे सवाल क्या था?
2: इन्हें भरोने की बड़ी आज कदर कीती है, चढ़ दियो जी ये गाल
4: भरोले ने। अच्छा
1: बाबा बड़ा दुखी है यार, बाबा बड़ा दुखी। मैं ना असल जो पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं बाबा जी, कसम
4: यार आ बड़ी गलत
2: यार, देख जब तो दा प्रोग्राम शुरू हुआ उदों दा ही ऑर्डर
1: बाबा जी, वो आज कैंसिल हो गया ना जी। देखो
3: आप रहमान को देना, रहमान फिर आ जाता फ्लाइट
4: से। दो लार्ज पिज्जे का ऑर्डर इन्होंने किया ना, तब से मैं निकला हूं घर से, नहीं जिस टाइम पिज्जा आएगा मैं फौरन पहुंचूंगा। हां सुनता हूं,
2: मेरे हंजुआ में नहीं पिंडा दिया, तुम देख लो
4: 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन रास्ते में ना इतना रश, इतनी फैमिलीज इस वक्त निकली हुई हैं, इतना मजा आ रहा है और लोगों को देखने का वो जैसे एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो बाजा लेके आए हैं सेम इसी तरह के बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े पायन बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई नहीं दे
3: रहा करके यहाँ पहुंचना एक बड़ा जी। मैं कह रहा
2: बंदे ने कट कट बराबर जेडे उन्हें बाजे बच्चे ने फड़े हुए ने,
4: हां
2: वो करते ने गड्डी दे विच ते कान दे नाल खो
3: आज के दिन तूफान बदतमीजी की आजादी
4: होनी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कान के पास रख के क्यों बजाएं भाई।
3: आपको कैसा लग रहा है? बना एक इंटर्न से बात चलते चलते ना, मैंने कहा ये सवाल जो है ना मैं रहमान से कर लेता होता हूँ।
4: अच्छा।
3: और अगर रहमान होता तो वो मजेदार जवाब देता। तो बर्थडे पे बात आ गई, मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है इंसानों में आके?
4: हमेशा हमेशा यही फील हुआ है कि यार ये मेरे जैसे लोग हैं, इंसान नहीं है। ये कुछ और है, ये बनने की कोशिश कर रहे हैं,
3: बनने की कोशिश कर,
4: लेकिन इनको इनको बनाते बनाते मैं बन गया हूँ इंसान, कैसी बात।
2: जुमला बड़ा तजीब वाला बोला, लगता ना ही भी जुमला बोल सन।
4: नहीं बाबा जी तू किथे लगना है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
3: ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
2: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਚਿਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਈ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਨੇ
1: ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ
2: ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਮੁੜ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਖਾਧਾ
3: ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਈਆਂ ਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ
2: ਹਾਂ ਹਾਂ
3: ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਸੇਕ
4: ਕੇ
2: ਪਾਣੀ ਮਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ
3: ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋ ਸਾਲਨ ਲਾ ਕੇ ਚੋਪੜ ਕੇ
2: ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ
4: ਜਿਹੜਾ
2: ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਾਵੇ ਨਾ ਮੁੜ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ
3: ਬਾਬਾ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ
4: ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ
2: ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈ
4: ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਹੀ ਲਈਏ
1: ਬਾਬਾ
4: ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ
3: ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾ
1: ਡੌਗਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਖਾ ਹੀ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ
2: ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ
1: ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ
2: ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਫਸ ਗਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
1: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ
2: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਕਾਲ
1: ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ
2: ਇਹ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
1: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ
5: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ
1: ਜੀ ਸਰ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂ ਸੇ
5: ਬਰੇਲੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਫ੍ਰਾਮ ਮਲਕੰਦ ਸਵਾਤ ਸੇ
2: ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੈ
5: ਕਿਆ ਲੈ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਾ
5: ਜਸ਼ਨ-ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ
1: ਆਪਕੋ ਵੀ ਜਸ਼ਨ-ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ
3: ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਸੁਣਾਏ ਆਪਨੇ ਕੈਸਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ
1: ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ
3: ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਦਿਨ ਆਪਕਾ ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰਾ
1: ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਵੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਤਿੰਨ ਇਵੈਂਟ ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ
3: ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕਰਤੇ ਰਹੇ
1: ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕੀ ਹੈ
3: ਯਾ ਗੋਸਟ ਕਰ
1: ਦੋ ਹੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ایک پہ ویسی
3: چوتھا بھی خراب ہو
1: رہا بابا جی
3: بابا جی نو فلائٹ دے نا پائلٹ دی سیٹ آ کے بچا لو
1: ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਲਾਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਲਾਣਾ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਟ ਕੇ
3: ਆਏ
1: ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ
3: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
6: पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार ਬਸ ਟਪਾਲ ਦਾਨੇਦਾਰ हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
7: There's music and then there's magic. One above FM 101.
6: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: हेलो
1: फोन रहमान नू दियो जी, रहमान दी कॉलर होने ने
2: 04221000101 पे आप लोग की कॉल्स का सिलसिला जारी है और इस वक्त
3: मुबारक
4: आपको भी मुबारक
3: खैर मुबारक हो सर आप ठीक ठाक है
4: की कहना चाहते हो आज दिन दे वाले नाल
3: सर आज का दिन तो गुजर गया बड़े बाजे बच्चों ने बजाए
4: बिल्कुल बाजे बाज गए जी अब 15 अगस्त हो गए
3: लेकिन अब हम जो बड़े हैं तो हमने तो एहतराम ही किया उसका
4: बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया
3: और सर आप खैरियत
4: जीते रहें अल्लाह पाक आपको खुश रखे सलामत रहे
3: सर ये सब सुनने वालों को मेरा सलाम और आपको भी और पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद
4: बहुत शुक्रिया
5: जिंदाबाद बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया सलामत रहें आबाद रहें एक और कॉल हम रिसीव करते हैं 0421100101 अस्सलाम वालेकुम
4: हेलो
5: जी वालेकुम सलाम
6: क्या हाल है जनाब ठीक ठाक जीते जिसने आज़ादी मुबारक
5: बहुत शुक्रिया जी खैर मुबारक
6: रशीद बात कर रहा हूँ मलकन के डीके से
5: जी रशीद साहब क्या कहना चाहेंगे आज आज़ादी का दिन आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया बताएंगे
6: बस हमने पहाड़ों में सिर बैठ किया और हमने तो अपनी ड्यूटी में सिर बैठ किया और ये तो अभी मैंने ऐसे मान किया तो प्रोग्राम सुनना था मैंने कहा चलो मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ इस प्रोग्राम में तो हमने तो पहाड़ों में जन्म सेलिब्रेट किया आज
5: पहाड़ों में सेलिब्रेट किया वाह वाह वाह क्या कहने जबरदस्त और इसके अलावा कोई और बात कहना चाहेंगे
6: बस हम सबको चाहिए कि हम अपने वतन के लिए दुआएं करें कि हमारे वतन में जितने भी लोग रहे सदा खुश रहे सलामत रहे और हमारे यह वतन जो है ना हमेशा के लिए शाद रहे आबाद रहे सरसब्ज रहे
5: बहुत शुक्रिया सलामत रहे आबाद रहे
6: जज़ाकअल्लाह
5: अल्लाह हाफिज अच्छा मेरा दिल कर रहा है कि एक और हम प्ले करें ये वाला अस्सलाम वालेकुम जी
7: अस्सलाम
5: जी वालेकुम सलाम कौन बात कर रहे हैं जी कहाँ से
7: जी मैं अदीज अहमद बात कर रहा हूँ सर वो आपका ऑर्डर था मैं पिज्जा लेके ऑर्डर कर रहा हूँ भाई
5: वो कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर था पिज्जा लेके बाहर खड़ा हूँ
7: आप का नंबर ही नहीं मिला तो बहुत मुश्किल से मिला
5: अच्छा जी चलें कोई बात नहीं हम भी कोशिश ट्राई कर रहे हैं
7: लार्ज पिज्जे है आपके तो वो कौन ठीक करने
5: आएगा दो लार्ज पीस आए कहते हैं आपके इन्होंने पूरा प्रोग्राम सुनिया ही फरहान साहब है जिन्होंने ऑर्डर किया था और पीछे से बच्चों की भी आवाजें आ रही हैं घर में बैठ के बता रहे हैं
7: अच्छा बच्चे तो गली में आपको पता है अच्छा
5: गली में नहीं है ना रेडियो गली में नहीं है अच्छा ठीक है हाँ ठीक है बहरहाल देखते हैं कि पिज्जा वाले वाकई हैं कि नहीं है ये वाला सुनने का दिल कर रहा था इसको हम प्ले करते हैं अस्सलाम वालेकुम
8: वालेकुम सलाम पूरे पाकिस्तान को आजादी की मुबारक और आप सबको
5: जी बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच जी कौन बात कर रहे हैं जी
8: मैं बुशरा बात कर रही अच्छा भी बैठे हुए उनको भी अच्छा लग रहा था मुझे
5: अच्छा।
8: मैं क्या मुबारक तो बनती है रहमान भी आए हुए हैं सब कुछ बड़ा अच्छा लगा
5: ठीक है
8: और मैंने एक कॉल सुनी और कहने लगे जी हमने ऐसा किया तो की मजा आया नहीं ये अच्छा। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए ये देखो मैंने लाइटें रखी हुई है बच्चे मुझे कहते हैं ना अम्मी 14 अगस्त आई है तो असी लानिया ने तो ये हर साल हम लगाते हैं देखो दिल का जज्बा होना चाहिए
5: सही
8: ये खुशी का दिन है
5: हाँ जी बिल्कुल तो खुशी का दिन है
8: ये खुशी का दिन है और उसको जश्न मनाने का दिन है सब कुछ बुला के आगे बढ़ जाएं पाकिस्तान को मजबूत बनाएं गिले शिकवे छोड़ दें
5: हाँ जी
8: तो मुझे अपने अबू आज इतने याद आए हम बचपन में थे होते थे ना तो मीनारे पाकिस्तान आके दो शुक्राने के नफल पढ़ते थे फिर हम दाता साहब जाते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। तो मैं कल परसों मीनारे पाकिस्तान खड़ी हुई यही देख रही थी, मुझे अभी याद आ रहे थे। तो मैं वो दिन कैसे अच्छे दिन थे
4: जी जी।
8: तो कहने का मकसद है कि बस ये यादगिरी बड़ों ने हमारे दिल में डाली है, उन्होंने हमें समझाया है तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आगे बच्चों को भी ये पैगाम दे रहे हैं। और मजे की बात, मजे की बात है सर, आपके मजे की बात है। सामने बच्चे ना पड़ोसियों से बाजा बजाई जा रहे जा रही जा रहे, ना रात अल्लाह को याद करते, फिर आंख लग गई। फिर मुझे मुझे 5 मिनट बाद ना बड़ा ही गुस्सा आया। मैं कहा बाजा ही जाने नहीं हट रहे, मैं कहा मेरी गल सुन, तेरा अब्बा किथे? कहंदा सुन, सामने बच्चे ना पड़ोसियों से बाजा बजाई जा रहे जा रही जा रहे, ना रात अल्लाह को याद करते, फिर आंख लग गई। फिर मुझे मुझे 5 मिनट बाद ना

ऐप विजिट करना चाहूँ तो कैसे करूँ? तो जोशील, हमारा जो फेसबुक पेज है एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, आप इसी के ऊपर कमेंट करके अपना मैसेज कर सकती हैं। इसके अलावा अगर मैसेज करना चाहती हैं 4471 के ऊपर, आप मुझे मैसेज करके अपनी बात मुझे तक पहुंचा सकती हैं। हफीफा नूर मेरे साथ हैं जी, नायरा हैं रावलपिंडी से, तैयबा वासिफ हैं मेरे साथ इस्लामाबाद से, सबिया जावेद हैं रावलपिंडी से, बिस्मा भट्ट हैं मेरे साथ, सना सुरैया हैं मेरे साथ, सुमेरा हैं मेरे साथ, कोमल हैं गुजर खान से, अस्मा हैं मेरे साथ जी अटक से, नबीला काजमी सुन रही हैं जी, निदा फातिमा सुन रही हैं, किंजा अली सुन रही हैं, हादिया खान है मेरे साथ, और माहम हैं, बिलाल हैं, इरम हैं, सुमेरा हैं, आयशा खान है और अक्सा मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलो जी, वो वाला गाना मिल गया जी, वो वाला फोल्डर मुझे मिल गया जिसके अंदर ना वो लास्ट टाइम जो मैंने प्ले किया था तो आप सब लोगों ने बहुत तारीफ की थी कि आज प्लेलिस्ट बड़ी अच्छी है के भी, तो वो वाली प्लेलिस्ट मैंने लगा दिया, दोबारा से लगा दिया। आमना सर्वर मेरे साथ हैं जी इस्लामाबाद से, प्रोग्राम सुन रही हैं। आमना बहुत शुक्रिया, गाना ना पसंद करने का बहुत शुक्रिया।

ओके जी, केबी इज बैक और आप मेरे साथ हैं जी 0511111001 के ऊपर आप मुझे कॉल कर रहे हैं और बिल्कुल आपकी कॉल्स आ रही हैं। मैंने थोड़ी देर में आपकी कॉल्स को प्रोग्राम कैसा बनाना है जी। और वैसे एक बात आपसे शेयर मैंने करनी थी कि हम जो कपड़े पहनते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, जिस जगह से हम कॉफ़ी पीते हैं या जिस जगह पे हम बैठते हैं, जिस जगह से खाना खाते हैं या जो हमारी पसंद की चीज़ होती है, हम जो पहनते हैं, हम जो लगाते हैं, जो परफ्यूम यूज़ करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं जो कि एक एलिगेंस को शो कर रही होती है या आपके स्टेटस को शो कर रही होती है, क्या वो कभी आपने सोचा है कि आपकी पसंद की चीज़ हकीकतन है भी है या नहीं है, या सिर्फ आप इसलिए उसको पहनते और इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे भी वो पहन रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस ब्रांड की चीज़ आप पहन रहे हैं, क्या वो आपने कभी सोचा है कि ये आपको पसंद है, वो कलर आपको पसंद होता है या नहीं होता, लेकिन आपको वो ब्रांड का नेम पसंद होता है कि यार ये फ्लाम वाले ब्रांड का की चीज़ है तो बस मैंने पहननी है क्योंकि उसने वो वाला ब्रांड पहना हुआ था। और ब्रांड की मार्केटिंग जितनी होती है और उस हवाले से जितना ब्रांड मशहूर होता है उस तरह की हम चीज़ें पहनते हैं। तो पता नहीं बाजू करना, इन चीज़ों में मैं बहुत सोचता हूँ कि हमें कुछ चीज़ बड़ी एक सस्ती सी दुकान के ऊपर बहुत आला मिल रही होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है या वो हमारे दिल को बड़ी अपीलिंग दिख रही होती है, लेकिन हम कभी वो पहनते या ख़रीदते नहीं हैं इसलिए कि यार वो किसी दूसरे को शायद अच्छी नहीं लगेगी। आपको अगर वो कलर पसंद है, लेट्स सपोज मुझे अगर ब्लू पसंद है या ब्लैक पसंद है, तो मैं क्यों हमेशा ब्लू या ब्लैक की चीज़ नहीं पहन सकता, या मैं वाइट कलर की चीज़ अगर मैं क्यों नहीं पहन सकता अगर मुझे वाइट पसंद है। लेकिन हम हमेशा वो वाले कलर सेलेक्ट करते हैं जो दूसरों को पसंद होते हैं, हम हमेशा वो घड़ी पहनते हैं जो दूसरों को पसंद होती है, हम हमेशा वो शूज़ पहनते हैं जो दूसरों को पसंद होते हैं, ये जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि हम अपनी पसंद के मुताबिक तो अपनी ज़ात के लिए भी चीज़ नहीं ले रहे होते, हम दूसरों की पसंद का ख्याल रख रहे होते हैं लेकिन दूसरे फिर भी हमें पसंद नहीं कर रहे होते। ऐसा क्यों है कि हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं और दूसरे फिर भी आपको पसंद नहीं कर रहे होते?

0: ये वाली बात पूछते हैं जी स्कॉलर से कि वो क्या सोचते हैं, कि वो क्या अपनी पसंद की चीज पहनते हैं नहीं पहनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, फोरम भाई कहते हैं
0: आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका माइक नहीं मिल रहा मुझे। जी जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है।
0: अच्छा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
1: लाहौर से उस्मान फोरम भाई।
0: अच्छा जी, लाहौर से उस्मान। उस्मान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र। लास्ट वीक में मेरी कॉल ही कट कर दी थी, बड़ा नाराज हुआ था आपसे।
0: अच्छा मेरा भाई, मुझे तो दो मिनट पहले की बात याद नहीं होती, आप लास्ट वीक की बातें पूछ रहे हैं।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, आप दो मिनट से ऊपर चले गए होंगे ना, दो मिनट मैक्सिमम होते हैं ना बात करने के लिए।
1: नहीं, एंड पे मैंने आपको सॉन्ग का गा था, मैंने दोबारा कॉल की थी, आपने सॉन्ग चला दिया, फिर आपने फौरन बंद कर दिया, चलने कोई बात।
0: अच्छा, गाना चला दिया था मैंने।
1: जिसने आजादी मुबारक होता
0: है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें, आपने देखें
1: आप
0: अब आपकी कॉल बंद करने के पीछे ना आपको पता चल गई होगी राज, क्योंकि अभी डेढ़ मिनट हो गया आपका और आप सिर्फ मुझसे गिला कर रहे हैं कि लास्ट टाइम आपने मेरी कॉल बंद कर दी थी। है?
1: अच्छा सॉरी सर। अच्छा आप अली बात मैंने गौर कर ली हुई है, अब मैं दुआएं देता हूँ, ठीक है ना?
0: कौन सी बात?
1: आप कहते हैं दुआएं दो उसको।
0: हाँ अच्छा, वो वाले उस्मान हो। हाँ, तो दुआएं दी हैं फिर?
1: दुआएं देता हूँ, दुआएं देता हूँ।
0: अच्छा दुआएं दे, कौन सी दुआएं देते, कोई फकियां शकियां रखी हैं? जी जी सुन रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे मुझे, मैं आपको सुन रहा हूँ।
1: ड्रॉप हो रही है आपके
0: पास। अच्छा तो चलिए फिर ड्रॉप कर दें।
1: नहीं, टॉपिक बता दें
0: आप। हाँ टॉपिक में ये पूछ रहा था आपसे कि आप जो खरीदते हैं कोई भी चीज अपने लिए, क्या वो आप अपनी पसंद की खरीदते हैं या ये सोच के खरीदते हैं कि यार ये अगर मैं पहनूंगा या ये मैं अगर लूंगा इस्तेमाल करूंगा तो दूसरे इसको पसंद करेंगे, क्या अप्रोच होती है आपकी?
1: मेरी अप्रोच तो यही होती है कि बंदे को अपनी पसंद से ना चीज पहननी चाहिए, किसी का ख्याल करेंगे ना वो आपका ख्याल जितना मर्जी कर ले वो नहीं करेगा।
0: उस्मान तुम तो ये बात जरूर कहोगे ना कि तुमने तो बड़ा ख्याल रखा लेकिन तुम्हारा ख्याल नहीं रखा उसने।
1: यार क्या करें कुरम भाई, आप
0: तुम्हारी तो सोच मुझे पहले से पता थी, तुम यही जवाब दोगे, नहीं यार बस दूसरों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, अपना ख्याल ही रखना चाहिए।
1: अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का छोड़ दिया।
0: अच्छा
1: चले, थैंक यू पूनम भाई।
0: चलो थैंक यू उस्मान, बाय बाय, अपना ख्याल रखो। उस्मान जो है वो आज बस दुखी हो रहा है। उस्मान आज आजादी का दिन है, आजादी का दिन जो है वो कल खैर गुजर चुका, तो आजादी तुम्हें भी मिल गई है यार, एंजॉय करो, एंजॉय द लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही।
2: हयाम बात कर रहा हूँ मरदान से।
0: जी हयाम साहब, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ।
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हयाम। अच्छा बहुत ज्यादा स्पीकर के नजदीक आ गए, थोड़ा सा दूर हो जाओ, ज्यादा नजदीकियां मत बढ़ाओ।
2: अब आ रही है आवाज?
0: जी जी बिल्कुल आ रही है। तो हयाम बताओ कि कुछ खरीदते हो अपने लिए खरीदते हो या दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हो?
2: अच्छा कभी भाई, मैंने इस मामले में बड़ा ढीठ किस्म का बंदा हूं, मुझे जो चीज अपने लिए पसंद आ जाए मैं वही लेता हूं, क्योंकि मैंने कभी परवाह नहीं की यार दूसरे को पसंद आएगी या नहीं आएगी। इवन हमारी इस बात पे ना दोस्तों में नाराजगी हो जाती है, वो कहते हैं यार मतलब ये चीज हमें पसंद आ रही है, मैं कहता हूँ ठीक है तुम्हें पसंद आ रही है तुम रख लो, जो चीज मुझे पसंद आ रही है वो मैंने रखनी है।
0: अच्छा आज सुबह सुबह ना, चले मैं बाद में बात बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी मर्जी की चीज लेते हैं?
2: जी मैं अपनी मर्जी की लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार जो चीज देखें इंसान को ना हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बचाए लोगों को, लोगों को तो मर के भी दिखाओ गएंगे नहीं ऐसे नहीं मरा अपना तरीके से मरता फिर सही था।
0: तो हयाम ऐसा है कि आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी हो जो बहुत वियर्ड हो, लोगों ने आपको क्या बोला, हयाम ये क्या ले लिया, ये क्या पहना हुआ तुमने, ऐसा कुछ था कभी?
2: बहुत बोलते हैं ना, मतलब आपको पता ना कि पठान फैमिली से, तो मैंने एक दफा ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था, कुर्ता पजामा, वो सारों ने कहा कि यार तुमने ये क्या पहन लिया, ये तो ये पंजाबियों का कलर है ये वो, मैंने कहा भाई मैंने आपको कहूंगी तो पहना नहीं है, मुझे बस बहुत अच्छा लग रहा था मैंने पहन लिया। तो ये बहुत से कमेंट पास होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, जो बाकी कास्ट फेलो है वो कई दफा मेरी इस बात की नाराजगी हो जाती है, वो कहते हैं आयाम मतलब तुम ये चीज हमें पसंद आ रही है, मैं कहता हूँ ठीक है आप रख लो आपको पसंद है।
0: अच्छा चलो जी दैट्स ग्रेट, आप अपनी पसंद की चीज लेते हो और आपको जो अच्छा लगता है वो पहनते ही, बहुत अच्छी बात है, अपना ख्याल रखो हयाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय बाय। ओ रॉकी जी आपके साथ ये भी मौजूद है और 12:42 हुए चाहते हैं, आज 15 अगस्त है 2026 है, हफ्ते का हफ्ते की रात है, ये हफ्ते का जो आगाज है वो हो चुका है। मेरे साथ कॉलर है 0511111001 के ऊपर प्रोग्राम आप बोनो इंटरनेशनल सुन रहे हैं जी, 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोहतरमा, कैसी हैं आप? अच्छा लाहौर में आज मेरी ट्रांसमिशन आ रही है, आवाज आ रही है वहाँ?
3: जी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज भी आ रही है माशाल्लाह, प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा।
0: अरे थैंक यू जी, थैंक यू इरम। और इरम क्या करती हैं आप?
3: सर बस कुछ नहीं, घर आपका प्रोग्राम ही अभी सुन रहे
0: हैं। अच्छा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है जागने की या सिर्फ प्रोग्राम के लिए जाग रही हैं?
3: नहीं सर कोई रीजन नहीं।
0: तो बस आप लेट नाइट तक जागती हैं राइट?
3: आपका सिर्फ प्रोग्राम सुन रहे हैं 2 बजे तक।
0: चलें तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आप करती हैं पहनने का या कोई काम या कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपको पसंद है और लोग कहते हैं कि यार ये क्या क्या करते हो तुम ये फिजूल सी चीज?
3: नहीं सर वैसे भी अपने खुद की पसंद होनी चाहिए, किसी की पसंद कुछ भी नहीं।
0: अच्छा तो आप भी अपनी पसंद के मुताबिक करती
3: हैं। एक टॉपिक पे शेयर करना चाहते हैं कि क्या बदसूरत। हेलो
0: जी जी मैं सुन रहा हूँ।
3: क्या बदसूरत क्या दिलकश, क्या बदसूरत क्या दिलकश, हर चेहरे पे नकाब है, हर शख्स बाहिजाब है।
0: आहा वाजीवा वाजीवा।
3: और सलामत रहे सर, आजादी सबको मुबारक हो, आप भी और अनिला भी को स्पेशली सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे।
0: सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इरम। इरम थी मेरे साथ लाहौर से। और कोमल ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने कहा जी कि मैंने ग्रीन जो है वो ड्रेस पहना है और ब्लैक कलर का स्कार्फ लिया है और कहती है कि यहाँ जब वो मेला होता है पाकिस्तानी, वहाँ कोई ना कोई सिंगर आता है वहाँ और सब जाते हैं वहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए, सो दैट्स ग्रेट। तो आप फिर यूएसए वालों को बताती हैं बाजा बजा के कोमल के, हमारे यहाँ तो आज़ादी का सिंबल जो है वो बाजा हो गया। और पिछले 4-5 सालों से ना मैं जो सेलिब्रेशन की चेंजिंग्स की बात कर रहा था उसमें ये बड़ी चेंज आई है कि बाजे आ गए हैं। आप भी वहाँ बाजे बजाती हैं या नहीं बजाती हैं, वहाँ बाजे लोग बजाते हैं या नहीं बजाते, ये भी बताइएगा।

ओके जनाब, मेरे साथ जी मलिक अहसन हैं फेसबुक के ऊपर। मलिक अहसन मुझे प्रोग्राम की पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं और आज़ादी मुबारक कह रहे हैं, रावलपिंडी से सुन रहे हैं। और इसके अलावा जी वकास तबस्सुम मेरे साथ, थैंक यू सो मच। और एले हैदर मेरे साथ हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर खुदा के लिए प्लेलिस्ट चेंज कर दे। अरे खुदा के लिए ये वाला जरा चेक करो यार, क्यों नहीं मिल रहे आज अच्छे वाले गाने? कहाँ रखे हैं अच्छे गाने भाई?

ये वाला सुनते हैं भाई, ये भाई अच्छा नहीं, ये वाला सुनते हैं। ओके जी, अच्छा मुझे मजीद आगे मैं कमेंट आपका पढ़ लूँ तो फिर मैं प्लेलिस्ट चेंज करता हूँ। एले हैदर और कहते हैं जी कि प्लेलिस्ट चेंज कर दें, अदरवाइज शो इज गोइंग टू ऑसम और मे अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एले हैदर। और कहते हैं कि वन थिंग मोर कि आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट कि ठीक है कि हम आज़ाद हैं, इट्स वेल, बट यू नो वट पीपल आर हेयर यूजली से कि हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान रह के जो मर्जी करो, दूसरे मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़े हैं, आज़ादी तो ना हुई ना कि आप जो है वो पाकिस्तान में जो मर्जी कर सकते हैं लेकिन बाहर जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपको हर तरफ से पाबंदियां हैं, हर तरफ से आप जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधे हुए हैं, तो वो क्या आज़ादी हुई? आज़ादी तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ही हकीकत में आज़ाद है। ये आजकल बड़ा जो है ना एक्सक्यूज़ दिया जाता है और बड़ी बात की जाती है इसके ऊपर। तो कहते हैं जी कि ब्रदर मेक देम क्लियर कि पाकिस्तानी कौम को भी चाहिए कि डिसिप्लिन रहें, ये जानवर की फितरत है कि अगर वो इनडिसिप्लिन हो जाए तो उसे इनडिसिप्लिन होने पर आजाद छोड़ दिया जाता है, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। इट्स नॉट आजादी, इट्स बेपरवाही। उसकी बेपरवाही जो आप देख रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, अगर आपको इदारे सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आपको पुलिस सिस्टम के अंदर अगर आपको फ्लॉज नजर आ रहे हैं, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लॉज नजर आ रहे हैं, अगर आपको कचरा कुंडियां नजर आ रही हैं, या अगर आपको रोड ठीक नहीं नजर आ रहे, तो रीजन बीइंग कि हम खुद जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है वो एहतराम नहीं करते। हम मैं अक्सर जो है वो देख रहा होता हूँ कि इतना साफ सुथरा रोड होता है और हर चीज़ चमक रही होती है, लेकिन सामने जाने वाली गाड़ी के शीशे से अचानक एक डब्बा बाहर गिरता है या कोई टिश्यू पेपर गिर रहा होता है और वो रोड के ऊपर गिरता है जब, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार इसमें किसी इदारे का कसूर तो नहीं है, इसमें CDA का कसूर तो नहीं है, इसमें यहाँ पे सफाई करने वालों का कोई कसूर, TMA वालों का कोई कसूर तो नहीं है ना, उन्होंने तो अपनी सफाई की है, लेकिन उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है कि वो कचरा कुंडी तो नहीं है ना, जहाँ जहाँ डस्टबिन लगे हैं उसमें डाल दें आप। हुकूमत ने डस्टबिन भी लगा दिए हैं, हुकूमत सफाई भी करा रही है, एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो रही। तो हम बेसियत काम जब तक चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होनी मेरे भाई। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, मैं आपकी बात से एले हैदर बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि ये आज़ादी नहीं है, ये बेपरवाही है, लापरवाही है, और आपके ऊपर से आपके सर से हाथ उठा दिया जाता है। आज की मैं अगर आपको बात बताऊं कि पिछले जो है वो, खैर मैं बता ही देता हूं, पिछले 2-3 दिनों से मैं एयरपोर्ट पे था, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था, उस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट इंटरनेशनल, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शायद के जो एयरपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हों उनको भी वहाँ बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हों, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर जिस तरह प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, अगर आप एक दफ़ा अंदर गए हैं और आपने अपनी चेकिंग करवाई है और आप घूम के वापस आए हैं और अगर आपको कोई ASF वाला कोई देख रहा है और उसने देखा है कि आप सिर्फ वहाँ घूमे हैं और वापस आए हैं, आप सिक्योरिटी की जो उनका एक एरिया है उसमें सिर्फ आपने 2 कदम पीछे लिए, तो जब आप 2 कदम आगे वापस आएंगे तो एक दफ़ा फिर से सर्च होगी और सर्च के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप चाहे जो मर्जी कर लें आपकी सर्च दोबारा होनी है। और मैंने ये भी देखा कि कोई सिक्योरिटी हेड आया है जिसने, वो सारे एरिया का सिक्योरिटी हेड है, वो वहाँ से गुजरा है तो उसकी भी सर्च हुई है और उसके जूनियर ने उसको प्रॉपर सर्च आउट किया और उसके बाद उसको वहाँ से गुजरने दिया। और अगर आप कोई चीज़ लेके आएँ, आपको कोई दोस्त है, कोई अहबाब है या कोई बहुत ही करीबी आपका जो वो ASF में है या किसी भी वहाँ पर किसी सिक्योरिटी इदारे के अंदर है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों नहीं है और आपका स्टाफ मेम्बर ही क्यों नहीं है, अगर उसकी ड्यूटी है कि उसने आपको सर्च करना है तो वो आपको सर्च करेगा और 100% सर्च करेगा। तो जब पहले दिन मैं गया ना तो मुझे बड़ी अजीब लग रहा था कि यार अभी तो मैंने देखा है, मैं यहाँ से गुजरा हूँ, अभी तो बस मैं इधर साथ खड़ा था, मैं दोबारा यहाँ से गुजरा और 7-8 जगहों पर मुझे चेक किया गया। लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ना मुझे आदत होने लग गई सर्च आउट करवाने की और खुद मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे सर्च किया जाए। और जब सर्च करके बाहर निकलते थे तो पूरा एक डिसिप्लिन को फॉलो करना अच्छा लगने लग गया कि यार एक डिसिप्लिन है, एक चीज़ है, एक प्रोटोकॉल है, उसको आपने फॉलो करना है। तो आई थिंक सो कि हम जो है वो चीज़ों को उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो जब अचानक कहीं कभी वो करनी पड़ जाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। और अगर हम किसी को ये कहें कि आपके सामने वाली गाड़ी से अगर कोई चीज़ गिरी है बाहर शीशे से और अगर आपने गाड़ी तेज़ भगा के उस शख्स को रोक के आपने एक दफ़ा शर्मिंदा किया कि मेरा भाई आपने ये बाहर क्यों फेंका, बहन भाई जो भी हैं आप भी बाहर मत फेंकिए,
अगर आप रोक के वो चीज उठा के उसकी गाड़ी में उसको वापस करते हैं, एक दफा आप करेंगे वो जिंदगी भर सबक याद रखेगा और कभी भी वो बाहर नहीं फेंकेगा। लेकिन हम कौम के भी कोई कोई ना कोई जो है वो उसकी जिम्मेदारी है ना, हम जो बाकी जो शहरी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा गलत काम कर रहा है तो उसको रोकें। हर जगह पे तो पुलिस नहीं है, हर जगह पे तो कोई रोकने वाला नहीं होता। हमें भी एहसास करना चाहिए कि यार ये हमारा मुल्क है, किसी ने साफ किया है तो हमें इसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते, अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो वहां सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो आपके घर के अंदर चाहे कोई कितनी ही सफाई मेंटेन क्यों ना कर ले, जब तक आप खुद नहीं मेंटेन करना चाहेंगे वो सफाई मेंटेन नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। और जब मैं आज वहां से बाहर निकल रहा था तो रोड के ऊपर मैंने देखा कि रिवर्स के ऊपर एक लोहे की, आपने अक्सर किसी जगह पे देखा होगा कि लोहे की ना कीले निकाल दी जाती हैं, एक लोहे की पूरी एक स्ट्रिप जो है वो डाली जाती है कि अगर कोई वहां से रॉन्ग वे से आ रहा है तो उसकी गाड़ी में अगर वो लग जाए तो टायर से सारे के सारे पंचर हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था यार ये क्यों लगाने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कई दफा यहाँ पे मैनेजमेंट ने देखा होगा कि लोगों को रोका होगा कि रॉन्ग वे से मत आइए, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। आप देखेंगे अक्सर आपको, आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो कोई परवाह ही नहीं करता कि मैं रॉन्ग जा रहा हूँ। खासकर बाइक वाले हजरात वो यू टर्न लेना मुनासिब नहीं समझते, वहीं से रिवर्स फेंकते हैं और वहाँ सामने आने वाली गाड़ी को जब वो हिट हो रही होती है, और इसी वजह से बहुत सारे हादसे भी होते हैं। तो मैं अहले हैदर आपकी बात से बिल्कुल कुली मुत्तफिक हूँ कि हमें आज़ाद होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में आज़ाद होना चाहिए हमें। बाकी अपने आप को अगर आप बेलगाम छोड़ देंगे और अगर आप बेलगाम हो जाएंगे तो फिर आप वाकई में इंसान नहीं हैं। फिर अगर आप कुछ चीज़ों में अपने आप को रोकेंगे नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर आप भी डिसिप्लिन नहीं रहेंगे। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ।

अच्छा जी, वकास ने अब उर्दू में मैसेज लिखा और कहते हैं जी कि मैंने ये कहा है कि जी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम उमर को देखता हूँ कि उसकी शादी हो गई है, मेरी नहीं हो रही तो मैं खफा हो जाता हूँ। अच्छा वैसे ये वाली भी परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, खासकर खानदान वाले बड़ा इसका एहसास दिलाते हैं कि यार इधर ब्याह नहीं कराया, इधर ब्याह कराओ यार, इधर ब्याह क्यों नहीं करा रहे हो, बुढ़ा हो रहा है, बुढ़ी हो रही है, इधर ब्याह नहीं करा रहे हो।

0: ओके जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब, क्या हाल है मोहतरम? हेलो
1: करम भाई, क्या हाल चाल? खैरियत है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है। त्रेडवान बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, त्रेडवान साहब कहाँ गायब हो गए आप? इतने अरसे बाद आप आए आज। हेलो हेलो, त्रेडवान साहब आपको आवाज आ रही है? ओके जी, कॉल ड्रॉप होगी त्रेडवान साहब की। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है?
2: जी आ रही है। कैसे हैं भाई?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? कौन साहिबा बात कर रही
2: है?
0: पहचानू, आपकी तस्वीर आ रही है लेकिन धुंधली धुंधली आ रही है। क्या क्या किया आज आपने? मेकअप धोया? अच्छा जी, सादिया वान रावलपिंडी से। सादिया, मैं कैसे आपको पहचानूंगा? ये इस चैलेंज में आप आरजेस को क्यों डालती हैं? अच्छा, मैं अभी ना बैठा हुआ था अपने प्रोग्राम से पहले, तो लाहौर में ट्रांसमिशन चल रही थी।
2: ठीक है, मगर ये है कि आरजेस को पता होना चाहिए ना कॉलर्स का भी। यार रेगुलर्स मेरी जो मतलब कॉलर्स आपके वो
0: आप मेरी तो कॉलर बिल्कुल रेगुलर नहीं है शादी, आप तो बिल्कुल रेगुलर कॉलर नहीं है। आपने कोई कॉल करती है एक
2: बस बीच में ब्रेकअप हुआ थोड़ा सा।
0: अच्छा
2: जी, चले
0: बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक।
2: आपको आजादी मुबारक। थैंक यू। एंड आर्मी फोर्सेस और बाकी तमाम फोर्सेस जो है और आपकी टीम को मुबारक हो आजादी।
0: ओके,
2: थैंक यू,
0: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो फिर सादिया क्या बताओगी कि जो चीजें आप लेती हो अपनी जिंदगी में, जो करती हो अपनी मर्जी से करती हो या लोगों की खुशी के लिए?
2: नहीं, वो पता है क्या क्यों कह रहे होते हैं कि अच्छी नहीं लग रही? इसमें एक वजह है, उन अच्छी जो लग रही होती है ना वो जान बूझ के कहते हैं कि अच्छी नहीं लग रही, कि ये हमें मिल जाए।
0: हाँ ये भी है वैसे, कि दूसरों की चीज पसंद होती है तो हम
2: नहीं। वो पता है क्या, वो एक्चुअली अलग अच्छी रहती है बंदा, जारी बस अपने लिए अपना सेलेक्ट करता है, फिर इतना अपने लिए कुछ तो जारी में तो फिर अच्छा ही सेलेक्ट करेगा ना।
0: बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा।
2: हाँ वैसे भी अब तो जो है ना, जो मतलब आप जो पहन रहे हैं मुझे कोई हक नहीं जो मैं कहूँ कि बुरा लग रहा है। आपको जब अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगना चाहिए। सबसे पहली बात तो है बंदे को खुद को अच्छा लगना चाहिए।
0: हाँ ये तो है।
2: वो इसीलिए जानबूझ के मैंने दो तीन दफा नोटिस लिया है। मैंने कहा मैं जब किसी ने मुझे कहा ना कैसा लग रहा है, मैंने कहा चलो तुम्हें दे दूंगी, फिर ऐसा लगेगा हाँ हाँ कहते हाँ मेरे को बोलो उनका। फिर मैं समझी ना, मैं तो बोल थोड़ी सी मैं सादी टाइप ना
0: सादी टाइप है, सादी टाइप चले।
2: हाँ मतलब मैं ये ऐसा ना,
0: अच्छा इस पे भी ना, मतलब इस पे भी मैंने भी बात करने किस्सा याद आ गया।
2: अच्छी है तो मैं कहती आपको चाहिए तो ले लो, मतलब दे दे। अब तो मैं थोड़ी सी मैं कहती हूँ यार ये क्या बात हुई भाई, अब हर चीज तो बंदा नहीं है सकता किसी टाइम नहीं भी मतलब देने के काबिल होता।
0: चलें, मत दिया करें अपनी चीजें किसी को, ठीक है? बिल्कुल मत दिया करें। ओके, आपका टाइम खत्म हो जाता है। थैंक यू सादिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आहा मिल गया, ये वाले सुनना चाहते थे ना। लेकिन आपको मैंने ये नहीं सुनाना, ये सुनाना है। आहा मिल गया। मॉर्निंग मंटन आशा सुन रहे हैं जी आज के भी के साथ, और आज के भी आपके साथ रहेगा 2 बजे तक इस्लामाबाद के स्टूडियो से। आप बिल्कुल बराह रास्त है मेरे साथ।

तेरे बिन रह न पाए, बिना तुझको मनाए, तेरे बिन रह न पाए, बिना तुझको मनाए।

0: मेरी जान बब्बू।
1: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा फिर खुश आमदीद। 1:04 हैं और खुश आमदीद हर जगह मैंने आज खुश आमदीद देखा। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जो जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं इस वक्त, कुछ मुझे कॉल्स कर रहे हैं। और कॉलर से मैं ये कहूँगा कि जल्दी जल्दी आया करें और जल्दी जल्दी जाया करें और कंटेंट लेके आया करें भाई, कंटेंट लेके आया करें यार, बात ही नहीं होती आपके पास करने को। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम भाई, क्या हाल चाल?
1: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तेरे रहमान साहब, आप खैरियत से हैं?
2: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। बहुत ही तवील अरसे तो बात गल होनी पई थी, तुसां ने शो ने विच तुसां गल कीती है, ते इस वक्त मैं मजबूर हो गया। मैं शो को ही आपके को भूल गया हूँ कि परम भाई का शो कब होता था।
1: अच्छा,
2: बस इतने अरसे के बाद तो आप अभी उठो तो इधर तो बकरियों को देखभाल के लिए मेहमान खाने में, तो मैंने कहा कि चलो लगाता हूँ, तो लगाया है। तो आगे से मेरे भाई की आवाज आ रही थी, तो आप ये कह रहे थे कि वन व्हीलिंग और मुखालिफ सिमत से लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल बाइक चला रहे होते हैं और उनको कोई कार्रवाई होती है। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि एक ट्रिक देना चाहता हूँ सुनने वालों को भी, नॉलेज में इजाफा होगा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दरूद शरीफ का आदि बना दे। दिन में उनको 3 बार पूछें कि बच्चे दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, उनको याद यानी कराएं, एक हफ्ता पूरा उनको याद यानी करते रहें, उनको आदत डालें, वो बाखलाक हो जाएंगे, वो तरबियत याफ्ता हो जाएंगे, आप बेगम हो जाएंगे।
1: अच्छा।
2: हर तरफ से बेगम हो जाएंगे अगर उनको दरूद शरीफ का आदि बना दिया तो। आजकल का जो दौर है वो ऐसा दौर है कि अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसको आगे से ये कहें कि ऐ मेरे भांजे भतीजे भाई, आगे सांप बैठा है, जरा ध्यान से जाना, मैं तो अभी आया हूँ, गुजर आया हूँ, तू जा रहा है तो जरा ध्यान से जाना। तो वो बच्चा आगे से पता नहीं क्या कहता है कि मैं अन्न आया वहां, मुझे पता है मैं गुजर जाऊंगा, तू अपना काम कर।
1: ये भी आप ठीक कह रहे हैं वैसे।
2: जी जी जी जी जी, तो मैं यही सुनने वालों को कहूंगा कि अपने बच्चों को ये दरूद शरीफ का आदि बना दें तो आप हर तरफ से जगम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो आप पहनने की बात कर रहे हैं कि मेरे जो सूट है ये तो अक्सर घर वाले ही लेकर आते हैं दिल्ली से, तो बंद जुत्ती जो है ना वो स्कूल में पढ़ते थे तो मैं पहनता था। अभी सर्दियों में भी कहीं फंक्शन पर जाना हो या बारिश हो तो मैं पहन लूं, या किसी फंक्शन में जाना हो तो वो मैं पहन लूं। जबरदस्ती मेरा बच्चा जो है वो जो एक आपकी भाभी है वो मुझे पहनाती हैं कि बंदे क्या कहेंगे, बंद जुती पहन लो बराए मेहरबानी।
1: अच्छा,
2: गर्मियों को मैं बहुत मारा हूँ, जो सर्दियां है ना
1: जी जी,
2: इनको मैं ये कहता हूँ कि ये सर्दी क्या चीज है, ये सर्दी किस चीज को कहते हैं।
1: अच्छा, चले।
2: ये हमारे एक महीने का मौसम मेहमान रह गया, अल्लाह पाक खरीद करे
1: आमीन, आमीन।
2: और सबके लिए आसानियां पैदा करे और सब सुनने वालों को सलाम और आजादी मुबारक। तो मैं भूल गया सबसे पहले,
1: थैंक यू सो मच रेडमान साहब, बहुत शुक्रिया।
2: ये मार्जी शहजादी को कहूंगा कि आए और दो बोल सुना रहे हैं, अगर सुन रही हैं तो
1: जी
2: उनकी आवाज नहीं सुनी। बहुत
1: जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जी। रेडमान साहब थे मेरे साथ, नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
1: बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं सर?
3: हाँ जी, तो बात ये है कि आप टॉपिक के बात कर रहे हैं कि कौन सा कपड़े सिलाने चाहिए जी।
1: नहीं, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी आप चीज कर रहे हैं, लाइक जैसे रेडियो, मैं रेडियो करता हूँ तो अक्सर अगर कभी मेरे इर्द गिर्द सर्कल में लोगों को जब मैं अगर बताऊं या उनको पता चल जाए कि मैं रेडियो कर रहा हूं तो वो मुझे कहते हैं कि यार क्या अब भी, अच्छा अब भी लोग रेडियो सुनते हैं या क्यों करते हो तुम रेडियो यार, तुम्हें मतलब क्यों, क्या जरूरत है तुम रेडियो करते हो? लेकिन मैं तो कहता हूं यार मुझे अच्छा लगता है, यार मुझे अच्छा लगता है, मैं रेडियो करता हूं, मैं फ्रेश हो जाता हूं। आप यकीन जानिए कि आप आज मैं जब प्रोग्राम करने आ रहा था उससे पहले मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं पिछले कुछ शायद 48 घंटों से सोया नहीं, तो मैं अभी अपने कोऑर्डिनेटर को कहने लगा था कि यार मैं आधा घंटा पहले आ गया हूँ, बस मैं सो रहा हूँ, 20 मिनट मैंने हेड डाउन करना है और ठीक 20 मिनट बाद मुझे जगा देना। जैसे मैंने रेडियो स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, मुझे कहीं दूर दूर तक कहीं नींद का कोई असर नहीं लग रहा। तो कुछ जो चीजें आपको अच्छी लगती है आप वो बस वैसे ही करते हैं।
3: देखिए जी, जो अच्छी चीजें लगे ना वो कर लेनी चाहिए, किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए, ये तो नुक्स निकालते हैं, ये कैसे किया, ये तुमने सूर चलाया, ये सही नहीं चला, किस धरती से चलाया, तो मोची से चलाते थे वो ठीक से
1: बिल्कुल
3: तो ये बात है ना, मैंने एक दफा कटिंग कराई ना, मैं बड़े तो नेकट मुझे देख के खुश होंगे, तो वो कहने लगा ये किसे कटिंग करा ली यार, को ले ले मुंडन वाले जो करा लीजिए बकरे जो मुंडे मतलब देखिए ये इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन जो दिल का शौक है ना
1: जी जी,
3: ये हमारा शौक होता है, जो हम जो काम करते हैं ना ये शौक से करते हैं जी, और शौक का कोई मूल्य नहीं होता जी, जो मर्जी ये अब रेडियो जो हम जो अपनी बात करते हैं रेडियो में हम आते हैं ना, यकीन करें पिछली जो जिंदगी है बहुत गम में गुजरी है मेरी।
1: अच्छा,
3: लेकिन जब से मैंने रेडियो से दिल लगाया है अल्लाह की मेहरबानी से मैं पुराने गम भूल गया हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत कमाल, बहुत शुक्रिया।
3: इतनी खुशी मिलती है जब आज जैसे बात करते, इतने प्यारे माशाल्लाह आप आज हैं, और बहुत मजा आता है जी बात करने का, तो हम तो रेडियो नहीं छोड़ सकते जी, जो मर्जी को कहे।
1: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें आप,
3: प्रोग्राम में शामिल होने का
1: शुक्रिया। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, पहचान लिया जी, पहचान लिया बिल्कुल,
3: ना फिर कौन किधर से बोल रहा
1: हूँ लाहौर से
3: लाहौर से शाहबाग से
1: जी जी बिल्कुल
3: शाहबाग, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्त रखे, सब भारतीयों को मेरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और काफी अच्छा कंटेंट आप लेके आते हैं जब भी आते हैं, थैंक यू सो मच बड़ी, जितने भी लोग हैं जी सभी का बहुत शुक्रिया। एक गाना और सुनाऊं आपको, फिर वापस आता हूं, आपकी कॉल देता हूं, और कॉलर बिल्कुल परेशान ना हो यार, सभी को मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा।
4: कारोबार जिंदगी है रमा दवा,
1: हाँ कारोबार जिंदगी रमा दवा रहता है, चाहे दुनिया जो भी कहे, आप अच्छा करें या बुरा करें, कारोबार जिंदगी बस वैसे ही रवा दवा रहता है, तो वो करिए जो आपको अच्छा लगता है।
4: शहर में उदास,
1: लेकिन ये भी जरूर ख्याल रखिए कि कुछ ऐसा मत कीजिए जो दूसरों को बुरा लगे, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को बुरा लग जाए ना तो ये बहुत ही गलत बात है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कुछ ऐसा मत कीजिए अपनी खुशी के लिए कि किसी दूसरे की खुशी को आप नोच डालें।

0: जी मैं पूछना चाहता हूँ 1:22 और के भी आपके साथ है और आप मेरे साथ हैं 0511111001 के ऊपर और उसके साथ साथ आप फेसबुक के ऊपर मेरे साथ हैं जी। कॉलर मेरे साथ हैं, लेते हैं जी कॉलर, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
1: जी। जनाब ठीक हैं? हरियत से?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक
0: जी। जनाब क्या कहने आए हैं?
1: आपकी अब्बासी बात कर रहा हूँ
0: जी। अब्बासी साहब
1: सर अच्छा प्रोग्राम है लेकिन कॉल नहीं मिलती आज यार।
0: आज कॉल वाकई बहुत आ रही है ना, इसलिए नहीं मिल रही।
1: बहुत आ रही है, हमेशा ही बहुत आती है, ऐसा नहीं है कि आज हम प्रोग्राम लोग सुन रहे हैं।
0: बस आपकी मोहब्बत ज्यादा हो गई है ना इसलिए।
1: वो एक बात इससे याद आई कि मैं आजकल मरी में हूँ तो मेरा रेडियो सेट खराब हो गया है।
0: अच्छा
1: तो मैं मरी क्या मार्केट तो पूछा दुकान वाले से रेडियो चाहिए, वो कहता है रेडियो इस दौर में रेडियो कौन सुनता है? कुछ नहीं सुनता।
0: हाँ।
1: रेडियो पे तो आया तो पता चले कितने लोग सुनते, कहता एक बंदा भी नहीं सुन।
0: वो मैंने पहले बात की थी ना कि जहाँ कहीं भी इंसान होता है ना, जिस एनवायरनमेंट में होता है, उसको लगता है बस यही दुनिया है। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है,
1: वो आपकी कह रही है?
0: आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आतिफ साहब।
1: आप नहीं आ रही थी?
0: नहीं सुन पा रहा आपको मैं। अच्छा, चलें अपना ख्याल रखें आतिफ साहब, और आप उनको बताइए कि भाई रेडियो वाकई बहुत लोग सुनते हैं।
1: मेरी बात सुन लेना।
0: अब ठीक आ रही है जी। जी बोलिए।
1: तो आज आप बात कर रहे थे कि

0: अच्छा अभी मेरे ना लेफ्ट साइड के ऊपर एक टीवी टेलीविजन लगा हुआ है और मैं उसके ऊपर हेडलाइंस देख रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 79th जो है वो इस दफ़ा सेलिब्रेशन कर रहा है, और मुझे बिल्कुल कल सी बात लगती है कि कभी हमने 70th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया था। तो 9 साल ऐसे गुजरे हैं कि जैसे वो कल की बात लगती है। 70 मुझे बिल्कुल सही से याद है कि ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पुरानी बात है कि 70वां योम आज़ादी हुआ और उसके लिए मैंने केक बनवाया था और उसके लिए कटआउट बनवाया था और उसके लिए काफ़ी सारी मैंने तैयारियां की थी, और वो मुझे ऐसे लगता है कि कल की बात है। बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि लास्ट ईयर इस तरह हुआ था। कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। आज हमारा मुल्क 79 ईयर्स का हो चुका है और अगली दफ़ा जो है वो 7 के फिगर से निकल के वो 8 में चला जाएगा। अगर 2-4 साल पहले अगर हम देखें ना, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते थे कि जिनसे हम बात करते थे तो वो कहते थे कि यार हम आज़ादी के वक्त ना मैं 15 साल का था, 10 साल का था या 5 साल का था, या मुझे अच्छे से याद है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अक्सर मैं अपने दादा के साथ बातें करता था तो वो मुझे कहते थे कि यार मैं ना उस वक्त 16 साल का था जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। गोरों की बातें किया करते थे कि गोरे ऐसे आते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था, कौन लॉर्ड होता था, कौन जो है वो गवर्नर होता था, फलां गवर्नर ने ऐसा किया, फलां ने वैसा किया। अच्छा वो भी ना आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी ख़त्म होती हमें दिखाई दे रही हैं। अब हमें कोई बुज़ुर्ग जो है वो बहुत कम मिलते हैं कि जो आज़ादी की बातें करें, जब उन्होंने देखा हो रियल में कि आज़ादी कैसे हुई, आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ हुई। खैर जी, कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खुरब भाई, कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ, आप बताइए।
1: आज सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक।
0: बहुत शुक्रिया, तोहफा लाए हैं मेरे लिए।
1: आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है सर।
0: मेरी आवाज़ कम आ रही है आपको?
1: हाँ बोले।
0: आप अपने फोन का वॉल्यूम ऊंचा कर लें, आपकी आवाज़ तो मुझे बहुत तेज आ रही है।
1: मैंने वॉल्यूम कर लिया, आपको पता चल गया?
0: जी जनाब, देखें अब मैं समझता हूँ ना, मैं गुर गुर जानता हूँ।
1: सर आपने टेलीपैथी की है?
0: टेलीपैथी?
1: हाँ टेलीपैथी की आपने।
0: अच्छा चले जी, मान लेते हैं
1: टेलीपैथी की। अच्छा शो, मैं काफी टाइम के बाद आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू। कौन साहब बात कर रहे हैं ये तो बताइए?
1: हक नवाज बात कर रहा हूँ सर।
0: हक नवाज? अच्छा जी, हक नवाज साहब तो किधर गायब थे आप इतना अरसा?
1: बस ऐसे ही कुछ मसरूफियात थी ऐसी, जिसकी वजह से मैं रेडियो नहीं सुन पाया।
0: अच्छा ओके,
1: तो आपका प्रोग्राम भी नहीं सुन पाया।
0: ओके,
1: तो वैसे बेसिकली आज आपने क्या टॉपिक क्या रखा है?
0: आज मैंने मौजू ये रखा है कि आप जो भी करते हैं जिंदगी में अपनी पसंद से करते हैं, इसलिए करते हैं कि यार दूसरों को अच्छा लगे।
1: आई थिंक सो, मेरे माइंड में जो इस वक्त आ रहा है ना, मैं तो दूसरों को खुश करने के लिए करता हूँ, मतलब मेरे जितने इर्द गिर्द रहते हैं उनको खुश करने के लिए मैं जो है ना अपनी जिंदगी वक्त कर रहा हूँ। अब तक मेरी जितनी जिंदगी गुजर चुकी है।
0: अच्छा हक नवाज, मैं आपकी बात से ना कुल्ली मुत्तफिक हूँ। आपने सबूत भी दे दिया है कि आप दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? बताऊं कैसे?
1: कैसे?
0: क्योंकि अभी ना आपने जो जवाब दिया है ना, शायद कि आप उससे अंदरूनी तौर पे मुत्तफिक हों या ना हों, लेकिन आपने मुझे कह दिया है कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए ये करता हूँ ताकि लोग आपको अच्छा जाने। चाहे आप अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छा दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में किसी जगह पे वो बात मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी होती होंगी जो आप अपने लिए भी करते होंगे। हर बंदे की अच्छा अभी तक जितने कॉलर आए ना, सब ने कहा कि हम अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी करते हैं वो करते हैं। अब सवाल मैंने थोड़ा सा मोड़ा, हाँ सवाल मैंने थोड़ा सा मोड़ा है, तो उसमें आपने, आप वाहिद शख्स आए हैं कॉलर जिन्होंने कहा है कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए काम करता हूँ। तो हम जहां भी देखें ना, तो जो भी मुझे जवाब दे रहा है ना, वो जवाब सही रियलिस्टिक शायद नहीं दे रहा, या शायद वो ये जवाब दे रहा है कि जो जवाब मैं सुनना चाहता हूँ या दुनिया सुनना चाहती है। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ना, ये क्रिटिसाइज वाली बात है, मैं सिर्फ
1: आपकी बात से, हाँ हाँ
0: हाँ एक साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं कि हम दूसरों को वाकई में खुश करना चाहते हैं। हम वाकई दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं कि अभी आप जो कह रहे हैं,
1: पर अपनी जिंदगी वक्त कर देते हैं पूरी की पूरी।
0: हाँ अभी आप जो कह रहे हैं उसमें भी ये बात साबित हो रही है कि आप ये चाह रहे हैं कि आप लोगों, लोग बस आपको अच्छा जाने कि आप अच्छे हैं, है ना?
1: ऐसे ही
0: हकीकतन हम जो भी हैं, हमारे अंदर शायद कोई मॉन्स्टर है, लेकिन हम उस मॉन्स्टर को छुपा के ना अपने चेहरे पे बड़ा खूबसूरत इंसान सजा के रखते हैं कि लोग आपको अच्छा जाने।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल आप दिल फरमा रहे हैं सर।
0: चलें, थैंक यू सो मच। अगर आपने मोरे सुप लगा दी तो आपको इजाजत, आप जा सकते हैं। थैंक यू मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। अच्छा यार, कितने मजे की बात है ना, अगर मैं आपसे सवाल ऐसे करूं कि क्या जो भी आप कर रहे हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब देंगे कि नहीं जी, मैं तो जो करता हूं वो अपने लिए करता हूं, मैं दूसरों को तो खुश करने के लिए कुछ नहीं करता। अगर मैं कहूँ आपसे ये कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो दूसरों की खुशी के लिए हो रहा है या वो आपकी अपनी ज़ाती खुशी के लिए हो रहा है? अब सवाल वही है, लेकिन हम मुझे कहेंगे नहीं जी, हम तो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप सवाल के अंदाज के ऊपर जाएं तो आपका जवाब मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन हम हकीकत पसंद क्यों नहीं है, हम क्यों हकीकत नहीं बयान करना चाहते, हम क्यों अपने आप को महसूस नहीं कर सकते, अपने आप को पहचान नहीं सकते, हम जानते नहीं हैं अपने आप को, या शायद कहीं किसी जगह पे हम अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं कि हम जो जवाब दे रहे होते हैं वो ये दे रहे होते हैं कि यार लोग जो सुन रहे हैं मुझे वो अच्छा कहें, वो ये कहें कि यार हाँ ये बस ठीक है, अच्छा आदमी है। लेकिन आपको शायद कि वो बड़े इन्हमाक से सुनेंगे वो लोग, या बहुत खुशी से सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सच्चाई बयान करेंगे कि आप क्या हैं, आपका अंदर का इंसान क्या है। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर से पूछते हैं कि वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खुर्रम साहब।
0: जी जी
2: हाँ जी, आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कौन साहब है?
2: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी भट्ट साहब।
2: हाँ जी, आपका प्रोग्राम अक्सर सुनता रहता हूँ लेकिन मुझे नंबर नहीं आपका मिला था। मैंने बहुत से आरजे से पूछा कि इस्लामाबाद का नंबर वो जो 051111001 वो मिलता ही नहीं। ये फिर नंबर मुझे कॉलर है उन्होंने लिखवाया, उनकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और आज आपसे
0: अच्छा, कौन सा नंबर अभी आपने मिलाया?
2: ये वो वाला 051920 2540।
0: ओके, चले मैं भी ये वाला नंबर अनाउंस करता हूँ अभी, 051920 2540। ये वाला मिलाया तो जल्दी मिल जाता है ना,
2: 920 2540।
0: हाँ,
2: ये मुझे एक कॉलर है नीला, अभी उन्होंने मुझे लिखवाया। मैं तो 2-3 महीने से फोन, 6 महीने से कर रहा हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा था, तो ये उन्होंने लिखाया, आज बात होगी, अल्लाह का शुक्र है आपसे।
0: चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये वाला नंबर भी मैं बोल रहा हूँ ताकि
2: आप पूछ रहे हैं कि जैसे कि आपकी पसंद होनी चाहिए या अगले की। देखे, जो बंदा, एक बंदा आपकी तारीफ करता है कि यार आपने ये चीज पहनी बड़ी अच्छी लग रही है, तो मेरा ख्याल उसका भी दिल रखना चाहिए और अपनी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए।
0: कमाल जी, आपने तो बड़ा जबरदस्त जवाब दे दिया, डिप्लोमेटिक आंसर है ना।
2: नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, देखे मेरा मतलब एक बंदा आपकी तारीफ करता है यार आपको ये सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर आप उसकी भी तो ख्वाहिश का ख्याल रखे ना, उसने आपकी तारीफ की है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
2: आपका भाई प्रोग्राम बहुत मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा, मजा आता है, और इंशाल्लाह फिर कॉल करते रहेंगे आपको।
0: चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच मेरे भाई, सुनते रहा करें। ऐसे कॉलर भी आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जो नंबर ढूंढ के निकालते हैं। हेलो, ओके जी, नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
3: और बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको, शाहिद अंसारी।
0: आप इस गलत फहमी में क्यों हैं कि आपकी सारी बातें प्यारी हैं?
3: जाने सीरियस से आप, तबीयत सही है आपके, माशाल्लाह, आप क्या करें भाई, शादी में कौन ना बढ़ता है, खुदा करता है तो चलो, रात से तलवार भी नहीं।
0: नहीं अंसारी साहब, आप इस गलत फहमी में क्यों हैं कि आपकी सारी बातें प्यारी हैं?
3: क्या करूं भाई, मैं अब लाती जब आप मेरे सुनते हो तब तो अपने आप से कर लो, यानी वो होता ना कि बंदा कितना भी बेहतर हो या कुछ भी, तो शीशे के सामने आता है, हाय अच्छा लग रहा हूँ, कितनी अच्छी लग रही
0: हूँ,
3: शीशे से पूछो, शीशा बोलता है एक थप्पड़ मारूंगा
0: अच्छा, मुझे तो अंसारी साहब जब भी मैं शीशे में खड़ा होता हूँ ना, तो अपने अंदर नुक्स ही नजर आते हैं कि यार ये अच्छा, ये नुक्स है,
3: वो तो बता देता है ना कितने पानी में हो।
0: हाँ, तो कुछ लोग तो शीशे के आगे ढेरों ढेर मतलब घंटों खड़े रहते हैं, और अपने आप को देख के खुश होते रहते हैं।
3: आखिर लोग हमारा थोपड़ा ही तो देखते हैं।
0: हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों लोगों की जो सोच है ना, उसमें डिफरेंस है। कुछ लोग अपने आप को पसंद करते हैं और उसके अंदर से अच्छी चीजें निकालते हैं, और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं बेवकूफ जो सिर्फ नुक्स निकालते हैं, है ना।
3: हाँ, वो तो बताओ, खुद साखता हो, खुद साखता बेवकूफ हो, मतलब बहुत सियाने हो भाई आप, चलने दो।
0: थैंक यू अंसारी साहब, ये वाली अच्छी लगी है वैसे, है ना। सारी बातें आपकी अच्छी नहीं है, बस ये वाली अच्छी लगी थी।
3: हम तो दिल में ला लेता है यार जाने, बस आप यकीन कीजिएगा मेरा कोई मूड भी नहीं था, मैंने ऐसे लगाया फोन, देखो तो सही बंजरो बनता है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है।
0: अच्छा।
3: लगाया तो मेरे बोला हो सकता है देख टू बैक हो, थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज है,
0: ठीक है अंसारी साहब, अब आपकी लग गई है फिर, अल्लाह हाफिज।
3: चलो भाई,
0: बाय बाय। अंसारी साहब जी, मैं सर कराची से, गाना सुनाया जाए आपको, बहुत मजेदार गाना है जी, ये वाला सुनाते हैं आपको। और कहते हैं दिल मेरा चुरा कर वो, शुक्र आज अंसारी साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने गाना सुनाना है।

0: ओके जी, आप सुन रहे हैं मतलब इंटरनेशनल केबी के साथ, 1:46 है और वक्त जो है वो अख्तिताम की जानिब गामजन है। 1 से 2 में कॉलर्स लूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। कॉलर है जी मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर है, आपको आवाज आ रही है? ये वाले कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हाय हाय, मैं तो फकीरा पाक बैग गया बनने जाए केड़े वाले की कॉल में आ रही हूं।
0: जी मारिया शहजादी।
1: तो वही कंट्री जो अपने आपको पसंद है, देखिए दिल राजी रहना चाहिए।
0: जो आपको पसंद है
1: तो सब राजी।
0: अच्छा, सही हो गया, दिल राजी तो सब राजी।
1: दिल राजी है तो सब राजी, लेकिन कभी कभी दूसरों को भी राजी कर लेना चाहिए। बस वो करें काम, वो करें जिसमें सब राजी, आप भी राजी है, सब भी राजी है। मतलब
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हाँ, अगर कोई कहे ना, अगर आपको महसूस हो रहा है अगला बंदा ना बस मैनू ना हमें कह रहा है बस ये अच्छी नहीं तू ना पहनी, वो फिर बंदा बिद के पाए तो आगे हमें पता लग गया चल तू नहीं तो मैं सही।
0: सही कह जी, तो सब बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू सो मच मारी शहजादी फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को, और आपको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे वतन को अमन का गहवारा बनाए रखे, इसके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफिज़ जी।
0: अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।

0: ओके जी, नंबर है 0519202540, 920-2540, और इस पे कॉल कर सकते हैं आप। प्रोग्राम में दो कॉलर मजीद लूंगा और इसके बाद जाना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम सलाम। जाने जरा जगह तो सही बता दो। हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ, आपने कराची बोल दिया।
0: चलें जी, ओके जी, हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। अरे आपकी लाइन में बहुत डिस्टॉर्शन है, जो भी आप कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
2: कैसे?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कैसे हैं?
0: आप कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं मुशाविर बात कर रहा हूँ, खानेवाल से।
0: कौन बात कर रहे हैं?
2: मुशाविर बात कर रहा हूँ, खानेवाल से।
0: जरा अपना नाम आराम से लीजिए ताकि मुझे समझ आए।
2: मुशाविर बात कर रहा हूँ, खानेवाल से।
0: मुशाविर, अरे मुशाविर, मुशाविर क्या कहने आए?
2: बस माशाल्लाह शो अच्छा जा रहा है, तो आज 14 अगस्त थी मेरी तरफ से 101, और बिलखसूस आपको आजादी मुबारक।
0: थैंक यू।
2: तो ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा था कि हम जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए खुद को बहुत चेंज करते हैं।
0: तो आप क्या करते हैं?
2: मैं आर्मी में हूँ।
0: मैंने आपसे पूछा आप दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं?
2: दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, दुनिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अभी क्या करें? दुनिया हमारे से सेटिस्फाई ही नहीं हो रही।
0: दुनिया कभी सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन करनी भी पड़ती है, जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है। अगर इस चीज से आप जी चुराए ना, डायलॉग बाजी करें कि नहीं यार दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए, बस अपना, दुनिया आपके साथ है, आप दुनिया से हैं, तो दुनिया आपके लिए मैटर करती है, फॉर श्योर मैटर करती
2: है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बट अगर देखा जाए ना, तो हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दुनिया को दिखाएं, दुनिया को शो कराएं कि मैं ये चीज हूँ, ये हमारा बैकग्राउंड, हमारा स्टेटस, नथिंग। जस्ट अल्लाह को देखे ना, बंदे ना चीज है, हम कुल्लू नफ्सुन ज़ायका दल्मौत, सब में एक हक हो जाना है। हम क्यों ना अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को सेटिस्फाई करें। ये तो दुनिया एक आरज़ी है, टेम्परेरी है, आज इनको कल चले जाएंगे, ऐसे ही है।
0: बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू मुसव्वर, बहुत शुक्रिया आपकी मुसव्वरी का। थैंक यू जी, बाय। अरे बस कर दे भाई, आंखों से छलक दे, बस कर दे भाई, हमको अगला लग जा, ए लगाए। क्यों नहीं जान छोड़ रहा ये वाला गाना, मेरी ये वाला लगाते हैं। ढूंढूंगा मैं उस कॉलर को कि जो बात करे, तो मुझे लगे आह आह क्या किया, जिसके पास कंटेंट हो भाई। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: वाह जी वाह, इनके पास होगा कंटेंट। कैसे हैं सर
3: आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं मोहतरम?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तमाम सुनने वालों को आजादी मुबारक।
0: बहुत शुक्रिया, आपको भी।
3: आज के हमें इस आजादी का मतलब समझ आ जाए। आप मुझे सवाल दोहरा दे, मैं कोशिश करता हूँ। मैं इस वक्त आपका प्रोग्राम गांव में सुन रहा हूँ, ट्रांसमिशन बड़ी, जिसे कह रहे हैं ना, मैं गांव में हूँ अपने।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है आपका?
3: स्वाबी।
0: स्वाबी
3: जी जी।
0: अच्छा ओके, आपकी तबीयत ठीक है? तो अभी तबीयत कुछ नासाज लग रही है आपकी?
3: नहीं नहीं, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चले माशाल्लाह,
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा तो
3: दोहरा दे, मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि आवाज इतनी काट काट के आ रही है, मैं बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ।
0: अच्छा, मौजू मेरा ये है कि आप कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे कुछ लेते हैं, खरीदते हैं, कुछ पहनने की चीज, कुछ खाने की चीज, या कोई हरकत, या कोई काम, या कोई भी चीज करते हैं, क्या वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं या दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं?
3: नहीं, अपने के, अपने अपनी पसंद,
0: सिर्फ अपनी पसंद।
3: जी जी,
0: दुनिया की, दुनिया जाए भाड़ में है?
3: नहीं, नहीं, वो देखें, आप सख्त बात कर रहे हैं। वो दुनिया अगर जहाँ किसी की देखे ना, किसी दिलाजारी हो रही हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा ना उसको खुश करने के लिए कि यार कोई बात नहीं, इसकी अगर खुशी है। वैसे जाती तौर पे अगर आपने देखें, दो लफ्ज इस्तेमाल किए, कुछ चीज आपको पसंद आती है, मिसाल के तौर खरीदारी में, तो मुझे अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो मैं नहीं ज्यादा सोचता उसके मतलब।
0: अच्छा, ले लेते
3: हैं। मैं ले लेता हूँ उसको, मैं उसको ले लेता हूँ, क्योंकि जब आपको पसंद आ गई तो बस ठीक है ना। मैं ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करता, मैं बाजार में ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होता।
0: अच्छा,
3: मतलब मेरी बड़ी शॉर्ट सी खरीदारी होती है। बाकी जो दूसरे एंगल से आप बात कर रहे हैं, वो अलग एक पहलू है, बाद उकात आपको कहीं किसी का दिल रखना भी पड़ता है ना चाहते हुए भी, मतलब ये बड़ा जरूरी है। अच्छा बाद उकात आपको अपनी पसंद को छोड़ना भी पड़ जाता है किसी की खुशी के लिए।
0: बिल्कुल ऐसा कहानी साहब, बिल्कुल ठीक है,
3: सही है ना।
0: चले सर, मुझे अच्छा लगा, आपने आपने बड़ी बड़ी वजनदार बात की है, और आई थिंक सो कि आपने खुलासा कर दिया है कि हमें क्या करना चाहिए।
3: मैं एक शेर सुना दूं आपको?
0: जी जी सुना दीजिए।
3: नवाज देवबंदी का बड़ा एक अच्छा शेर है, आपके टॉपिक से सही कहीं जाके हो सकता है ये मिल जाए।
0: जी,
3: नवाज देवबंदी ने कहा था कि जब मैंने उसको खास निगाह नाज से देखा, कहीं ना कहीं आंख का भी बड़ा कमाल होता है पसंद में ना,
0: बिल्कुल ऐसा
3: कहीं दिल भी होता है, जुबान बाद में खुलती है। जब मैंने उसे खास निगाह नाज से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा।
0: वाह वाह वाह, कमाल अस्त, बहुत शुक्रिया।
3: खुद को आईना बनाए ताकि आपको आपको लोग देखें, उसमें थोड़ी सी आसानी हो, दूसरों को मत बनाए, मुश्किल हो जाएगी आप।
0: अरे कमाल कमाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया क्यानी साहब, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा।
3: खुश रहे, सलामत रहे,
0: बाय बाय। यानी साहब मेरे कॉलर्स में से वो कॉलर हैं जो जब भी आते हैं तो बात को समझ के करते हैं, जो बात मैं करना चाहता हूँ या मैं जो कह रहा होता हूँ उसको बागौर सुनते हैं और उसको उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और फिर अपना तजुर्बा और अपना मुशाहिदा सामने रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो मुझे इसी कॉल के ऊपर इख्तिताम करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करूँ और फिर आखिरी कॉलर जो है वो वाले कॉलर हों जो सिर्फ अपना नाम सुनाना चाहते हों। तो इसी कॉलर पे क्यानी साहब, आपकी बात के ऊपर ही मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। और अगर प्रोग्राम में आपको सजेशन देना चाहते हैं, प्रोग्राम को बेहतर करना चाहते हैं, या मुझे कोई भी बात किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, सो आप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, kb.baig लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा, kb.baig तो आपको मैं मिल जाऊँगा, आप वहाँ जाके मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी बात कैसा कहना चाहते हैं तो कहिएगा जी। केबी को दीजिए इजाज़त, सांसों ने अगर वफा की तो मुलाकात होगी आपके साथ अगले जुम्मे को। जुम्मे तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, बाबा टाटा।

सा दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे

0: और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताजा ताजा खजूरें झड़ पड़ेंगी।
1: फकुनी वशबी वकरिया

तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी।